सुप्रभात। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलो हर्ट्स पर, DRM 909 किलो हर्ट्स और FM 100.1 मेगाहर्ट्स पर, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR, आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। श्रोताओ, आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 21वीं तिथि। तदनुसार आज 11 जून 2026 ईस्वी हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:54 होने को है। लीजिए, अब सभा की शुरुआत करते हैं इस मंगल ध्वनि के साथ।

0: श्रोताओं, सभा के आरंभ में लीजिए सुने समाचार। समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार हिंदी और अंग्रेजी में होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। इस बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने देश के भरोसे को सदैव मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
2: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है और अब देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों

0: ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और उनके ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने पर उन्हें बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
1: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री को बधाई दी है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी को शुभकामनाएं दी हैं। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोफिया में बुल्गारिया के प्रधानमंत्री रूमेन रादेव से मुलाकात की। इस दौरान डॉ जयशंकर ने भारत और बुल्गारिया के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों तथा बदलती वैश्विक परिस्थितियों में आपसी सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। डॉ जयशंकर आज फिनलैंड जाएंगे। इस दौरान वे कुलतारांता वार्ता के 14वें संस्करण में भाग लेंगे। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत में 13 जून तक बारिश होने की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि के साथ वर्षा हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Subhadra Ramachandran. Prime Minister Narendra Modi will chair the 11th Governing Council meeting of Niti Aayog at Rashtrapati Bhavan Cultural Centre in New Delhi today. In line with the Prime Minister's vision of Team India for a Viksit Bharat, this year's theme, Inclusive Human Development for Viksit Bharat at 2047, focuses on the well-being and development of every Indian, regardless of age, region, gender or socio-economic background. The Governing Council meeting will deliberate on the approach to realise this vision and translate it into concrete, measurable outcomes for every citizen across the country. This Governing Council meeting will bring together Chief Ministers and Lieutenant Governors to discuss the Inclusive Human Development Framework. Prime Minister Narendra Modi has said aspirations of 140 crore citizens of the country will definitely be fulfilled. He said that National Democratic Alliance, NDA, has always strengthened the nation's trust. Mr. Modi was addressing the NDA conclave at Bharat Mandapam in New Delhi yesterday evening. He said the people of the country entrusted the NDA government with their trust after the betrayal of the Congress. He said the rising sun of hope in 2014 has today transformed into a ray of renewed confidence. He said for the first time, the people of the country have seen that when a government is run with the right intention, the development also takes place at a rapid pace.
3: Bharat ke logon ne pehli baar ye dekha hai ki jab sahi niyat se sarkar chalti hai to tez gati se vikas bhi hota hai. NDA sarkar ke in 12 varshon mein 25 crore se zyada logon ka garibi se bahar nikalna

श्रोताओं, ये भक्ति रचना भी आप सुन रहे थे नरेंद्र चंचल की आवाज में। लीजिए अब सुने अनूप जलोटा की आवाज में ये भक्ति रचना।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति रचनाओं पर आधारित कार्यक्रम वंदना। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। श्रोताओं, लीजिए अब सुने कार्यक्रम आज का चिंतन।
1: संसार में दो तरह की धाराएं बहती है, एक चिंतन की धारा है जो ईश्वर की ओर हमें मोड़ देती है, एक चिंता की धारा है जो संसार की ओर हमें मोड़ती है। अगर हम चिंतन की धारा में बहने लगे तो चिंतन के माध्यम से ईश्वर का सान्निध्यता प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन चिंतन के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कुछ चीज़ों को त्यागना जरूरी है, कुछ बातों को समझना जरूरी है, जिसके अंदर अनिवार्यता यह है। जैसे संयोग जन्य, जो संयोग के द्वारा जो सुख की प्राप्ति होती है वो हमें चिंतन की धारा से विमुख कर देती है, तो संयोग के द्वारा जो सुख की अनुभूति हमें होती है उसमें हमें लिप्तता, संसार में आसक्ति, संसार के साथ अपनापन ज़्यादा होता है, जिसके कारण हमें चिंतन की धारा से हम बह जाते हैं। दूसरी बात है, जिस बात को हम भोग करके सुख प्राप्त करना चाहते हैं वो भोग से सुख की प्राप्ति नहीं होती। भोग को प्राप्त करने की इच्छा का त्याग करना ही सबसे बड़ा त्याग है। दूसरी बात है विषयों की इच्छा, अगर विषय में आपका मन रमा हुआ है तो विषय से अलग हट करके चिंतन की धारा में बह करके विषय को त्यागना। तीसरी बात है संग्रह की इच्छा, किसी पदार्थों का हम संग्रह कर रहे हैं, संग्रह इतना हम करते हैं, संग्रह करते जाते हैं लेकिन इच्छा पूरी नहीं होती, त्याग की भावना प्रकट नहीं होती, और एक एक चीज़ को संग्रह करते जाते हैं। जैसे मधुमक्खी शहद को संग्रह करती है, कोई लूट करके ले जाता है, उससे कोई लाभ नहीं हुआ, उससे कोई फायदा नहीं हुआ। संग्रह करना तो हर व्यक्ति को आवश्यक है, लेकिन संग्रह की इच्छा को त्यागना ही सबसे बड़ा त्याग है। एक बात और है कि मन की इच्छा का त्याग, मन में इतने तरंग हमारे उठते हैं जिन तरंगों को मिटाना बड़ा कठिन काम होता है, मन में तरंग उठने की इच्छा को ही त्यागना सबसे बड़ा त्याग माना गया है शास्त्रों में। इस करके मन में जो तरंग उठते हैं, कई प्रकार के तरंग उठते हैं, भावनाओं के तरंग उठते हैं, तरह तरह के जो विचार उठते हैं, उन विचारों को त्यागना भी, मन को समझाना या मन को त्याग के माध्यम से ईश्वर की ओर जोड़ना है, ये भी एक चिंतन की एक धारा है। और एक बात और है बड़ाई की इच्छा, इंसान चाहता है दुनिया में बड़ाई हो, हमारी प्रतिष्ठा।

0: इज्जत हो, बड़ाई की इच्छा को भी त्यागना इंसान को बहुत ज़रूरी काम है। इसलिए हर बार अपनी बड़ाई, अपने धर्म की बड़ाई, एक संप्रदाय की बड़ाई, एक व्यक्ति की बड़ाई, अपनी प्रतिष्ठा की बड़ाई, उससे भी इंसान डूबता हुआ जाता है तो चिंतन की धारा वहाँ भी टूट जाती है। इसलिए चिंतन के द्वारा ईश्वर के करीब होने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। एक बात और है, आराम की इच्छा, आराम की धारा को भी त्यागना बहुत जरूरी है। जैसे आराम कर रहा है, विश्राम कर रहा है, प्रातःकाल शीघ्र उठें, परमात्मा के भजन में लग जाएं, प्रातःकाल शीघ्र उठें और किसी अच्छे काम पे लग जाएं, हमारा शरीर जितना सुस्तता चाहता है इतना ही और आराम भी बढ़ता जाता है, आराम भी बढ़ता जाता है। जितने आराम की इच्छा को त्यागने का अभ्यास करेंगे उतने हम परमात्मा के सानिध्य में होंगे। जैसे एक विद्यार्थी है, पढ़ने वाला विद्यार्थी सफल होना चाहता है लेकिन आराम को नहीं त्याग सकता। एक व्यापारी है, सफल होना चाहता है लेकिन आराम को नहीं त्याग सकता। एक नौकरी करने वाला व्यक्ति है, सफल होना चाहता है लेकिन आराम को नहीं त्याग सकता। आराम जितना त्यागते हुए जाएंगे उतना ही हम परमात्मा के करीब होंगे और अपने कार्य में सफल होते जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है भोगों की इच्छा का त्याग। हमारे मन में तो भोग की बड़ी लालसाएं बढ़ती रहती है क्योंकि संसार को भोगों के द्वारा तृप्त कभी नहीं किया जा सकता। जितना भोगों को त्यागने की इच्छा हमारे मन में प्रकट होगी उतना हम भोगों से दूर होते जाएंगे। इसलिए भोगों का त्याग, एक एक चीज का त्याग हम करते जाएं उतने हम निर्मल बनते जाएंगे, ईश्वर के करीब होते जाएंगे, परमात्मा के करीब होते जाएंगे। हमारी आत्मा तो निर्मल है ही पहले से ही, लेकिन मन को विकारों ने घेर रखा है। जैसे प्याज के छिलके होते हैं, एक एक छिलके को उतारते जाओ अंदर प्याज का कुछ भी नहीं मिलता। ऐसे मन के अंदर विकार को उतारते जाएं तो विकार शून्य मन होने के बाद अपने आप आत्मा में तृप्ति आती है और चिंतन की धारा हमारी अविरल गति से बहने लगती है, तो ये जीवन का सार होगा।
1: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरत कर से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:50 होने को है। लीजिए अब सुने कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम विवरण में आप सुनेंगे हमारी आज की सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम व उनका प्रसारण समय।

अब से कुछ ही देर बाद यानी कि 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेतिहारा वास्ते। लोक भजन का वक्त रहेगा 7:15। मानस गाना आप सुनेंगे 7:20 पर। सुप्रभात, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 7:30 पर। आठ बजकर 45 पर कार्यक्रम होगा सुगम संगीत, जिसमें आपको सुनवाएंगे कुछ भजन। मरुमंगल का वक्त रहेगा 9:10। 9:30 पर आज आप सुनेंगे एक नाटक, अंतस का उजास।

10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम अनुरोध गीत, 11 बजे कार्यक्रम होगा फिल्म संगीत, कुछ बातें कुछ गीत ये कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 12:05 पर। सुगम संगीत का रहे वक्त रहेगा 12:30, खेत खलियान आप सुनेंगे 12:50 पर।

दोपहर 1:05 पर कार्यक्रम होगा महिला जगत। फिल्म संगीत का प्रोग्राम आप सुनेंगे दोपहर 2:30 पर। शाम 4 बजे कार्यक्रम होगा संदेश टू सोल्जर हमारे दिल्ली केंद्र से। हमारी संध्याकालीन सभा में शाम 5 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी। सरायकी का वक्त रहेगा 6:05। शाम 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम चौपाल। 7:45 पर कार्यक्रम होगा फिल्म संगीत। 8 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम एक ही फिल्म से।

रात्रि 9:15 पर कार्यक्रम होगा सुगम संगीत विज्ञान पत्रिका। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 10 बजे हमारे जयपुर केंद्र से।

0: का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ है। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा, देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है। और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है।
1: अस्मिन्नवसरे एनडीए घटक दलैः प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः ऐतिहासिक उपलब्धेः श्लाघनाय एकः संकल्प प्रस्तावः स्वीकृतः। एतदन्तरं सम्पूर्ण विश्वतः प्रधानमन्त्रिणे अभिनन्दन सन्देशाः आगच्छन्तः सन्ति। अमेरिकादेशस्य राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्पः यूरोपीय आयोगस्य अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयेन, इटली देशस्य प्रधानमन्त्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी देशस्य चांसलर फेडरिक मोर्स, इजराइल देशस्य प्रधानमन्त्री बेंजामिन नेतन्याहू, कनाडा देशस्य प्रधानमन्त्री मार्क कॉर्नी सहैव दक्षिण कोरिया देशस्य राष्ट्रपतिः ली जे म्यूंग इत्यादयः प्रमुख वैश्विक नेतारः श्रीमोदिनं प्रति वर्धापनं प्रेषितवन्तः। संस्कृति मन्त्रालयेन गतवर्षस्य कृते संगीत नाटक अकादमी पुरस्काराः अथ च उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्काराः घोषिताः। अकादमी संघस्य सामान्य परिषदा संगीत नृत्य रंगमंच पारंपरिक लोक जनजातीय कला वैविध्येभ्यः कलामंचं यावत् विविध क्षेत्रेभ्यः 88 प्रसिद्धाः कलाकाराः 24-2000 अथ च 25-2000 अकादमी पुरस्कारार्थं चिताः। एते चिताः पुरस्कार विजेतारः अशेषस्य हि देशस्य प्रतिनिधित्वं कुर्वन्ति। ये विभिन्न राज्येभ्यः केन्द्रशासित प्रदेशेभ्यः च सम्बद्धाः सन्ति। बैडमिंटन प्रतिस्पर्धायां सिडनी नगरे प्रचल्यमानायाः ऑस्ट्रेलियन ओपन स्पर्धायाः महिलानां वर्गे पीवी सिंधु तन्वी शर्मा च सफलताम् अवाप्य द्वितीय चक्रं प्रति प्रविष्टवत्यौ। इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। इस बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने देश के भरोसे को सदैव मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
0: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है और अब देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई भी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल एक प्रस्ताव

0: पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
1: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने श्री मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी को शुभकामनाएं दी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल बुल्गारिया के प्रधानमंत्री रूमेन रादेव से सोफिया में मुलाकात की। इस दौरान डॉ जयशंकर ने भारत और बुल्गारिया के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों तथा बदलती वैश्विक परिस्थितियों में आपसी सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। डॉ जयशंकर आज फिनलैंड जाएंगे। इस दौरान वे कुल्ता रांता वार्ता के 14वें संस्करण में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल चेयर द 11th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग एट राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर इन न्यू दिल्ली टुडे इन लाइन विद द प्राइम मिनिस्टर्स विजन ऑफ टीम इंडिया फॉर अ विकसित भारत। दिस ईयर्स थीम इंक्लूसिव ह्यूमन डेवलपमेंट फॉर विकसित भारत एट 2047 फोकसेस ऑन द वेलबींग एंड डेवलपमेंट ऑफ एवरी इंडियन रिगार्डलेस ऑफ एज रीजन जेंडर और सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। The Governing Council meeting will deliberate on the approach to realize this vision and translate it into concrete, measurable outcomes for every citizen across the country. This Governing Council meeting will bring together chief ministers and lieutenant governors to discuss the inclusive human development framework. Prime Minister Narendra Modi has said aspirations of 140 crore citizens of the country will definitely be fulfilled. He said that National Democratic Alliance NDA has always strengthened the nation's trust. Mr. Modi was addressing the NDA conclave at Bharat Mandapam in New Delhi yesterday evening. He said the people of the country entrusted the NDA government with their trust after the betrayal of the Congress. He said the rising sun of hope in 2014 has today transformed into a ray of renewed confidence. He said for the first time, the people of the country have seen that when a government is run with the right intention, the development also takes place at a rapid pace.
1: भारत के लोगों ने पहली बार ये देखा है कि जब सही नियत से सरकार चलती है तो तेज गति से विकास भी होता है। एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: In his address, Mr. Modi said that at a time when the economies of major countries around the world are struggling, India has still achieved a growth rate of 7.7% in 2025-26. Prime Minister Narendra Modi

0: has expressed gratitude to Italian Prime Minister Giorgia Meloni, Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim, German Federal Chancellor Friedrich Merz, Canadian Prime Minister Mark Carney and Prime Minister of Israel Benjamin Netanyahu for their warm wishes and messages. In a social media post, Mr. Modi thanked his Italian counterpart Giorgia Meloni for her warm wishes. In another post, the Prime Minister thanked Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim for his warm wishes and kind words. He also thanked German Chancellor Friedrich Merz for his warm words. Meanwhile, US President Donald Trump has described Prime Minister Narendra Modi as a great one. In a social media post, President Trump said Mr. Modi is a strong, healthy and wise man and will have many years of greatness and success ahead of him. The Indian Chamber of Commerce plans to facilitate investments worth 1 lakh crore rupees in West Bengal through its member companies, reflecting growing industry confidence in the state's economic potential and growth prospects. The proposal was discussed during a meeting in New Delhi between an Indian Chamber of Commerce delegation led by its president Brijbhushan Agarwal and Union Minister Jitendra Singh. The chamber said West Bengal is witnessing renewed optimism and positive momentum, which could help accelerate economic growth and strengthen its position as an attractive destination for investment. The Ministry of Culture has announced Sangeet Natak Academy Fellowship, Academy Ratna and Sangeet Natak Academy Awards Academy Puraskar for the years 2024 and 25 and Ustad Bismillah Khan Yuva Puraskar for the years 2024 and 2025. Prime Minister Narendra Modi has praised the performances of Indian sportspersons and urged the nation to set ambitious targets for the Olympics. Speaking at the NDA conclave in New Delhi, Mr. Modi highlighted the achievements of young athletes and the rapid growth of sports in India, while stressing the need to aim higher on the global stage. The India Meteorological Department has forecast heavy rainfall today in places over Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Kerala, Mahi, Odisha, Sub-Himalayan West Bengal and Sikkim. Rainfall conditions are also expected during the day over Andaman and Nicobar Islands, Bihar, coastal Andhra Pradesh and Karnataka, Gangetic West Bengal, Tamil Nadu and Northeast India. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरत कर से बोल रहे हैं। श्रोताओ, हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:10 हुए हैं। लीजिए सुने कार्यक्रम खेती हरां वास्ते। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे असली और नकली खाद की पहचान कैसे करें।
2: राम राम रामेश्वर भाई, राम राम
3: राम राम मुकेश भाई, राम राम राम राम। और सुनाओ मुकेश भाई, की हाल चाल है?
2: बढ़िया रामेश्वर भाई, बस लाग रहे हैं खेत क्यार गए काम धंधे में।
3: बढ़िया बढ़िया। और अब देखा नहीं तो अब मौसम जो है वो बदल ला रहे है, और आपने हाड़ी जी की फसल है ना, आपने जो का भाई लोग है बे लगभग सामने में लाग रहे है।
2: जी बिल्कुल रामेश्वर भाई, अब आप देखने ला रहे हैं कि लगभग किसान भाई हैं जका आपकी फसलें जकी साम ली है, आगे की फसल की बीज आंत जकी बिंगी तैयारी भी शुरू कर दी है।
3: क्योंकि अब देखा नहीं तो आपने जगह कणगी जकी फसल है बा लगभग कटाई हो चुकी है, लेकिन तूड़ी ताड़ी वालों तो काम धंधो है नहीं मुकेश भाई, अजय की थोड़ो बहुत बाकी पड़ो है।
2: बिल्कुल रामेश्वर भाई, और वो काम धंधो तो देखो जी यही चाल तो ही रहनो है। हाँ, और हाँ। सागे सागे रामेश्वर भाई थारकनु कई जानकारी लेनी थे मार में श्याणा मीने खो सोचे हो, जानकारी थारू ही ले लिया।
3: मुकेश भाई श्याणा तो थे भी हो, लेकिन जानकारी की अगर बात पूछनी है ते पूछ सको और पूछो के पूछना चाहो।
2: रामेश्वर भाई सहसू पहला तो मैं थारसू आ बात पूछना चाहूँ की जी आप खेती करा तो भी मैं खाद को उपयोग करा।
3: बिल्कुल।
2: खाद का उपयोग का मां अब अपने बेरो कौन लागे नहीं कि किसी खाद असली है और किसी नकली है, तो वो आन दिना में की चर्चा में रेवे कि आ खाद तो भाई तू नकली लिया हो या असली खाद है, तो बिंगी पिछाण किया करा।
3: मुकेश भाई का अब लाला दिना भी आपा एज की शिकायत है और एज की कमियां है आपा सुनी और देखी भी, आपने जो किसान भाई लोग बता ला रही है नकली खाद जी की है बाण ला रही है
2: जी,
3: तो इंग जी पिछाण है नहीं बा अपन करनी जरूरी है, तो इंग पिछाण आपा किया करनी है जी आपा डीएपी जी की है बा खेत का मां बरताइया।
2: हाँ बिल्कुल, डीएपी आपा लगभग फसल में ही उपयोग में लेवाइया।
3: मुकेश भाई जे डीएपी की आपा पिछाण करनी है नी भी असली है नकली है, तो इंग लिए सहसु पहली आपा जो को तरीको अपनाना वो ये है कि डीएपी का कुछ एक जगह दाना भी हाथ में लेगे और बा मां चुनो जो को है वो मिला गे और बिना मसलनो चाहिए हथेड़ी के ऊपर, बिंग मां जे तेज गंध आन लग जाए, सुरम आन लग जाए, अरे आप बिन सूंघे देखा तो यहाँ समझाना चाहिए का आ डीएपी जिकी है बा एकदम असली है।
2: यानी कहना मतलब है कि जे सूंघनो ही मुश्किल हो जावे, इतनी तेज गिंद आवे बीमा, तो बा इंगो मतलब असली है।
3: हाँ बिल्कुल असली है, आ एक पिछाण है। और इंगा अलावा एक और पिछाण है मुकेश भाई।
2: के पिछाण है भाई बता दियो।
3: बा पिछाण आ है कि डीएपी का कुछ एक जगह दाना है बे धीमी आंच पर अपने तवा के ऊपर गर्म करना है, जो को रोटी पोन वाला तो है
2: जी,
3: बिंग ऊपर आप गर्म कर लेवा, जे ये दाना फूल जे तो समझाना चाहिए है कि आ डीएपी जिकी है असली,
2: असली
3: है।
2: है।
3: हाँ
2: और इंग अलावा और कोई पिछाण है तो बा भी बता दे रमेश सर भाई।
3: बिल्कुल, एक और पिछाण है बा भी सुन लो थे, डीएपी की जिकी असली पिछाण है नी बा आ भी है मुकेश भाई, के इंगा जगह कठोर दाना भूरे काले और बादामी रंगा हुए और नाखून शू बे आसानी से टूटे कोनी आपा बिन मसल गए या तोड़ के देखा तो।
2: ठीक है, तो यूं आपा पिछाण सका कि आ डीएपी असली है और नकली है।
3: बिल्कुल बिल्कुल
2: इंगा अलावा रमेश सर भाई आपा पोटास को उपयोग करा फसल में,
3: बिल्कुल करा,
2: तो इंगो और बता दियो माने कि इंगो माने किया बेरो लागे कि नकली पोटास है या वो असली पोटास है।
3: इन चीज की भी पिछाण आपा कर सका जी, पोटास की जी की असली पहचान है बो इंगो सफेद जो को कड़ाको है बो आपा मान सका। इंगा अलावा मुकेश भाई आपने एक और पिछाण है का आपा असली पोटास की जी की पिछाण है बकिया कर सका, पोटास पानी में घुलने पर इंगो जो को लाल भाग है वो हमेशा ऊपर लपा से तैरतो रहे।
2: ठीक है रामेश्वर भाई, इंगा अलावा आपा बात करा सुपर फास्फेट की, तो सुपर फास्फेट की असली नकली की पिछाण आपा किया करा।
3: सुपर फास्फेट की भी असली नकली की पिछाण मुकेश भाई कर सका, सुपर फास्फेट की असली पहचान आ है कि इंगा सख्त दाना जका है अंगो जो को रंग है वो भूरो काड़ो और बादामी रंग हुए।
2: ठीक है,
3: और इंगा अलावा सुपर फास्फेट का कुछ एक दाना तवा पर गर्म करना पर जे ए दाना ना फूले तो समझाना चाहिए का आ असली सुपर फास्फेट है।
2: असली सुपर फास्फेट। रामेश्वर भाई इंगमा एक पिछाण आ है कि इनमें ज्यादातर जो है वो डीएपी और एनपीके को मिश्रण बिंगी मिलावट हो है।
3: हाँ हाँ,
2: इंगो आपा पिछाण करके है आपा असली नकली की पिछाण कर सका।
3: बिल्कुल, आप भी एक बहुत बढ़िया पिछाण है। और इन त्रियांशियों आप अगर आपने जो असली नकली खाद है बिंग पिछाण करके यार खेत में ना खानी तो आपने जो फसल है बा भी मुकेश भाई बहुत बढ़िया है, और आपने जो को पीसो टक्को लागू रहनी वो भी एड़ो कौन जानी।
2: बिल्कुल सही बात है रामेश्वर भाई।
3: पर अब तो खेत का काम धंधा मैं और थे और भी करना है, तो क्यों ना चला
2: चलो सा
3: राम राम सा राम राम।
1: श्रोताओ अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती हराम वास्ते, जिसमें आज जानकारी का विषय था असली और नकली खाद की पहचान कैसे करें। लीजिए अब सुने कार्यक्रम लोक भजन। लोक भजन के इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं सरदारा राम व साथियों का गया लोक भजन।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक भजन। लोक भजन के इस कार्यक्रम में आज आपने सरदारा राम व साथियों का गाया लोक भजन सुना। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। श्रोताओं, लीजिए अब सुने कार्यक्रम मानस गान। मानस गान में आज आप सुनेंगे किष्किंधा कांड में भाग संख्या 271।

प्रसंग है किष्किंधा कांड में बालिवध के बाद सुग्रीव के राज्यारोहण तथा बालिपुत्र अंगद के युवराज घोषित किए जाने के बाद प्रवर्षण पर्वत की गुफा में राम लक्ष्मण प्रवास का। ऋतुचक्र अपनी गति से चल रहा है। वर्षा ऋतु का आगमन हुआ। सुंदर स्फटिक मणि की अत्यंत उज्ज्वल शिला पर बैठे हुए श्रीराम छोटे भाई लक्ष्मण से भक्ति, वैराग्य, राजनीति और ज्ञान की अनेक कथाएं कहते हैं। आकाश में घुमड़ते बादलों को देख मोरों के झुंड ऐसे नर्तन कर रहे हैं जैसे वैराग्य में अनुरक्त गृहस्थ किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होता है। आकाश में घुमड़ते बादलों को देख मोरों के झुंड ऐसे नर्तन कर रहे हैं जैसे वैराग्य में अनुरक्त गृहस्थ किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होता है। बादल पृथ्वी पर ऐसे झुके आते हैं जैसे विद्या पाकर विद्वान नम्र हो जाते हैं। वर्षा की बूंदों की चोट पर्वत ऐसे सहते हैं जैसे दुष्टों के वचन संत सह लेते हैं। चारों दिशाओं में मेंढकों की ध्वनि ऐसी सुहावनी लगती है जैसे विद्यार्थियों का समूह वेद पाठ कर रहा हो।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मानस गान। मानस गान में आज आपने किष्किंधा कांड में भाग संख्या 271 सुना। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:30 और 9 सेकंड हुए हैं। लीजिए अब सुने कार्यक्रम सुप्रभात।

सुप्रभात कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को संजय चौधरी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोता, इस कार्यक्रम में हम चर्चा भी करेंगे और आपको गीत भी सुनवाएंगे। अगर हम बात करें अब तो निराशा में परिवार का साथ कैसे मिले, कैसे दें, ये सब चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं एक व्यक्ति के जीवन में। जीवन में निराशा या हताश के समय परिवार का साथ सबसे बड़ा संबल होता है। अपनों का भावनात्मक समर्थन व्यक्ति को टूटने से बचाता है और विपरीत परिस्थितियों में लड़ने की शक्ति देता है, क्योंकि जब व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में होता है और उसे जब कुछ नहीं दिखाई देता और इस दौरान यदि अपने परिवार के सदस्य या लोग, अपने लोग आकर अगर आपके पास खड़े होते हैं तो उससे व्यक्ति को बहुत संबल मिलता है और उसमें हिम्मत आ जाती है और वो उस निराशा से बाहर निकल सकता है। सुरक्षा की भावना की अगर बात करें तो परिवार एक ऐसा सुरक्षित स्थान होता है जहां व्यक्ति बिना किसी डर के अपनी कमियां और परेशानियां साझा कर सकता है। बिल्कुल इंसान कहीं हर जगह बैठकर ये बात नहीं कर सकता, परंतु जब वो परेशान होता है तो अपने जो परिवार के सदस्य हैं उनके साथ बैठकर अपने दुख तकलीफ की बात उनके साथ साझा कर सकता है। इससे हमें बहुत ही सम्मानजनक बात, यूं कहें कि हमें बहुत फक्र महसूस होगा, हमें बहुत खुशी मिलेगी, हमारा मन भी हल्का होगा कि हमने ये बात हमारे परिवार के सदस्यों के साथ साझा की। इससे इंसान अपने आप को हल्का महसूस करेगा। भावनात्मक संबल की अगर बात करें तो संकट के समय में अपनों का साथ यह एहसास दिलाता है कि आप अकेले नहीं हैं। यह मानसिक तनाव को कम करने में अत्यधिक मददगार होता है। परिवार के लोगों को आपको उन खुशियों की याद दिलाते हैं, परिवार के जो लोग हैं आपको वो खुशियां भी याद दिलाते हैं जिन्हें आप निराशा में भूल जाते हैं। वे आपको परिस्थितियों से उभरने के लिए नई आशा देते हैं। परिवार के लोग बताते हैं, याद करवाते हैं कि हम उस दौर से गुजरते थे, वो कितना अच्छा दौर था, कितना बढ़िया वक्त। जब ये बातें नकारात्मकता के दौरान जब ये सकारात्मक बातें हमारे दिमाग में आती हैं तो उस वक्त मनोदशा चेंज हो जाती है, बदल जाती है, हम सकारात्मक

नकारात्मकता की ओर बढ़ते हैं, और ऐसे में निराशा की जो धुंध हमारे ऊपर होती है वो छट जाती है, और अपने परिजनों का ये सहयोग, अपने परिवार का सहयोग हमें उस निराशा से बाहर निकालता है। कहने का तात्पर्य है कि निराशा के वक्त अपने लोग, अपने परिवार के लोग, अपने प्रेमी लोग अगर आपके पास खड़े हैं तो आप निराशा का जो दौर है उस दौर से अवश्य बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि आपको समझाने वाले लोग, आपको साथ देने वाले लोग सब आपके पास खड़े हैं नकारात्मकता से बाहर निकालने के लिए, और आपको सकारात्मकता की ओर ले जाकर पुराने उन पलों को याद करवाते हैं जहां हम बहुत खुश थे, बहुत हंसी ठिठोली किया करते थे। इन तमाम बातों की जब बातें होती हैं तो इंसान नकारात्मकता से, निराशा से निकलकर सकारात्मकता की ओर आता है।

0: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
1: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: आकाशवाणी सूरतगढ़ की प्रस्तुति नाटक अंतस का उजास सुनिए 11 जून 2026 गुरुवार सुबह 9:30 बजे।
3: हमसे पूछे बगैर तूने इतना बड़ा फैसला ले लिया।
4: मेरी जिंदगी है माँ, फैसले भी मेरे ही होंगे, आप मुझे नहीं रोक सकते। मैं चोर हो गया हूँ। मैं जा रहा हूँ।
2: याद रखें, 11 जून 2026 गुरुवार सुबह 9:30 बजे सुने नाटक अंतस का उजास।
5: तुम नशा करते हो अभी, गलत आदतों में पड़ गए हो तुम। ऐसी दौलत का क्या करोगे अविनाश, जहाँ तुम्हारे अपने ही तुमसे दूर होते जा रहे हैं। देखना अभी, एक दिन तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास जरूर होगा।
6: गलतियों का एहसास
2: सुनना ना भूलें आकाशवाणी सूरतगढ़ की प्रस्तुति 11 जून 2026 गुरुवार सुबह 9:30 बजे नाटक अंतस का उजास।
7: श्रोताओ, अब हम बात करते हैं विज्ञान अभिशाप या वरदान। बिल्कुल, अगर विज्ञान हमारे लिए वरदान है तो हमारे लिए अभिशाप भी है। विज्ञान ने मानव जीवन को अत्यधिक सरल, सुगम और आरामदायक बना दिया है। यह एक ऐसा वरदान है जिसने हमें असाध्य रोगों से लड़ने की क्षमता और असीमित ऊर्जा दी है, लेकिन इसके दुरुपयोग से यह अभिशाप भी बन सकता है। विज्ञान एक वरदान। शिक्षा के क्षेत्र में अगर इसकी हम बात करें तो आधुनिक चिकित्सा, उन्नत दवाओं और उपकरणों जैसे MRI, CT स्कैन ने जीवन प्रत्याशा बढ़ा दी है और कई जानलेवा बीमारियों पर विजय प्राप्त की है। यातायात और संचार की बात करें तो हवाई जहाजों, बुलेट ट्रेनों और इंटरनेट ने पूरी दुनिया को एक छोटे से गाँव में बदल दिया है। अब आप पल भर में दुनिया के किसी भी कोने में संपर्क कर सकते हैं। बात अगर कृषि के क्षेत्र की करें तो उन्नत बीजों, ट्रैक्टर और उर्वरकों के प्रयोग से खाद्यान्न उत्पादन कई गुना बढ़ गया है, जिससे बढ़ती आबादी का पेट भरना संभव हुआ है। शिक्षा और ज्ञान की बात हो तो डिजिटल शिक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसे AI कहा जाता है, और ऑनलाइन माध्यमों से ज्ञान तक पहुँच बहुत आसान और सस्ती हो गई है। और विज्ञान अगर अभिशाप की बात करें तो पर्यावरण का विनाश, अंधाधुंध औद्योगिकरण और वाहनों के इस्तेमाल से

प्रदूषण बढ़ा है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर समस्याएं पैदा हो गई हैं। विनाशकारी हथियार, परमाणु बम और मिसाइलों जैसे आविष्कारों ने पूरी मानवता के लिए अस्तित्व पर एक बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। मानव जीवन पर प्रभाव अत्यधिक स्क्रीन टाइम, शारीरिक श्रम में कमी और तकनीकी लत ने लोगों को मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित किया है। कहने का तात्पर्य है कि विज्ञान अगर एक अभिशाप है तो उसके साथ एक वरदान भी है।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: श्रोता, अब हम बात करते हैं हमारे संस्कार और हमारी संस्कृति की। हमारे संस्कार और संस्कृति हमारी पहचान।

नैतिक मूल्यों और जीवन जीने की शैली की नींव भी है। यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होने वाली वह अमूल्य धरोहर है जो हमें बड़ों का आदर करना, समाज में समरसता बनाए रखना और सही आचरण का मार्ग दिखाती है। बिल्कुल ये चीज़ें हम अपने बुजुर्गों से सीखते आ रहे हैं। हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने जो चीज़ें हैं सीखी, उन्होंने जो आदर, समरसता और सही आचरण का जो मार्ग उन्होंने अपने जीवन में अपनाए रखा, तो वही पीढ़ियों दर पीढ़ियों आगे हस्तांतरित होता रहता है और हम उसी को फॉलो करते रहते हैं, उसी को निभाते रहते हैं और उसी पे चलते हैं, जिससे समाज में आदर, सम्मान, समरसता और सही आचरण का जो मार्ग है वो चलता रहता है जीवन में, और इंसान इन्हीं चीज़ों को पीढ़ी दर पीढ़ी अपने आप में ढालता रहता है, तो ये चीज़ें आगे से आगे चलती आ रही हैं। संस्कृति क्या है? अगर इसकी बात करें तो यह किसी समाज की जीवन शैली, रहन सहन, खान पान, कला और धार्मिक सामाजिक मान्यताओं का समग्र रूप है। यह हमें आपस में जोड़ती है और हमारी सामूहिक सोच को दिशा देती है। बिल्कुल ये तमाम जो बातें हैं इंसान के जीवन में होती है, रहन सहन, खान पान, कला, सामाजिक मान्यताएं, समग्र रूप में हम देख सकते हैं, और ये जो चीज़ें हमारे अंदर हैं, हमने जो हमारे पुरखों से जिसे ग्रहण किया है, ये तमाम चीज़ें हमारे जीवन में एक अलग ही मुकाम पर होती हैं, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने इस चीज़ को अपने जीवन में ढाला और अपना जीवन बड़े सादगी से, सरलता से, समरसता से अपने जीवन को पूरा किया। तो वही बातें, वही चीज़ें वो हमें हमारे को सौंप कर जाते हैं और हमें भी उन बातों पर चलते हुए, उनका अनुसरण करते हुए समाज में एक नई दिशा प्रदान करनी है, और हमें हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी इन चीज़ों को हमें उन्हें हस्तांतरित करना है। और बातें हम और भी करेंगे, फिलहाल आप सुने ये गीत।

हम बात कर रहे थे हमारे संस्कार और हमारी संस्कृति की। संस्कारों के महत्व की अगर बात की जाए तो सनातन परंपरा में मनुष्य के समग्र विकास और शुद्धि के लिए 16 संस्कारों का विधान है, जैसे नामकरण, अन्नप्राशन, विद्यारंभ और विवाह आदि। ये हमारे चरित्र को शुद्ध और मजबूत बनाते हैं। आधुनिक समय में अगर इसकी प्रासंगिकता की बात करें तो आज के भौतिकवादी युग में भी हमारे पारंपरिक मूल्य जैसे अतिथि देवो भव, बड़ों को प्रणाम करना और प्रकृति का सम्मान करना हमें मानसिक शांति और पारिवारिक जुड़ाव प्रदान करते हैं।

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुप्रभात। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8 बजने को हैं। लीजिए अब सुने समाचार। समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार आप सुनेंगे हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना एनडीए सरकार की सही नीतियों का प्रमाण। भारतीय वाणिज्य मंडल ने पश्चिम बंगाल में 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई। उत्तर पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र, ओडिशा, केरल और माहे के कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश की संभावना। पश्चिम एशिया संघर्ष में तनाव के बीच अमरीकी सेना ने ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की और देश से ओलंपिक के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने का आग्रह किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है, विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे।
4: बैठक में देश भर में उद्यमिता को बढ़ावा देने, कौशल विकास को मजबूत करने और अस्थायी रोजगार के अवसर सृजित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। इन चर्चाओं में शासन, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, अभिसरण, साझेदारी और डेटा आधारित प्रणालियों सहित प्रमुख सहायक तत्वों का उपयोग करते हुए एक कार्यान्वयन प्रारूप तैयार करने पर बल दिया जाएगा। इसके साथ ही अल्प, मध्यम और दीर्घकालिक परिणामों पर नजर रखने के लिए एक तंत्र भी स्थापित किया जाएगा, जिससे जवाबदेही और मापन योग्य प्रभाव सुनिश्चित हो सके। समावेशी मानव विकास पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ राज्य के दृष्टिकोणों को संरक्षित करने पर विशेष बल दिया जाएगा। नीति आयोग की शासी परिषद 26 से 28 दिसंबर 2025 के दौरान आयोजित मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन

0: को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है।
1: एनडीए के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
0: भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने की उपलब्धि पर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें बधाई दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सहित विश्व भर के नेताओं से मिले बधाई संदेशों के लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त किया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में चर्चा करेंगे।
2: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। गरीबों के लिए पक्का घर उपलब्ध कराना मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ओडिशा के कालाहांडी जिले के इंद्रमणि नायक ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना से गरीब लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है।
3: गरीब कल्याण योजना जो नरेंद्र मोदी ने जो किया है वो हमारा फैमिली 5 है, जो हमको 5-5 किलो दे रहे हैं, जो अभी पहले से बहुत दिक्कत था, अभी तो बहुत हम लोग अभी सुखी शांति से सब जी रहे हैं।
2: दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। देश भर में अब तक लगभग 10,82,00,000 लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के रहने वाले फैयाज अहमद ने कहा कि यह योजना आपातकालीन परिस्थितियों में गरीब लोगों के इलाज में बहुत मददगार साबित हो रही है।
4: जब से आयुष्मान भारत का स्कीम मोदी जी ने लॉन्च करा है, कभी भी किसी को जरूरत पड़ती है तो उसको भरपूर और एक आला मयारी इलाज बेहतरीन अस्पताल में मिलता है और राइट टाइम पे मिलता है, कोई क्यू में रहना नहीं पड़ता। मोदी जी हिस्ट्री के बेहतरीन कस्टोडियंस में से एक है जो अपने आवाम का एक बेहतरीन कस्टोडियन है।
2: पारंपरिक ईंधन जैसे कोयले और लकड़ी के धुएं से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 10,55,00,000 से अधिक महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए गए। वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई

0: पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1,12,00,000 से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2015 में 19% लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 64% से अधिक हो गया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया, जो जन कल्याण और समावेशी विकास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय वाणिज्य मंडल आईसीसी ने पश्चिम बंगाल में अपनी सदस्य कंपनियों के माध्यम से 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। एक रिपोर्ट।
3: भारतीय वाणिज्य मंडल आईसीसी के अध्यक्ष ब्रजभूषण अग्रवाल के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बीच नई दिल्ली में हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा की गई। आईसीसी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में आर्थिक गतिविधियों को लेकर नया उत्साह और सकारात्मक माहौल दिखाई दे रहा है। इससे राज्य के आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी और निवेश के लिए एक आकर्षक केंद्र के रूप में उसकी पहचान और मजबूत होगी। भारतीय वाणिज्य मंडल की स्थापना वर्ष 1925 में उद्योगपति घनश्याम दास बिड़ला और अन्य व्यापारिक नेताओं ने की थी। यह देश के सबसे पुराने उद्योग संगठनों में से एक है। समाचार से कृष्णकांत।
1: पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमरीका ने कल ईरान के कई ठिकानों पर हवाई हमले किए। अमरीकी सेना ने बताया कि ये हमले ईरान की लगातार आक्रामक गतिविधियों के जवाब में किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
4: अमरीकी हमलों का ये दूसरा दिन है। इससे कुछ घंटे पहले ईरान ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि बातचीत में गतिरोध के लिए ईरान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत ने कहा कि ईरान धमकी और दबाव के बीच किसी तरह की बातचीत नहीं करेगा। इस बीच ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य को सभी जहाजों और तेल टैंकरों के लिए बंद कर दिया गया है। संघर्ष के कारण वैश्विक तेल बाजार पर भी असर पड़ा है। कच्चे तेल की कीमत $93 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ वर्षा का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए ओलंपिक के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में NDA सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि युवा खिलाड़ी लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। फीफा विश्व कप 2026 का आज से आगाज हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा।
5: फीफा विश्व कप का यह अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीमें भाग ले रही हैं। पहले के संस्करणों में 32 टीमें शामिल होती थी। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। अन्य 45 टीमों ने 2 वर्ष लंबे क्वालिफाइंग अभियान के जरिए जगह बनाई है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष 2 टीमें सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेंगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं चिराग झा।
1: और आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
6: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। जनसत्ता ने प्रधानमंत्री मोदी के 12 वर्ष पूरे होने पर आयोजित अभिनंदन बैठक में उनका बयान दिया है। कांग्रेस ने अपनी नाकामियों का ठीकरा हिंदुओं पर फोड़ा। लोकसत्ता ने श्री मोदी का बयान दिया है, भारत अब आत्मनिर्भर, सुरक्षित और समृद्ध राष्ट्र बन रहा है। झटका शीर्षक से हिंदुस्तान लिखता है, मार्च के बाद 20% तक महंगा हुआ जरूरत का सामान, रसोई का खर्च करीब 1,000 रुपए तक बढ़ा। दैनिक भास्कर ने नीट पेपर लीक मामले में NTA अधिकारियों की संसदीय समिति से मुलाकात को सुर्खी बनाया।

0: है। संसदीय समिति के सामने एनटीए ने रखा सुरक्षा प्लान, समिति ने कहा हमें अमेरिका और चीन जैसे देशों से सीखना चाहिए। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ में पीओके की पीड़ा का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है इस्लामाबाद ने पीओके में निर्दोष नागरिकों के साथ जैसी बर्बरता दिखाई है उससे क्षेत्र की वास्तविक स्थिति फिर से दुनिया के सामने उजागर हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर में मानवाधिकारों की दुहाई देने वाले पाकिस्तान का पीओके में रवैया उसके दोहरे मापदंडों की ही कलई खोलता है। दैनिक ट्रिब्यून की खबर है 30 साल पहले लापता पर्वतारोही के अवशेष भारत लाएगी आईटीबीपी। माउंट एवरेस्ट पर 1996 के दुर्भाग्यपूर्ण अभियान के दौरान खो गए थे लांस नायक दोर्जे मोरूप। नवभारत टाइम्स ने फीफा विश्व कप को अहमियत दी है। फुटबॉल का महासंग्राम आज से 10 दावेदार 10 सुपरस्टार। राजस्थान पत्रिका ने WHO की रिपोर्ट प्रकाशित की है खराब खान पान से हर रोज 42 लाख बीमार 4100 मौत।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना एनडीए सरकार की सही नीतियों का प्रमाण। भारतीय वाणिज्य मंडल ने पश्चिम बंगाल में 1,00,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बनाई। उत्तर पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र, ओडिशा, केरल और माहे के कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश की संभावना। और प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to chair 11th Governing Council meeting of Niti Aayog in New Delhi today. Prime Minister says lifting more than 25 crore people out of poverty during past 12 years of NDA government shows that its policies are correct and moving in right direction. Indian Chamber of Commerce plans to channel investments worth 1 lakh crore rupees into West Bengal. IMD forecasts heavy rainfall in places over northeast, sub-Himalayan West Bengal, Odisha, Kerala and Mahi today. US military strikes multiple targets in Iran in latest escalation of tensions in West Asia. And Prime Minister Modi praises performance of Indian sportspersons and urges the nation to set ambitious targets for Olympics. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will chair the 11th Governing Council meeting of Niti Aayog at Rashtrapati Bhavan Cultural Centre in New Delhi today. In line with the Prime Minister's vision of Team India for a Viksit Bharat, this year's theme, Inclusive Human Development for Viksit Bharat at 2047, focuses on the well-being and development of every Indian, regardless of age, region, gender or socio-economic background. The Governing Council meeting will deliberate on the approach to realize this vision and translate it into concrete, measurable outcomes for every citizen across the country. A report from our correspondent.
3: Measures for promoting entrepreneurship, enhancing skilling and creating sustainable employment opportunities across the country will also be deliberated upon in the meeting. The discussions will further focus on collectively charting an implementation roadmap that leverages key enablers including governance, digital public infrastructure, convergence, partnerships and data-driven systems alongside a structured mechanism to track short, medium and long-term outcomes ensuring accountability and measurable impact. A key thrust will be on aligning state visions with the national vision on inclusive human development, reinforcing a unified and collaborative approach towards equitable and sustainable growth. The Governing Council of Niti Aayog will also focus on the recommendations of 5th National Conference of Chief Secretaries held during 26th to 28th December last year. With Anupam Misra, Anand Kumar, Akashvani News, Delhi.
2: Prime Minister Narendra Modi has said aspirations of 140 crore citizens of the country will definitely be fulfilled. He said that National Democratic Alliance, NDA, has always strengthened the nation's trust. Mr. Modi was addressing the NDA conclave at Bharat Mandapam in New Delhi yesterday evening. He said the rising sun of hope in 2014 has today transformed into a ray of renewed confidence. He said, for the first time, the people of the country have seen that when a government is run with the right intention, the development also takes place at a rapid pace. Mr. Modi said the lifting of more than 25

0: 5, says an annual study called Indicators of Global Climate Change. The findings are a further reminder to the rapidly rising global temperatures, writes the Indian Express. And with that, it's back to you, Shagun.
1: Thank you, Subhadra. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to chair 11th Governing Council meeting of Niti Aayog in New Delhi today. Prime Minister says lifting more than 25 crore people out of poverty during past 12 years of NDA government shows that its policies are correct and moving in right direction. Indian Chamber of Commerce plans to channel investments worth 1 lakh crore rupees into West Bengal. IMD forecasts heavy rainfall in places over northeast, sub-Himalayan West Bengal, Odisha, Kerala and Mahi today. US military strikes multiple targets in Iran in latest escalation of tensions in West Asia. And Prime Minister Modi praises performance of Indian sportspersons and urges the nation to set ambitious targets for Olympics. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असदुल्ला। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग की सदारत करेंगे। वजीर आजम ने कहा है कि एनडीए सरकार के गुज़श्ता 12 साल के दौरान 25 करोड़ से ज्यादा अफराद को गुर्बत से बाहर लाए जाने से ये जाहिर होता है कि सरकार की पॉलिसियां दुरुस्त हैं और वो सही सम्त में आगे बढ़ रही है। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स मगरबी बंगाल में 1 लाख करोड़ रुपये मालियत की सरमायाकारी में सहूलत पैदा करने का इरादा रखता है। भारतीय मौसमियात महकमे ने शुमाल मशिक, मगरबी बंगाल, जेली हिमालयी खित्ते, उड़ीसा, केरला और माहे में शदीद बारिश की पेशगोई की है। मगरबी एशिया में कशीदगी में फिर से इजाफा हो गया है। अमरीकी फौज ने ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों की कारकर्दगी की सताइश की है और ओलंपिक खेलों के लिए बड़े निशाने तय करने पर जोर दिया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग की सदारत करेंगे। विकसित भारत के लिए टीम इंडिया के वजीर आजम के नजरिए के ऐन मुताबिक इस साल के मौजू विकसित भारत 2047 के लिए जामे इंसानी तरक्की में उम्र, खित्ते, सिन्फ या समाजी और माशी पस मंजर के कतई नजर हर भारतीय की बहबूद और तरक्की पर तवज्जो मरकूज की गई है। गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में इस नज़रिए को हकीकत की शक्ल देने और पूरे मुल्क में हर शहरी के लिए इसे ठोस और नुमाया नतीजे में बदलने की हिकमत अमली पर तबादले ख्याल किया जाएगा। गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में वज़राए आला और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहिबान 4 बुनियादी पहलुओं के ताल्लुक से इंसानी फरोग के जामे फ्रेमवर्क पर गौरखोज करेंगे, जिसमें बुनियादी इंसानी सरमाया, मुस्तकबिल के लिए तैयार हुनरमंदी, रोजगार, छोटा कारोबार, सेहत, तग़ज़िया और बहबूद, नीज सबके लिए मुसावात और वक़ार शामिल हैं। मज़ीद तफ़सील हमारे नामा निगार से।
3: आज की इस मीटिंग में पूरे मुल्क में कारोबार को फ़रोग देने, हुनरमंदी की वसत और रोज़गार के पायदार मौके पैदा करने के इक़दामात पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। इसके अलावा अमल दरआमद से मुतालिक खाका इज्तिमाई तौर पर तैयार करने पर भी तवज्जो मरकूज की जाएगी, जिसमें हुक्मरानी, डिजिटल पब्लिक बुनियादी ढांचे, साझेदारी, डेटा पर मबनी निज़ाम, नेज़ मुख्तसर, दरमियाने और तवील मुद्दती नतीजों पर नज़र रखने का एक मुनज़्ज़म तरीक़ा कार शामिल होगा। इस तरह जवाबदेही और नुमाया असरात को यकीनी बनाया जा सकेगा। इसके साथ साथ जामे इंसानी फरोग के ताल्लुक से कौमी नज़रिए के साथ रियासतों के नज़रियात को हम आहंग करने पर भी खास जोर दिया जाएगा, ताकि मसावियाना और ठोस तरक्की की समत मुत्तहदा और इज्तिमाई हिकमत अमली को तकवियत मिल सके। नीति आयोग की गवर्नेंस काउंसिल चीफ सेक्रेटरियों की 5वीं कौमी कॉन्फ्रेंस की सिफारिश

0: एक दुनिया की सबसे बड़ी अवामी स्कीम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इक्तिसादी तौर पर कमजोर कुनबों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवरेज फराहम कर रही है। साथ ही जन औषधि केंद्रों से जेनरिक दवाएं कम कीमतों पर मुहैया की कराई जा रही हैं। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए जम्मू कश्मीर के बारामूला के फैयाज अहमद ने बताया कि आयुष्मान भारत स्कीम के तहत गरीबों को मुश्किल तरीन हालात के दौरान इलाज हासिल करने में सहूलत फराहम की जा रही है।
1: मैं एनडीए सरकार और मोदी जी का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत सारी जो स्कीमें चलाई जिसमें मुल्क के अंदर हिस्ट्री में पहली बार एक गरीब को सीधा बरह रास्त फायदा पहुंचा डिजिटलाइजेशन के जरिए। आयुष्मान भारत की बात करना चाहूंगा, मोदी जी की सरकार से पहले मुल्क में यह होता था अचानक किसी की बीमारी का पता चलता था या बीमारी के टाइम जो ऑपरेशन सर्जरीज करनी होती थी उन्हें या तो जमीन बेचनी पड़ती थी या घर की कोई कीमती शय बेच कर वो चीजों का पैसे का बंदोबस्त करके ऑपरेशन और बाकी चीजें कराने पड़ते थे। लेकिन जब से आयुष्मान भारत का स्कीम को मोदी जी ने लॉन्च करा है तब से ये चीज पूरे मुल्क में नहीं है।
0: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ 55 लाख से ज्यादा खवातीन को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन फराहम किए जा रहे हैं। नई दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
2: इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ICC अपनी मेंबर कंपनियों के जरिए मगरबी बंगाल में 1 लाख करोड़ रुपए मालियत की सरमायाकारी में सहूलत पैदा करने का इरादा रखता है जिससे रियासत की इक्तिसादी सलाहियत और तरक्की के इम्कानात में सनतों के बढ़ते हुए एतमाद की अक्कासी होती है। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर ब्रिजभूषण अग्रवाल की ज़ेर क़्यादत सनती इदारे के एक वफद और मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह के दरमियान नई दिल्ली में मीटिंग के दौरान इस तजवीज़ पर तबादले ख्याल किया गया। मज़कूरा ऐवानी तजारत ने कहा है कि मगरबी बंगाल में पुरउम्मीदी और मुस्बत रफ्तार का नया माहौल देखने में आ रहा है जिससे माशी तरक्की की रफ्तार तेज़ करने में मदद मिल सकती है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों की कारकर्दगी की सताइश की और ओलंपिक्स खेल के बड़े मकासद मुतय्यन करने पर जोर दिया है। कल नई दिल्ली में मुनाकिदा एनडीए कॉन्क्लेव में इजहार ख्याल करते हुए जनाब मोदी ने नौजवान एथलीट्स की हुसूलियाबियों और भारत में खेलों की तेज रफ्तार तरक्की को उजागर किया।
3: भारत दुनिया की बिगेस्ट स्पोर्ट लीग की धरती बनता जा रहा है। आने वाले सालों में हमारी ये ख्याति और बुलंद होगी। ओलंपिक्स के लिए हमारी तैयारियां भी भारत की एस्पिरेशन का ही प्रतिबिंब है। हमें छोटा नहीं सोचना है, हमें लक्ष्य ऊंचे रखने हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए पूरी ताकत लगा देनी है।
2: अमरीकी फौज ने कल ईरान में कई ठिकानों पर फिर से हमले किए। अमरीकी फौज ने कहा है कि ईरान की लगातार जारहियत के तनाजुर में जवाबी कार्रवाई करते हुए ये हमले किए गए हैं। लड़ाई खत्म कराने के लिए मुजाकरात बहाल करने की कोशिशों के बावजूद मगरबी एशिया में फिर से कशीदगी बढ़ गई है। बहरैन, कुवैत और उर्दुन में जहां अमरीकी फौजी मुतय्यन हैं ईरान के हमलों के चंद घंटों बाद ये अमरीकी हमले हुए। ईरान के मीडिया ने मुल्क के जुनूब में बंदर अब्बास, सिरिक, मिनाब और किशम जजीरे में धमाके होने की इत्तिला दी है। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह तंबीह की है कि ईरान को तातुल का शिकार मुजाकरात की कीमत चुकाना होगी, जबकि अक्वामे मुत्तहिदा में ईरान के नुमाइंदे ने कहा है कि ईरान धमकियों और दबाव में आकर बातचीत नहीं करेगा। इधर ईरान के पासदारान इनकलाब ने तेल टैंकरों और कमर्शियल बहरी जहाजों समेत हर तरह के जहाजों के लिए आबनाए हुरमुज के बंद होने का दावा किया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, केरला, माहे, उड़ीसा, मगरबी बंगाल के ज़ेली हिमालयी खित्ते और सिक्किम में बाज मकामात पर आज शदीद बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात महकमे के मुताबिक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश होने और ओले गिरने का इम्कान है। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
0: शुक्रिया असदुल्ला। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारात ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को तवील तरीन मुद्दत तक मुंतखब वजीर आजम के तौर पर खिदमात अंजाम देने को सफ़े अव्वल पर शाये करते हुए लिखा है कि यह भारत की तारीख में एक अहम संगे मील है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू समेत मुतादिद ममालिक के सरकर्दा रहनुमाओं ने वजीर आजम को मुबारकबाद दी है। रोजनामा प्रताप ने लोकसभा स्पीकर ओम

0: के इस बयान को सफ़े अव्वल पर नुमाया किया है कि ज़मीनी सतह पर कवानीन और पॉलिसियों का नफाज ही अच्छी हुक्मरानी की कलीद है। उन्होंने सिविल सर्विस में खवातीन की बढ़ती हुई नुमाइंदगी की भी सताइश की।
1: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग की सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा है कि एनडीए सरकार के गुज़श्ता 12 साल के दौरान 25 करोड़ से ज़्यादा अफराद को गुरबत से बाहर लाए जाने से ये जाहिर होता है कि सरकार की पॉलिसियाँ दुरुस्त हैं और वो सही सम्त में आगे बढ़ रही है। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स मगरबी बंगाल में 1,00,000 करोड़ रुपए मालियत की सरमायाकारी में सहूलत पैदा करने का इरादा रखता है। भारतीय मौसमियात महकमे ने शुमाल मशिक मगरबी बंगाल के ज़ैली हिमालयी खित्ते उड़ीसा केरला और माही में शदीद बारिश की पेशगोई की है। मगरबी एशिया में कशीदगी में फिर से इजाफा हो गया है। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों की कारकर्दगी की सताइश की है और ओलंपिक खेलों के लिए बड़े निशाने तय करने पर जोर दिया है। इसी के साथ आकाशवाणी से खबरनामा खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलो हर्ट्ज पर, एफएम बैंड 100.1 मेगा हर्ट्ज पर, आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। श्रोताओ, हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8:45 हुए हैं। लीजिए अब सुने कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं ये भजन।

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं कुछ भजन आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से।

0: अभी आप सुन रहे थे सीमा मिश्रा और सुरेश वाडेकर की आवाज में ये भक्ति रचना। भक्ति रचनाओं का यह कार्यक्रम सुगम संगीत अभी आपने आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुना। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9 बजने को हैं। लीजिए अब सुने हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव आज जयपुर दौरे पर, आकाशवाणी जयपुर परिसर से जैसलमेर के रामगढ़ में 20 किलोवाट के एफएम ट्रांसमीटर का शुभारंभ करेंगे। भारतीय रेलवे देश भर के स्टेशनों पर अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए फायर सेफ्टी ऑडिट कराएगा और नए पश्चिमी विक्षोभ से राज्य में आज से मौसम बदलने की संभावना, 13 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में होने वाली इस बैठक का विषय 2027 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास रखा गया है। ये हर भारतीय के कल्याण और विकास पर केंद्रित है। बैठक में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा देश में स्थायी रोजगार के अवसर सृजित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी और एनडीए ने हमेशा राष्ट्र के विश्वास को मजबूत किया है। नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है।
2: आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ है। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा। देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है।
1: उधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास और सुशासन के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। श्री शर्मा कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में रामजल सेतु लिंक, यमुना जल समझौता, जयपुर मेट्रो फेज 2 और रिफाइनरी जैसी ऐतिहासिक परियोजनाओं से राजस्थान में विकास का नया युग शुरू हुआ है। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदेश में विभिन्न वर्गों को मिल रहा है। पाली के रहने वाले किसान रामचंद्र ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री कुसुम बी योजना के तहत 5 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाया है। इससे बिजली की बचत होने के साथ ही खेती में लागत भी कम हो गई है।

0: उन्होंने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है।
1: भारत सरकार की जो वाटर शेड की स्कीम है उसके तहत मैंने एक डिक्की बनवाई, उसके बाद मैंने प्रधानमंत्री कुसुम की योजना के तहत ये 5 किलोवाट का सोलर लिया जिसकी लागत 3,05,000 है, लेकिन सरकार किसानों को मात्र 1,30,000 उपलब्ध करा रही है। इस योजना के लाभ से ये कृषि कार्य में सुगमता आने लगी है एवं खेती की लागत में बहुत कमी आ गई, और सरकार ने जो ये सराहनीय कार्य किया है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसानों के लिए, उसके लिए सरकार का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
0: केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव आज जयपुर दौरे पर हैं। वे अब से कुछ देर बाद आकाशवाणी जयपुर परिसर से जैसलमेर के रामगढ़ में 20 किलोवाट के एफएम ट्रांसमीटर का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। इस ट्रांसमीटर के उद्घाटन के साथ ही प्रदेश में कुल एफएम ट्रांसमीटरों की संख्या 39 हो जाएगी। वर्तमान में आकाशवाणी के 38 केंद्र हैं। ये राज्य की 94% क्षेत्र को कवर करते हैं और 99% आबादी तक आकाशवाणी की पहुंच है। कार्यक्रम के बाद श्री वैष्णव एमएनआईटी जाएंगे। इसके बाद वे दुर्गापुरा स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में शिरकत करेंगे। ये सम्मेलन प्रधानमंत्री श्री मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार की 12 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। इसके माध्यम से देश में हुए ऐतिहासिक विकास, सुशासन और जनहित के कामों को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। भारतीय रेलवे देश भर के स्टेशनों पर अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए फायर सेफ्टी ऑडिट कराएगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य यात्रियों और रेलवे संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा आग जैसी किसी भी आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों को परखना है। इस ऑडिट के तहत स्टेशन भवनों, बिजली व्यवस्था, वातानुकूलन, आपातकालीन निकास, फायर फाइटिंग सिस्टम और पानी की उपलब्धता सहित सभी महत्वपूर्ण सुरक्षा इंतजामों की गहन जांच की जाएगी। स्टेशनों की जांच के लिए रेलवे के विभिन्न विभागों की संयुक्त टीमें बनाई जाएंगी। आवश्यकता पड़ने पर राज्य अग्निशमन विभाग और विशेषज्ञ एजेंसियों का सहयोग भी लिया जाएगा। ऑडिट के दौरान सुरक्षा मानकों का कड़ाई से आकलन किया जाएगा। और अब मौसम। प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से कल कुछ क्षेत्रों में हल्की बरसात हुई। इनमें अलवर, हनुमानगढ़, झुंझुनू और भरतपुर के कुछ क्षेत्र शामिल हैं। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के विभिन्न हिस्सों में 14 जून तक तेज आंधी और बारिश का दौर बना रह सकता है। इस दौरान बीकानेर, जयपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग के कई क्षेत्रों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। विशेष तौर पर उत्तर पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। इससे पहले प्रदेश में तेज गर्मी और उमस का असर लगातार बना हुआ है। कल श्रीगंगानगर 45.9 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जबकि 19 शहरों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री के ऊपर दर्ज किया गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रैप के पहले चरण की सभी पाबंदियां हटा दी गई हैं। वायु गुणवत्ता सूचकांक में सुधार को देखते हुए ये फैसला किया गया है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के सदस्य सचिव कपिल चंद्रवाल ने बताया कि पिछले दिनों हुई हल्की बारिश और तेज हवाओं के कारण हवा की गुणवत्ता में ये सुधार दर्ज किया गया है। ग्रैप से जुड़ी उपसमिति प्रदूषण की स्थिति पर लगातार निगरानी रख रही है और भविष्य में परिस्थितियों के अनुसार आगे के आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे। डाक विभाग ने युवाओं और छोटे व्यापारियों को रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के लिए फ्रेंचाइजी योजना 2.0 शुरू की है। पाली डाक विभाग के अधीक्षक तरुण कुमार शर्मा ने बताया कि इस योजना के तहत स्पीड पोस्ट, पार्सल बुकिंग, पिकअप और डिलीवरी जैसी सुविधाएं मिलेंगी। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय EMS और ट्रैक्ड पैकेज सर्विस की बुकिंग का भी काम होगा।
2: इस योजना के तहत स्पीड पोस्ट या पार्सल बुकिंग, पिकअप, कलेक्शन और पार्सल डिलीवरी, इंटरनेशनल EMS, EMI तथा इंटरनेट

0: नेशनल ट्रैक पैकेज सर्विस जैसी सेवाओं की बुकिंग की जा सकेगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य डाक सेवाओं में आमजन की भागीदारी बढ़ाना है, ई कॉमर्स क्षेत्र में डाक विभाग की पहुंच मजबूत करना है और रोजगार के अवसर देना है। पाली के युवा और देश के युवा, राज्य के युवा अधिक से अधिक इस योजना से जुड़े और डाक विभाग में अपनी भागीदारी भी बढ़ाएं और रोजगार के अवसर भी डाक विभाग के माध्यम से प्राप्त करें।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव आज जयपुर दौरे पर, आकाशवाणी जयपुर परिसर से जैसलमेर के रामगढ़ में 20 किलोवाट के एफएम ट्रांसमीटर का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। भारतीय रेलवे देश भर के स्टेशनों पर अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए फायर सेफ्टी ऑडिट कराएगा और नए पश्चिमी विक्षोभ से राज्य में आज से मौसम बदलने की संभावना, 13 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलो हर्ट्ज पर, एफएम बैंड 100.1 मेगा हर्ट्ज पर, आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9:10 हुए हैं। लीजिए अब सुने कार्यक्रम मरुमंगल। मरुमंगल में आज आप सुनेंगे करीम खान की गाई कुछ लोक रचनाएं।

श्रोता, मरुमंगल के इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं करीम खान की गाई कुछ लोक रचनाएं।

श्रोता मरुमंगल का यह कार्यक्रम इस वक्त आप आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुन रहे हैं। कार्यक्रम में हमारे आज के कलाकार हैं करीम खान।

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मरुमंगल। मरुमंगल के इस कार्यक्रम में हमारे आज के कलाकार हैं करीम खान। ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुन रहे हैं।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मरुमंगल। मरुमंगल के इस कार्यक्रम में आज आपने करीम खान की गाई कुछ लोक रचनाएं सुनी। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलो हर्ट्स पर, FM बैंड 100.1 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। श्रोताओ, हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9:30 और 20 सेकेंड हुए हैं। लीजिए अब सुने अंतस का उजास, ये नाटक। ये नाटक सूरतगढ़ केंद्र की प्रस्तुति है। इसके लेखक हैं सुमन कंवर और निर्देशन नवीन सिसोदिया का है। इसमें मुख्य प्रतिभागी नवीन सिसोदिया, विशाल छाबड़ा, गुलशन मेघानी, अक्षत चावला, सुमन कंवर और मधुलता पुरोहित हैं।

0: अरे ये कौन पड़ा है इस सुनसान जगह पर?
1: पता करता हूँ।
0: तो भाई कौन है तू? ओ भाई इन सुनसान छतरियों पर तो दिन में भी कोई नहीं आता, तू इस सिंजारे वक्त में सो रहा है? ओ भाई
2: सोने दो ना यार, तुम कौन हो? यहाँ भी कोई चैन से रहने नहीं देता।
0: अरे भाई मैं तो अपना रेवड़ लेके घर जा रहा था, दिन ढलने को है, थाने देखा तो रुक गया। तो पानी पी ले।
2: पानी? मुझे कोई जहर दे दो, छूट जाओ इसे।
0: राम राम, अरे ऐसी बातें नहीं करते, के तकलीफ है भाई?
2: तकलीफ? सुनोगे मेरी तकलीफ?
0: हाँ भाई तकलीफ बता, कुछ हड़का हो जैसी। जी छोटा मत कर, माने बता भाई।
2: क्या बताऊं, आज से करीब 4 साल पहले

0: अविनाश, अभी बेटा
1: आया।
0: नाश्ता कर लो, कॉलेज के लिए लेट हो जाओगे।
1: मां, मुझे नहीं खाने ये पराठे वराठे, मैं बाहर खा लूंगा कुछ अच्छा।
0: लो जी, सुनो इनकी बात। बाहर अच्छा खाना मिलता है और घर में खराब।
2: अरे, ये सुबह सुबह माँ बेटे की बहस फिर शुरू हो गई। ये नहीं खा रहा पराठे तो रहने दो, तुम मुझे दो भाई। तुम्हारे हाथों के जायके ने तो हमें आज तक बांध रखा है।
0: जी, मैं ला रही हूं।
2: ये पनीर के पराठे तो सच में बहुत लाजवाब बने हैं।
3: हाँ, सुनिए जी, मुझे अभी की फिक्र होने लगी है। आजकल सुबह निकलता है घर से, टाइम पर लौटता नहीं, और जब
1: हाय श्रुति।
4: हेलो अवि, कैसे हो? तो
1: आई एम गुड। यार, तुम भी अजीब हो, कैंटीन में भी बुक्स लेकर आती हो। अरे छोड़ो ये बुक्स, ये देखो मेरी लेटेस्ट रील पर कितने लाइक्स आ रहे हैं। क्या, अभी तो ये शुरुआत है, बस देखती जाओ, मिलियंस में व्यूज आएंगे, फिर लाखों कमाऊंगा और दुनिया मेरे कदमों में होगी। वैसे एक बात बताओ, कॉलेज की लड़कियां तो अभी से मेरे आसपास मंडराने लगी हैं। तुम जेलस?

0: नहीं हो रहे हो?
1: मैं क्यों जेलस होने लगी? वैसे अभी तुम जो ये वीडियो बनाते हो ना, मुझे तो खास पसंद नहीं आते।
0: क्यों?
1: गंदा सा मुंह बनाकर तुम जो ये डबल मीनिंग बातें करते हो ना, तुम्हें ये शोभा देता है ये सब? और मुझे ये भी समझ में नहीं आता, आंटी अंकल तुम्हें टोकते क्यों नहीं?
0: अरे यार, वो कहाँ देखेंगे, पापा ऑफिस में बिजी रहते हैं, मम्मी घर में।
1: जो भी हो अभी, तुम्हें स्टडी पर फोकस करना चाहिए। हमारे पेरेंट्स भी तो हमसे कोई उम्मीद रखते हैं ना।
0: अरे भाई, स्टडीज के बाद ये 9 to 6 की जॉब कौन करे? जितना पापा साल भर में कमाएंगे ना, उससे ज्यादा तो मैं 1 महीने में कमा लूंगा।
1: वैसे एक बात बताओ, तुम्हारे ये वीडियो वायरल कैसे हो जाते हैं?
0: अरे कुछ नहीं, डबल मीनिंग जोक सुनाओ, 2-4 गालियां बीच में ऐड कर दो, वीडियो वायरल। और अच्छे कंटेंट के साथ ना ग्रोथ करने में बहुत वक्त लगता है, फिर नॉलेज भी तो होना चाहिए। अब इतनी मेहनत कौन करे? तुम्हें पता है, मुझे मुंबई से स्टेज शो के ऑफर भी मिलने लगे हैं।
1: अच्छा,
0: बस थोड़े ही दिनों की बात है, बाहर चला जाऊंगा, फिर देखना।
1: और तुम्हारी स्टडीज?
0: अरे स्टडीज को कौन पूछता है, दुनिया पैसे को पूछती है और पूछती भी है।
1: जी नहीं, मैं ऐसा नहीं मानती। पढ़ाई लिखाई इंसान को मजबूत बनाती है, आत्मविश्वास पैदा करती है और हर समस्या का सामना करने का साहस भी देती है। पैसा तो नौकरी और बिजनेस से भी कमाया जा सकता है।
0: अरे अब तुम ज्ञान मत दो, आओ चलो तुम्हें कॉफी पिलाता हूँ।
1: मुझे नहीं पीनी कॉफी।
0: तुम्हारी मर्जी।

0: अभी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? पढ़ाई बीच में छोड़कर मुंबई जा रहे हो?
1: पापा आप समझ नहीं रहे हैं, एक एंटरटेनमेंट कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया मैंने, दुनिया भर में स्टेज शो होंगे मेरे।
2: हमसे पूछे बगैर तूने इतना बड़ा फैसला ले लिया?
1: मेरी जिंदगी है माँ, फैसले भी मेरे ही होंगे, आप मुझे नहीं रोक सकते। मैच्योर हो गया हूं मैं, अब
0: अभी
1: मैं जा रहा हूं।

0: यार मुंटी, आज कंटिन्यू 10 दिन हुए शुगर ट्रेवल करते हुए। आई एम सो टायर्ड यार, मुझे ब्रेक चाहिए।
1: ये तो शुरुआत है बेटा, अभी से थक गए? ये टायर्ड वायर्ड भूल जाओ, पैसा यूं ही नहीं कमाया जाता। मोटा अमाउंट मिल रहा है ना, बस काम करते जाओ। और हाँ, तुम्हारे कंटेंट में वल्गैरिटी कम है, थोड़ा और मसाला डालो यार।
0: अरे यार मोंटी, समझो मेरी हालत खराब है।
1: कुछ भी हो, शो तो आज करना पड़ेगा। हाँ, एक स्पेशल चीज है मेरे पास जो तुम्हारी सारी थकान मिटा देगी। ये लो स्पेशल सिगरेट, एक कश लगाओ, हवाओं में उड़ने लगोगे।
0: मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता, क्या है इसमें?
1: अरे लो ना यार, हम सब लेते हैं, ऐसा क्या बुरा है इसमें?
0: बड़ी अजीब सी गंध है इसमें।

0: हेलो, कौन? श्रुति, हाउ आर यू?
1: ठीक हूँ अभी। तुम तो जैसे भूल ही गए हम सबको। 2 साल में एक कॉल भी नहीं की तुमने।
0: फुर्सत ही कहाँ मिलती है श्रुति। स्टेज शो, इंटरव्यू, ब्लॉग्स, एक शहर से दूसरे शहर, कभी दुबई, कभी न्यूयॉर्क, कभी बैंकॉक। वक्त पंख लगा कर उड़ रहा है श्रुति। आज सब कुछ है मेरे पास, महंगे कपड़े, महंगी गाड़ियाँ, घर, सब कुछ है। और मम्मी पापा को इतनी बार कह चुका हूँ, मेरे पास आकर रहें, लाइफ को एंजॉय करें, मगर नहीं, उन्हें पता नहीं मुझसे क्या प्रॉब्लम है।
1: प्रॉब्लम तुमसे नहीं, तुम्हारे काम से है अभी, तुम्हारी लाइफस्टाइल से है।
0: क्यों?
1: आंटी ने बताया था मुझे, वे एक हफ्ता रहे थे ना तुम्हारे पास।
0: हाँ हाँ
1: तुम नशा करते हो अभी, गलत आदतों में पड़ गए हो तुम। ऐसी दौलत का क्या करोगे अविनाश, जहाँ तुम्हारे अपने ही तुमसे दूर होते जा रहे हैं। देखना अभी, एक दिन तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास जरूर होगा।

0: Tengo cosas.
1: खैर, तुम्हें बता दूं, मेरी शादी होने वाली है नेक्स्ट मंथ। पॉसिबल हो तो आना तुम भी।
0: मुझे बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है श्रुति, सॉरी यार। हाँ, बट हार्डली कॉन्ग्रेचुलेशंस, बाय।

0: हेलो मोंटी।
1: हाँ बोलो, क्यों परेशान कर रहे हो?
0: मैं परेशान कर रहा हूँ? परेशान तो तुमने कर रखा है मोंटी। 3 महीने से तुम पेमेंट नहीं कर रहे हो, मैं अपना खर्च कैसे निकालूं यार? ऊपर से मुझे नई बुकिंग भी नहीं दे रहे हो।
2: माननीय मंत्री महोदय श्रीमान अश्विनी वैष्णव, जो सूचना और प्रसारण मंत्री हैं, साथ ही साथ रेल मंत्री हैं और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, वो आज इस ट्रांसमीटर का उद्घाटन करने जा रहे हैं। और आप जैसा जानते हैं कि रेडियो के प्रसारण की गुणवत्ता FM ट्रांसमीटर से कितनी अच्छी सुनाई देती है, और यही है कि एक नया सोपान हम चढ़ने जा रहे हैं आकाशवाणी के इतिहास में। 90 साल का हमारा लंबा इतिहास रहा है, जिसमें हमने अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से श्रोताओं से अपना जुड़ाव किया है।
3: और जितेंद्र, मैं तो ये श्रोताओं को बताना चाहूँगी कि FM ट्रांसमीटर की स्थापना के साथ ही हम एक नए सफ़र की शुरुआत कर रहे हैं। ये सफ़र सूचना का है, संस्कृति का है और आप सबसे जुड़ाव का है। तो यूं ही जुड़े रहिए इस विशेष प्रसारण में। और साथ ही जितेंद्र, मैं 2 पंक्तियाँ कहना चाहूँगी। रात भर जलता रहा हूँ सुबह होने की आस में, रात भर जलता रहा हूँ सुबह होने की आस में, टूट कर बिखरा नहीं हूँ फिर से जुड़ने की प्यास में। मैं वो लम्हा नहीं जो गुजरा नहीं, मैं वो लम्हा नहीं हूँ जो गुजरा नहीं हूँ, मैं वो सपना हूँ जो टूटा नहीं हूँ।

0: श्रोताओं, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि आज रामगढ़ जैसलमेर में 20 किलो वाट के एफएम ट्रांसमीटर का उद्घाटन समारोह आयोजित किया जा रहा है। श्री अश्विनी वैष्णव माननीय सूचना प्रसारण मंत्री, रेल मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भारत सरकार के कर कमलों द्वारा, और साथ ही इस कार्यक्रम में गरिमा में उपस्थिति है प्रसून जोशी जी की, जो अध्यक्ष हैं प्रसार भारती के। और ये जो ट्रांसमीटर है ये जैसलमेर जो हमारा बॉर्डर एरिया है उसके पास में स्थित है, तो इसकी वैसे ही महत्ता बहुत बढ़ जाती है।
1: और जितेंद्र, अपने श्रोताओं को हम बताना चाहेंगे एफएम यानी फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन की खूबी, और ये खूबी है बिना खरखराहट के स्टीरियो साउंड में संगीत और बातें सीधे हमारे श्रोताओं के दिलों तक उतरेंगी।
0: बिल्कुल, और जो रेडियो प्रसारण के माध्यम से और भी लोग हमसे जुड़ पाएंगे, जो दूर दराज के लोग हैं, जैसलमेर के जो आसपास के इलाके हैं, जो गांव ढाणियां हैं, वहां तक हमारी बात पहुंच पाएगी, रेडियो की बात पहुंच पाएगी, आकाशवाणी की बात पहुंच जाएगी।
1: हाँ, क्योंकि हम मानते हैं कि ये रेडियो सिर्फ हमारा नहीं, आपका है। आपकी समस्याएं, आपकी कहानियां, आपके गीत, आपकी बातें और आपकी शिकायतें भी।
0: बिल्कुल, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रेडियो ने जो हमारी सभ्यता है, कला है, संस्कृति है, उसको जीवंत रखने में एक अपनी महती भूमिका निभाई है। और ये एक मील का पत्थर साबित होगा कि जब हमारे यहाँ पर रेडियो का नेटवर्क उत्तर उत्तर बढ़ता जा रहा है।
1: बिल्कुल, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा गर्व का विषय और खुशी का दिन है कि ये नया एफएम ट्रांसमीटर स्थापित हो रहा है। इसके साथ ही आपकी आवाज़ और दूर तक और ज़्यादा स्पष्ट रूप से पहुँचेगी। और जितेंद्र, जैसा कि प्रसार भारती के अध्यक्ष हैं, हमारे चेयरमैन हैं श्री प्रसून जोशी, और वे बहुत अच्छे गीतकार भी हैं। अगर उन्हीं के शब्दों को, बहुत ही सरल शब्दों में वो अपनी बात कहते हैं, उन्हीं के शब्दों को अगर मैं श्रोताओं तक पहुँचाऊँ तो कहना चाहूँगी कि पुरानी राहों से हटकर नई डगर बनानी है, पुरानी राहों से हटकर नई डगर बनानी है, गिरकर उठना सीखा है, अब दौड़ लगानी है। ये नया हिंदुस्तान है, आंखों में अरमान है, हाथ में हुनर है, दिल में तूफान है, अब सपनों को हकीकत की जुबान देनी है, दुनिया को अपनी नई पहचान देनी है।

0: श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं ये कार्यक्रम चल रहा है, मंत्री जी उद्घाटन कर रहे हैं और थोड़ी ही देर में आप प्रतीक्षा कीजिए मंत्री जी का उद्बोधन आपके रेडियो सेट पर।
1: तो बस श्रोताओं को लिए चलते हैं

शुरुआत थोड़ी सी जोश के साथ। भारत माता की, भारत माता की। ये हुई ना बात। जयपुर की धरती तो शूरवीरों की धरती है, कला की भी धरती है। यहाँ तो जोश भी है, कला भी है, साइंस टेक्नोलॉजी भी है, सब कुछ है। आज ये बड़ा ही शुभ दिन है। आकाशवाणी के जैसलमेर के ट्रांसमीटर का इनॉग्रेशन यहाँ जयपुर में हम सब मिलके कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में मेरे साथ आज सौभाग्य है कि सब एक से बढ़कर एक हमारे गणमान्य व्यक्ति, समाज के लीडर्स जुड़े हैं। मैं सबको नमस्कार करता हूँ। हमारे जयपुर की सांसद मंजू दीदी, दीदी सभी इनको दीदी बोलते हैं, पार्लियामेंट में भी दीदी बोलते हैं। वो दीदी अलग टाइप की थी, दूसरी वाली। ये हमारी जयपुर की दीदी, जयपुर के घेवर जैसी है बिल्कुल। सबके साथ बहुत अच्छा व्यवहार, पार्लियामेंट में, सदन में, लोकसभा में, सब भी आपको मंजू दीदी के नाम से जानते हैं। वैसे हमारी दीदी हमारे ऊर्जा के मंत्री, ऊर्जावान श्री हीरालाल नागर जी, जिन्होंने राजस्थान के ऊर्जा के मानचित्र को पूरी तरह से बदल दिया है। हमारे एमएलए साहब श्री गोपाल शर्मा जी, जो जब बोलते हैं मज़ा आता है सुनने का, एक अलग ही आनंद आता है। एक कार्यक्रम में मैं साथ था आपके, बहुत ही आनंद आया था। और जो अभी बोल रहे थे कि मानव संवेदनाओं के चितेरे, मुझे तो ऐसे ऐसे शब्द भी नहीं आते भाई। लेकिन हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ जुड़े ऐसे श्री प्रसून जोशी जी, जिन्होंने जीवन में, समाज में, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में एक ऐसा अद्भुत नाम कमाया है। और आज हमारे साथ प्रसार भारती को एक नया स्वरूप देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनको जिम्मेदारी दी है, वो हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ और जुड़े हैं श्री पंडित विश्वमोहन भट्ट जी। आपने वीणा को दुनिया में एक नया नाम दिया। मेरे ख्याल से वीणा के बारे में आपसे बेहतर जानने वाले विश्व में शायद ही कोई होंगे। हमारा सौभाग्य आज आप पधारे इधर। उस्ताद मोइनुद्दीन खान जी, आप पधारे, बहुत ही अच्छा लगा। सारंगी में व्यक्ति की आवाज़ सुनाई देती है, मज़ा आता है। आप पधारे आप दोनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई सलील भट्ट जी भी, आप भी पधारे। मैं पंडित जी को भी धन्यवाद इसलिए देना चाहूँगा कि आज स्वास्थ्य कमज़ोर होते हुए भी आप यहाँ आए, बहुत धन्यवाद आपको। सीधा अस्पताल से आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

हमारे साथी श्री राजीव जैन जी आप भी हैं। जैसलमेर में हमारे बहुत ही मजबूत विधायक छोटू सिंह जी भाटी जी भी जुड़े हुए हैं। आपका भी नमस्कार। छोटू सिंह जी, जब हम जैसलमेर गए थे, वहाँ से स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस चालू करने गए थे, भाई छोटू सिंह जी ने जो बाजरे का चूरमा खिलाया, मज़ा आ गया था। आज भी याद आता है, छोटू सिंह जी भेजिएगा भाई बाजरे का चूरमा, मज़ा आ गया था। बाजरे के सोगरे को फर्स्ट क्लास चूर के छोटू सिंह जी, राम राम भाई साहब खमागणी, बहुत मज़ा आ गया था। तो ऐसे हमारे मजबूत विधायक और विशेषकर जितने भी हमारे कार्यकर्ता बंधु जुड़े हैं, हमारे अधिकारी बंधु जुड़े हैं और पत्रकार बंधु जुड़े हैं, आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज जो बॉर्डर इलाके का एक FM ट्रांसमीटर चालू हुआ है, इसके पीछे थॉट प्रोसेस, सूचना संपर्क विभाग, आकाशवाणी का प्रसार, वो सब ठीक है, लेकिन कुछ दिनों पहले माननीय गृह मंत्री जी बॉर्डर एरिया का निरीक्षण करके गए थे, बीकानेर गए थे और बॉर्डर एरिया को पूरा देख के आए थे। तब उन्होंने कहा कि हमारे पूरे बॉर्डर एरिया को हमें कंप्लीट आकाशवाणी दूरदर्शन से पूरी तरह से कवरेज करना है, तो उस सीरीज़ में हम इसको काम को चालू कर रहे हैं। मैं राजीव जी को रिक्वेस्ट किया हूँ, अपने CEO साहब को भी किया था मैंने, गौरव जी को, राजीव जी आप भी पूरा एक पूरा बॉर्डर एरिया उठा लें, कच्छ से लेके कंप्लीट अपना जम्मू कश्मीर तक, जो भी एरिया में यहाँ पर भी कोई गैप हो बॉर्डर एरिया में, आकाशवाणी का और दूरदर्शन का भी, दूरदर्शन का भी आप देख लें, प्रसार भारती की तरफ से आप सभी देखेंगे, तो दूरदर्शन और आकाशवाणी का कहीं पर भी कोई भी गैप हो, उस गैप को हमें फिलअप करना है, पूरे बॉर्डर एरिया को हमें कंप्लीटली कवर करना है। आज ये पहली उसकी कड़ी है और जैसलमेर ज़िले का करीब करीब 20,000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल, 80 किलोमीटर का रेडियस कवर करके ये ट्रांसमीटर सब जगह पहुंचाएगा विश्व की हमारी संस्कृति की बात को। मैं थोड़ी बात रेलवे की करना चाहूँगा क्योंकि राजस्थान को वर्षों वर्षों तक रेलवे के हिसाब से इग्नोर किया गया था, वर्षों वर्षों तक। बॉर्डर एरिया है, इतना बड़ा विशाल प्रदेश है, एक सामरिक दृष्टि से भी, स्ट्रैटेजिक दृष्टि से भी देखो तो राजस्थान का एक अलग ही महत्वपूर्ण स्थान है हमारे देश की स्ट्रैटेजिक फ्रेम में। ऐसे में राजस्थान के लिए जब UPA की सरकार थी, मात्र 682 करोड़ रुपए का बजट रेलवे के लिए दिया जाता था। इतना विशाल प्रदेश और इतना महत्व सामरिक, जनता की आकांक्षाओं पे कहीं पर भी UPA की सरकार के समय में रेलवे का खरे उतरने का प्रश्न ही नहीं उठता था, क्योंकि जनता जो भी आकांक्षा करे, कोई उसके लिए काम करने के लिए फंड्स चाहिए होते हैं, वो फंड्स होते नहीं थे। 2014 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जिम्मेदारी ली और बहुत ही सौभाग्य की बात है कि कल उन्होंने डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर का एक नया कीर्तिमान बनाया। ये हम सब के लिए गौरव की बात है कि ऐसा नेतृत्व हमको मिल रहा है जो देश को एक नई ऊंचाइयों पे ले जाना और एक ऐसी नींव रखना जो कि भारत को विकसित भारत बनाएगी। तो जब मोदी जी ने जिम्मेदारी संभाली तो 10,228 करोड़ रुपए का अभी अपने को राजस्थान के लिए बजट मिलता है, यानी जो बजट पहले मिलता था उसका 15 गुना, 15 गुना। हमारे जनरल मैनेजर साहब यहाँ पर है, अमिताभ जी, अभी GM साहब एयरपोर्ट से आते हुए मुझे बता रहे थे कि करीब 200 स्टेशनों का, पूरे प्रदेश में 200 स्टेशनों का प्लेटफॉर्म्स को ठीक करना, उनकी ऊंचाई पूरी करना, उनकी लेंथ पूरी करना। GM साहब 200 करीब, अपने 450 स्टेशन है पूरे प्रदेश में, उसमें से 200 स्टेशनों का काम करीब करीब पूरा होने को आया है। तो ये काम जो कि जन जन को, जैसे श्रद्धेय अटल जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बना के गांव गांव तक सड़क पहुंचाई थी, वैसा ही आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी

छोटे से छोटे स्टेशन पर भी अच्छा काम करने के लिए दिन रात लगे। बड़े स्टेशनों का काम तो अपनी जगह है, जयपुर का स्टेशन कितने लोगों ने देखा भाई? कैसा लगता है, कैसा लगता है भाई पीछे, कैसा लगता है? अच्छा है, अच्छा है तो पता नहीं चल रहा है। गांधीनगर का स्टेशन फोटो है, कैसा है? खातीपुरा, खातीपुरा कितने जनों ने देखा है? थोड़े दिन बाद में उसका खातीपुरा में जो साइडिंग है उसका इनॉग्रेशन करेंगे। अपने इतना रेलवे का काम हाथ में लिया है कि आनंद आता है देख के कि मोदी जी ने देश का ये अपना जयपुर का स्टेशन। अभी मुझे एक भाई पूछ रहे थे कि स्टेशन के काम में किस तरह की कठिनाई आ रही है। मैं उनको समझा रहा था, विदेशों में जब स्टेशन का काम करते हैं तो पूरे ट्रैफिक को बंद कर देते हैं, यानी रेलगाड़ियाँ आएगी नहीं जाएगी नहीं वहाँ से। कई जगह तो 5-5, 6-6, 7-7 वर्षों तक, 7 साल तक ट्रैफिक बंद। इस तरह का भी देश दुनिया में कई उदाहरण है, अपने देश में तो ऐसा नहीं कर सकते। अपने तो एक दिन भी गाड़ियाँ अगर रुक जाए तो जैसा समझते हो मैं क्या बोलूँ, समस्या बड़ी हो जाए। इसीलिए काम को बहुत सावधानी के साथ करते हुए, बड़े स्टेशन का टाइम फ्रेम है 4-6 साल का करीब करीब, और छोटे स्टेशन का टाइम फ्रेम है 2-3 साल का। सावधानी के साथ ध्यान रखते हुए और प्रदेश की जो कठिनाई, अभी मुझे भाई हमारे MLA साहब गोपाल जी भाई साहब बता रहे थे और दीदी मंजू जी बता रहे थे, स्टेशन के सामने लोगों की कुछ समस्या है, तो मैं JDA से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको बहुत संवेदना के साथ करें। जो भी हमें डेवलपमेंट करना है, किसके लिए डेवलपमेंट है? डेवलपमेंट तो लोगों के लिए है, नागरिकों के लिए है, तो वो जो भी हम डेवलपमेंट करें संवेदना के साथ करें, और उसमें जल्दबाजी ना करके सबको साथ लेके, सबकी बात करके, सबको समझ के उनके लिए क्या किया जा सकता है वो सब समझ के ही हर चीज़ को करें। तो आप दोनों इसमें लीडरशिप लीजिए, और माननीय मंत्री जी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप भी JDA को इसको बात में बता देंगे। वैसा ही गांधीनगर स्टेशन भी बहुत ही सुंदर बन रहा है, जयपुर गांधीनगर। ये जयपुर गांधीनगर का, मतलब जयपुर में एक तरीके से लोग आते हुए स्टेशन्स को भी देखेंगे, जैसे हवा महल देखने जाते हैं, वैसे ही ये भी एक टूरिज्म का अच्छा अट्रैक्शन बनेगा और जनता को बहुत बड़ी सुविधाएं होंगी। स्वर्ण नगरी है जयपुर, स्वर्ण नगरी है जैसलमेर। ये जैसलमेर का, स्वर्ण नगरी का स्टेशन कंप्लीट हो गया है, माननीय प्रधानमंत्री जी जल्दी इसका इनॉग्रेशन करेंगे। इतना सुंदर काम हुआ है, इतना सुंदर काम। GM साहब बहुत धन्यवाद, हमारे अमिताभ जी GM साहब, हमारे रेलवे के करीब 10,000 अधिकारी हैं, उनमें से वन ऑफ दी फाइनेस्ट अधिकारी हैं। एक बार जरा आप सब इनका अभिवादन करें, वन ऑफ दी फाइनेस्ट ऑफिसर्स हैं रेलवे के। 4-5 जो बहुत अच्छे अधिकारियों में जिनको मैं मानता हूँ उनमें से आप हैं। इसी महीने इनका कंप्लीट टेन्योर कंप्लीट होता है, लेकिन अपने 2-2.5 वर्षों के समय में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। ये जोधपुर का स्टेशन, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है और बहुत ही अगले 50 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि डिज़ाइन जो भी करो अगले 50 वर्षों की। ये अलवर का काम भी बहुत तेज़ी से चल रहा है, सेकंड एंट्री तो बन ही गया है। बीकानेर, भुजिया की नगरी बीकानेर, भाई साहब आपका कोटा का स्टेशन। कोटा को मॉडर्न बनाया है, जहाँ पे स्थापत्य कला, जहाँ पे मॉडर्न, जैसा जहाँ का स्वभाव, जहाँ की डिमांड,

उसके हिसाब से सारा काम किया गया है। अजमेर बहुत सारे स्टेशन हैं छोटे बड़े, कभी आप देखना सोशल मीडिया पे काफ़ी, ये आबू रोड, मतलब पूरे प्रदेश में आज 85 स्टेशन्स का काम, 85 स्टेशनों पे काम चल रहा है। करीब करीब 4,600 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं स्टेशनों में, जिससे कि एक प्रदेश के लिए एक नई नींव बने, एक बहुत आगे के लिए, भविष्य के लिए एक बहुत अच्छा। 15 स्टेशन पे काम पूरा हो गया है, करीब करीब 23 स्टेशन पे हो गया है, और लेकिन एग्जैक्ट हमारे सिस्टम में जब तक काम एकदम 100% पूरा नहीं होता तब तक उसको पूरा नहीं बोलते। बाड़मेर, बूंदी, दौसा, डीग, देशनोक तो माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं इनॉग्रेशन के टाइम में गए थे, ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद, फतेहपुर शेखावाटी, गंगापुर सिटी, गोगामेड़ी, गोविंदगढ़, राजगढ़, खैरथल, जैसलमेर, मांडलगढ़, मंडावर महवा रोड, सोमेसर के साथ मेरी बचपन की यादें जुड़ी है, चाय पीते थे स्टेशन के बाहर, गांव से आते थे जब गाड़ी पकड़ने के लिए, और करीब 80% काम कंप्लीट हो गया है 45 स्टेशनों में, बहुत सारे स्टेशन हैं और काफ़ी करीब करीब अच्छी प्रोग्रेस है। साथ ही साथ इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल, जिसको हमने गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल की ब्रांडिंग दी है, 10 हो गए राजस्थान में कंप्लीट, मारवाड़ मुंडवा, खेमली, भोपाल सागर, सोनू, हनवंत, सुंदलक, मांडलगढ़, न्यू सराधना, हिरनौदा, केरला, ये 10 कंप्लीट हो गए। 6 पे काम चल रहा है, जोगी मगना, लानेला, धानक्या तो पंडित दीनदयाल जी की भूमि है, तो वहाँ भी एक बहुत अच्छा इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के हिसाब से, कोटा में, नवलगढ़ में, बीरदवाल में, और उसके बाद में 8 और अप्रूवल दिए हैं, तो एक तरीके से राजस्थान को रेलवे का पूरा बेनिफिट मिले और राजस्थान की इंडस्ट्री हो, जनसाधारण हो, उन सब के लिए बहुत सारे काम, कई सारे काम हाथ में लिए। आगरा से बांदीकुई की डबलिंग 150 किलोमीटर, अजमेर से चित्तौड़गढ़ की डबलिंग 178 किलोमीटर, बीकानेर से लालगढ़ की डबलिंग 11 किलोमीटर, देवगढ़ मदारिया से नाथद्वारा का गेज कन्वर्जन वर्षों से पेंडिंग पड़ा था, मारवाड़ और मेवाड़ को जोड़ने वाली ये लाइन है जो सदियों से बहुत महत्वपूर्ण लाइन थी, ये लंबे टाइम से गेज कन्वर्जन नहीं हो रहा था, मीटर गेज थी और एक तरीके से डिफंक्ट सी पड़ी थी, इसको भी कंप्लीट कर रहे हैं। नीमच से बड़ी सादड़ी की नई लाइन, पुष्कर एक बहुत ही हमारे श्रद्धा का बड़ा केंद्र, उसको मेड़ता से जोड़ने की लाइन, रामगंज मंडी से भोपाल मध्य प्रदेश को जोड़ने की लाइन, रेवाड़ी से खटवास, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, खटवास है जहाँ पे बहुत बड़ा एक मल्टी मॉडल कार्गो हब है, तो इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा है। उमरा से देबारी की डबलिंग, लूनी से भिलड़ी, गुजरात जाने के लिए खासकर जो पोर्ट एरिया है वहाँ जाने के लिए, मुंद्रा, कांडला, इन सब पोर्ट्स के लिए ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है। मथुरा से धौलपुर से झांसी की थर्ड लाइन, फिर धौलपुर सर मथुरा से गंगापुर सिटी का गेज कन्वर्जन, रिंगस से सीकर की डबलिंग, सवाई माधोपुर से जयपुर की डबलिंग, शिवपुर कला मध्य प्रदेश में से कोटा की नई लाइन, तरंगा हिल अंबाजी श्रद्धा का इतना बड़ा केंद्र, तरंगा हिल से अंबाजी आबू रोड की नई लाइन, और करीब करीब 46 नई गाड़ियाँ कोविड के बाद से राजस्थान के लिए चालू हुई है, जिसमें जयपुर की वंदे भारत, अजमेर की वंदे भारत, जोधपुर की वंदे भारत, जैसलमेर से दिल्ली की स्वर्ण नगरी, कई गाड़ियाँ, बीकानेर से मुंबई की गाड़ी, बीकानेर से दिल्ली वंदे भारत, उदयपुर से चंडीगढ़ की एक्सप्रेस, अजमेर से दरभंगा की गाड़ी जो कि हमारे जयपुर की दीदी मंजू जी ने बहुत ही उसकी डिमांड की थी, अब दीदी की आज डिमांड है कि उसको रेगुलर करना चाहिए, क्या दीदी दरभंगा वाली गाड़ी को रेगुलर करना चाहिए, कर दें, दीदी कह रही है घेवर खिलाएंगे अगर आप पूरा कर दोगे तो, घेवर नहीं खिलाओगे तो नहीं होगी, खिलाएंगे दीदी घेवर पक्का, मंगवा लिए, चलिए इस गाड़ी को भी रेगुलर कर देंगे, आने वाले कुछ ही दिनों में आकर दरभंगा से

अजमेर जयपुर की जो गाड़ी है उसको आने वाले कितने दिन में कर पाएंगे जी एम साहब? 15-20 दिन में कर पाएंगे? पता करके बताएंगे आप। चलिए 15-20 दिन के अंदर प्रयास करें। क्या शिवाजी 15 दिन में कर सकते हैं? कर सकते हैं हम? कर सकते हैं। 1 महीने में? चलिए सभी 1 महीने का टाइम ले रहे हैं तो 2 महीने का टाइम देता हूँ मैं। 2 महीने के अंदर अंदर इस गाड़ी को रेगुलर कर देंगे दरभंगा के लिए। जो दीदी की डिमांड है, ये आपकी डिमांड है, इसको रेगुलर कर लेंगे। साथ ही साथ दो और बहुत अच्छे काम कर रहे हैं जयपुर में। एक तो अच्छा AI डेटा सेंटर बना रहे हैं। AI डेटा सेंटर भविष्य का ऑयल है ये समझो, क्योंकि भविष्य की इकोनॉमी AI पे बहुत बड़ी आधारित होगी। तो जयपुर में एक AI डेटा सेंटर का काम चालू कर रहे हैं। काम को फेजेस में करेंगे। अभी मैं माननीय मंत्री जी से, नागर जी से मैं बात कर रहा था कैसे उसके लिए पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट जो होती है वो पूरी हो सके। और साथ ही साथ एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी बनाएंगे जयपुर के लिए, जो हमें बार बार गुड़गांव या दिल्ली जाना पड़ता है उसकी ज़रूरत ना पड़े, वो व्यवस्था भी यहाँ पर जयपुर में करेंगे। और यहाँ के नवयुवकों के लिए, नौजवानों के लिए MNIT में क्वांटम और AI और सेमीकंडक्टर की 3 नई फैसिलिटी का आज ही उद्घाटन करेंगे MNIT जयपुर में। एक तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आशीर्वाद है और जो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी का बहुत ही मेहनत का काम है, तो इस डबल इंजन की सरकार में बहुत सारे नए काम राजस्थान में हो रहे हैं। उसी कड़ी में कुछ और नई चीज़ें जुड़ेंगी। आज इस कार्यक्रम में आप सब आए, आकाशवाणी की कई यादें ताज़ा की। मैं निवेदन करूंगा आकाशवाणी के सभी साथियों से और विशेषकर DG साहब से, राजीव जी से और हमारे प्रसार भारती के चेयरमैन श्री प्रसून जोशी जी से कि अब हम एक नए तरीके से सोचें आकाशवाणी के बारे में। समय परिवर्तन बहुत पहले हो चुका था। हम आज के समय के हिसाब से आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल, इन दो सूत्रों में बांधें। डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल। हाइपर लोकल का मतलब ये हुआ, जैसे राजस्थान का उदाहरण दें, अगर हम पश्चिमी राजस्थान में अलग तरह से बोली है, पूर्वी राजस्थान में अलग बोली है, उत्तर में जाओ तो अलग भाषा का एक प्रभाव दिखाई देता है, दक्षिण में जाओ तो भाषा का अलग प्रभाव दिखाई देता है, आदिवासी क्षेत्रों में एक अलग वाइब्रेंट कल्चर है, शहरी क्षेत्रों का अलग, एक अलग उसकी ताकत है, उसकी अलग ऊर्जा है। क्या हम आकाशवाणी का उपयोग करके, क्या हम दूरदर्शन का उपयोग करके हाइपर लोकल उस क्षेत्र के कलाकारों को, उस क्षेत्र के नए क्रिएटर्स को, गांव के, कस्बे के, नगर के कलाकारों को, वहाँ के क्रिएटर्स को, वहाँ पे काम किसी भी तरह का, कोई पत्थर की मूर्ति गढ़ रहा है उसको एक अपॉर्चुनिटी मिले दुनिया तक पहुँचने की, कोई बहुत सुंदर तरीके से कारीगरी का काम करता है, कोई बहुत अच्छा वीणा का शिष्य है पंडित जी का, उसको एक मौका मिले, कोई सारंगी हो, कोई बांसुरी हो, कोई किसी भी तरीके से, किसी भी वाद्य यंत्र के माध्यम से, किसी भी गायन के माध्यम से, किसी भी तरीके से जुड़ता है उसको जोड़े, उसको अपॉर्चुनिटी दे। हाइपर लोकल, हाइपर लोकल, वो आप एक परिवर्तन अगले 3 वर्षों का टारगेट लें, 1000 दिन का टारगेट लें और 1000 दिनों में हाइपर लोकल डिजिटल फर्स्ट, जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास आज अवेलेबल है, अपना खुद का वेव्स OTT है और जो भी पॉपुलर प्लेटफॉर्म हो उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करें, जब चाहें अपनी खुद की ऐप बनाएं, जिस तरीके से लोकल न्यूज़, लोकल आर्ट, लोकल संस्कृति, लोकल खान पान, जयपुर आए तो घेवर की बात करें, दाल बाटी चूरमा की बात करें, बाजरे का चूरमा की बात करें, सोगरे की बात करें, ग्वारफली की सब्ज़ी की बात करें, ये चीज़ें समझाएं राजस्थान के

0: खट्टे की सब्जी की बात करें, कई जो चीज़ें हैं अपनी संस्कृति की, और देश भर में, उड़ीसा जाओ उड़ीसा की, बंगाल जाओ बंगाल की, तमिलनाडु जाओ तमिलनाडु की, संस्कृति को आगे लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए हाइपर लोकल डिजिटल फर्स्ट। इस आधार पे अगले 1000 दिनों में अच्छा एक्शन प्लान बना के, एक मास्टर प्लान बना के आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करें। आपको पूरा फ्रीडम है, आपके ऊपर कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं है। आप जो ज़मीन से जुड़े हुए आकाशवाणी के सभी कर्मचारी और सभी साथी हैं, जो आप कहोगे वो पॉलिसी बनेगी। पॉलिसी बनाने वाले आप, इम्प्लीमेंट करने वाले आप, इस भावना के साथ काम करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: आभार, बहुत बहुत आभार हम सभी के समक्ष अपने उद्बोधन से।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे 20 किलोवाट ट्रांसमीटर रामगढ़ जैसलमेर में जो उद्घाटन हुआ है, उस कार्यक्रम में माननीय मंत्री महोदय का उद्बोधन।
3: और बहुत ही सुखद अवसर है ये जितेंद्र, हम सब के लिए, कि राजस्थान में ये 39वां FM ट्रांसमीटर स्थापित हुआ।
2: जी हाँ, और श्रोताओं, ये मंत्री जी के उद्बोधन के साथ ही अब हम आपसे चाहते हैं इजाज़त।
3: और
2: दीजिए इजाज़त,
3: इस प्रसारण से हमें इजाज़त दीजिए। मैं राजकुमारी करनानी और
2: मैं जितेंद्र वर्मा,
3: और अब आगे का सफ़र आप तय करेंगे हमारे साथी रौनक के साथ।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड। पाइए सीमलेस बैंकिंग के साथ और भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और एक्टिवेट करें SBI प्रीमियर बैंकिंग। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमी चैनल से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम हेलो जयपुर का शेष भाग।

मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। श्रोताओं, लीजिए अब सुने कार्यक्रम अनुरोध गीत।

अनुरोध गीत सुनने वाले सभी श्रोताओं को संजय चौधरी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हम आज आपके संदेश और पत्र शामिल करेंगे और आपको आपकी पसंद के फिल्मी गीत सुनवाएंगे। कार्यक्रम में यह पहला संदेश हम तक पहुंचा है रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर से। लिखने वाले हैं लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, खुशी गोस्वामी और हर्षिता ने ये संदेश हमें भेजा है। अगला संदेश हम तक पहुंचा है सिद्धार्थनगर दरियापुर बाबली से। लिखने वाले हैं गजानन येले, नवदीप, विश्वदीप और अशोक येले। बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फाजिलका से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदनलाल वर्मा ने पत्र में लिखा है। गांव खोखराम वाली श्री गंगानगर से विनोद बारासा, विशाल, विकास, रोशनी और शगुन बाराशा ने ये संदेश हमें भेजा है। चक 15 PS से सर्वजीत सिंह जोशन, सर्वजीत कौर जोशन, गुरमन सिंह जोशन, आदर्श पाल जोशन मेलबर्न, रॉबिन सिंह जोशन वैंकूवर से ये संदेश हमें भेजा है। हयात कलोनी अररिया बिहार से फैजल इमाम, मोहम्मद अकमल, मोहम्मद अफजल और नफीसा परवीन ने ये संदेश हमें भेजा है। गांव बांडीवाला फाजिलका पंजाब से ओम बगड़िया, क्रियांश बगड़िया, योगेश बगड़िया, रजत और बेबी गरिमा बगड़िया ने ये संदेश हमें भेजा है। पलेरा टीकमगढ़ से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम और आशीष विश्वकर्मा ने ये पत्र हमें लिखा है। चक 15 PS 2 से कुलदीप सिंह, राजविंदर कौर, संदीप सिंह, जसकरण सिंह, हरदीप सिंह, मनरा

आज विर्क पिपरा लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा ने ये पत्र हमें लिखा है। डाबली रंगाला जालोर से मास्टर पेमाराम देडू, शेराराम रामस्नेही, कोहलाराम और वीरेंद्र चौधरी ने ये संदेश हमें भेजा है। जिला नांदेड़ एताला महाराष्ट्र से शंकरलाल जायसवाल, गणेशलाल,

पिपरा लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा ने ये पत्र हमें लिखा है। डाबली रंगाला जालोर से मास्टर पेमाराम देडू, शेराराम रामस्नेही, कोहलाराम और वीरेंद्र चौधरी ने ये संदेश हमें भेजा है। जिला नांदेड़ एताला महाराष्ट्र से शंकरलाल जायसवाल, गणेशलाल, शुभम प्रसाद और कुमारी दुर्गेश्वरी जायसवाल ने ये संदेश हमें भेजा है। गांव कलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ से विक्रम कड़वासरा, सचिन, सतीश, योगेश, युधव कड़वासरा, किरसन माइल, हनुमान सहारण, कीड़ूराम जोया, लीलाधर स्वामी, कुंदन जाखड़ और सुनील शर्मा ने ये संदेश हमें भेजा है। पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पूनाराम देवांगन और कृष्णा देवांगन ने ये संदेश हमें भेजा है। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन और अपार ढींगिया ने ये संदेश हमें भेजा है। गांव लोहगढ़ ठाकुरवाला जिला फिरोजपुर से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह और गुरनूर सिंह और शुभदीप सिंह ने ये संदेश हमें भेजा है। तो लीजिए, आप सबको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
1: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
3: जी,
2: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
3: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
2: पर ये होगा कैसे?
3: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
2: अच्छा, और अगर कोई

0: बदलाव हो
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
5: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
6: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
4: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
5: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
7: अनुरोध गीत के इस कार्यक्रम में अगला ये संदेश हम तक पहुंचा है चंडीगढ़ से। लिखने वाले हैं सतीश अनेजा और विमला अनेजा। नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर और मनु ने ये संदेश हमें भेजा है। बहरवाला खुर्द सिरसा से बलवंत जाखड़, ममता जाखड़, प्रिया नयन जाखड़, हिमानी जाखड़ और शिवम जाखड़ ने ये संदेश हम तक भेजा है। गांव कुम्हारहेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम, सद्दाम और अदीब ने ये संदेश हमें भेजा है। नई आबादी हनुमानगढ़ से सुल्तान सिंह तरड़, कृष्ण मुकेश तरड़, रामचंद्र, कपिल और हिमानी जाखड़ ने ये संदेश हमें भेजा है। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता ने ये संदेश हम तक भेजा है। दादा बाबू रोड गिरडी झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफरा नवाज और बेबी चाहत और सादिया ने ये संदेश हमें भेजा है। जोगीवाला श्रीगंगानगर से प्रेम सहारण, मोनिका और मनीष सहारण ने ये संदेश हम तक भेजा है। ज्योतिनगर नोखा राजस्थान से पुखराज बड़गुजर, कैलाश मिस्त्री, गोवर्धन धरा, घनश्याम भार्गव, बाबू गौरी और हसन सिक्का ने ये संदेश हमें भेजा है। सादुल शहर से रामकुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़ ने ये संदेश हमें भेजा है। गांव घमंडिया से जगदीश ढूकिया, प्रमिला ढूकिया, ज्योति, शिवम, सरिता, सचिन, अमना, तमन्ना, साइना, विष्णु ढूकिया ने ये संदेश हमें भेजा है और इनके दोहिते युवा धारणियां भी हमें संदेश भेज रहे हैं। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां ने ये संदेश हमें भेजा है। दतरेगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्रमणि और नोखेलाल वर्मा ने ये संदेश हमें भेजा है। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिंपा, कपिल छिंपा, ईशान छिंपा और पूजा परिहार ने ये संदेश हमें भेजा है। अगला संदेश हमें लिखा है हिंगड़ी आलोट जिला रतलाम से जगदीश धाकड़ नायमा, रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी धाकड़ ने ये संदेश हमें भेजा है। बठिंडा रोड मंडीडवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंग ने ये संदेश हमें भेजा है। तहसील भादरा अनूप शहर से गजानंद सारस्वत, डॉक्टर चार ताराचंद सारस्वत, सोनू पवन कुमार, साहिल राघव, मुरारीलाल शर्मा, ममता मीतू, मदनलाल शर्मा, पंकज, हर्ष, मनीष, राजेश और फुशाराम मील ने ये संदेश हमें भेजा है। पटेल नगर मलोड से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, आरजू जाजोरिया और गुड्डू ने ये संदेश हमें लिखा है। केसरी सिंहपुर से राजकुमार ठठई, कमल ठठई,

मगनलाल सोमानी, बिंदा टेलर, मुंशीराम महिंद्रा, हीरालाल गजरा, अशोक मित्तल, ताराचंद दायमा ने ये संदेश हमें भेजा है। मंडी केसर सिंहपुर से बिल्लू सूद, सुनीता सूद, आशीष सूद, चांदनी और विश्वजीत ने ये संदेश हमें भेजा है। तो लीजिए, आप सबको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
3: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: अनुरोध गीत के इस कार्यक्रम में ये अगले संदेश हम तक पहुंचे हैं। मेरठ से लिखने वाले हैं दिग्दर्शन और कविता गौड़। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा ने ये संदेश हमें भेजा है। मेन बाजार कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर येमेकर, प्रमोद और प्रदीप येमेकर ने ये संदेश हमें भेजा है। अलीका डबवाली से बसंत सिंह चन, गुरप्रीत गौरा और कुलदीप गांधी ने ये संदेश हमें भेजा है। एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना पप्पी, किरण खुराना, लव्या, आरव खुराना और एसके पप्पी ने ये संदेश हमें भेजा है। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज ने ये संदेश हमें भेजा है। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय ने ये संदेश हमें भेजा है। कवई सालपुरा जिलावारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी, हर्षिता और अभिषेक श्रीवास्तव ने ये संदेश हमें भेजा है। गांधीग्राम गुजरात से परवीन सोनी और जगदीश जौहरी ने ये संदेश हमें लिखा है। सूरतगढ़ से बाबूलाल खत्री, सुगना देवी, आरती खत्री, पूजा खत्री, रमन, रितिका रुद्र, रजनी खत्री, सुरेश खत्री, अविनाश गहलोत और संदीप चंदेल सहित खुश गहलोत ने भी ये संदेश हमें भेजा है। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शादरा दिल्ली से तुलसी मशकीन, वीना मशकीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन और चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु की राधना खुराना ने ये संदेश हमें भेजा है। श्री करणपुर से पवन कटारिया, समीर कटारिया, शालू कटारिया ने ये संदेश हमें भेजा है। गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला राठौड़, विशाल और निशा ने ये संदेश हमें भेजा है। शेरवानी स्कूल गंज डूंडूवारा उत्तर प्रदेश से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी ने ये संदेश हमें भेजा है। गांव हांडीखेड़ा जिला सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंद्रा शर्मा और सार्थक शर्मा ने ये संदेश हमें भेजा है। अगला संदेश हम तक पहुंचा है राम सिंहपुर से लिखने वाले हैं अशोक बब्बर, पवन, राजेश, अजय, राहुल और मन्नू ने ये संदेश हमें लिखा है। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मीन देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी ने ये संदेश हमें लिखा है। मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट

जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हीना कौसर ने ये संदेश हमें भेजा है। तो लीजिए, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद पर ये गीत।

अगला संदेश हम तक पहुंचा है नागपुर महाराष्ट्र से। लिखने वाले हैं कमल साहनी, पिंकी साहनी, हाजी डॉक्टर अफजल मलिक, निप्पी साहनी, सुनीता साहनी। असम से हितेंद्र दास, आरायण से डॉक्टर बनवारीलाल जयपाल, बिमला, सोनू, ममता, दिशा, मोक्ष, सुशांत, विक्रम जयपाल ने ये संदेश हमें भेजा है। बीड शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता, साक्षी, जयश्री मेहत्रे, अंजलि करवा, बाला साहेब करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय टूल और पीबी कुलथे ने ये संदेश हमें भेजा है। गोविंद गणमाझी वाला श्री करणपुर राजस्थान से राजू टुटेजा, खुशदिल उर्मिला टुटेजा, गुड्डू, जीनू, मन्नू, शिव सेठी, करणपुरी पाल मिस्त्री करणपुरी और स्माइल टुटेजा पवन गुज्जर ने ये संदेश हमें भेजा है। पंचायत बठेना पाटना जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा, उमनेश और धनेश्वरी वर्मा ने ये संदेश हमें भेजा है। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर विर्क, जैतक विर्क और मीका विर्क ने ये संदेश हमें भेजा है। मानसा पंजाब से जगदीश राय गर्ग और अंजना ने ये संदेश हमें भेजा है। सफीदो सिटी हरियाणा से नानक खन्ना, चंचल खन्ना, लाडो लवली खन्ना, रजत खन्ना, लव खन्ना, कुश खन्ना और इनके सभी साथियों ने ये संदेश हमें भेजा है। सादेवाला सिरसा हरियाणा से ये पत्र हमें लिखा है रामेश्वर माहर ने। मुजफ्फरनगर बिहार से आर्यन राज, रोहित राज और पीयूष कुमार ने ये संदेश हमें भेजा है। वड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा ने ये संदेश हमें भेजा है। सागर मध्य प्रदेश से चंद्रेश गौहर, वंदना गौहर और जयपाल यादव ने ये संदेश हमें भेजा है। गांव धनोरा बिटाली, तहसील नादुरा, जिला बुढ़लाडा, महाराष्ट्र से भगवान पाटिल, मंगेश पाटिल और सचिन पाटिल ने ये संदेश हमें भेजा है। बोरखेड़ा पीमात्रामल, जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक मयंक मूणत, चेतन नहाटा, दीक्षा और कुश मोहनत ने ये संदेश हमें

भेजा है। गांव धुंधाड़ा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर से अलादीन धुंधवाड़ी ने ये संदेश हमें भेजा है। जजर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा रजत और मयंक भाटिया ने ये संदेश हमें भेजा है। सूरतगढ़ से भूपेंद्र मिशन, प्रभजोत मिशन और बेबी जानविका ने ये संदेश हमें भेजा है। गांव बनवाला, हनुमंता फाजिलका पंजाब से विनोद मोयल, सीमा, लक्षिता, यशिका, विद्या देवी और इनके सारे परिवार ने ये पत्र, ये संदेश हमें भेजा है। गांव फ्रांसी, जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, सौरभ डूडी ने ये संदेश हमें भेजा है। तो लीजिए, आप सबको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

अनुरोध गीत। अब यह फरमाइशी फिल्मी गीतों का ये प्रोग्राम सुन रहे थे। आकाशवाणी सूरतगढ़ का ये कॉटन सिटी चैनल है 900

18 किलो हर्ट्ज एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर। इस समय दिन के ठीक 11 बजे हैं। ये प्रोग्राम सुने फिल्म संगीत।

सभी सुनने वालों का नमस्कार। आज संजय बैद की ओर से दोस्तों फिल्म संगीत का आज का ये अंक लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आज के इस प्रोग्राम में हमने कुछ ऐसे नगमे आपके लिए चुने हैं जिन्हें जिस पार्श्व गायक या कलाकार ने गाया उसी ने उस गीत पर अभिनय भी किया, यानी पर्दे पर आपको वही चेहरा नजर आएगा जिस चेहरे की आवाज उस गीत के अंदर है। निसंदेह आज के ये चुनिंदा फिल्मी नगमे आपको पसंद आएंगे। पहला गीत तो आप पहचान ही चुके हैं, नाम फिल्म का गीत जिसे मशहूर गजल गायक पंकज उदास ने अपनी आवाज दी और उन्होंने इस गीत को पर्दे पर भी गाया। गीत आनंद बख्शी ने लिखा, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने तैयार किया और जैसा कि आप जानते हैं इस फिल्म में संजय दत्त, कुमार गौरव और अमृता सिंह की मुख्य भूमिकाएं थीं। फिल्म 1986 में आई थी और 40 वर्ष बाद भी ये गीत उसी प्यार और मोहब्बत के साथ सुना जाता है, वही संदेश जो सरहद के पार लोगों को 40 वर्ष पहले था, बिल्कुल उसी तरह से हमारा देश उन लोगों को याद कर रहा है जो आज भी परदेश में बैठे हैं। उन्हें इस वतन की याद दिलाता हुआ प्रोग्राम का ये पहला नगमा पंकज उदास की आवाज में।

नाम फिल्म की बात। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं फिल्म मृत्युदाता से। इस गीत को लिखा समीर ने, संगीत आनंद मिलिंद ने तैयार किया, और इस गीत को आवाज देने के साथ साथ फिल्म में भी गाया दलेर मेहंदी ने। साथ में अमिताभ बच्चन भी इस गीत में अभिनय करते नजर आते हैं। आइए सुने दलेर मेहंदी और सुदेश भोंसले का गाया मृत्युदाता फिल्म का ये गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत 1992 में आई राहुल राय और करिश्मा कपूर की फिल्म सपने साजन के से। इस गीत को लिखा समीर ने, संगीत नदीम श्रवण ने तैयार किया और इस गीत को गाने वाले दोनों कलाकार यानी कुमार सानू और अलका याग्निक पर्दे पर भी इस गीत को गाते नजर आते हैं। आइए सुने ये नगमा।

0: कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं कर्ज फिल्म से, जिसमें हिमेश रेशमिया ने अपनी आवाज़ दी है और उन्होंने उर्मिला मातोंडकर के साथ इस फिल्म में अभिनय भी किया। हिमेश का साथ दिया श्रेया घोषाल ने, बोल समीर ने लिखे और संगीत खुद हिमेश रेशमिया का।
1: आज इस मुबारक मौके पर मैं आप लोगों को मेरी और कामिनी की दास्तान सुनाना चाहता हूं, मोहब्बत की दास्तान।

ऐसा ही एक गीत 2002 में आई फिल्म सुर से, जिसमें लकी अली और गौरी कार्तिक ने अभिनय किया। इस गीत को लिखा निदा फाजली ने, संगीत MM करीम ने तैयार किया और पर्दे पर भी इस गीत को लकी अली ने गाया, साथ में आवाज़ सुरनिधि चौहान की भी।

श्रोताओं, फिल्म संगीत का ये प्रोग्राम आप इस समय आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से अपने रेडियो दोस्त संजय बैद के साथ सुन रहे हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको कुछ ऐसे फिल्मी नगमे सुनवा रहे हैं जिन्हें जिस गायक कलाकार ने अपनी आवाज़ दी है उसी कलाकार पर फिल्म में भी वो गीत पिक्चराइज किया गया है।

कार्यक्रम की अगली पेशकश हंगामा फिल्म से, जिसमें अभिनय किया था अक्षय खन्ना, रिमी सेन और परेश रावल ने, गीत लिखा था समीर ने, संगीत नदीम श्रवण का, और इस गीत को साधना सरगम के साथ आवाज दी श्यान ने, और श्यान इस गीत में पर्दे पर भी गाते नजर आते हैं।

और प्यार हो गया। इस फिल्म का गीत हम आपको सुनवाते हैं, जावेद अख्तर का लिखा हुआ, संगीत और आवाज नुसरत फतेह अली खान की, और इस गीत पर भी नुसरत फतेह अली खान पर्दे पर नजर आते हैं और उनके साथ अभिनय किया बॉबी देओल, ऐश्वर्या रॉय, शम्मी कपूर और अनुपम खेर ने।

कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं। फिल्म का नाम है अपनापन। ये फिल्म आई थी 1977 में, जिसमें जितेंद्र रीना राय संजीव कुमार के साथ अभिनय किया था गायिका और अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित ने, और उन्होंने इस गीत पे अभिनय के साथ साथ आवाज़ भी दी, जिनका साथ दिया किशोर कुमार ने, शब्द आनंद बख्शी के, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवाते हैं लावारिस फिल्म का गीत, जिसे लिखा साहिर लुधियानवी ने, संगीत कल्याण जी आनंद जी ने तैयार किया और गीत को आवाज दी और पर्दे पर अभिनय भी किया अमिताभ बच्चन ने। यह आज के इस कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति।

अभी आप अपने साथी संजय बैद के साथ फिल्म संगीत सुन रहे थे। आज के इस प्रोग्राम में हमने आपको कुछ ऐसे नगमे सुनाए जिन्हें जिस गायक कलाकार ने गाया उसी ने पर्दे पर उस गीत में अभिनय भी किया। अब प्रोग्राम ये संपन्न हुआ, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 12 बज चुके हैं। आइए जान लेते हैं हमारे केंद्र से आज दिन भर में प्रसारित किए जाने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी और उनका प्रसारण समय। अब से थोड़ी देर बाद यानी 12:05 पर फिल्म संगीत का प्रोग्राम होगा कुछ बातें कुछ गीत। दिन में 12:30 से लेकर 12:50 तक आप सुनेंगे गैर फिल्मी गजलों का कार्यक्रम सुगम संगीत। आज के इस प्रोग्राम में कलाकार होंगी गायिका चित्रा सिंह।

खेत खलियान कार्यक्रम में किसान भाइयों के लिए आज जानकारी का विषय रहेगा, साइलेज कैसे बनाएं। समय दिन में 12:50। 1:05 पर महिला जगत कार्यक्रम में आज महिलाओं के लिए चर्चा के विषय रहेंगे विश्व खेल दिवस, कैल्शियम की कमी के कारण और निवारण, पुराने सामान से घर को दे विंटेज लुक, देश लेना और देना अपराध, इसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। साथ ही जानेंगे सेहत से भरपूर मूंग और मोठ के बारे में। कुछ और फिल्मी गीत आप सुन पाएंगे दोपहर 2:30 से लेकर 3 बजे से लेकर 4 बजे तक आप सुनेंगे हमारे उर्दू सर्विस के कार्यक्रम, और 4 बजे से लेकर 5 बजे तक आप सुनेंगे फौजी भाइयों का कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर। आज 5 बजे युवा साथियों के प्रोग्राम युववाणी में चर्चा के विषय होंगे समाज कल्याण में युवाओं की भूमिका, मिशन अमृत सरोवर, देश प्रेम, प्रदूषण, और मुख्य आकर्षण रहेगा नाटक अंतस का उजास, जिसकी लेखिका हैं सुमन कंवर और निर्देशक नवीन सिसोदिया। प्रतिभागी रहेंगे विशाल छाबड़ा, गुलशन मेघानी, अक्षय चावला, सुमन कंवर और मधुलता पुरोहित। समय नोट करें आज शाम 5:05 पर युववाणी कार्यक्रम में। सरायकी का समय रहेगा शाम 6:05। चौपाल कार्यक्रम में शाम 7 बजे आज ग्रामीण परिवार को एक नाटक सुनवाएंगे जिसका शीर्षक है काम रो हुनर। नाटक के लेखक हैं बीरू राम चामरिया और प्रस्तुतकर्ता नवीन सिसोदिया। साथ ही जानकारी दी जाएगी ग्वार की उन्नत खेती के बारे में, जानेंगे उज्ज्वला आहार के बारे में, और साथ ही पशुधन की देखभाल के बारे में भी बातचीत की जाएगी। फिल्म संगीत का समय रहेगा 7:45 और प्रोग्राम होगा एक ही फिल्म से रात्रि 8 बजे। रात 9:15 पर सुगम संगीत होगा। 9:30 पर कंट्री वाइज इनसाइट प्रोग्राम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात्रि 10 बजे जयपुर केंद्र से विज्ञान पत्रिका का प्रसारण होगा, और शास्त्रीय संगीत आप सुन पाएंगे रात 10:30 पर। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले आज के शेष कार्यक्रमों की।

आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। एफएम बैंड 100.1 MHz, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और मिनी वेव 918 KHz पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 12:05 हुए हैं। आइए प्रोग्राम सुनते हैं, कुछ बातें कुछ गीत। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज यानी 11 जून से फुटबॉल का महाकुंभ आरंभ हो रहा है। 39 दिन चलने वाले खेलों के इस महाकुंभ का आयोजन अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको मिलकर कर रहे हैं। आज रात्रि से इस खेल का आगाज होगा और मानते हैं कि लगभग 5 अरब लोग इस खेल का आनंद लेंगे, और ये भी संयोग की बात है

कि आज 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 2024 में यूएनओ ने की थी और तब से लेकर हर वर्ष आज के दिन को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। खेल हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, चाहे वो इंडोर गेम हो आउटडोर गेम हो। खेल खेलने वाला व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहता है, प्रसन्नचित रहता है और उसके जीवन में जो खेल भावना है वो हर स्तर पर नजर आती है, चाहे उसका व्यवसाय हो, चाहे उसका परिवार हो, चाहे उसका सामाजिक जीवन हो। वो हर चीज को, हर वस्तु को, हर व्यक्ति को समभाव से देखता है और कभी भी एक खेल प्रेमी के मन में छल कपट के जो भाव हैं वो बहुत कम उत्पन्न होते हैं। खेल हमें भाईचारा सिखाते हैं, एक दूसरे के साथ सकारात्मक रूप से प्रतिस्पर्धा सिखाते हैं, हमें स्वस्थ रखते हैं, हमारा मन स्वस्थ रहता है, हमारी सोच सकारात्मक होती है, हमें आगे बढ़ने का खेल अवसर प्रदान करते हैं। चाहे खेल में हार जीत क्यों ना हो, लेकिन खेल को यदि खेल भावना के साथ खेला जाए तो वो हार भी जीत में परिवर्तित हो जाती है। एक दूसरे के साथ पीछे भागना, उसे पकड़ना, उसे हराकर उस पल जो संतुष्टि मिलती है, वही इस खेल का अहम हिस्सा है।

0: अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो ये चकड़ो चकड़ो चकड़ो।
1: दोस्तों, खेल यदि आपके जीवन का हिस्सा बनता है तो उसकी शुरुआत आपको आपके बचपन से ही करनी होती है, क्योंकि एक उम्र बीतने के बाद खेल में सफल होना या उसमें विजयश्री प्राप्त करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अभी हाल ही में आपने भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो एकमात्र टेस्ट हुआ था वो देखा होगा। हमारे श्रीगंगानगर जिले के मानव सुथार ने अपने पहले ही क्रिकेट टेस्ट मैच में शानदार प्रदर्शन किया और लगभग 15 वर्ष की आयु में ही उन्हें टेस्ट कैप पहनने को मिली और वो प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे। यानी यदि आप अपनी छोटी उम्र से ही खेल में रुचि दिखाते हैं तो निस्संदेह उसका जो परिणाम है वो सुखद होता है। 2026 का जो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस है उसका इस बार का विषय भी यही है, खेल की रक्षा करें, बचपन की रक्षा करें। यूनिसेफ की जो कार्यकारी निदेशक है कैथरीन रसेल, उन्होंने भी कहा है खेल इस बात का संकेत है कि बच्चे सुरक्षित, पोषित और प्यार महसूस करते हैं। वे यह महसूस करते हैं कि वे बड़ी कठिनाइयों के बीच में भी बच्चे बने रह सकते हैं। यानी बचपन में खेल यदि हम खेलते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क पर उसका प्रभाव भी पड़ता है और जो खेल के मैदान में बच्चे बातें सीखते हैं उन्हें अपने जीवन में ढालते हुए वो जब आगे बढ़ते हैं तो निसंदेह सफलता उनके कदम चूमती है। चाहे बचपन में हम छोटा मोटा कोई भी खेल क्यों ना खेलें, एक छुपा छुपी भी यदि बच्चे खेलते हैं तो उससे भी उनका शारीरिक और मानसिक विकास होता है।

श्रोताओं, दोस्तों, 2026 का जो विषय है, खेल की रक्षा करें, बचपन की रक्षा करें, इसीलिए यूनिसेफ ने चुना है, क्योंकि आजकल आउटडोर गेम के स्थान पर बच्चे मोबाइल में ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं, जिनका उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इसीलिए यूनिसेफ जून माह के दौरान खेल के विज्ञान से लेकर पूरे परिवार के लिए एंटरटेनमेंट गतिविधियों तक हर विषय पर पेरेंट्स से विशेष सुझाव आमंत्रित करेगा, मार्गदर्शन प्राप्त करेगा। क्योंकि खेल ऑनलाइन ज़्यादा हो रहे हैं, इसलिए अभिभावकों को ऐसी गाइड और स्पष्टीकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे जिससे

0: बच्चे ऑनलाइन गेम्स से सुरक्षित रहें, किसी फ्रॉड मुनाफा से, और ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल खेलों को वो प्रोत्साहन दें। एक आंकड़े के द्वारा बताया गया है कि पहले जहां 4 में से 3 बच्चे बाहर मैदान में खेल खेला करते थे, वहां 4 में से केवल 1 बच्चा आउटडोर गेम खेलता है, और उनका स्थान आजकल वीडियो गेम्स और मोबाइल में खेले जाने वाले खेलों ने ले लिया है, जिनके दुष्प्रभाव से हम सभी परिचित हैं। इसी का परिणाम है कि हमारे जो प्राचीन खेल हैं या जो हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है, सभी खेलों पर इस प्रवृत्ति का पूरा प्रभाव पड़ रहा है।
1: Of a team and they're playing for their one and only dream to win the World Cup. So you better back up, cause they're coming on now. When they're coming on, how? Get out of the way, cause they're screaming, chuck.

0: चक टू शी इज न्यू कहते हैं मेम बड़ी तीखी इसकी गेम शी इज कूल पर दिल की है फूल बड़ी बड़ी टीमों का भुलाए हाल चाल है ये इंग्लिश माल आजा प्रीति सबरवाल
1: व्हाट यू हैव अ प्रॉब्लम विद मी
0: चक थ्री शी स्टिंग्स लाइक अ बी गांव की ये छोरी खेले हॉकी चोरी चोरी बाप भाई कोई रोके तो करे सीना जोरी ड्रिबल में से तेज नहीं कोई साली हो या साला आ गई भैया छा गई भैया कोमल चौटाला
2: खेलने वाला खेल रहेगा रोकने वाला फेल रहेगा जो ज्यादा मरोड़े मूछ चाट ले जाके भैंस की पूछ

0: तक वो ऑन द फ्लोर घिसी हुई है पिया हुआ है घाट घाट का पानी सबसे सीनियर प्लेयर है ना करती है मनमानी हिम्मत और हिमाकत है टीम की है खलनायक अपने दिन में गेम बदल दे आजा बिंदिया नायक
1: अरे देखे हमने बड़े बड़े हैं कोच ये अंग्रेज से लाइन पे इनको लाना है साम दाम धन भेद से
0: चक फाइव गिव मी अ डाइव कैप्टन है और गोली भी पर घर का गोल खाली है एक तरफ है बॉल और स्टिक दूसरी तरफ खुशहाली है
2: शादी मुश्किल गेम है पर प्लेयर हार कब माने हैं विद्या शर्मा इंडिया कैप्टन इसके भी कुछ माने

चक सिक्स नीड्स अ फिक्स, कुंभकरण है टीम की, खैर है जब तक सोई रे, आए जब ये जोश में टिकने ना पाए कोई रे, ओ आई रे ओ छाई रे, शी स्कोर बलबीर कौर।

श्रोताओं, बच्चे खेल के माध्यम से सबसे अच्छी तरह से सीखते हैं, चाहे उन्हें खेल की शिक्षा दी जाए और यदि पढ़ाई की शिक्षा भी उन्हें खेलों की तरह सिखाई जाती है तो वो जल्दी सीख पाते हैं। खेल से बच्चों का बौद्धिक विकास होता है, सामाजिक, भावनात्मक और शारीरिक विकास भी बच्चों का खेलों के माध्यम से संभव है। खेल के माध्यम से बच्चे

होती है और वो सामाजिक चुनौतियों का सामना करने में परिपक्व हो जाते हैं। इसलिए बचपन से ही बच्चों को खेल के बारे में सिखाया जाना चाहिए। उन्हें कोई ना कोई खेल अपनाने पर अभिभावकों के साथ साथ शिक्षकों को भी जरूर जोर देना चाहिए। इंडोर गेम के अलावा कोई ना कोई आउटडोर गेम यदि बच्चा अपने जीवन में अपनाता है तो निसंदेह उसका हर तरह से विकास संभव हो पाता है, उसका बचपन भी सुरक्षित रहता है।

कुछ बातें कुछ गीत। अभी आप ये कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। दिन के 12:30 हुए हैं। आइए सुने गैर फिल्मी गजलों का प्रोग्राम सुगम संगीत। आज फनकार हैं गायिका चित्रा सिंह।

0: सुगम संगीत कार्यक्रम में अभी आप चित्रा सिंह की गायी गजलें सुन रहे थे। आकाशवाणी सूरतगढ़ का ये कॉटन सिटी चैनल है। खेत खलिहान कार्यक्रम में किसान भाई जानकारी सुने। आज का विषय है ग्वार की उन्नत किस्में।
1: किसान भाइयों, ग्वार खरीफ मौसम में आधारित क्षेत्र और नहरी क्षेत्र में बोई जाने वाली मुख्य फसल है। ग्वार की उन्नत किस्मों की बात करा तो HG 220 आ किस्म 2010 में भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदानी क्षेत्र जगह में किया गया राजस्थान को कृषि खंड 1 भी शामिल है बी हतर जारी कर रही है। इन किस्म को पौधों मध्यम ऊंचाई यानी 95 में लेगी 105 सेंटीमीटर और ज़्यादा साखाण हुए और जगह में फूल जगह है वह 40 से 50 दिन बाद आवे और इन्हें पकड़ की अवधि 110 से 120 दिन की है और इनकी औसत उपज की है वह 12 से 16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। सिंचित या अच्छे मेह वाली जगह और अच्छे निकास वाली माटी खातर आ उपयुक्त है और आ किस्म कम गिरे और बीमारियों के प्रति मध्यम सहनशील है। मेह आधारित क्षेत्र में HG 220

इस किस्म की बिजाई में होने के बाद करके अच्छी पैदावार किसान भाई ले सके। बात करा दूसरी उन्नत किस्म RG 1002 की, तो आ 80-90 दिन में पक के तैयार होने वाली अति शुष्क और कम में आले और पानी के अच्छे निकास वाली माटी खातर और ग्वार पैदा करने वाले संपूर्ण क्षेत्र खातर उपयुक्त किस्म है। इंगो पौधो ज्यादा शाखदार और पत्तियां के किनारा दांतेदार हुए और इन किस्म को पौधो 60-90 सेंटीमीटर ऊंचो हुए। इन किस्म में 33-36 दिन में हल्की गुलाबी रंग का फूल आवे और इनकी फली 4.5 से 5 सेंटीमीटर तक लंबी हुए। फली में दाना उभार स्पष्ट दिखे, इनका दाना मोटा और स्लेटी रंग आवे। 100 दाना का वजन 3.1 से लेके 3.57 ग्राम हुए। इन किस्म की औसत पैदावार 10 से लेके 13 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हुए। बात करें किसान भाइयों ग्वार की अगली उन्नत किस्म RGC 1066 की, जकिन है लाठी ग्वार भी केवा, आ 2007 में अनुमोदित क्रेडी है और आ किस्म 100 से लेके 105 दिन में पक के तैयार हो जाए। इंगो पौधो 100 से लेके 115 सेंटीमीटर ऊंचो हुआ है और इंगे शाखा कोनी हुए। इंगो दानो दोड़ो गुलाबी आभायुक्त हुए और 100 दाना का वजन लगभग 3.5 ग्राम हुए। इन किस्म की औसत उपज 12 से लेके 24 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हुए और यांत्रिक कटाई खातर के उपयुक्त हुए। बात करें किसान भाइयों ग्वार की अगली उन्नत किस्म SG 365 की, तो इन किस्म को पौधो छोटो हुए और जल्दी पकने वाली किस्म है। आ किस्म 85 से लेके 100 दिन की अवधि में पक जावे। इनको दानों की है कि छोटो और स्लेटी रंग हुए। दाना की औसत पैदावार 12 से लेके 14 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक अपन मिले। दाना में गोंद की मात्रा 30% हुए और कम टाइम में पकने के कारण इन किस्म की कटाई के बाद राय की फसल जगी है बापा लेस का। बात करा ग्वार की अगली उन्नत किस्म RGC 936 की, तो आज जल्दी पकने वाली किस्म है जबकि 100 से लेके 110 दिन में पक गए तैयार हो जाए। फूल धोले रंगा हुआ है, उपज इंगी 4 क्विंटल प्रति बीघा है और इंगमा के झुलसा रोग ने सहन करने की क्षमता ज़्यादा हुआ है। बात करा अगली उन्नत किस्म RGC 986 की, इंगो पौधो 80 से लेके 120 सेंटीमीटर ऊंचो ज़्यादा शाखाड़ो और इन किस्म की पत्तियाँ खुरदरी और पत्ती का सिरा बहुत कम कटा वाला हुआ है। इंगमा फूल जो है वह 35 से 50 दिन बाद आवे और इंगा पकड़ की अवधि 115 से लेके 125 दिन की है। इंगी औसत उपज 10 से लेके 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक आवे। दानो स्लेटी मध्यम आकार को, फली मध्यम लंबी हुए और झुलसा रोग के इंगमा कम लागे। सिंचित या अच्छा मेह वाली और अच्छा जल निकास वाली माटी इंगा तर किए गए आ किस्म बी वास्ते उपयुक्त रहे। उन्नत किस्म को बीज उपलब्ध नहीं होने की अवस्था में आपा ने किया स्थानीय किस्म को अच्छो बीज जो को है बिंगी भी आपा अच्छी पैदावार ले इसका और सागे सागे किया का अपने एक अच्छो फसल चक्र भी अपनाना चाहिए। खेत के चुनाव की बात करा तो ग्वार की खेती की है कि सारा प्रकार की माटियां में किसान भाई अपना कर सके। क्षारिय समस्या वाली जो की माटी है बिंगवा किया गया जगह हम पानी भी बरेड़ो रहे हुए ग्वार नहीं बोना चाहिए। ग्वार की खेती सिंचित असिंचित और दोनों ही परिस्थितियां में किसान भाई कर सके। मेह के बाद एक दो जुताई और सुहागो लगा के खेत ने अपना तैयार कर लेना चाहिए। जखम किया गया घास फूस का है वह किसान भाई नष्ट हो जाए। पलेवा या रोने की बात करा जो टेम पर मे न हुए तो जून के मध्यम लेके जुलाई के पहले पखवाड़े तक पलेवा देगा अपन बुआई कर लेनी चाहिए। ग्वार के बाद दूसरी फसल नहीं लेनी हुए तो बुआई जुलाई के अंत तक भी किसान भाई अपना कर सके। बात करें किसान भाइयों ग्वार की बीज की मात्रा और बुआई की विधि की, तो ग्वार की बुआई बीज की परिस्थितियाँ के हिसाब हूँ 4-5 किलो बीज प्रति बीघा की दरों अपना प्रयोग करना चाहिए। ग्वार की बुआई जगह है बा ड्रिल या 2 पैरों अपन करनी चाहिए और कतारों की दूरी जगह है बा 30 सेंटीमीटर अपन रखनी चाहिए। बात करें ग्वार की फसल में खाद और उर्वरक की, तो ग्वार खातर के 5 किलो नत्रजन और 8-10 किलो फास्फोरस प्रति बीघा बुआई पहला अपन रेट देना चाहिए। इन खातर 50 से लेके 62.5 किलो सुपर फास्फेट और 10 से लेके 11 किलो यूरिया प्रति बीघा के हिसाब में अपन ड्रिल करनी चाहिए। बिरानी ग्वार में फास्फोरस की मात्रा आदि दरों अपन प्रयोग करनी चाहिए और सागे सागे किए के खेत में जो खरपतवार हुआ है तो निराई गुड़ाई करना बहुत ही जरूरी है। आ क्रिया फसल की 1 माह की अवस्थाओं पहले अपन पूरी कर लेनी चाहिए। खरपतवार नियंत्रण खातर इमेजाथाई पर 10% SL दवाई की 10 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति बीघा की दरों 100 से लेके 125 लीटर पानी में रेड़ के बुआई के 30 से 35 दिन बाद अपन छिड़काव करना चाहिए। जगह खेत में और रसायन प्रयोग में लिया गया है बटे सरसों की अंकुरण क्षमता प्रभावित हो सके। इनके बाद सरसों की बुआई जो करनी हुए तो बीज की मात्रा अपने ज़्यादा रेट देनी चाहिए। बात करें किसान भाइयों ग्वार की फसल में सिंचाई की, तो फसल बोन गए 3 या 4 सप्ताह बाद अच्छो में ना हुए तो सिंचाई अपने करनी चाहिए। सिंचाई में

0: है समाप्त होने पर अगस्त या सितंबर में अपन जरूरी है जे ग्वार के बाद रबी की फसल लेनी हुए तो 15 सितंबर के बाद सिंचाई अपन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इनके बाद सिंचाई करने में फसल पकड़ में किए गए देरी हो जाए। बात करें किसान भाई वो ग्वार की फसल में कीट नियंत्रण की, तो ग्वार की फसल में तेड़ों और सफ़ेद मक्खी को प्रकोप होने पर बाबेरिया बेसियान 200 मिलीलीटर प्रति बीघा की दर में अपन किए गए छिड़काव करना चाहिए। और ग्वार की फसल में किए गए लगभग आप देखा कि तेला और सफ़ेद मक्खी और चेपा नामक कीट जो कहे नुकसान पुगावे, तो इनकी रोकथाम खातर अपने सिफारस क्रेडी जी की दवाया हैं बांगी साबू अपने किए गए इनको छिड़काव करना चाहिए। जी हाँ, मोनोक्रोटोफास 36 WSP है 250 मिलीलीटर प्रति बीघा अपने छिड़काव करना चाहिए। डायमेथियट 30 cc 250 मिलीलीटर प्रति बीघा छिड़काव करना चाहिए। मिथाइल डेमोटेन 25 cc 250 मिलीलीटर प्रति बीघा अपने छिड़काव करना चाहिए। मेलाथियान 50 cc 300 मिलीलीटर प्रति बीघा छिड़काव करना चाहिए। और मिथाइल पैराथियान 2% चूर्ण 6 किलो प्रति बीघा अपन है इनको बुरकाव करना चाहिए। और फेनवेल लेट 0.4% चूर्ण 5 किलो प्रति बीघा इधर अपन है इनको बुरकाव करना चाहिए। और आवश्यकता अनुसार के बुरकाव ने 15-20 दिन बाद अपन है दोहराते रहना चाहिए। रोग नियंत्रण की बात करा तो ग्वार में पत्ता पर झुलसा रोग जो को है बिंगो प्रकोप होने पर 100 लीटर पानी में स्टेपलेसाइक्लिन या प्लांटोमाइसिन 50 ग्राम या एग्रीमाइसिन 30 ग्राम के हिसाब में अपने छिड़काव करना चाहिए। झुलसा रोग की रोकथाम खातर जाइनेबिया मेनकोजेब को 0.2% यानी 2 ग्राम प्रति लीटर पानी को छिड़काव जो है वो जुलाई के अंत या अगस्त तक अपने कर देना चाहिए। ग्वार में जड़ गलन नियंत्रण खातर बीज ने कार्बेडाइजम 2 ग्राम प्रति किलो दरों अपन के बीज उपचार करना चाहिए। ट्राइकोडर्मा वीडी 2.5 किलो ने 100 किलो गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दरों उपयोग 15 दिन पहले बेहे 6 बार पर रख देना है। इन्हें बिजाई के टाइम माटी में देण इन रोग को प्रभावी नियंत्रण किया गया हो सके। बात करें किसान भाइयों ग्वार में तना गलन जड़ गलन चारकोल गलन की, तो रोगग्रसित खेत में किया गया मई जून के महीने में किया गया बुआई के करीब 1 महीने पहला सरसों का अवशेष यानी डंठल पत्ती आदि 2.5 टन प्रति हेक्टेयर की दरों अपने खेत में रेड़ के पानी लगा देना चाहिए। और ग्वार के बीज ने बुआई पहला बेसिलस थ्यूरेंजिनेसिस 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दरों की एक है बीज उपचार अपन करना चाहिए। बुआई की परिस्थिति के अनुसार फसल जो की है अक्टूबर के अंत तू लेके नवंबर तक की है पक्का है। पूरी पकड़ पर कटाई करके फसल ने सुखाण खातर खेत में छोड़ देना चाहिए या कटेड़ी फसल ने खलिहान में लिया के सुखा लेनी चाहिए। मेओ की स्थिति में किया गया फसल अच्छी तरह न सूखण पर दाणों के कालो पड़ जाए मेओ जान पर किया या फसल अच्छी तरह न सूखण पर दाणों के कालो पड़ जाए और इन खातर किया फसल ने सुखाण में अपने सावधानी रखनी चाहिए। उन्नत विधियों खेती करने पर किया ग्वार की उपज की है 3-4 क्विंटल प्रति एक बीघा पान ले सका और करीब इतनी मात्रा चारा के उपज अपन प्राप्त हो सके।
1: ग्वार की उन्नत किस्में खेत खलिहान कार्यक्रम में अभी किसान भाई इस विषय पर जानकारी सुन रहे थे। आकाशवाणी सूरतगढ़ का ये कॉटन सिटी चैनल है। दिन का 1 बजने वाला है। अब आप हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे जिन्हें हम अपने जयपुर केंद्र से रिले कर रहे हैं।
2: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज आकाशवाणी जयपुर परिसर से जैसलमेर के रामगढ़ में 20 किलोवाट के एफएम ट्रांसमीटर का वर्चुअल शुभारंभ किया। ये ट्रांसमीटर एक बड़े क्षेत्रफल में लोगों तक रेडियो की पहुंच को सुनिश्चित करेगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि इस ट्रांसमीटर के बनने से और अधिक लोग रेडियो से जुड़ सकेंगे। उन्होंने देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि देश के सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में दूरदर्शन और आकाशवाणी के व्यापक प्रसारण नेटवर्क उपलब्ध कराने की योजना पर काम किया जा रहा है। श्री वैष्णव ने आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट हाइपर लोकल सूत्र पर काम करने को कहा, जिससे स्थानीय कलाकारों और डिजिटल क्रिएटर्स को अधिक से अधिक मौका और प्रोत्साहन मिले।
3: हाइपर लोकल डिजिटल फर्स्ट, जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास आज अवेलेबल है, अपना खुद का वेव्स OTT है और जो भी पॉपुलर प्लेटफॉर्म हो,

0: उस प्लेटफॉर्म को यूज करें, जब चाहे अपनी खुद की ऐप बनाएं, जिस तरीके से लोकल न्यूज, लोकल आर्ट, लोकल संस्कृति, गांव के, कस्बे के, नगर के कलाकारों को, वहां के क्रिएटर्स को उसको एक अपॉर्चुनिटी मिले दुनिया तक पहुंचने की, संस्कृति को आगे लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए, इस आधार पे अगले 1000 दिनों में अच्छा एक्शन प्लान बना के आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करें।
1: रेलवे परियोजनाओं का जिक्र करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि प्रदेश में रेलवे का तेजी से विस्तार हो रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 85 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है, इनमें से 15 का काम पूरा हो चुका है। श्री वैष्णव ने इस अवसर पर जयपुर अजमेर दरभंगा ट्रेन को जल्द ही नियमित करने की घोषणा की। उन्होंने जयपुर में AI डेटा सेंटर और एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाए जाने का भी ऐलान किया। कार्यक्रम में प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने कहा कि आकाशवाणी और दूरदर्शन जैसी संस्थाएं अपनी जड़ों से गहराई से जुड़ी हुई एक अत्यंत आवश्यक सेवा है। श्री जोशी ने प्रसारण में सत्यता और प्रासंगिकता पर जोर देते हुए कहा कि सत्य को बिना बढ़ा चढ़ाकर पेश किए संतुलित रूप में समाज तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, जयपुर सांसद मंजू शर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इसके साथ ही आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन उपस्थित रहे। इसके बाद सूचना और प्रसारण मंत्री तथा प्रसार भारती के अध्यक्ष ने आकाशवाणी और दूरदर्शन के युवा अधिकारियों के साथ संवाद किया। इसके बाद श्री वैष्णव MNIT पहुंचे। वहां उन्होंने क्वांटम AI और सेमीकंडक्टर मेकर्स लैब का उद्घाटन किया। श्री वैष्णव का दुर्गापुरा स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में शिरकत करने का कार्यक्रम है। ये सम्मेलन प्रधानमंत्री श्री मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के कुछ प्रकारों का उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह से छूट देने की घोषणा की है। मंत्रालय ने कहा है कि अब इन चारों ईंधन श्रेणियों पर उत्पाद शुल्क शून्य रहेगा। इसका उद्देश्य भारत के एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को मजबूत करना है। राजस्थान पुलिस की ओर से सड़क सुरक्षा के उद्देश्य से चलाए जा रहे विशेष अभियान के दौरान पिछले 6 दिनों में 50,000 से अधिक वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। यातायात पुलिस की अतिरिक्त महानिदेशक डॉ. BL मीणा ने बताया कि अवैध फिल्म, नंबर प्लेट, हूटर और प्रेशर हॉर्न लगाने वालों पर कड़ा शिकंजा कसा जा रहा है। अभियान के 6 दिन रिकॉर्ड 10,825 चालान बनाए गए। प्रदेश में आज जयपुर और अलवर सहित 12 जिलों के लिए आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 14 जून तक बीकानेर, जयपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग के कई क्षेत्रों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज आंधी चलने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का यह कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 1:05 हुए हैं। महिलाओं के लिए प्रस्तुत है उनका कार्यक्रम महिला जगत।

कार्यक्रम सुनने वाली मेरी प्यारी सखियों को किरण का नमस्कार। सखियों, आज विश्व खेल दिवस है और विश्व खेल दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। विश्व खेल दिवस खेल की शक्ति का जश्न मनाने का समय है। यह एक ऐसा समय है जब हम एक साथ आकर यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक बच्चा खेलने के अपने अधिकार को पूरा कर सके। खेल महज मनोरंजन से कहीं बढ़कर एक सार्वभौमिक भाषा है, जिसे सभी उम्र के लोग बोलते हैं और जो राष्ट्रीय

सांस्कृतिक और सामाजिक आर्थिक सीमाओं से परे है। ये साझा जुनून समुदाय की भावना और राष्ट्रीय गौरव को बढ़ावा देता है। सखियों बच्चे खेल के माध्यम से सबसे अच्छी तरह सीखते हैं। खेल बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक और शारीरिक विकास के सभी क्षेत्रों में सीखने के सशक्त अवसर प्रदान करता है। खेल के माध्यम से बच्चे दूसरों के साथ संबंध बनाना सीखते हैं, नेतृत्व कौशल विकसित करते हैं, लचीलापन विकसित करते हैं, रिश्तों और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना सीखते हैं और साथ ही बच्चे अपने डर पर भी काबू पाना सीखते हैं और बच्चे अपने आसपास की दुनिया को समझने के लिए खेलते हैं। लीजिए सखियों, सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: सखियों, कैल्शियम मानव शरीर में पाए जाने वाला एक खनिज है। यह 99% शरीर, दांतों और हड्डियों के साथ साथ रक्त मांसपेशियों और कोशिकाओं के बीच तरल पदार्थ में संग्रहित होता है। मांसपेशियों के सही संचालन के लिए ही कैल्शियम जरूरी है। कैल्शियम पूरे शरीर में हार्मोन और एंजाइमों के स्त्राव में भी सहायक होता है। कैल्शियम हृदय गति को स्थिर बनाए रखने के साथ साथ कोशिकीय झिल्लियों के पार आयनों के परिवहन में भी सहायक है। कुल मिलाकर शरीर के कई अलग अलग कार्य शरीर में पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम पर ही निर्भर करते हैं। सखियों, किसी व्यक्ति को कितने कैल्शियम की आवश्यकता होती है यह मुख्य रूप से उसकी उम्र पर निर्भर करता है। जैसे बच्चों को अधिक कैल्शियम की आवश्यकता होती है क्योंकि उनकी हड्डियाँ भी विकसित हो रही होती है। सखियों, रक्त में कैल्शियम का स्तर कम होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि विटामिन डी की कमी, जो कैल्शियम के अवशोषण के लिए आवश्यक है। तब हो सकती है जब लोग लंबे समय तक घर के अंदर रहते हैं। इसके अलावा अधिक कैफीन और किशमिश का सेवन से भी कैल्शियम की कमी होने लगती है। कैल्शियम की कमी का मुख्य कारण तो असंतुलित आहार है। लीजिए सखियों, सुनते हैं एक और गीत।

0: जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान, जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपट

0: ने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सखियों, हम बात कर रहे थे कैल्शियम की कमी के कारण और निवारण की। सखियों, वैसे तो शरीर में कैल्शियम की कमी होना कोई गंभीर बीमारी नहीं है, लेकिन अक्सर यह दूसरी बीमारियों के तौर पर सामने आता है, जैसे कि हड्डियां कमज़ोर होना, मांसपेशियों में दर्द होना, दांतों का कमज़ोर होना, नींद में परेशानी, सांस की समस्याएँ, कब्ज, गैस और पेट दर्द, नाखून टूटना, नसों का खींचना, जोड़ों का दर्द, अत्यधिक कमजोरी या थकान, ये सभी लक्षण कैल्शियम की कमी के कारण होते हैं। सखियों, कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए संतुलित आहार लेना बहुत जरूरी है, जैसे दूध, दही, पनीर जैसे डेयरी उत्पाद, इनके अलावा ताजे फल, हरी सब्जियां, बीन्स, अंकुरित अनाज, पौष्टिक दालें, ये सभी खाद्य पदार्थ हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा करता है। सब्जियों में ब्रोकली हेल्दी सब्जियों में से एक है, इसमें कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। फलों में संतरा एक ऐसा फल है जिसमें सिर्फ विटामिन सी नहीं बल्कि कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। संतरा में फाइबर भी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। बातें और भी करेंगे, लीजिए सुनते हैं ये अगला गीत।

0: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
1: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सखियों, आजकल घरों की सजावट में विंटेज लुक का बहुत महत्व है। विंटेज लुक का अर्थ है पुराने समय की वस्तुओं का उपयोग करके घर को आकर्षक और कलात्मक रूप देना। पुराने सामान का पुनः उपयोग करके न केवल घर की सुंदरता बढ़ाई जा सकती है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान दिया जा सकता है। पुराने फर्नीचर, लकड़ी की अलमारियाँ, पीतल के बर्तन, पुराने फोटो फ्रेम, घड़ियाँ और सजावटी वस्तुएँ घर को एक अलग पहचान देती हैं। इन वस्तुओं को थोड़ी मरम्मत और रंग रोगन करके नया लुक दिया जा सकता है। जैसे कि पुरानी लकड़ी की मेज को पॉलिश करके ड्राइंग रूम में रखा जा सकता है। इसी प्रकार पुराने ट्रंक या संदूक को सेंटर टेबल के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। विंटेज सजावट में पुराने फोटो, हाथ से बनी हुई वस्तुएं और पारंपरिक कलाकृतियां भी महत्वपूर्ण है। दीवारों पर पुराने चित्र और पारिवारिक तस्वीरें लगाने से घर में अपनापन और इतिहास का एहसास होता है। पुराने सामान से घर को विंटेज लुक देना एक रचनात्मक और उपयोगी विचार है। इससे घर सुंदर, आकर्षक और अनोखा दिखाई देता है। साथ ही यह हमारी सांस्कृतिक विरासत और पुरानी यादों को भी संजोकर रखने का एक अच्छा माध्यम है। लीजिए सुनिए ये अगला गीत।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: सखियों, दहेज का अर्थ है जो संपत्ति विवाह के समय वधू के परिवार की तरफ से वर को दी जाती है। दहेज प्रथा एक लंबा इतिहास है। पुराने समय में शादी के समय लड़की को अपने पीहर पक्ष की ओर से गहने और अन्य वस्तुएं उपहार के तौर पर दी जाती थी, लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ते बढ़ते एक विकराल रूप ले चुकी है। लोग बेटियों को दहेज देना अपनी शान समझते हैं। सखियों, सोच का दायरा सबका अलग अलग है। कुछ लोग सोचते हैं कि हम बेटियों को दहेज देंगे तो हमारी बेटियों को ससुराल में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, परंतु सबकी सोच एक जैसी नहीं है। मैं यह तो नहीं कहूँगी कि सभी लोग धन के लालची हैं, लेकिन कुछ लोग धन के लालच में बहुओं को परेशान करते हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है कि दहेज देना सबके लिए आसान नहीं है। जिनके पास धन अधिक है उनके लिए तो ये अवसर अपनी हैसियत दिखाने का है, लेकिन जो परिवार गरीब है उनके लिए दहेज देना वाकई में एक समस्या है। सखियों, दहेज देने से तो अच्छा है कि बेटियों को अच्छी शिक्षा दी जाए ताकि वे अपने पैरों पर खड़ी होकर आत्मनिर्भर बन सके और अपने आत्मसम्मान की स्वयं ही रक्षा कर सके। दहेज लेना व देना दोनों ही गलत है। हमें ऐसी प्रथाओं पर रोक लगानी चाहिए। लीजिए, सुनिए ये अगला गीत।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सखियों, मूंग और मोठ सेहत के लिए बहुत ही गुणकारी और सुपर फूड माने जाते हैं। ये दोनों प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और मिनरल से भरपूर होते हैं, जो शरीर को ऊर्जा देते हैं, पाचन सुधारते हैं और वजन घटाने में भी मददगार है। सखियों, मूंग में कैलोरी कम और प्रोटीन और फाइबर अधिक होता है, जिससे लंबे समय तक भूख नहीं लगती और हम जंक फूड खाने से भी बचते हैं। अन्य दालों की तुलना में मूंग की दाल बेहद हल्की होती है और आसान

से पच भी जाती है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जो शुगर लेवल को कंट्रोल रखने में मदद करता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और आयरन शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करते हैं। सक्यूमोट कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत है, जो शारीरिक कमजोरी और थकान को दूर करके भरपूर ऊर्जा देता है। मोठ में कैल्शियम और फास्फोरस की अच्छी मात्रा पाई जाती है, जो हड्डियों को मजबूत बनाने में सहायक है। मूंग में मौजूद पोषक तत्व त्वचा में चमक लाते हैं और बालों को झड़ने से भी रोकने में मदद करते हैं। लीजिए सुनिए ये गीत।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: सखियों, जून का महीना आते ही घर का वातावरण भी गर्म होने लगता है। ऐसे में कमरों में पौधे लगाकर घर को प्राकृतिक तरीके से ठंडा किया जा सकता है। ये पौधे हैं जैसे कि स्नेक प्लांट। ये हवा को शुद्ध करता है, इसे बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। कमरे के तापमान को कम करने में यह बेहद प्रभावी है। सिंगोनियम, यह पौधा हवा से कई तरह के विषैले तत्वों को हटाता है। यह कम रोशनी में भी अच्छी तरह पनपता है। इसे खिड़की के पास रखना बेहतर होता है। सखियों, एलोवेरा, यह गर्मी कम करता है और हवा से विषैले पदार्थों को हटाकर ठंडक बढ़ाता है। एलोवेरा रात में ऑक्सीजन छोड़ता है जिससे कमरे में ताजगी व ठंडक महसूस होती है। पीस लिली, यह हवा को शुद्ध करता है और नमी बनाए रखता है जिससे ठंडक महसूस होती है। इसे ड्राइंग रूम और बेडरूम दोनों में ही रखा जा सकता है। यह कम रोशनी वाली जगहों के लिए बेहतरीन है। लीजिए सखियों, अब सुनते हैं इस कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

0: Kuwait temporarily suspended air traffic as a precaution after reporting hostile air targets in its airspace, while Bahrain issued security alerts and reported interceptions of incoming drones. Reports.
1: Sports fans across the world are set for a month-long football spectacle as the 2026 FIFA World Cup kicks off tonight at the historic Estadio Azteca in Mexico City.
2: This edition of the World Cup will be the biggest in history, with an expansion from 32 to 48 teams. A record 104 matches will be played, with 72 in the group stage and 32 in the knockout rounds, across host nations, United States, Canada and Mexico. The three host nations qualified automatically, while 45 teams earned their places through a demanding two-year qualification journey. The competition features 12 groups of four teams each. The top two teams from every group, along with the eight best third-place teams, will advance to the round of 32. This expands the knockout stage to 32 teams for the first time in tournament history. The grand final is scheduled for 19th of July, promising a thrilling conclusion to football's greatest celebration. This World Cup is also expected to be one of the most challenging in history, with teams facing demanding conditions across three countries, including long travel distances, varying climates, different altitudes, and shifting time zones. Over the decades, only eight nations have lifted the FIFA World Cup trophy: Brazil, Italy, Germany, Spain, Argentina, England, France and Uruguay, the inaugural champions. Among the most unfortunate sides in World Cup history remain the Netherlands, who have reached three finals but are yet to win the title despite producing generations of world-class talent. From history to high stakes, from legends to new challengers, the stage is set for football's ultimate battle. Shagun Chopra from Sports Desk.
1: And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi stresses collective efforts of centre and states key to realising Viksit Bharat vision, chairs 11th Governing Council meeting of Niti Aayog in New Delhi. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav inaugurates 20 kilowatt FM transmitter in Rajasthan's Jaisalmer. Centre waives excise duty on certain variants of ethanol blended petrol. First made-in-India Airbus C-295 aircraft completes maiden test flight from Vadodara. And with that, we end the midday news.
3: Namaskar. Aakashwani se dopahar samachar ke saath, main Lavleen Nigam. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण। उन्होंने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की पहुंच मजबूत करने के प्रयास कर रही है। राजस्थान के जैसलमेर में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ किया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिकबराइक ने राज्यसभा सदस्य पद से इस्तीफा दिया। भारत में निर्मित एयरबस C-295 विमान ने वडोदरा में पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न की। अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की। और फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आज रात मैक्सिको सिटी में शुभारंभ। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जैसे जैसे भारत विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है, ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। श्री मोदी ने कहा कि राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नीति आयोग इसमें सहयोग के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, ताकि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच विचारों का समुचित आदान प्रदान हो सके और विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में सामूहिक प्रयासों को बल मिले। बैठक में देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के

0: अस्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि किसान देश की खाद्य सुरक्षा, पोषण और समृद्धि की रीढ़ हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी पहले न केवल किसानों की आय की रक्षा कर रही हैं बल्कि कृषि को और भी सशक्त बना रही हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर में आकाशवाणी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन वर्चुअली माध्यम से किया। इस कार्यक्रम में जयपुर की सांसद मंजू शर्मा, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन से सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। उन्होंने समय के साथ परिवर्तन पर भी बल दिया।
1: मैं निवेदन करूंगा आकाशवाणी के सभी साथियों से और विशेषकर DG साहब से, राजीव जी से और हमारे प्रसार भारती के चेयरमैन श्री प्रसून जोशी जी से कि अब हम एक नए तरीके से सोचें आकाशवाणी के बारे में। हम आज के समय के हिसाब से आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल इन दो सूत्रों में बांधे। जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास आज अवेलेबल है, अपना खुद का वेब्स OTT है, उस प्लेटफॉर्म को यूज करें। लोकल आर्ट, लोकल संस्कृति, लोकल खानपान को आगे लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए। अगले 1000 दिनों में एक मास्टर प्लान बना के आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करें। आपको पूरा फ्रीडम है, जो आप कहोगे वो पॉलिसी बनेगी। पॉलिसी बनाने वाले आप, इंप्लीमेंट करने वाले आप।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि राजस्थान में सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार और प्रसारण नेटवर्क को मजबूत करने के लिए ये पहल शुरू की गई है।
1: करीब अपने 450 स्टेशन है पूरे प्रदेश में, उसमें से 200 स्टेशनों का काम करीब करीब पूरा होने को आया है। तो ये काम जो कि जन जन को, जैसे श्रद्धेय अटल जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बना के गांव गांव तक सड़क पहुंचाई थी, वैसा ही आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी छोटे से छोटे स्टेशन पर भी अच्छा काम करने के लिए दिन रात लगे। बड़े स्टेशनों का काम तो अपनी जगह है, जयपुर में एक तरीके से लोग आते हुए स्टेशन को भी देखेंगे, जैसे हवा महल देखने जाते, वैसे ही ये भी एक टूरिज्म का अच्छा अट्रैक्शन बनेगा और जनता को बहुत बड़ी सुविधाएं होंगी।
0: सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। मंत्रालय ने कहा कि अब इन चारों ईंधन श्रेणियों पर उत्पाद शुल्क शून्य रहेगा। इसका उद्देश्य भारत के एथेनॉल मिशन कार्यक्रम को मजबूत करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत में निर्मित एयरबस C-295 विमान ने गुजरात के वडोदरा से पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न की। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने भारत में निर्मित पहले एयरबस C-295 के प्रथम सफल परीक्षण उड़ान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि यह एरोस्पेस विनिर्माण में देश की बढ़ती क्षमताओं को भी दर्शाता है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए एयरबस, टाटा एडवांस्ड सिस्टम, भारतीय वायुसेना और सभी इंजीनियरों, टेक्नीशियनों और कर्मचारियों को बधाई दी। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बुल्गारिया के संबंध दीर्घकालिक और स्थिर हैं। बुल्गारिया के विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा चामोवा से मुलाकात के दौरान श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देश मिलकर भविष्य में संबंधों को बेहतर करने पर कार्य करेंगे।
2: हमारी बातचीत के तीन पहलू थे। पहला, भारत और बुल्गारिया के बीच आपसी सहयोग। दूसरा, भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी। और तीसरा, वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए ताकतवर देश किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं।
0: डॉक्टर जयशंकर ने बल देकर कहा कि आर्थिक सुरक्षा और आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर भारत का स्पष्ट रुख है।
2: भारत का मानना है कि ये दौर युद्ध का नहीं है और संघर्षों का एकमात्र समाधान

0: बातचीत तथा कूटनीति है। जब बात आर्थिक जोखिमों की आती है तो इससे निपटने का तरीका मजबूत आपूर्ति श्रृंखला और अधिक विविधता है, और ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि समुद्री व्यापार में कोई रुकावट न आए। साथ ही आतंकवाद के मामले में दुनिया को शून्य सहिष्णुता की नीति पर स्पष्ट रुख अपनाना होगा।
1: ओमान की खाड़ी में पलाव ध्वज वाले वाणिज्यिक जहाज एमटी सिटेबोलो पर अमरीकी सेना के हमले में लापता हुए तीनों भारतीय नाविकों की मौत की पुष्टि हो गई है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि तीनों शव बरामद कर लिए गए हैं। उन्होंने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री सोनोवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे बचाए गए चालक दल के सदस्यों को तुरंत स्वदेश वापस लाया जाए और मृतकों के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए शीघ्र भारत भेजा जाए। अमेरिका ने ईरान पर नए सैन्य हमले किए हैं। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य बंद करने की घोषणा की है और क्षेत्र में अमरीकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि अमेरिका ने आत्मरक्षा में लगातार दूसरे दिन हमले किए। इनमें ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, रडार और संचार ढांचों को निशाना बनाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईरान के मीडिया ने बंदर अब्बास, केशम द्वीप, मीनाब और सिरिक सहित कई स्थानों पर विस्फोट की सूचना दी है।
2: मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन अब ईरान की बॉर्डर से बाहर भी फैल चुका है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने क्लेम किया है कि उन्होंने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में यूएस मिलिट्री फैसिलिटीज पर मिसाइल और ड्रोन अटैक्स लॉन्च किए हैं। ये लेटेस्ट अमेरिकन स्ट्राइक्स के रेस्पॉन्स में किया गया रिटेलिएशन है। ईरानियन स्टेट मीडिया के मुताबिक जॉर्डन के मुवाफक साल्टी एयरबेस पर 12 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए गए और तेहरान का कहना है कि इसे मिलिट्री फैसिलिटीज और एयरक्राफ्ट शेल्टर्स को नुकसान पहुंचा है, लेकिन जॉर्डन या यूनाइटेड स्टेट्स ने क्लेम्स की अभी तक कंफर्मेशन नहीं दी है। कुवैत ने टेम्पररी तौर पर एयर ट्रैफिक सस्पेंड कर दिया। बहरीन से आए रिपोर्ट के मुताबिक इंटरसेप्शन के बाद डॉन डेब्री रेसिडेंशियल एरियाज में गिर गया, जिसे माइनर डैमेज और चोट लगने की रिपोर्ट्स हैं। मल्टीपल कंट्रीज में मिलिट्री एक्टिविटी रिपोर्ट होने और की शिपिंग लाइन्स पर प्रेशर बढ़ने के साथ ये फियर्स और बढ़ रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट एक और ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल और डेंजरस फेज में एंटर कर सकता है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चेक बराइक ने राज्यसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन को भेज दिया है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने राज्यसभा पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों और वित्तीय बुनियादी ढांचे पर बढ़ते खतरे को लेकर चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
3: गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी वित्तीय और व्यक्तिगत धोखाधड़ी के लिए AI द्वारा डीप फेक वीडियो का तेजी से दुरुपयोग कर रहे हैं। आमतौर पर साइबर अपराधी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जॉब पोर्टल, डेटिंग प्लेटफॉर्म या फोन कॉल के माध्यम से संपर्क करते हैं। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थानों को डीप फेक का पता लगाने के तंत्र को मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग प्रणालियों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। को सलाह दी गई है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें, संदिग्ध लॉगिन प्रयासों के प्रति सतर्क रहें और वित्तीय गतिविधियों से संबंधित ईमेल या SMS सूचनाओं की नियमित रूप से निगरानी करें। यह भी आग्रह किया गया है कि वे किसी भी संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की सूचना राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से तुरंत दें। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: सरकार ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान सीमा के पास भारतीय वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त होने का दावा करने वाला वीडियो पूरी तरह से भ्रामक है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि यह दावा फर्जी है और वीडियो को पाकिस्तानी दुष्प्रचार खातों द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे सीमा पार से चलाए जा रहे दुष्प्रचार अभियानों से सावधान रहें। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से मेक्सिको सिटी में रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मेक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समयानुसार ये मैच रात 12:30 बजे से शुरू होगा।
0: फीफा विश्व कप का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीम भाग ले रही हैं। पहले के संस्करणों में 32 टीम शामिल होती थी। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा

और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। ये विश्व कप इतिहास के सबसे चुनौतीपूर्ण विश्व कप में से एक होने की भी संभावना है, जिसमें टीमों को तीन देशों में कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, जिनमें लंबी यात्राएं, बदलती जलवायु और बदलते समय क्षेत्र शामिल हैं। विश्व कप के इतिहास में अब तक ब्राजील, इटली, जर्मनी, स्पेन, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और उरुग्वे ने फीफा ट्रॉफी जीती है। अन्य 45 टीमों ने 2 वर्ष लंबे क्वालिफाइंग अभियान के जरिए अपनी जगह बनाई है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं, प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल।

0: फ्रांस और उरुग्वे ने फीफा ट्रॉफी जीती है। अन्य 45 टीमों ने 2 वर्ष लंबे क्वालिफाइंग अभियान के जरिए अपनी जगह बनाई है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं, प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष 2 टीम सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले शामिल होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: मौसम विभाग ने शनिवार तक देश के उत्तर पश्चिमी भाग में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज और कल तेज हवाओं के साथ गरज और ओलावृष्टि की संभावना है। अगले 5 से 7 दिन तक उत्तर पूर्वी भारत और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र में तेज बारिश होने की आशंका है, जबकि केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में दिन के दौरान गरज के साथ आंधी और ओलावृष्टि की संभावना है। 13 तारीख तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। इस बीच दिन के दौरान पश्चिमी राजस्थान में लू की स्थिति बनी रहेगी। घरेलू शेयर बाजारों में आज मामूली बढ़त दर्ज की गई। ताजा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 116 अंक बढ़कर 74,099 और निफ्टी 18 अंकों के उछाल के साथ 23,233 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण। उन्होंने आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासित परिषद बैठक की अध्यक्षता की। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की पहुँच मजबूत करने के प्रयास कर रही है। राजस्थान के जैसलमेर में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ किया। और फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आज रात मैक्सिको सिटी में शुभारंभ। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 326.79 यानी 918 किलो हर्ट्ज, FM बैंड 100.1 मेगा हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DRM चैनल 909 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी सूरतगढ़ का ये कॉटन सिटी चैनल है। दोपहर के 2:30 हो चुके हैं। आइए प्रोग्राम सुने फिल्म संगीत। पहले सुने नीला आकाश फिल्म में लता मंगेशकर को। शब्द रचना राजा मेहदी अली खान की और संगीतकार हैं मदन मोहन।

रवि के संगीत निर्देशन में सुनिए साहिर का लिखा गीत अमानत फिल्म के लिए। गीत को गाया मोहम्मद रफी ने।

0: आकाशवाणी सूरतगढ़ की प्रस्तुति नाटक आखिरी चिट्ठी, सुनिए दिनांक 13 जून 2026, शनिवार सुबह 9:30 बजे।
1: सभी जवान अपनी अपनी पोजीशन संभालो, दुश्मन ने पहाड़ी वाले मोर्चे पर भारी हमला कर दिया है।
0: याद रखें, नाटक आखिरी चिट्ठी सुनिए 13 जून 2026, शनिवार सुबह 9:30 बजे।
2: अर्जुन, सामने वाली पहाड़ी पर दुश्मन तेजी से आगे बढ़ रहा है, उनकी संख्या हमसे ज्यादा है, लेकिन हमें उन्हें रोकना ही होगा।
3: संख्या से युद्ध नहीं जीते जाते रवि, हौसले से जीते जाते हैं।
0: दिनांक 13 जून 2026, शनिवार सुबह 9:30 बजे सुने आकाशवाणी सूरतगढ़ की प्रस्तुति नाटक आखिरी चिट्ठी।
4: तुम्हारी कसम, इस फिल्म में सुनिए मुकेश के साथ आशा भोसले को।

राम लक्ष्मण के संगीत निर्देशन में सुनिए नक्श लाल पुरी की लिखी गीत रचना पत्थर फिल्म के लिए। इस गीत को गाया है भूपेंद्र सिंह ने।

किशोर कुमार का गाया हुआ गीत हम आपको सुनवाते हैं। फिल्म का नाम है मेरे अपने। गुलजार के लिखे गीत को संगीतबद्ध किया सलील चौधरी ने।

प्रोग्राम के आखिर में हम आपको सुनवाते हैं आशा भोंसले और मोहम्मद रफ़ी का गाया गीत। फिल्म का नाम है हमसाया। गीत लिखा शिवान रिजवी ने और संगीतकार हैं ओपी नैयर।

अभी आप फिल्म संगीत सुन रहे थे। आकाशवाणी सूरतगढ़ का ये कॉटन सिटी चैनल है। दोपहर के ठीक 3 बजे हैं। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारे उर्दू सर्विस के कार्यक्रम। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: लवर्स, ये आकाशवाणी है। सपहर के 3 बजे हैं। उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस की नशात का अब आगाज़ होता है। इस मजलिस में आप तमाम
1: उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस की नशात का अब आगाज़ होता है। इस मजलिस में आप तमाम सामीन का खैर मकदम है। उर्दू सर्विस की नशात आप सुन सकते हैं मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। आइए एक नजर डालते हैं इस मजलिस में नशोनले प्रोग्रामों पर।

3:05 पर खबरें नशे की जाएंगी और 3:15 पर फिल्मी नगमों का प्रोग्राम आप सुनेंगे मेरी पसंद।

शाम 4 बजे आप लुत्फ़अंदोज़ होंगे फिल्मी मौसीकी से। फिल्मी नाखूनों का ये प्रोग्राम जारी रहेगा 4:50 तक। शाम 4:50 पर खबरें नशर की जाएंगी और शाम 5 बजे उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पसीर हो जाएंगी। सामने एक मुख्तसर तारुफ इस मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों के हवाले से। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

0: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। दोपहर के 3:05 हुआ चाहते हैं, अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: रजी हम उससे खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग की सदारत की। उन्होंने कहा कि मरकज और रियासतों की इज्तमाही कोशिशें विकसित भारत के नजरिए को हकीकत में बदलने में अहम साबित होंगी। इत्तलात मशियात के वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा है कि हुकूमत भारत के सरहदी खित्तों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की कवरेज को मजबूत करने के लिए कोशिश कर रही है। जनाब वैष्णव ने राजस्थान के जैसलमेर जिले में 20 किलोवाट FM ट्रांसमीटर का इफ्तिताह किया। मरकज ने इथेनॉल की आमेजिश वाले पेट्रोल की कुछ अकसाम पर एक्साइज ड्यूटी खत्म कर दी है। पहले मेड इन इंडिया एयरबस C295 तैयारे ने वडोदरा में अपनी पहली परवाज मुकम्मल की। अमरीकी हमलों के बाद ईरान ने आबनाए हुरमुज बंद करने का ऐलान किया है और आज रात मेक्सिको में शुरू होने वाली एक महीना तवील फुटबॉल के दुनिया के सबसे बड़े टूर्नामेंट फीफा आलमी कप के लिए दुनिया भर के फुटबॉल मद्दाह तैयार हैं। खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया में गैर यकीनी और अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल के बावजूद भारत इदामात और पुख्ता अज़्म के साथ तरक्की की राह पर मुसलसल आगे बढ़ रहा है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग की सदारत करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि अब जबकि मुल्क विकसित भारत के
2: जाती है, वज़ीर आज़म ने कहा कि तआवुन और मुज़ाकरात, रियासतों के दरमियान बातचीत और राब्ते के उसूल होने चाहिए। उन्होंने कहा कि नीति आयोग इश्तराक के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर अहम किरदार अदा कर सकता है, जहां रियासतें विकसित भारत के विजन के लिए तबादले ख्याल और एक साथ मिलकर काम कर सकें। वज़ीर आज़म ने इस बात को उजागर किया कि मियारी तालीम के जरिए मुल्क के नौजवानों के लिए सही इको निज़ाम कायम किया जाना और रोज़गार के मौके पैदा किया जाना आला तरजीह होनी चाहिए। जनाब मोदी ने मजीद कहा कि बाख्तियार नौजवान विकसित भारत के सफ़र को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत ने कई मुल्कों के साथ आज़ाद तजारती समझौते किए हैं ताकि तरक्की और बरामदात के लिए नए मौके पैदा किए जा सकें। वज़ीर आज़म ने कहा कि ये समझौते MSME

0: टू वंडर पार्क के काम में तेजी लाई जा रही है ताकि सालाना अमरनाथ यात्रा से पहले इसे मुकम्मल किया जा सके। हुकाम इसे अकीदतमंदों और सयाहों के लिए एक पुरकशिश मकाम बनाना चाहते हैं। अमरीकी फौज ने कल ईरान में कई ठिकानों पर फिर से हमले किए। अमरीकी फौज ने कहा है कि ईरान की लगातार जारहियत के तनाजुर में जवाबी कार्रवाई करते हुए ये हमले किए गए हैं। लड़ाई ख़त्म कराने के लिए मुज़ाकरात बहाल करने की कोशिशों के बावजूद मगरबी एशिया में फिर से कशीदगी बढ़ गई है। उधर ईरान के पास दारान इनकलाब ने तेल टैंकरों और कमर्शियल बहरी जहाज़ों समेत हर तरह के जहाज़ों के लिए अबनाए हुरमूज़ के बंद होने का दावा किया है, जबकि अमरीका की मरकजी कमान ने कहा है कि कमर्शियल बहरी जहाज़ बदस्तूर वहाँ से गुजर रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट 2026 फीफा वर्ल्ड कप आज रात मेक्सिको सिटी में शुरू हो रहा है, जो 19 जुलाई तक जारी रहेगा। टूर्नामेंट के मैच अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में खेले जाएंगे। पहला मैच ग्रुप ए में मेक्सिको और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 12:30 बजे शुरू होगा। वर्ल्ड कप की तारीख में यह सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। इसमें 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जबकि सबका टूर्नामेंट्स में 32 टीमें थीं। और आखिर में इस बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग की सदारत की। उन्होंने कहा कि मरकज और रियासतों की इज्तिमाई कोशिशें विकसित भारत के नज़रिए को हकीकत में बदलने में अहम साबित होंगी। इत्तला-ओ- नशरियात के वजीर अश्वनी वैश्रम ने कहा है कि हुकूमत भारत के सरहदी खित्तों में आकाशवाणी और दूरदर्शन के कवरेज को मजबूत करने के लिए कोशिश कर रही है। जनाब वैश्रम ने राजस्थान के जैसलमेर ज़िले में 20 किलोवाट FM ट्रांसमीटर का इफ्तिताह किया। मरकज़ ने एथेनॉल की आमेजिश वाले पेट्रोल की कुछ अकसाम पर एक्साइज ड्यूटी ख़त्म कर दी है और पहले मेड इन इंडिया एयरबस C295 तैयारे ने वरूरा में अपनी पहली परवाज मुकम्मल की। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हमारी नशा जारी है मीडियम वेव से 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DT फ्री डिश पर। मेरी पसंद ये प्रोग्राम लेकर आपका मेजबान नईम हाजिर खिदमत है। आप सभी को मेरा आदाब। प्रोग्राम का आगाज़ एक गज़ल के साथ, कलाम हसन कमाल का, मौसीकी रवि की और आवाज़ें हैं महेंद्र कपूर और आशा भोसले की। फिल्म दहलीज़।

इस गज़ल के साथ ही मेरी पसंद प्रोग्राम अब ख़त्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, अंदाज़े नज़र। इस प्रोग्राम के तहत एक मुबाहसा सुनिए, मौजू है फासलाती निज़ाम तालीम और उर्दू।

0: और उसके बाद जो है 1985 में जो है ना इग्नू कायम हुआ।
1: जी
0: तो अब सवाल ये है कि अभी जो हम जिस दौर से गुजर रहे हैं और हमारी जो नई तालीमी पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन
1: जी जी
0: पॉलिसी,
1: जी
0: उसमें जो है ख़ास तौर से जो है ना जो इलाकाई जबान है या उन पे ख़ास तवज्जो दी गई है जो है ना, और उसको लेकर के अगर हम देखेंगे तो उसमें सारे जो इलाकाई जबान है उसको उसमें ख़ास तवज्जो दी गई है। और जहाँ तक के जो है ना उर्दू का सवाल है, उर्दू के हवाले से अगर
1: उर्दू
0: हम
1: की बात हम
0: देखें।
1: ज़रूर आपसे करेंगे, अभी हम फाजलाती निज़ाम तालीम को समझ लें, हम फिर बाकायदा तौर पे उर्दू की बात करेंगे कि कैसे हमारे उर्दू के तालिबे फ़ायदा उठा सकते हैं। जी नदीम साहब, आप चूँकि एक रेगुलर सिस्टम से जुड़े हुए हैं और बात रिवायती और फाजलाती निज़ाम तालीम के बीच में मुआवजे की हो रही है, आप कैसे देखते हैं, क्या आपके यहाँ तालिबे इल्म आते हैं ऐसे फाजलाती निज़ाम तालीम से 10वीं 12वीं करके फिर आपके यहाँ बीए करने आते हैं?
2: जी हाँ, आजकल तो इस तरह के तलबा की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। वजह उसकी ये है कि NEP के थ्रू और ये जो हमारे यहाँ CUET वाला सिस्टम है, इसमें
1: जी
2: कोशिश ये की गई है
1: जी
2: हुकूमत हिंद की जानिब से कि वो तलबा भी अच्छे और बेहतरीन इंस्टीट्यूशंस के अंदर दाखिला ले सकें जो समाज की एक मुख्य धारा से नहीं जुड़े हुए थे, और दूर दराज इलाकों में रहने वाले, रूरल एरियाज़ में रहने वाले बच्चे जो कहीं ना कहीं उस तरह की सहूलियात को हासिल नहीं कर पा रहे थे जिसको शहर में रहने वाले बच्चे या प्राइवेट स्कूलिंग करने वाले बच्चे अच्छे तरीके से हासिल कर पा रहे थे। तो उन लोगों के बीच एक बड़ी खाई पैदा हो गई थी, उसी को दूर करने के लिए NEP में इस तरह की चीज़ों को पेश किया गया और उन ज़रूरतों को समझा गया, और उसी की बिना पर CUET जैसी एक एग्ज़ामिनेशन प्रणाली या सिस्टम को लाया गया है, और उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। और मेरे पास तो दोनों ही तरह के बच्चे आते हैं। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि मेरे यहाँ ना सिर्फ ये दोनों तरह के बच्चे आते हैं जो रिवायती तरीक़े तदरीस से कामयाब होने के बाद मेरे पास आते हैं या डिस्टेंस सिस्टम से आते हैं फासलाती निज़ाम तालीम को हासिल करने के, बल्कि मेरे यहाँ से पढ़ने के बाद भी जाते हैं इस तरह के कोर्सेज़ करने, प्रोफेशनल कोर्सेज़ करने के लिए, और वो मुझसे उस बारे में जानना भी चाहते हैं। और मेरा ताल्लुक़ दोनों ही तरह के सिस्टम से रहा है, मेरी PhD डिस्टेंस एजुकेशन में रही है और मैं उर्दू पढ़ाता
1: आपने
2: हूँ।
1: बहुत काम किया, हमें
2: जी
1: मालूम है, NIOS में, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी में ट्रांसलेशन का भी काम किया है, तो आपने ये फ़र्क देखा कि आपके यहाँ दोनों तरह के तालब इल्म आ रहे। जैसा मैंने काम किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग में, हम ये महसूस करते हैं कि हमारे मुल्क में ये बेहतरीन निज़ाम हमारी हुकूमत ने कायम किया और ये बहुत बड़ा हमारे लिए तोहफा है, एक तरीके से पूरी दुनिया में लार्जेस्ट
0: बिल्कुल
1: ओपन स्कूलिंग है जहाँ लाखों बच्चे तालीम हासिल करते हैं। दरअसल किसी भी तालिब इल्म की किसी नामुसाद हालात की बिना पे तालीम छूट गई और वो किसी काम में लग गया, किसी के घर में उसके वालिद का इंतकाल हो गया या किसी को अचानक नौकरी करनी पड़ी, या फिर ऐसे तालिब इल्म जो रेगुलर सिस्टम में नहीं जा सकते। रीज़न ये है कि रेगुलर सिस्टम में एक वक्त मुकर्रर पर दाखिला होता है और वक्त मुकर्रर पर ही इम्तहान होता है, और फाजलाती निज़ाम तालीम में एक अच्छी बात यह है कि आपका दाखिला जैसे 10वीं 12वीं में आप लें तो 5 साल के लिए हो जाता है, ऐसी तरीके से बीए में 8 साल के लिए हो जाता है, और आप साल में 2 बार इम्तिहान होता है, वो अपनी सहूलत के हिसाब से इम्तिहान दे सकते हैं। क्योंकि डॉक्टर लियाकत अली साहब, ये तमाम चीज़ें आप भी महसूस करते हैं कि जो फासिलाती निज़ाम तालीम के जो तालिब इल्म हैं वो इस वजह से आते हैं, या फिर एक ग्रुप ऐसा भी है जो ड्रॉप आउट है, जो हमारे रेगुलर सिस्टम में कामयाब नहीं हो पाता है और फिर उधर आता है, आप क्या महसूस करते हैं?
3: जाहिर सी बात है, ये एक खला पैदा हो जाती है वो तबका जो तालीम नहीं हासिल कर सकता। अब देखिए ना, इसमें आपने खुद ही जिक्र किया कि रवायती तालीम में क्या है कि एक एज ग्रुप है कि उस एज तक वो दाखिला ले सकता है, लेकिन फासलाती निज़ाम तालीम में क्या है कि इसमें किसी भी उम्र का कोई भी आदमी, कोई भी शख्स, कोई भी फ़र्द जो है इससे मुस्तफ़ीद हो सकता है, तालीम हासिल कर सकता है, और किसी भी इलाके से, किसी भी कोने से, मुल्क के किसी भी कोने से वो इससे इस्तेफादा कर सकता है। तो इसमें ये एज ग्रुप जो है ये बैरियर ख़त्म हो जाता है। अब इसमें थोड़ा सा कुछ चैलेंजेस हैं जो जिस पे हम आगे चल के जिक्र करेंगे, बात करेंगे उस पे भी किस तरह से तरसील का जो ज़रिया है। अब फासलाती निज़ाम तालीम के तरसील का जो एक ज़रिया है वो आप देख रहे हैं कि आज जिस माध्यम से या जिस प्लेटफॉर्म पे हम बैठ करके गुफ्तगू कर रहे हैं, और वो सबसे अहम रोल उसने अदा किया है रेडियो ने।
1: जी
3: रेडियो ही के ज़रिए आए
1: जी जी
3: फासलाती निज़ाम तालीम जो है वो कामयाब हुई है, और यानी कि लाजिम और मलजूम है ये एक दूसरे के साथ
1: जी जी
3: ना। अब रेडियो का सहारा लिए बिना तरसील जो है हम फासलाती निज़ाम की नहीं

0: कर सकते हैं। रेडियो का अहम किरदार इसमें रहा है। आप रेडियो का आप देखें कि रेडियो का जो मकासिद हैं, अब उसमें इतलात
1: जी
0: और तालीम और तरसील,
1: जी
0: देखिए कितना हसीन इम्तिजाज है
1: बहुत
0: इसमें,
1: बढ़िया जी
0: और इस तालीम को किस तरह से लोगों तक पहुंचाना। और रेडियो कोई अब आज के वक्त में, आज इस अहद में हम बात कर रहे हैं जिस
1: बिल्कुल
0: ज़माने में, ये एक डिजिटलाइज यानी कि हम जिसको आलमी गांव कह लें
1: बिल्कुल
0: या फिर इसको दूसरे अल्फाज में हम कह लें कि ये एक मीडिया कल्चर में हम जी रहे हैं। आप एआई का ज़माना है, सब चीज़ें हैं, लेकिन रेडियो इस बात के लिए मुबारकबाद का मुस्तहिक है कि 100 साल के आसपास जो आपने
1: बिल्कुल
0: एक सफ़र इसने तय किया है, और कोई भी ईजाद जो है वो आपने एक तशख्खुस इस तरह से बरकरार रखा उसने कि आज भी उसकी मानवीयत और उसकी अफादियत उसी तरह से है जिसके ज़रिए से हम फासलाती निज़ाम तालीम की तरसील कर सकते
1: और
0: हैं,
1: दिलचस्प
0: इसका
1: बात
0: सहारा ही
1: यह
0: लेते हैं। अभी
1: है
0: आपने जिक्र किया है कि बहुत
1: जी
0: सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनके अपने अपने चैनल हैं,
1: जी
0: उनके अपने अपने प्लेटफॉर्म हैं, जिससे आप ज्ञानवाणी का जिक्र आप कर रहे हैं, तो
1: कम्युनिटी
0: यूनिवर्सिटीज़
1: रेडियो बहुत चल रहे हैं हर यूनिवर्सिटी
0: बिल्कुल
1: के
0: हर
1: जी
0: यूनिवर्सिटी का जो स्टेट यूनिवर्सिटी है उसका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन
1: जी
0: है।
1: जी
0: इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का आप देखेंगे कि ज्ञानवाणी एक चैनल है
1: बहुत
0: जिस पे
1: जमाने से काम चल
0: 7 से 8 घंटे तक जो है
1: रहा
0: तालीम, जो हमारा सेल्फ लर्निंग
1: है
0: मटेरियल
1: जी
0: है,
1: जी
0: उसको आसान सहल जबान में, रवा जबान में तालब इल्म को मुखातिब करके वो एक लेक्चर हम उस पर प्ले करते हैं, टेलीकास्ट करते हैं, उससे बहुत सारे तलबा मुस्तफ़ीद होते
1: उसी
0: हैं।
1: तरीके से
0: जी
1: एनआईओएस में मुक्त विद्यावाणी रेडियो चैनल है
0: जी
1: जिससे लाखों की तादाद में बच्चे मुस्तफीद हो रहे हैं जी।
0: बिल्कुल
1: तो असगर अली साहब, आपने
0: जी
1: अभी एक पॉइंट की तरफ इशारा किया, चूंकि उसे मैं क्लियर करना चाहता हूँ, बहुत ज़रूरी है कि फासलाती निज़ाम तालीम की वो अहमियत नहीं है जो एक रेगुलर सिस्टम की, और ये हमने महसूस भी किया है, जहाँ भी जाते हैं तो लोग पूछते हैं कि क्या इस सर्टिफिकेट की वैल्यू है। मैं बताना चाहता हूँ अपने सामीन को, तालिब इल्मों को, ठीक उसी तरह जैसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन या दिल्ली यूनिवर्सिटी या जामिया मिल्लिया इस्लामिया के सर्टिफिकेट की वैल्यू, उसी तरह से एनआईयूएस की भी सर्टिफिकेट की वही वैल्यू है जो सीबीएसई की है, और इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की भी और मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी की भी वही वैल्यू है जो दूसरे यूनिवर्सिटीज़ और बोर्ड की वैल्यू है। इसमें किसी किस्म की कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं। उसके बावजूद भी अगर आपके साथ कोई ज्यादती कहीं करता है तो आप शिकायत कर सकते हैं, वहाँ ग्रीवेंसेस सेल बने हुए हैं, शिकायत के ऑफिस हैं,
0: बिल्कुल
1: हमारे यहाँ भी, इंदिरा गांधी में भी होंगे, हर जगह हैं, तो आप बात कर सकते हैं। देखिए, किसी इस बुनियाद पे कि हम आपको नहीं लेंगे, आप एनआईओ से आए हैं या इग्नू से आए हैं, तो ऐसा नहीं है। नदीम साहब, जो अभी लियाकत अली साहब ने कहा कि एक रेगुलर सिस्टम और फासलाती निज़ाम तालीम में जो मुख्तलिफ तरह के ड्रॉप आउट बच्चे जो अभी हैं, जो स्लो लर्नर होते हैं, इसमें भी फासलाती निज़ाम तालीम बहुत मदद करता है। तो जो ड्रॉप आउट हैं आपके यहाँ, आप महसूस करते हैं, जैसे आपने कहा हमारे यहाँ से भी, क्या ऐसे भी तालिब इल्म हैं जो उसमें बीच में छोड़ के ही चले जाते हैं?
2: देखिए, हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी आबादी वाला मुल्क है, बल्कि दुनिया की सबसे ज़्यादा बड़ी आबादी हमारे यहाँ है, और फासलाती निज़ाम तालीम का तो मकसद ही ये है कि किसी भी तरह या जिस भी तरह से तालीम दी जाए वो दे दी जाए और लोगों को मिल जाए। हम अगर माजी में जाते हैं हिंदुस्तान से इतर अलग, तो हम ये देखेंगे कि रशिया के अंदर लिटरेसी मिशन चला तो
1: जी
2: फासलाती निज़ाम तालीम के
1: जी
2: तहत ही
1: जी
2: चला, और ये रेडियो ने बहुत बड़ा किरदार उसके अंदर अदा किया है। हम क्यूबा की मिसाल ले सकते हैं,
1: जी
2: वहाँ पर सोशल एजुकेशन दी गई ख़ास तौर पर बालिग लोगों को, तो उसके लिए भी रेडियो का ही सहारा लिया गया। और ड्रॉप आउट की जहाँ तक बात है, तो हमारे पास आज़ादी का इतना लंबा वक्फ़ा गुजर जाने के बावजूद भी अभी भी मैं ऐसा मानता हूँ कि पूरी तरह से हम हर बच्चे को, सर्व शिक्षा अभियान हमने चलाया, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन भी चला दिया जो बालिग लोगों के लिए, एडल्ट लोगों के लिए चलाया, सोशल अवेयरनेस के लिए, और लोग कुछ पढ़ लिख लें, बावजूद उसके अभी भी हम उस तरह की तालीम हर किसी को नहीं दे सकते जिस तरह की तालीम दरकार है हिंदुस्तान के हर बच्चे को। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि वो फासलाती निज़ाम तालीम से जुड़े, और ये हमारी मोरल ड्यूटी है बीइंग ए टीचर कि हम लोग अगर किसी मजबूरी के तहत बच्चा हमारे पास नहीं पढ़ पा रहा है जुड़कर हमसे, यानी वो अपनी तालीम को मुकम्मल नहीं कर पा रहा है, घर की परेशानी है, उसकी दीगर परेशानियाँ हैं, ख़ास तौर पर लड़कियों के साथ प्रॉब्लम है, और वो देही इलाकों की लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा परेशानियाँ रहती है, तो हम कहीं ना कहीं उनको मोटिवेट करें, तरगीब दें कि वो फासलाती निज़ाम तालीम की जानिब आएँ। और ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और इससे हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, लिखा सकते हैं, और ड्रॉप आउट बच्चों के लिए तो ये एक, मैं बोलूँ अगर हिंदी में, तो वरदान है,
1: नेमत है, ये
2: नेमत है, एक
1: नेमत
2: बड़ी नेमत
1: बिल्कुल।
2: है।
1: डॉक्टर असगर अली
0: बिल्कुल
1: साहब,

0: आप तो ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ पे दोनों तरह के सिस्टम हैं, मसलाती निज़ाम तालीम आप देख रहे हैं और रेगुलर सिस्टम, तो आप क्या इसमें महसूस करते हैं? इधर से उधर, उधर से इधर लोग आते हैं, या आप किसी को मशवरा देते हैं कि आप वहाँ चले जाइए, वहाँ से आ
1: इस
0: जाइए?
1: तरह का निज़ाम है मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी में कि अगर कुछ बच्चे अच्छा कर रहे हैं और उनकी ख्वाहिश है कि जो है ना हम रेगुलर सिस्टम से जुड़ें तो इस तरह का प्रावधान जो है ना इस तरह का निज़ाम है। रहा सवाल कि और ये पहले से भी होता रहा और अभी भी जो है ना ये फर्स्ट ईयर में जो है ना बच्चे जो है ना स्विच ओवर कर सकते हैं अगर जगह खाली है तो। दिल्ली यूनिवर्सिटी और जो दीगर जो फासिलाती निज़ाम तालीम का जो इदारा है उसमें एक फ़र्क आप ये महसूस करेंगे जैसे एज के हवाले से अगर आप देखेंगे
0: जी
1: तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर जो है ना सब फ्रेशर हैं, यंग बच्चे मिलेंगे
0: अच्छा
1: आपको अक्रॉस द कोर्स। मोस्ट ऑफ द बच्चे वो हैं जो जिनको क्या कहते हैं कि रेगुलर में एडमिशन नहीं मिला वो बच्चे जो है ना इसमें आ
0: सीधे
1: जाते
0: ट्वेल्थ
1: हैं।
0: करके आपके यहाँ फ्रेशर तालिब इल्म आ जाते
1: जी
0: हैं, बीए
1: रहा
0: में?
1: सवाल, एक सवाल
0: जी
1: आपने किया था कि ये जो नोशन है कि अभी भी जो है ना ये फासिलाती निज़ाम तालीम को हकीर समझा जाता है
0: जी जी
1: तो ये नोशन था या है भी कुछ हद तक
0: अब
1: जो है
0: आहिस्ता
1: ना,
0: आहिस्ता खत्म हो रहा है।
1: लेकिन सोशल मीडिया के ज़रिए जो है ना वो बहुत सारी चीज़ें जो है ना दूर हो गई हैं जो क्या कहते हैं कि फासिलाती निज़ाम तालीम के बच्चों को एक मतलब महदूद कर देता था वो जो है ना बिल्कुल उस बैरियर को तोड़ दिया है, वो बैरियर ख़त्म हो गया है,
0: जी
1: वो बिल्कुल डॉक्टर साहब ने कहा ना कि बिल्कुल एक आज़ाद माहौल में अपनी तबीयत के हिसाब से अपने चॉइस के हिसाब से
0: बिल्कुल
1: सेलेक्ट अपना सब्जेक्ट भी सेलेक्ट करना है और अपना गोल भी सेट करना है। तो ये चीज़ें हैं और ये जो ये नोशन भी ख़त्म हो रहा है। तीसरी चीज़ कि पहले कोर्सेज वगैरह भी जो है ना जैसे मैं अपने ख़ास तौर से डीयू के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ कुछ महदूद कोर्सेज थे, ट्रेडिशनल कोर्सेज थे, रवायती कोर्सेज थे, बीए प्रोग्राम, बीकॉम प्रोग्राम, एमकॉम, एमए, मैनेजमेंट नहीं था, बीलिब नहीं था, क्या कहते हैं कि और भी दीगर जो है ना इस तरह के कोर्सेज नहीं थे। वो सारे कोर्सेज जो है ना अब मतलब कि शुरू हो रहे हैं, शुरू हुए हैं, अच्छे खासे कोर्सेज शुरू हुए हैं और उसमें एक बड़ी तादाद है बच्चों की और कहीं कहीं तो अब ऐसा लगता है कि जो रेगुलर के जो बच्चे हैं उन बच्चों से जो है ना आगे हैं जो है ना ये फासलाते निज़ामे तालीम के बच्चे।
0: क्या बात है नदीम साहब, आप कुछ कहना चाहते थे?
2: देखिए सबसे पहले तो जो तलबा हैं हमारे यामोजगार हैं फासलाती निज़ाम से जुड़े हुए, मैं उन्हें इस बात के लिए भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि आपकी तालीम किसी भी तरह से रिवायती तालीम के मेयार के हिसाब से कम नहीं है। अपने अंदर खुद एतमादी लेकर आएँ। और जहाँ तक अभी बात हो रही है, हमारे दोनों ही मेहमानों ने बताया, साथियों ने मेरे, कि उम्र वाला एक मामला है, तो वो मामला अभी मेरे सामने ही आया है क्योंकि उम्र की एक हद है डायरेक्टरेट ऑफ दिल्ली एजुकेशन की तरफ से। तो ये जो बाउंडेशंस हैं ये कहीं ना कहीं मैं ऐसा मानता हूँ और ये ज़रूरत भी है कि उसे कुछ हद तक कम करना चाहिए, ख़ासतौर पर डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन या जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्हें भी,
0: मैं
2: किसी
0: थोड़ा
2: भी
0: सा
2: उम्र का
0: बताना चाहता
2: बच्चा आ
0: हूँ
2: सकता
0: क्योंकि मैं
2: है।
0: उधर ही आता हूँ।
2: जी
0: पहले मैं बुनियादी तौर पर बता दूँ कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जो नेशनल ओपन स्कूल के नाम से जाना जाता है, यहाँ बुनियादी तालीम भी है। इसमें सिस्टम यह है 3, 5, 8, जिसे ABC लेवल कहते हैं। इसके अलावा 10, 12 है। 10, 12 जो है नेशनल लेवल पे इंग्लिश, हिंदी, उर्दू मीडियम में है। इसके अलावा रीजनल लैंग्वेजेस में भी वहाँ पर है सारी सारा कोर्स। जैसे हम उर्दू पे ही अब आ जाते हैं एकदम, अगर कोई तालिब इल्म हमारा 10वीं उर्दू मीडियम में करना चाहता है तो सारे जबानों की, सारे सब्जेक्ट की किताबें जो हैं, सॉरी जबान नहीं, सारे मजामीन की किताबें जो हैं वो उर्दू में मौजूद हैं। उर्दू में एडमिशन हो जाएगा, उर्दू में ही एक इम्तिहान होता है। उसी तरीके से अच्छा, यहाँ उम्र की कोई कैद नहीं है, मतलब 14 साल से आपकी 100 साल की
2: ये
0: उम्र हो
2: सबसे अच्छी
0: सकती है,
2: बात है,
0: बिल्कुल ये
2: ये
0: रेगुलर
2: सबसे
0: सिस्टम की
2: सबसे
0: तरह नहीं है।
2: अच्छी
0: दूसरे,
2: बात कही जा
0: आपका
2: सकती है।
0: दाखिला 5 साल के लिए हो गया, आप 1 साल में करिए, 2 में करिए, 5 में करिए, और पास किए हुए मजामीन जमा होते रहते हैं। फ़ौरन अगर आप 5 साल में भी नहीं कर पाए तो रीएडमिशन मिल जाता है। ये तो हमारे यहाँ 10वीं 12वीं ओपन स्कूल में है, और दूसरे बोर्ड में भी जो तालिब इल्म अगर किसी वजह से फेल हो जाते हैं तो उनके पास किए हुए 2 मजामीन NIOS में ट्रांसफ़र करा के और 3 फ़ौरन ऑन डिमांड एग्जामिनेशन होता है, उससे देके भी सर्टिफिकेट हासिल किया
2: ट्रांसफर
0: जा सकता
2: सिस्टम
0: है। ये तो स्कूलिंग की बात हुई। डॉक्टर लियाकत साहब, अब आते हैं हम आपकी तरफ, चूँकि आपके यहाँ ग्रेजुएशन होता है, आपके
1: जी,
0: यहाँ क्या तरीका है कार,
1: देखिए इसमें सबसे
0: और उर्दू के ताल्लुक से भी बात
1: उर्दू
0: करिए।
1: के ताल्लुक से ही हम बात करेंगे। इसमें देखिए NIOS जो है ये एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट जो है हमारे लिए पैदा करता है,
0: जी
1: क्योंकि हमारे यहाँ तो हायर एजुकेशन है

0: ट्वेल्थ करने के बाद ही बच्चा दाखिला ले सकता है,
1: जी
0: और ट्वेल्थ जो है NIS करवा के हमारे पास स्टूडेंट्स को भेज देता है। जो बच्चे ट्वेल्थ नहीं कर सकते हैं वो एज बैरियर की वजह से, जो अभी नदीम साहब ने जिसका जिक्र किया है, तो ये एक हमारे लिए खुशाइंद बात है। दूसरी बात, एक वजाहत मैं ये करना चाहूँगा कि अभी आपने जो जिसका जिक्र किया था कि ये बहुत सारे ऐसे शक व शुबहात हैं या बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं कि क्या ये हमारे डिस्टेंस या ओपन लर्निंग की जो डिग्री है वो वैलिड होती है कि नहीं होती है, तो इसके लिए हमें बिल्कुल जो है मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये वैलिड है। और इसमें आप देखिए अभी जो ट्रेंड चला है, आप बड़ी दिलचस्प बात है
1: जी
0: डॉक्टर साहब, देखिए कि अभी इस वक्त में जितने भी तलबा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो अपना वक्त रवायती तालीम में ज़ाया नहीं कर रहे हैं, वो साथ साथ में अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और डिस्टेंस से वो अपनी तालीम जो है उसको भी, हायर
1: ये
0: एजुकेशन
1: बहुत
0: जो
1: अहम
0: है,
1: बात बताई, मैंने भी देखा है काफी
0: बिल्कुल
1: लोगों
0: उससे
1: करते हुए।
0: आप देख रहे हैं कि 1-2 साल से जो इनरोलमेंट का जो एक
1: जी
0: दायरा
1: जी
0: कितना बढ़ गया है
1: बढ़ गया
0: हमारा
1: है।
0: डिस्टेंस एजुकेशन
1: जी जी
0: में, बहुत सारे तलबा इसमें हमारे तरफ आ रहे हैं। अब उर्दू की बात करते हैं हम, अब देखिए कितनी बड़ी खुशखबरी की बात है कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने स्वयं पे, आप देखिए कि कम से कम 7 या 8 कोर्सेज हमारे उर्दू के चल रहे हैं।
1: जी
0: और मैं आपको ये भी जिक्र करना चाहूँगा कि देखिए कि हमारे यहाँ UG लेवल की कम से कम 4 या 5 डिग्रियाँ हैं उर्दू की, BA
1: जी
0: ऑनर्स है, BA
1: जी
0: अप्लाइड। ये
1: जी
0: देखिए कि
1: जी
0: हमारे यहाँ सबसे पहली फासलाती निज़ाम तालीम के तहत जो है किसी भी रवायती तालीम के जरिए आपको उर्दू में BA अप्लाइड नहीं मिलेगा,
1: जी
0: ठीक है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने ये पहल की है कि उसने BA अप्लाइड उर्दू एक प्रोग्राम लॉन्च किया और अच्छी खासी इनरोलमेंट में हमारी उसमें हो रही है। वो क्या है कि उसमें स्किल बेस्ड ओरिएंटेड कोर्सेज हैं जो तलबा को जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं, उनका फ्यूचर, उनका
1: जी
0: मुस्तकबिल जो है वो बना सकते हैं,
1: रोशन कर सकते।
0: रोशन कर सकते हैं। तो उसमें हमने क्या किया है कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट जो काउंसिल है उससे हमने कुछ MOU किया है, उनसे हमने कुछ कोर्सेज लिए हैं, उसमें हम उर्दू के तलबा को इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप भी देते हैं, बच्चे उसे इंटर्नशिप भी कर सकते हैं।
1: NIS में उर्दू में कोर्सेज बहुत सारे हैं जो उर्दू मीडियम में हैं, वोकेशनल कोर्सेज। आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी में उर्दू की क्या सूरत हाल है,
2: मेरे यहाँ जो है कि
1: फासलाती निज़ाम तालीम के ताल्लुक
2: जी
1: से?
2: जी वो BA प्रोग्राम है
1: जी
2: और ऑनर्स वगैरह नहीं है। कुछ कोर्सेज हम लोग प्लान कर रहे हैं। अभी मुझे बहुत खुशी हुई कि जो है ना अप्लाइड उर्दू जो बता रहे थे कि एक न्यू ने लॉन्च किया है, तो उस तरह से कोशिश की जाएगी कि जो है ना कुछ इस तरह के कोर्सेज जो है ना शुरू किए जाएं। लेकिन अभी अभी जो मामला है हमारे यहाँ रवायती कोर्सेज हैं। दूसरी चीज़ मैं अभी एक बात कहना चाह रहा था कि जैसे उर्दू की बात आती है ना तो आम तौर पे बच्चे जो है ना ज़बान समझ लेते हैं और थोड़ा जो है ना उसको एक कह लीजिए कि टेकन फॉर ग्रांटेड कि अच्छा हमारी मादरी ज़बान है हमसे कर लेंगे। लेकिन जहाँ ऑनर्स और ग्रेजुएशन और इसकी बात आती है तो फिर मामला बिल्कुल बरक्स हो जाता
1: जी
2: है। वहाँ
1: जी
2: पे शायरी पढ़नी है, वहाँ पे सारे जो भी अदब का जो मतलब नॉवेल पढ़ने हैं, मुख्तसर अफसाने पढ़ने
1: बिल्कुल
2: हैं,
1: बिल्कुल
2: कसीदे पढ़ने हैं, तो ज़बान से बिल्कुल इसका मामला जो है ना अलग हो जाता है। और दूसरी चीज़ जो मैंने एक चीज़ और महसूस किया है कि जो हमारे स्कूल्स हैं जैसे NIOS हैं या और भी जो रेगुलर स्कूल्स हैं वहाँ वहाँ पे भी थोड़ा सा जो है ना हमें उनसे कनेक्ट करके थोड़ा सा जो है ना उससे इंटरेक्ट करके उनसे जो है ना कि थोड़ा सा जो है ना कुछ कुछ चीज़ों पे तवज्जो दी जाए कि बच्चों के अंदर कम से कम जो है ना वो लिखने वाली जो वो तहरीरी सलाहियत हो वो पैदा हो जो है ना,
1: बहुत इम्पोर्टेंट बात
2: उसकी उसकी बड़ी कमी महसूस करते हैं। डॉक्टर साहब आमतौर पे जो है ना आपने इवेल्युएशन किया होगा जो है ना आंसर शीट वगैरह जो है ना, तो उसमें बहुत ही ख़राब सूरत हाल
0: सही
2: रहती है।
0: बात
1: तो
0: है। अजहर अली साहब
2: एक
1: जो
2: चीज़
1: आप
2: और मैं ऐड
1: बात
2: करना चाह
1: जी
2: रहा हूँ सर कि अब जैसे रहा सवाल जैसे बुक के हिसाब से देख किताब के हवाले से उर्दू एज ए मीडियम और उर्दू एज ए डिसिप्लिन, तो उर्दू एज ए डिसिप्लिन में तो क्या कहते हैं अगर एज ए डिसिप्लिन हम अगर उसको अडॉप्ट करते हैं अख्तियार करते हैं तो वहाँ पे तो कमोबेश मटेरियल जो जो मवाद है स्टडी मटेरियल वगैरह है वो सब काफ़ी है और उसमें भी कमी है। लेकिन जहाँ बात आती है उर्दू एज ए मीडियम दूसरे सब्जेक्ट में पढ़ना जैसे पॉलिटिकल साइंस
1: जी
2: हो
1: जी
2: हिस्ट्री
1: जी
2: हो या और दीगर जो सब्जेक्ट्स हैं वहाँ पे कमी महसूस होती है। हमारे बच्चों को उतनी आसानी नहीं होती है, सोशल मीडिया से भी उतना हेल्प नहीं मिल पाता है जितने और दीगर सब्जेक्ट में बच्चे करते हैं मतलब हेल्प ले लेते हैं सोशल मीडिया से या और दीगर इदारे से या वेबसाइट से या, तो वहाँ पे भी थोड़ा सा जो है ना तवज्जो देने की ज़रूरत है।
1: नहीं, मैं इसी बात का
2: एक
1: आपको जवाब
2: एक
1: देता
2: चीज़
1: हूँ।
2: और ऐड करना चाहूँगा मैं कि जो फासिलाती निज़ाम तालीम है उसमें जो टीचर की ट्रेनिंग है जो

0: फासलाती निज़ाम तालीम से जुड़े हुए हैं, उनकी जो ट्रेनिंग है एक स्पेशलाइज्ड नहीं पे होनी चाहिए।
1: ये अच्छा पॉइंट है,
0: वहाँ वहाँ
1: अच्छा पॉइंट है।
0: पे जो है ना उर्दू में उस तरह से जो है ना एक बेहतर निज़ाम नहीं है। आपने जिक्र किया है कि मौलाना आज़ाद इस पे अच्छा खासा काम कर रहा
1: नहीं,
0: है,
1: वहाँ पर
0: बिल्कुल
1: उर्दू मीडियम में काम हो रहा है। मैं
0: जी
1: एक
0: बिल्कुल
1: चीज़
0: बिल्कुल सही
1: देखिए,
0: कह रहे
1: वक्त
0: हैं
1: हमारा जो है बहुत करीब आ गया प्रोग्राम ख़त्म करने का। एक
0: जी।
1: बात कहकर हम प्रोग्राम को यहाँ पे ख़त्म करेंगे कि एक तो
0: जी
1: ये है कि
0: जी
1: जो उसका निसाब है फासला निज़ाम तालीम का, चाहे NIOS का हो या इंदिरा गांधी का हो या मानू का हो, इनका खुद सेल्फ लर्निंग मटेरियल है। तालिब इल्म को टीचर की यहाँ ज़रूरत ही नहीं है, बहुत आसानी से न सिर्फ ज़बान की पढ़ सकते हैं बल्कि जो दूसरे मजामीन जिनकी मीडियम की तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो भी बेहतरीन है। फिर भी इसके अलावा पर्सनल कांटेक्ट प्रोग्राम यानी ज़ाती राबता प्रोग्राम छुट्टी के दिनों में तालिब इल्मों के लिए होते हैं, जैसा अभी हमने जिक्र किया, रेडियो के ज़रिए होते हैं, टेलीविज़न के ज़रिए होते हैं ज़ाती राबता प्रोग्राम, और उनके स्टडी सेंटर पर भी होते हैं। खैर, आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए, डॉक्टर लियाकत अली साहब, डॉक्टर असगर अली साहब, डॉक्टर नदीम अहमद, और मैं आपका यहाँ पे ऑल इंडिया रेडियो की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत अच्छे मौजू पे हमने गुफ्तगू की, यकीनन हमारे सामीन को इससे बहुत मुस्तफ़ीद होंगे और इससे फ़ायदा उठाएंगे। आज का ये प्रोग्राम अब हम यहीं ख़त्म करते हैं। इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।
2: अंदाज़े न

भारत एक महान देश हमारा, हम अपने भारत से बहुत प्यार करते हैं। इस प्यार में मिट्टी से तिलक लगाते हैं, अपने बदन पर तिरंगा ओढ़ने की चाह रखते हैं। इस तिरंगे को मान सम्मान मिले वो इरादा रखते हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति जी श्री रामनाथ कोविंद जी ने एक बार कहा था कि भारत में हर एक जीव, मनुष्य हो पशु पक्षी हो, वो भारत की तरक्की के लिए योगदान दे रहा है। और आज संदेश टू सोल्जर्स में हम एक ऐसे फोर्स की बात करेंगे जिसने भारत के लिए योगदान से भी ज्यादा अपना समर्पण दिया है। आज हम सशस्त्र सीमा बल, जो भारत की एक प्रमुख केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, उसके बारे में बात करेंगे। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सशस्त्र सीमा बल के सेकंड इन कमांड ललित शाह, प्रेसिडेंट मेडल से नवाजे गए, पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री, उनको यह सम्मान दिया गया।

0: आंतरिक सुरक्षा पदक से सम्मानित ललित शाह जी आते हैं पहाड़ों की उन वादियों से, जहां बचपन में ही उनका एक जज्बा उनको भारत की सेना में, भारत के सशस्त्र बल में कहीं ना कहीं किसी रूप में योगदान देने के लिए प्रेरित कर गया। आज हम उनके साथ साथ सशस्त्र सीमा बल से जुड़ी तमाम बातों की यहां चर्चा करेंगे। एसएसबी, जिसकी स्थापना 1963 में हुई थी विशेष सेवा ब्यूरो के रूप में, और वर्तमान में भारत नेपाल सीमा जो लगभग 1751 किलोमीटर की, और भारत भूटान सीमा जो लगभग 700 किलोमीटर की है, उस सेना, उस कार्यरत जवानों की, अफसरों की जहां बाज योगदान, उस कंट्रीब्यूशन की बात हम यहां करेंगे संदेश टू सोल्जर्स में। आइए पूरे भारत के साथ स्वागत करते हैं सेकंड इन कमांड ललित शाह जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद, नमस्कार।
0: मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि आप स्टूडियो में मेरे साथ बैठे हैं यहाँ पर, और एक प्यारी सी उस यूनिफॉर्म का, उस फोर्स का हिस्सा हैं। आपको देखकर बहुत प्रेरणा मिलती है, जज्बा आता है, जोश आता है। एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल, बहुत खास फोर्स है हिंदुस्तान की।
1: जी बिल्कुल। हमारी जो फोर्स है ये भारत नेपाल और भारत भूटान की सीमाओं की रक्षा करती है। सारी ही फोर्सेस का बॉर्डर जो है वो अपने आप में विशेष होता है, परंतु हमारी फोर्स का जो बॉर्डर है उसकी अपनी विशेषता है। ये एक पोरस बॉर्डर है, और सीमा के पार जो लोग हैं उनसे हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। इस बॉर्डर को मैन करना, इस बॉर्डर की रक्षा करना अपने आप में एक चैलेंज है, और उस चैलेंज को एसएसबी के सारे जवान, सारे अधीनस्थ अधिकारी और अधिकारी अपने पूरे ईमान से, पूरी मेहनत से 24/7 365 डेज बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, और ये फोर्स भारत की सेवा में हमेशा तत्पर है। जैसा कि हमारा ध्येय वाक्य है, सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व, हम उस पर कार्य करते हैं, और लगातार जो है हमारा पूरा फोर्स इस ध्येय वाक्य को साधने पे लगा हुआ है।
0: तो शाह साहब, आपने बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो असाइनमेंट्स हैं उनमें आपने हिस्सा लिया। आपने की अपॉइंटमेंट्स में से मैं कहूँगा कि फिलहाल आप एसएसबी एकेडमी में, जो श्रीनगर है उत्तराखंड, वहाँ पर आप ट्रेनिंग का जो भार है वो संभाल रहे हैं। 9 बटालियन के साथ आप थे बिहार में, सीतामणि में, बलरामपुर में, और ढेर सारे इंसिडेंट्स आपके साथ हुए होंगे, लेकिन इस फोर्स में आना आपके लिए कब तय हुआ? कब आपने ये डिसाइड किया कि ये फोर्स कुछ खास है और मुझे इसके साथ जुड़ना है?
1: ये स्कूल के दिनों की बात है। मैंने अपनी स्कूलिंग पिथौरागढ़ से की है, और पिथौरागढ़ में भी जो मेरा स्कूल रहा है, केंद्रीय विद्यालय, वो छावनी क्षेत्र में रहा है। मेरे क्लासमेट्स भी अधिकतर फौजी बैकग्राउंड से, CAPF बैकग्राउंड से ही रहे हैं।
0: जी जी।
1: जब भी हम स्कूल जाते थे तो हमेशा ही फौज की वर्दी, फौज का डिसिप्लिन, फौज के कार्यकलाप हमेशा बचपन से ही देखते आए हैं। तो एक छोटे बालक से जब हम बड़े होते गए तो फौज को देखते देखते ये फोर्स यूनिफॉर्म पहनने का जज्बा तो तभी आ गया था। उसके बाद जब मौका मिला तो हमने फोर्स में ज्वाइन कर लिया।
0: तो मैं बात कर रहा हूँ कि 1970 का जो दशक था, 80 का दशक था, तब सशस्त्र सीमा बल के बारे में बहुत लोग शायद नहीं भी जानते होंगे हमारे देश में, लेकिन उस समय आप पिथौरागढ़ से आ रहे हैं, पहाड़ी इलाका है। अगर मैं कहूँ कि उस 80 के दशक में भी बहुत सारी डेवलपमेंट शायद नहीं हुई होगी पिथौरागढ़ में, तो क्या सिचुएशन वहाँ थी आपके गाँव की, और फौज में आना कितना प्रेरणादायक था, और किसने आपको प्रेरित किया?
1: उस समय पे पहले सशस्त्र सीमा बल का जो नाम था वो स्पेशल सर्विस ब्यूरो होता था।
0: जी, जी।
1: तो कैपसेक के अंडर आती थी, तो एक कोवर्ट फोर्स की तरह से ही काम करती थी। बॉर्डर गार्डिंग में सशस्त्र सीमा बल सन 2001 से आई है। 2001 में पहली बार भारत नेपाल की सीमा

0: कि रखवाली के लिए सशस्त्र सीमा बल को कार्य सौंपा गया 2004 में भारत भूटान सीमा के लिए। अगर मैं अपने समय की बात करता हूँ तो तब हम सशस्त्र सीमा बल को इस तरीके से नहीं जानते थे, तब ये फोर्स का उद्भव इस तरीके से नहीं हुआ था। तब हम आईटीबीपी को देखते थे, हमें सीआरपीएफ की जानकारी थी, बीएसएफ की जानकारी थी, आर्मी के बारे में हम जानते थे। पर कालांतर में जैसे ही फोर्स के बारे में फिर पता चलने लगा तो फिर हमें भी पता चला कि इस तरीके से एक फोर्स है जो भारत नेपाल और भारत भूटान की रक्षा करती है, तो उस पे आने का रुझान बन गया।
1: पहले बॉर्डर की बात कर लेते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि दो देश ऐसे हैं जिनके साथ हमारे संबंध बड़े अच्छे हैं भारत के, लेकिन आपके लिए भी कुछ चैलेंजिंग सिचुएशंस होती होंगी उस बॉर्डर पे। आपने कहा पोरस बॉर्डर है, किस तरह के चैलेंजेस आप देखते हैं?
0: अगर आप बॉर्डर को देखेंगे तो दोनों तरफ एक से ही लोग रहते हैं। खास तौर पे भारत नेपाल की अगर हम बात करते हैं तो दोनों ही तरफ एक ही हाइट के, एक ही कॉम्प्लेक्शन के, एक से ही लोग दोनों तरफ रहते हैं और आवाजाही दोनों तरफ से आना जाना फ्री है, आप मूवमेंट को नहीं रोक सकते। परंतु सारे ही अच्छे लोग नहीं होते हैं, कुछ लोग जो है अलग अलग गतिविधियों में भी लगे होते हैं, तस्करी है, मानव तस्करी है, बहुत सारे चीज़ें ऐसी हैं जिसको रोकने के लिए हमें मैंडेट मिला है। तो उस मैंडेट को पूरा करना एक चैलेंजिंग टास्क है, और उसी टास्क को जो हम हैं ह्यूमन इंट कहिए या दूसरी तरीके से इंट हासिल करके, उसके अलावा लगातार नाका पेट्रोलिंग गश्त कर रहे हैं, 24 घंटे उस बॉर्डर को मैन कर रहे हैं, और ये एक चैलेंजिंग टास्क है और इसको हम बखूबी निभा रहे हैं बॉर्डर पे।
1: और आपकी जो फोर्स है वो फेस है भारत का
0: जी
1: इन कंट्रीज के, तो यानी अगर कोई इंटेलिजेंस की भी फीडबैक आएगी वो सबसे पहले आपके पास आएगी,
0: बिल्कुल
1: या कोई आप अगर कोई गतिविधि देखते हैं तो आर्म्ड फोर्सेस को या आर्मी को या जो हमारी जो तीनों सेनाएं हैं आपकी एक रिपोर्ट उन तक पहुंचती होगी।
0: बिल्कुल
1: बट जैसा आपने कहा कि ठीक है दोनों देश अच्छे हैं, लेकिन कुछ लोग भेस बदल के भी उसका फायदा उठाना चाहते हैं, हो सकते हैं इन देश के ना हो किसी और देश के हों, तो आपके लिए वो चैलेंजिंग कितना होता है कि ये पहचानना कि ये लग तो रहे हैं नेपाल के या भूटान के लेकिन शायद किसी और देश के हो सकते हैं?
0: ये हमने अपने एक्सपीरियंस से। दूसरा, अब जो तकनीकी गैजेट्स आ रहे हैं, जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उसमें हम सीसीटीवीज को यूज़ कर रहे हैं, हम कैमराज जो है अच्छी क्वालिटी के, हमने बहुत जगह ऑटोमेटिक नंबर प्लेट सिस्टम लगाया है, हम फेस रिकॉग्निशन सिस्टम की तरफ भी जा रहे हैं, उसके अलावा जो हमारा जवान वहाँ पे खड़ा है वो उस चीज़ में पारंगत हो चुका है, वो देख रहा है लोगों को आते जाते हुए, उनसे वो पहचान रहा है, वो लगातार नोटिस कर रहा है। उसके अलावा हमारे अपने मैकेनिज्म रहते हैं जिससे हम लोग पता करते हैं, क्योंकि हम परसेप्शन मैनेजमेंट भी करते हैं, तो उससे भी हमें पता चलता है इस तरह की गतिविधियों के बारे में।
1: राइट देन, तो आप अभी सीटीसी में हैं श्रीनगर। श्रीनगर का नाम सुनते ही लोग सोचते हैं शायद कश्मीर की वादियों की हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन वादी तो है लेकिन कश्मीर की नहीं है, उत्तराखंड की वादी है श्रीनगर, और वहाँ पे आपका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है।
0: बिल्कुल,
1: और किस तरह की ट्रेनिंग आप लोगों को दे
0: बेसिकली
1: रहे हैं?
0: जो हमारा सीटीसी है वो सेंट्रलाइज्ड ट्रेनिंग सेंटर है,
1: जी
0: और यहाँ पे हम जो है हमारे जो डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर्स आते हैं उनकी बेसिक ट्रेनिंग हम वहाँ पे कराते हैं।
1: ओके
0: उसके अलावा जितने भी सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं उनका प्रमोशनल कोर्सेज हम वहाँ पे कराते हैं।
1: ओके
0: उसके अलावा भी कुछ एलाइड कोर्सेज हैं हम वहाँ पे कराते हैं, राफ्टिंग का कोर्स कराते हैं, और भी बहुत गतिविधियों को हम वहाँ पे करते हैं।
1: जी, या जो सारी डिटेल आप नहीं देना चाहेंगे मैं समझ सकता हूँ, बट क्योंकि पहाड़ी इलाका है और नेपाल और भूटान भी एक हाई ऑल्टीट्यूड एरिया है, शायद ये वजह है कि आप लोग उत्तराखंड में आपका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है।
0: बिल्कुल ये सही बात है कि एक्चुअली जब ये फोर्स का जब जन्म हुआ है तो ये बेसिकली जो इसके शुरुआती रोल रहे हैं वो उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के राज्यों में ही इसकी डिप्लॉयमेंट रही है, क्योंकि जब वो स्पेशल सर्विस ब्यूरो होता था तो वहाँ पे ही डिप्लॉयमेंट रही है। तो ट्रेनिंग सेंटर भी उसी हिसाब से जगह को छाट के बनाए गए हैं ताकि वहाँ पे जो है वहाँ के लोगों को ट्रेन किया जा सके और बॉर्डर पॉपुलेशन तक आसानी से पहुँचा जा सके, इसलिए उत्तराखंड का चुनाव
1: और
0: किया।
1: आप ये जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में हैं आप सीटीसी में, ये कितने समय से हैं?
0: मेरे को अभी 1 साल हुआ है लगभग।
1: और उससे पहले आपने ढेर सारे ऑपरेशंस किए हैं जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स, और एक खास मेहमान हमारे साथ बैठे हैं यहाँ, अ वेरी

0: smart looking young officer. He's second in command, Lalit Shah of the Sashastra Seema Bal, जिसे हम कहते हैं SSB. यहाँ पे एक क्योंकि प्रथा है हमारे यहाँ और प्रोग्राम का एक फॉर्मेट भी है कि हम यहाँ आपके पसंद के गीत चलाते हैं, तो कौन सा गीत आप पेश करना चाहेंगे हमारे लिसनर्स के लिए?
1: ऐ मेरे वतन के लोगो.
0: ओके, ये आपको बहुत प्रिय है?
1: बहुत प्रिय है.
0: और कोई खास वजह?
1: पहले से सुनते आ रहे हैं, जब भी स्कूल में 15 अगस्त 26 जनवरी होता था तो ये गाना इनवेरिएबली रहता ही था.
0: जी जी,
1: तो दिल को छूता है ये.
0: एंड इट्स संग बाय वन ऑफ द ग्रेट सिंगर्स, जिसको हम कहते हैं द नाइटिंगेल एज फार एज द प्लेबैक सिंगिंग इज कंसर्न्ड, द लेट द लेजेंडरी लता मंगेशकर.

0: संदेश टू सोल्जर्स में आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, सशस्त्र सीमा बल के सेकंड इन कमांड ललित शाह। और आज हम इस भारत की खास फोर्स के बारे में उनकी जुबानी सुन रहे हैं। इंडो नेपाल इंडो भूटान बॉर्डर को ये एक मैत्रीपूर्ण भाव के साथ देखते हैं, वहाँ तैनात रहते हैं और इसके अलावा भी बहुत योगदान देते हैं भारत की तरक्की में। लेकिन यहाँ सेकंड इन कमांड ललित शाह जी, आपसे जानना चाहूँगा, जब आपकी पहली पोस्टिंग हुई तब आपको कैसा लगा और वो एक्सपीरियंस कैसा था, कहाँ पोस्टिंग हुई?
1: मेरी अपनी बेसिक ट्रेनिंग हम लोगों ने हमारी अकादमी में जब पूरी की, उसके बाद मेरी पहली पोस्टिंग 9th बटालियन में हुई, बिहार में सीतामढ़ी एक जगह है, वहाँ पे मेरी पहली पोस्टिंग हुई। और उसके बाद मुझे जो है बॉर्डर पोस्ट के लिए भेजा गया बटालियन से, तो वहाँ पे मैंने अपनी तैनाती के दौरान सबसे पहले तो जब मैं वहाँ जवानों से मिला तो एक कंपनी है तो उसमें जो जवान है वो एक कुटुंब हो जाता है। फिर मैंने वहाँ अपनी ड्यूटीज़ को समझा
0: जी,
1: हमको दिए गए दायित्वों के बारे में जाना, हमारे जवान किस प्रकार से वहाँ पे ड्यूटी करते हैं वो जाना
0: जी,
1: और मैंने जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको जाना। और उसके बाद जो हमारा मैंडेट है, जो हमको मैंडेट दिया गया है उसको पूरा करने के लिए किस प्रकार से कार्य करना है उसका कार्यान्वयन करवाया मैंने, और एक अच्छा मेरा टेन्योर वहाँ पे निकला अपने जवानों के साथ
0: जी।
1: और हमने एक अच्छा समय वहाँ पे व्यतीत किया। और बॉर्डर गार्डिंग के जो गुण हैं, बहुत एक्टिव बॉर्डर रहा है, लोगों का आवागमन

0: बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे से। और कुछ जो एलिमेंट्स हैं, जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स
1: जी
0: हैं, जो
1: जी
0: इस तरीके के कार्य करते हैं, उस तरीके का कार्य भी वहाँ पर रहता है। तो वो सब भी जानने का मुझे मौका मिला, और किस तरीके से रोकना है अपने।
1: तो जब हम बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार का एक बॉर्डर है जो नेपाल से टच करता है, वैसे ही उत्तराखंड का भी कुछ एरिया है जो नेपाल से टच करता है,
0: जी
1: और अगर हम यूपी की बात करें, यूपी भी एक ऐसा राज्य है, तो
0: बिल्कुल
1: यहाँ पे आपकी जो सेना है वो तैनात है।
0: जी
1: और उसके बाद कुछ ऐसा इंसिडेंट जो आपके लिए नया था लेकिन था बड़ा इम्पोर्टेंट, कोई ऐसा ऑपरेशन?
0: अगर ऑपरेशंस की बात करें, तो जो मेरा नक्सल का टेनियर रहा है, एसएसबी को बॉर्डर गार्डिंग के अलावा एंटी नक्सल ऑपरेशंस, जम्मू कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज़, इसके लिए भी चुना गया है। तो मेरी एक पोस्टिंग रही है नक्सल ऑपरेशंस में, तो उसमें हमारी टीम ने बहुत अच्छा कार्य किया, और हम लोगों ने उस जिस ज़िले में हम लोगों को दिया गया था, उस ज़िले को नक्सल फ्री कराने में हमारी टीम का बहुत बड़ा योगदान है, हमारी फोर्स का बहुत बड़ा योगदान
1: ये
0: है।
1: कौन सा एरिया है और ये क्या ऑपरेशन था, कुछ बताना चाहेंगे?
0: जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि संथाल परगना जो है झारखंड में, जो उत्तर पूर्वी झारखंड है, उसके 6 जिलों को मिला के संथाल परगना बोला जाता है, जिसमें गोड्डा, पाकुड़, दुमका, साहिबगंज, जामताड़ा और देवघर जिले आते हैं। इसमें से जो 3 जिले हैं, दुमका, पाकुड़ और गोड्डा, ये नक्सल इन्फेस्टेड ज़िले हैं 1990 के समय से ही। और जब हमारी मेरी पोस्टिंग हुई है वहाँ 2018 में, उससे पहले पीक नक्सल टाइम वहाँ पे रहा है, और इवन एक ऐसा समय था वहाँ पे 2013 के आसपास कि वहाँ पे नक्सलियों द्वारा एसपी पाकुड़ की हत्या कर दी, एक आईपीएस ऑफिसर की, अमरजीत बलिहार सर करके वो आईपीएस ऑफिसर थे। तो जब हम लोग वहाँ पे गए, तो जो हम लोगों का कार्य था इस क्षेत्र में, गोड्डा, पाकुड़ और दुमका, इस क्षेत्र में हमारी कंपनियां थी, तो यहाँ पे हम लोगों को नक्सल ऑपरेशंस करने थे, तो इसलिए हमको डिप्लॉय किया गया था। तो एक बहुत ही अच्छे तरीके से एक हमारे सीनियर्स के द्वारा प्लानिंग की गई, और उसके बाद हम लोगों के द्वारा टीम बनाई गई वहाँ पे, और उस टीम की मदद से जो है हम लोगों ने काफ़ी अच्छे ऑपरेशंस वहाँ पे किए हैं, और उस ऑपरेशंस का ही नतीजा है कि आज दुमका नक्सल फ्री डिस्ट्रिक्ट है और नक्सलवाद लगभग वहाँ से ख़त्म हो गया।
1: अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं थोड़ा सा विस्तार से जानना चाहूँगा, ये नक्सलवाद वहाँ पर है तो आप लोगों की कभी भी कोई ऐसी कोशिश रही तो होगी कि हम बातों से थोड़ा सा, बिफोर कोई ऑपरेशन या कोई ऐसी घटना हो तो हम बातों से, बातों का जो सिलसिला है उसे रखकर कोई चीज़ सॉल्व कर सकें?
0: बिल्कुल, कोई भी ऑपरेशन की जो ये ऑपरेशंस हैं, उससे पहले सारी तैयारी जो है परसेप्शन मैनेजमेंट की जाती है, और उसके अलावा जो आपका जो लोकल पॉपुलेस है उसका आपको विश्वास जीतना है, उसमें आपने एक विश्वास बनाना है अपने लिए, तभी इन्फॉर्मेशन फ्लो भी होती है। हम लोगों ने बहुत कार्य किया अंदरूनी इलाकों में जाके, हम लोग वहाँ पे जाके सिविक एक्शन प्रोग्राम्स करते थे, मेडिकल सिविक एक्शंस करते थे, हमारे डॉक्टर्स वहाँ पे बिल्कुल दूर दराज के गांव में जाके ओपीडीज लगाते थे। उसके अलावा हम लोगों ने वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट के लिए भी लोगों के लिए बहुत
1: ये
0: कार्य
1: सब
0: किया,
1: एसएसबी कर रही है?
0: बिल्कुल एसएसबी कर रही है, स्किल डेवलपमेंट के लिए हमने वहाँ के लोगों को ट्रेनिंग के कोर्सेज कराए, जो बच्चे होते हैं उनको हमने ड्राइविंग के कोर्स कराए, उसके अलावा मैकेनिक के कोर्स करवाए, प्लम्बिंग के कोर्स करवाए, उनको जोड़ने के लिए, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए।
1: मैं ये सोचता हूँ, मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, आप उस पर प्रकाश डाल सकते हैं, नक्सलवाद हो या टेररिज्म हो, आपकी जो फोर्स है वो टेररिज्म से भी, वो काउंटर टेररिज्म में अपना रोल अदा करती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक एस्टैब्लिश फोर्स हो गए या आर्मी के अगेंस्ट या हमारी जो तीनों सेनाएं हैं उनके अगेंस्ट अगर कोई टक्कर ले रहा है तो वो जस्ट एनी अदर ह्यूमन बींग नहीं होगा, वो एक युवा होगा जिसको मिसगाइड किया गया होगा और आप लोगों के सामने खड़ा कर दिया गया होगा, तो उस युवा को थोड़ा सा काउंसलिंग करने का भी श्रेय आपकी फोर्स लेती है?
0: बिल्कुल, हमने बहुत बहुत बार, हम लोगों का ये फ्रीक्वेंट, जब भी हम जाते थे अंदरूनी इलाकों की तरफ,
1: जी
0: वहाँ के युवाओं से बातचीत करने

का प्रयास, उनको स्कूलों के प्रति जागरूक करने का प्रयास। नक्सलियों की एक टैक्टिस रही है कि वो लोगों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं, उनको कभी भी सरकार के द्वारा मिली हुई चीज़ों को लेने नहीं देना चाहते हैं, कभी रोड नहीं बनना देना चाहते हैं। उनकी टैक्टिस को रोकना, रोड बनना बनने देना, विद्यालयों को अंदर तक का पहुंच पहुंचाना, हॉस्पिटल्स की सुविधा उनको अंदर तक पहुंचाना, गांव वालों को विकास के नज़दीक लेके जाना, ये कार्य हम लोगों ने उस क्षेत्र में बखूबी तौर से किया और हम

0: विश्वास हो कि भाई मुझे नक्सली हमला नहीं करेगा, ये सुरक्षा भी हमने प्रदान करी। अब मुझे लगता है कि बहुत अंदर अंदर तक का रोडे पहुंच गई, विकास जैसे ही पहुंचता है नक्सलवाद अपने आप ही भाग जाता है।
1: पर आपको क्या लगता था कि किस पॉइंट को लेकर नक्सलवाद वहां पे इतना इतने सालों तक रहा? कुछ आपको आइडिया क्यों वो विकास नहीं चाहते?
0: मेरे हिसाब से तो एजुकेशन का ना होना, लोगों में जागरूकता नहीं थी, लोगों को पता ही नहीं था कि सरकार क्या चीज़ है। 90 का दशक है, वहाँ पे लोक अदालतें लगती थी, ये लोग अपने आप फैसले देते थे, ये लोग किसी को भी मुखबिर घोषित कर देते थे, उसको मार देते थे,
1: पनिशमेंट.
0: कोई भी बिजनेस कर रहा है उससे लेवी वसूलते थे। तो एक जो इन्होंने खौफ भी बनाया लोगों के मन में, तो लोग सीधे साधे हैं। झारखंड में जिस इलाके में मैं रहा हूँ, संथाल
1: जी
0: परगना में,
1: जी
0: बहुत सीधे साधे लोग
1: जी
0: हैं,
1: जी
0: जानकारी का अभाव है, पढ़ाई की नहीं गई है, स्कूल तक पहुँचने नहीं देते थे,
1: जी
0: पिछड़ा हुआ रखा उन्हें और दबा दिया गया, और यही इसी से नक्सलवाद वहाँ पे बढ़ा शुरू में। फिर इन्होंने कोई भी चीज़ के उसमें बैरियर लगा दिया, आप और जवान लड़कों को अपने संग ले जाके उनको जबरदस्ती उठा के ले जाते थे, तो डर भी एक चीज़ थी जिसकी वजह से ये लोग नक्सलवाद की तरफ बढ़ गए, लोग डर की वजह से।
1: तो आपका जब ऑपरेशन हुआ, आपने बताया कि एक बहुत प्रमुख ऑपरेशन था, तो वो कुछ उसमें हम अभी यहाँ इस प्रोग्राम में जान सकते हैं कि कितने कितने मैं कहूँगा कि अपोनेंट या नक्सल आपके अगेंस्ट थे या सामने थे, आपकी फोर्स में कितना वो था और कितनी देर ये ऑपरेशन चला और क्या था?
0: हाँ, मैं ज़रूर बताता हूँ, थोड़ा सा और मैं इसमें जोड़ना
1: जी
0: चाहूँगा कि
1: प्लीज़.
0: किस तरीके से ये हम लोगों की टीम डेवलप हुई। तो कुछ व्यक्ति हैं, विशेष व्यक्ति हैं जिन लोगों की वजह से हम लोग इतना अच्छा ऑपरेशंस कर पाए,
1: ओके
0: नाम लेना चाहूँगा मैं
1: जी
0: उनका। हमारे IG सर थे श्री संजय कुमार, हमारे DIG सर श्री सुमित जोशी,
1: जी
0: हमारे कमांडेंट सर परीक्षित सर, मेरे कलीग्स और मेरे सीनियर सतीश सर थे। बहुत अच्छा साथ ही हमें साथ मिला अपने जवानों का, और मेरे साथी नरपत, गुलशन, विनायक, ये हम लोगों की एक बड़ी अच्छी टीम डेवलप हुई। इसी के साथ एक चीज़ बहुत अच्छी ये रही कि उसी समय जो जिले के SP थे श्री YS रमेश, उसके अलावा CRPF के जो ASP ऑफ्स थे इमानुल बास्की और RC मिश्रा सर, हम लोगों की टीम जो एक डेवलप हुई,
1: जी
0: और हमारे IG सर के मार्गदर्शन पे हम लोगों ने एक टीम बनाई, जिसको हमने अपने ही बटालियन के अंदर से, अपने ही लोगों से एक
1: जी
0: स्मॉल एक्शन टीम करके
1: जी
0: बनाई, और उस टीम को हमने जो है उसमें हमने ऐसे लोग लिए, एक छोटी टुकड़ी बनाई, क्योंकि बहुत लोग जाके ऑपरेशंस नहीं हो सकते, तो एक छोटी टुकड़ी बनाई जिसको एक ऑफिसर लीड करता था, उसके संग 20 जवान करीब, तो वो जवानों का सिलेक्शन, उसके बाद उनकी ट्रेनिंग, उनके बाद उसको जो उसके टैक्टिकल वेपन्स, एक फिर उसके बाद आया हमारा इंट, जो टैक्टिकल इंट थी, तो इसमें एक नरपत सिंह जो अभी डिप्टी कमांडेंट हैं उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने जो लोगों के बीच में पैड बनाई और जो इन्फॉर्मेशन एक फ्लो होने लगी, उससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ। और हमारी टीम ने, आप मानेंगे कि ऑपरेशन तो एक दिन है, पर उससे पहले की जो हमारी जो
1: प्रेपरेशन.
0: प्रैक्टिसेस हैं, जो
1: जी
0: हम
1: जी
0: लगातार जंगलों को डोमिनेट करते रहे,
1: ओके
0: हमें हर जगह जाके कि हम कहाँ पे किस तरीके से पोजीशन लेंगे, रिहर्सल्स जो हम लोगों ने बहुत सारी की,
1: जी
0: उसी का ये नतीजा रहा कि हम लोगों ने वहाँ बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशंस किए,
1: ओके
0: और उन ऑपरेशंस की ही वजह से जो है हमारी बटालियन जो है एक टाइम पे हाईएस्ट गैलेंट्री मेडलिस्ट की बटालियन रही है।
1: वंडरफुल. तो ये तो बात हम ऑपरेशंस की कर रहे हैं, और उसके बाद जब एक कंप्लीशन होता है, ठीक है, गौरवान्वित इंसान फील करता ही है, लेकिन आपको लगता है कि आपके उन ऑपरेशन से जो बाकी जो लोकल जो लोग थे उनको बड़ी राहत मिली, दे वर वेरी हैप्पी. शायद वो भी दबा के रखा होगा उन्होंने कि नहीं, हम भी चाहते हैं कि मॉडर्नाइजेशन हो, झारखंड जैसे एरिया में थोड़ा और मॉडर्नाइजेशन हो. तो उनका भाव आपके जो भी आप कार्यरत थे जितने टाइम के बाद, कुछ सेटिस्फैक्शन उनके भी चेहरों पर दिखी?
0: बिल्कुल, आतंक का पर्याय थे ये नक्सली, ये नक्सलियों, लोग डरते थे इनसे,

0: पास हथियार थे, इनके पास AK-47 इंसास इस तरीके के वेपन्स थे जो इन्होंने पहले से लूट लिए थे। इस तरीके के वेपन्स लेके ये जब लोगों के घरों में रात को घुसते थे, उनसे ज़बरदस्ती खाना बनवाते थे, उनके घर में रहते थे, तो जब ये नक्सली मारे गए या इनका सफाया हो गया तो डेफिनेटली लोगों ने जश्न मनाया, लोग खुश हैं, आज तरक्की की राह पे आगे बढ़ गए हैं लोग, और उनके पास अब अपॉर्चुनिटीज पहुंचने लगी हैं। ये बैरियर थे उस अपॉर्चुनिटीज के, और वो बैरियर तोड़ दिया SSB ने, वहां जाके इस बैरियर को तोड़ दिया।
1: आपके फोर्स के अंदर फिर क्या माहौल हुआ? मैं समझ सकता हूँ आप ऑपरेशन में थे, आपकी एक टीम थी, लेकिन आपकी फोर्स बहुत बड़ी है, तो ये खबर जब पूरी फोर्स में फैली होगी तो उत्साह के साथ साथ मेरे ख्याल से एक मोटिवेशनल भी एक स्टेप हो गया होगा सबके लिए।
0: बिल्कुल, ये हमारी जो टीम थी, इसी तरीके से हमारे जो बिहार और झारखंड में जो नक्सल ऑपरेशंस में जो टीम्स थी
1: जी,
0: वो टीम्स ने भी हमारी टीम्स के इस जो कार्य करने की शैली थी, इसके बाद जो है उनका भी कार्यशैली में बड़ा परिवर्तन हुआ, और मतलब बेहतर रिजल्ट्स आने लगे। और मोटिवेशन तो होता ही है, फोर्स में जब देख रहा है दूसरा कि ये टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, तो एक कंपटीशन है और एक पॉजिटिव कंपटीशन है, और सब सारी ही यूनिट्स ने फिर वहाँ पे झारखंड और बिहार में बहुत अच्छा काम किया है।
1: और वो मेरे ख्याल से ऐसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन के बाद आप एक रिसर्च पेपर भी तैयार करते होंगे कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं हम उनको कैसे ग्रूम करें आगे जाके।
0: बिल्कुल,
1: और शायद वही आप कर रहे हैं अपनी CTC में जो ट्रेनिंग आप
0: बिल्कुल हम हमेशा बताते हैं उन्हें कि किस तरीके से ये ऑपरेशंस रहे हैं, ये केस स्टडीज जो है ये लगातार भागों में हर जगह हर ट्रेनिंग सेंटर्स पे चलती रहती है।
1: तो भारत के किन किन प्रांतों से आपके फोर्स के अंदर आप रिक्रूटमेंट करते हैं?
0: ऑल इंडिया, हमारे उसमें सभी जगह से लोग आते हैं, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, हर जगह के लोग हैं हमारे वहाँ पे, बहुत ही भरा पूरा परिवार रहता है
1: जी।
0: और हम हर फेस्टिवल्स को एंजॉय करते हैं, हमेशा कोई ना कोई किसी प्रांत का फेस्टिवल होता है तो बहुत अच्छा।
1: और मेरे ख्याल से आप ट्रेनर हैं तो आपका भी सबसे पहला सवाल होता होगा किसी नए रिक्रूट से जब आप मिलते होंगे कि आप क्यों आए हो SSB में, क्या खींच कर लाया आपको SS, कुछ ऐसे ही मेरे अंदाज में तो नहीं, आपके अपने अंदाज में?
0: बिल्कुल, हम पूछते हैं उसके कहाँ से वो आया है, उसकी क्या मोटिवेशन था, किस वजह से उसने फोर्स ज्वाइन करी है, हमें जानना होता है कि वो ट्रेनिंग में कितना एक्सेल करेगा, उसको हमने किस लेवल तक लेके आना है, उसमें कितना मोटिवेशन हमें डालने की ज़रूरत है कि या सेल्फ मोटिवेटेड है, तो हम उसको साइकोलॉजिकली एनालाइज तो करते ही हैं अपने ट्रेनिंग्स को।
1: राइट देन, मैं थोड़ा सा यहाँ रुख मोड़ रहा हूँ इस प्रोग्राम का। दोस्तों, आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स आकाशवाणी रेनबो पर, और मेरे साथ एक खास मेहमान हैं, सेकेंड इन कमांड हैं SSB के ललित शाह जी। कुछ आपके पर्सनल लाइफ के बारे में जाने?
0: बिल्कुल,
1: स्मार्ट लुकिंग एक ऑफिसर मेरे सामने बैठे हैं, तो कुछ अपने फैमिली के बारे में बताना चाहेंगे, आपकी बेटर हाफ के बारे में?
0: बिल्कुल, मेरी वाइफ है, मेरी दो बेटियां हैं
1: जी,
0: और अरेंज मैरिज करी हम लोगों ने 2012 में, और
1: पिथौरागढ़ में अरेंज ही होती
0: है। बिल्कुल,
1: हमारे दिल्ली जैसे शहरों में आके लोग कहते हैं पापा आई एम इन लव, बट यू वर ऑलरेडी इन लव विद द नेशन, आप तो कंट्री के साथ प्यार हो गया था। तो आपकी वाइफ जब आपसे मिली, आप लोग में क्या होता है, बहुत कंजर्वेटिव तरीके से शादी होती है, एक दूसरे से मिल सकते हैं शादी?
0: बिल्कुल, हमारे उसमें जो है पहले घर वाले बात करते हैं
1: जी,
0: तो उसके बाद एक परंपरा है पाता जाने की, जब बात हो जाती है तो पाता चले जाता है, तो जब पाता लड़की का पाता आता है, मतलब पतड़ा जो आप वो कहिए, तो वो आता है तो उसके बाद उसका मिलान किया जाता है, और वो मिल जाता है तो उसके बाद वो शादी फिक्स हो जाती है, तो इसी प्रकार से मेरी भी शादी हुई है।
1: हाँ, बट मैं आपसे जानना चाहता हूँ यहाँ कि कितना आसान था आपको अपनी वाइफ को समझाना कि मैं सशस्त्र सीमा बल पे हूँ और भारत की एक प्रमुख फोर्स है और तुम फौजी की वाइफ बनने वाली हो?
0: शुरुआत के दिनों में तो मुझे लगा कि थोड़ा सा जो है जानने की ज़रूरत है, पर मेरी वाइफ ने जितनी जल्दी इस चीज़ को समझा, जितना जल्दी मेरे प्रोफेशन को वो समझ गई, तो वो मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा। मैं नक्सल क्षेत्र में भी रहा, अलग अलग जगह ड्यूटीज़ की मैंने, पर मेरे को मेरे परिवार का हमेशा बहुत सपोर्ट रहा, और मेरी वाइफ हमेशा मेरे इस काम के लिए मेरे साथ खड़ी रही।
1: अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके दो बच्चियाँ भी हैं, तो अभी जिस तरीके की पढ़ाई वो कर रही हैं, पढ़ाई में भी बहुत फर्क आ गया है
0: जी,
1: मॉडर्न पढ़ाई है, और ये गैजेट्स आ गए हैं जो शायद आपके

0: उतने नहीं थे, अब तो बहुत बढ़ गए हैं, तो उनका रुझान कैसा है? वो क्या कहती हैं, आर्म्ड फोर्सेस में किसी का मन कर रहा है अभी जाने का? या
1: वो मुझे वर्दी में देख के बहुत खुश होती हैं, बहुत छोटी हैं, तो अभी तक हमने उनसे इस तरीके से
0: जी
1: वो
0: जी
1: उनकी अभिलाषा जानने का प्रयास किया नहीं है। बट मैंने ज़रूर देखा है कि जो हमारे फंक्शंस होते हैं फोर्स के, और जब मुझे वर्दी में देखती हैं या बाहर किसी को भी वर्दी में देखती हैं, तो वो प्राइड भी फील करती हैं और वो लाइक भी करती हैं। तो हो सकता है भविष्य में उनका बने रुझान और प्रबल
0: जी
1: हो जाए।
0: आपकी SSB में भी महिलाओं का एक बहुत बड़ा योगदान है,
1: बिल्कुल
0: आपकी फोर्स के अंदर बहुत सारी महिलाएं हैं जो यूनिफॉर्म पहन के दे स्मार्ट कंट्रीब्यूटर्स।
1: बिल्कुल, हमारी फोर्स में महिलाओं का कंट्रीब्यूशन जो है बहुत बढ़ गया है, और मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट कर रही हैं महिलाएं। और हमारी फोर्स भी जो है महिलाओं की संख्या बढ़ाने पे जो है लगातार प्रयास कर रही है और उसका लेवल बढ़ाने जा रही है। और मैंने देखा है कि महिलाएं भी बहुत जगहों पे, मैंने माउंटेनियरिंग की तो मैंने देखा कि महिलाएं भी बहुत सक्षम हैं हर चीज़ के लिए। वो वक्त की बात है, वो बहुत बढ़िया करती हैं और बहुत ही
0: वाह
1: बेहतरीन उनका कार्य है, और कहीं कहीं तो वो पुरुषों को भी पीछे कर देती हैं। उनके सोचना समझना, उनका तरीका बहुत अलग रहता है।
0: ये गाना आप ही की पसंद का मैं चला रहा है,
1: बिल्कुल
0: पूछने की जरूरत नहीं है कि आप किसके लिए गाना चला रहे हैं। संदेश टू सोल्जर सुन रहे हैं आप, और हमारे साथ ललित शाह मौजूद हैं, सेकंड इन कमांड सशस्त्र सीमा बल।

0: संदेश टू सोल्जर्स आप सुन रहे हैं, मेरा नाम है मनीष जौली। अगर आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, मेरे साथ सेकंड इन कमांड एसएसबी के ललित शाह जी से कुछ पूछना चाहते हैं या उनको अपना सल्यूट करना चाहते हैं और उनको अपना एक भाव एक मैसेज के द्वारा देना चाहते हैं, तो ये व्हाट्सएप की जो मशीन है इसका मैं अभी यहाँ पे शुभारंभ कर रहा हूँ। ये नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, आप व्हाट्सएप के जरिए अपना मैसेज भेज सकते हैं, सिर्फ टेक्स्ट मैसेज। नंबर है 9868107070, 9868107070। ये नंबर है व्हाट्सएप का, आप अपना मैसेज यहाँ भेज सकते हैं। कुछ लोगों को मुँह जुबानी हमारे जो नंबर है ना वो याद हैं ललित शाह जी, तो एक जनाब हैं दिल्ली से ही, द्वारका से लिख रहे हैं, शंकर लोड उनका नाम है, और वो आपको ग्रीट करते हुए कह रहे हैं कि ऑफकोर्स एक रिस्पेक्ट इंडियन आर्मी को भी, हमारे ब्रेव सोल्जर्स को भी, एसएसबी को भी हम देते हैं, आप कितने फेयरलेस और डेडिकेशन के साथ हमारे देश की सेवा कर रहे हैं। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। इनका नाम है शंकर लोड,
1: धन्यवाद, जय हिंद।
0: और एक और मैसेज अगर मैं यहाँ पढ़ना चाहूँ, वीरू बख्शी हमें मेरठ से सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बहुत ही पेचीदा सवाल है, ये चंद्र कुमार चक्रवर्ती हैं देहरादून से लिख रहे हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि इनका जो मैसेज है कि क्या ये जानना चाहते हैं, तो वो कह रहे हैं कि सेकंड इन कमांड आप अगर हैं तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज और चैलेंजेस आप अभी फेस कर रहे हैं सीटीसी में।
1: अभी जो मैं सेंट्रलाइज ट्रेनिंग सेंटर में हूँ तो मेरा दायित्व ट्रेनिंग देना है, तो मैं एज ट्रेनर वहाँ पर पोस्टेड हूँ, तो ट्रेनर हूँ। उसके अलावा कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी रहते हैं, बेसिकली डीडीओ का कार्य रहता है सेकंड इन कमांड के पास,
0: जी
1: ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर बोलते हैं उसको, तो उसका कार्य पे अलाउंसेस, ये जितने भी वित्त रिलेटेड मैटर्स हैं उसमें अपने हेड ऑफ द ऑफिस को असिस्ट करना रहता है।
0: ओके।
1: हमारा जो ट्रेनिंग सेंटर है उसको डीआईजी लेवल के ऑफिसर वो करते हैं, तो उनको ट्रेनिंग को स्मूथली चलाने के लिए बहुत सारे ऑफिसर्स की नियुक्ति होती है, तो उसमें से एक मैं भी हूँ सेकंड इन कमांड वहाँ पे,
0: जी।
1: और ट्रेनिंग और कुछ डीडीओ वाला वर्क जो है मैं वहाँ पे कर रहा हूँ।
0: राइट, मैंने मशीन खोली है, तो देखिए आपने कहा था ना कि हर प्रांत से आपकी रिक्रूटमेंट्स होती है, तो देहरादून से अब राजस्थान से एक मैसेज आया नरेंद्र सुधार का, साथ ही साथ बहुत सारे मैसेजेस आते हैं ना जो भावुक होकर हम लिखते हैं, तो मैंने आपसे कहा था कि हमारे को सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं सुना जा रहा, थाईलैंड से अमोल अंबावणे, अगर मैं आपका सरनेम सही ले रहा हूँ, तो वो मैसेज हमें भेज रहे हैं कि न्यूज़ ऑन एआईआर के माध्यम से हमें देश और विदेशों में सुना जाता है। न्यूज़ ऑन एआईआर ये एक ऐप है, और पृथ्वी पर कहीं पर भी आप हैं जहाँ पे आपके पास मोबाइल डेटा है और आपको एक्सेस है इंटरनेट का, तो आप हमें सुन सकते हैं। एक और हैं सल्यूट सर कर रहे हैं, रंजीत इनका नाम है, और वो कह रहे हैं कि मैं सीटीसी एसएसबी श्रीनगर से हूँ, सर मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ और सुन के आपकी आवाज़ सुन के बहुत अच्छा लग रहा है, आशा करता हूँ ये आपके परिचित होंगे शायद कोई।
1: थैंक यू।
0: ऑलराइट, ललित सर को जय हिंद कह रहे हैं, महेश सिंह जी कहाँ से लिख रहे हैं ये मुझे बताया नहीं है उन्होंने, लेकिन हम सबको सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा है। 29th SI/DE चेतन अच्छा। लिख रहे हैं, आप पहचान गए होंगे
1: जी।
0: हमारी वीर सेना नायक को विजय कुमार तिरुचिरापल्ली से जय हिंद, विजय कुमार जी हैं वहाँ से लिख रहे हैं। एक और मैसेज आया है हमारे पास, वो कह रहे हैं कि सर इज पोस्टेड एट आवर ट्रेनिंग सेंटर, यश गुप्ता लिख रहे हैं, वेरी डेडिकेटेड टुवर्ड्स हिज ड्यूटीज एंड हैविंग वास्ट एक्सपीरियंस। आजकल के यंगस्टर्स भी हमें कॉम्प्लीमेंट देते हैं ना, बजाय कि हम उन्हें कॉम्प्लीमेंट दें, क्यों,
1: धन्यवाद है यश का।
0: नागेश गढ़ाडे हमें पोलैंड से सुन रहे हैं
1: जी।
0: अब देखिए मैंने आपसे कहा था ना कि न्यूज़ ऑन एआईआर के माध्यम से देश विदेश से हमें मैसेजेस आएंगे। चंद्रशेखर तिवारी हमें मैसेज भेज रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं तो बैचमेट हूँ ललित सर का, सही कह रहे हैं सर
1: जी।
0: ऑलराइट, यश गुप्ता का मैसेज हमने पढ़ा, एंड ऑफकोर्स चेतन का मैसेज हमने पढ़ लिया है, दिल से जय हिंद लिख रहे हैं बाबूलाल यादव
1: जी, जय हिंद बाबूलाल।
0: ऑलराइट, को मैसेज सब भेज रहे हैं। एक और इंटरनेशनल मैसेज यहाँ पे आया है, एंड ऑफकोर्स ये भी पोलैंड से ही आया है, एंड आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो ट्रेनिंग आपने बताया कि ट्रेनिंग का दारोमदार

0: पे, आपकी तकनीक पे नज़र तो ज़रूर रखते होंगे।
1: बिल्कुल नज़र रखते होंगे और उन पे हम भी नज़र रखते हैं, नज़र दोनों ही तरफ से रखी जा रही है। और मुझे यकीन है कि हमारी भी एजेंसीज, हम लोग खुद जो है उन पे नज़र रखते हैं और उनके किसी भी मूवमेंट पे और किसी भी पैतरे पे हमारी पूरी निगरानी बनी
0: तो
1: हुई है।
0: हमारे प्रोग्राम के ज़रिए आपने उन तक ये मैसेज पहुंचा दिया कि
1: बिल्कुल
0: हम
1: हम भी
0: बिल्कुल
1: तैयार हैं, बिल्कुल
0: चौकन्ने हैं।
1: बिल्कुल।
0: सीटीसी श्रीनगर से ही सोनू चौधरी हमें मैसेज लिख रहे हैं, साथ ही साथ धन सिंह का एक मैसेज आया है, रोशनी रावत हमें मैसेज लिख रही हैं, ग्राम व पोस्ट बमना तहसील सफीपुर जिला उन्नाव, और चंडीगढ़ में भी उनके जानकार हैं, वो ये प्रोग्राम सुन रहे हैं। तो आपको पूरे देश में और काफ़ी जगह ये प्रोग्राम सुना जा रहा
1: सब आपका धन्यवाद है, आकाशवाणी का धन्यवाद।
0: है। महिपाल सिंह हैं, ट्रेनिंग आप ही के जहाँ आप स्थित हैं श्रीनगर, वहीं से हमें मैसेज लिख रहे हैं। एक बहुत प्यारा सा मैसेज आया बाबूलाल यादव का, आसमान में हजारों सितारों से बेहतर हमारे कंधों पर चमकते सितारे हैं, जो देश की रक्षा के लिए रात दिन जागते हैं, मेरी तरफ से सर को सुनाओ अच्छा लगेगा।
1: धन्यवाद।
0: ऑल राइट, 29th SID से एक और मैसेज आया, जयपुर राजस्थान से हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अपना नाम ज़रूर लिखें। अमरावती से नीता लिख रही हैं, सलाम कर रही हैं और वो कह रही हैं, हम सब की तरफ से हम बहुत गर्व से कह सकते हैं कि आप जैसे कमांडर आगे मिलते रहें, भारत माता की रक्षा करते रहें। समय बीतता जा रहा है क्योंकि अब बहुत सारे मैसेजेस मैं नहीं ले पाऊंगा, नाम मैंने लगभग सबके ले लिए हैं, और आप अगर हमारे युवाओं को जो आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, सेकेंड इन कमांड ललित शाह, सशस्त्र सीमा बल, आप अपनी तरफ से और अपनी फोर्स की तरफ से भारतवासियों को अगर मैं कहूं कि एक मैसेज देना चाहें या मोटिवेट करना चाहें युवाओं को, तो क्या कहेंगे?
1: मैं कहना चाहूँगा कि फिट रहें, फिटनेस पे ध्यान दें, मेंटली फिजिकली फिट रहें, देशभक्ति अपने अंदर लाएं और सत्यमेव जयते, जो ये एक वाक्य है इसका हमेशा इसको अपने जहन में रखें, सत्य जीतता है और सत्य की तरफ ही हमें रहना है। जय।
0: दोस्तों, एक बहुत ही खास एक्सपीरियंस आज रहा क्योंकि सशस्त्र सीमा बल के बारे में विस्तार से हमें जानकारी मिली उनके सेकंड इन कमांड ललित शाह जी की तरफ से। बहुत सारे मैसेजेस आए हैं जिनके नाम मैं ले चुका हूँ, कमांडो प्रवीण उनमें से एक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें मैसेज भेजा। साथ ही साथ गीता विज हमें सुन रही हैं इंग्लैंड से, तो वो सुन के आपको वहाँ से शुभकामनाएं भेज रही हैं आपको और आपकी फोर्स को। शिरडी से भी हमारे पास मैसेज आया है, महाराष्ट्र से, और यही तो है ना जो भारत को जोड़ता है, हमारा ये महान देश। लेकिन चलते चलते मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ आकाशवाणी में भी एक बहुत ही प्रमुख रोल हम लोग प्ले करते हैं, तो ये प्रोग्राम पूरा नहीं हो सकता ललित शाह जी अगर आप अपना संबंध आकाशवाणी से कितना पुराना है और क्या खास है वो अपनी जुबानी बता के जाएं।
1: बिल्कुल, आकाशवाणी से संबंध उतना ही पुराना है जितना पुराना मैं हो चुका
0: अच्छा,
1: हूँ। जब छोटे थे पहली बार रेडियो सुना तो आकाशवाणी जो है उसको सुनते थे और बहुत अच्छा लगता था। और आज भी हम जो है आज यहाँ आके भी ऐसा लगा कि मैं कोई नई जगह नहीं, मैं वहाँ जा रहा हूँ जिसको मैं बचपन से सुनता आया हूँ।
0: राइट देन, तो आप ही की पसंद का एक गाना है, उसके साथ इस प्रोग्राम का समापन करते हैं। किशोर दा के आप बहुत बड़े फैन हैं, आपने
1: जी
0: गा के नहीं सुनाया, कुछ ट्राई कर सकते हैं।
1: नहीं, बस यही यही गाना मैं गा लेता हूँ जब भी कहीं पार्टी और कुछ
0: ये
1: होता है,
0: मौका अच्छा है, आकाशवाणी पर माइक
1: बस
0: पर
1: नहीं
0: गुनगुना सकते हैं।
1: फिर कभी, पर ये मेरा पसंदीदा गाना है।
0: राइट देन, संदेश टू सोल्जर्स में आज बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जो आप जुड़े आकाशवाणी के साथ। आप हैं तो हम हैं, 90 साल, 9 दशक आकाशवाणी भारतवासियों के साथ रहा है, भारत के साथ रहा है, आप भी हमारे साथ रहें।

अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

मीडियम वेव 326.79 MHz अर्थात 918 KHz पर, FM बैंड 100.1 MHz पर हम आकाशवाणी सूरतकर के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय शाम के 5 बज चुके हैं। प्रस्तुत है युवा श्रोताओं के लिए उनका दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

युवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को पूजा वर्मा का नमस्कार। दोस्तों, आज के इस युवाणी कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं कार्यक्रम युवाणी के साथ। हम आपको सुनाएंगे कुछ फिल्मी गीत और साथ ही दोस्तों हम करेंगे कुछ विषयों पर चर्चा। तो लीजिए, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की बात से। दोस्तों, आज हम सबसे पहले बात करेंगे सोसाइटी में युवाओं का क्या योगदान है, अपनी भागीदारी कैसे समाज के उत्थान के लिए निभा सकते हैं। श्रोताओं, युवा सिर्फ देश का भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान के बदलाव का सबसे ताकतवर हथियार है। शायद युवा तब समाज कल्याण करता है जब वह धर्म, जाति, भाषा से ऊपर उठकर इंसानियत को चुने। युवा उकसाने में नहीं आता, वह भाईचारा फैलाता है। युवा जो सरकारी योजनाओं को गांव तक पहुंचा सकते हैं, वे बुजुर्गों को ऑनलाइन फ्रॉड से बचा सकते हैं, किसानों को ऑनलाइन मंडियों के बारे में बता सकते हैं और साथ ही गृहिणियों को डिजिटल पेमेंट तक सिखा सकते हैं। दोस्तों, ऐसा हर युवा कर सकता है, बस जरूरत है एक पहल की। पिछले 12 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में युवा सशक्तिकरण को केंद्र में रखकर काम हुआ। 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को पीएम मुद्रा योजना के तहत ऋण मिला, यानी युवा अब नौकरी ढूंढने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बन रहे हैं। लगभग 60 लाख से अधिक युवा पीएम विकसित भारत रोजगार योजना से लाभान्वित हुए हैं। 1.5 करोड़ से ज़्यादा युवाओं को पीएम कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण भी दिया गया। दोस्तों, ये आंकड़े बताते हैं कि युवा अब सिर्फ नीतियों के लाभार्थी नहीं बल्कि भागीदार बन चुके हैं। राष्ट्रीय युवा नीति 2026, सरकार ने हाल ही में नई युवा नीति का प्रस्ताव रखा जो विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों के अनुरूप है। इस नीति के 6 मुख्य क्षेत्रों पर फोकस किया गया जिनको हम देख लेते हैं। युवा नेतृत्व और स्वयं सेवा, शिक्षा, कौशल और रोजगार, उद्यमिता और नवाचार, स्वास्थ्य और कल्याण, खेल और मनोरंजन, पर्यावरण और जलवायु कार्रवाई। दोस्तों, और खास बात यह है कि इस नीति को लागू करने के लिए MY भारत प्लेटफॉर्म बनाया गया। यह एक डिजिटल इकोसिस्टम है जहां युवा रजिस्टर करके स्वयंसेवी कार्यक्रमों में भाग ले सकते हैं। और एक अच्छी खबर और भी है, बेंगलुरु में चाइल्ड ब्रेवरी अवार्ड्स के लिए नामांकन भी शुरू हो गई है। राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को उनकी बहादुरी और सामाजिक योगदान के लिए सम्मानित करता है। दोस्तों, यह बहुत जरूरी पहल है, यह बच्चों को दिखाती है कि उम्र छोटी

0: होने का मतलब यह नहीं कि बदलाव नहीं ला सकते। पिछले सालों में कई बच्चों की दुर्घटनाओं में मदद करने, आपदाओं में सहायता करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पुरस्कृत किया गया। नामांकन जुलाई 2026 के अंत तक किए जा सकते हैं, तो अगर आपके आसपास कोई युवा है जिसने कुछ असाधारण किया है तो उसका नामांकन जरूर करें। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं समाज कल्याण में युवाओं की भूमिका इस विषय पर। अब एक ऐसी खबर जो टेक्नोलॉजी और युवाओं को जोड़ती है, यानी यूथ को लैब नेशनल इनोवेशन चैलेंज 2026 लॉन्च किया गया। दोस्तों, यह चैलेंज 15 से 29 वर्ष के युवाओं के लिए है, महिलाओं, दिव्यांगों और आदिवासी युवाओं के लिए 35 वर्ष तक। यह सस्टेनेबल फैशन, सर्कुलर इकोनॉमी और सस्टेनेबल फूड सिस्टम पर फोकस करता है। सबसे बढ़िया बात है दोस्तों, शीर्ष 6 स्टार्टअप्स को 3.5 लाख तक का सीट ग्रांट मिलेगा और सभी 50 स्टार्टअप्स को नेशनल स्प्रिंग बोर्ड प्रोग्राम के तहत सपोर्ट किया गया। दोस्तों, यह योजना यूएनडीपी और सिटी फाउंडेशंस के सहयोग से चलाई जा रही है। 2019 से अब तक लगभग 280 से अधिक युवा नेतृत्व वाले वेंचर्स को सपोर्ट किया जा चुका है। YUVAI यानी ग्लोबल यूथ चैलेंज, दोस्तों यह मेटी की पहल है जो 21 वर्ष तक के युवाओं को AI के जरिए सामाजिक समस्याओं का समाधान निकालने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह मौका है युवाओं के लिए सुनहरा, न केवल पैसा बल्कि वैश्विक पहचान और मेंटरशिप का। हर युवा इजीली अपने समाज कल्याण के लिए अपना योगदान दे सकता है। कुछ काम ऐसे हैं जो खुद ब खुद करके समाज के उत्थान के लिए कर सकते हैं, जिनमें रक्तदान शिविरों से जुड़ना, कम से कम जितना हो सके पेड़ पौधे लगाना, उनकी देखभाल करना, बुजुर्गों को डिजिटल पेमेंट सिखाना, नशा मुक्ति का संकल्प लेना और महिला हेल्पलाइन का प्रचार करना। इसके साथ ही एक सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना, स्थानीय पार्कों, तालाबों की सफाई करवाने में अपना योगदान देना और सोशल मीडिया पर पॉजिटिव खबरें साझा करना। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था दोस्तों, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। लीजिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं इस गीत के साथ।
1: निकला ओ गड्डी लेके।
0: दोस्तों, अभी आप सुनेंगे फिल्म गद्दर से ये गीत। आवाजें हैं उदित नारायण और उनके साथियों की।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
3: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: दोस्तों, अब हम बात करेंगे भारत सरकार के उस वह महत्वाकांक्षी मिशन की, मिशन अमृत सरोवर, जिसका लक्ष्य दोस्तों देश के हर गांव में कम से कम एक अमृत सरोवर यानी जलाशय या तालाब का निर्माण पुनरुद्धार करना। जी हाँ दोस्तों, यह मिशन 24 अप्रैल 2022 को हर घर तिरंगा अभियान के दौरान शुरू किया गया था, लेकिन आज जून 2026

में यह मिशन कहां तक पहुंचा है, लीजिए जानेंगे हम इसके बारे में। प्रारंभ में 50,000 अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य रखा गया था दोस्तों, लेकिन योजना इतनी सफल रही कि लक्ष्य बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया। स्वतंत्रता के 75 वर्षों के उपलक्ष्य में यह योजना कोई अकेली सरकारी योजना नहीं, इसमें जन भागीदारी, ग्राम पंचायतों, स्वयं सहायता समूहों, कॉरपोरेट CSR और सबसे महत्वपूर्ण युवाओं की भूमिका रही। श्रोताओं दोस्तों, पहली और सबसे पॉजिटिव न्यूज़ की 52,000 से अधिक अमृत सरोवर देश भर में पूरे हो चुके हैं। यह संख्या मार्च 2025 के 41,000 से बढ़कर अब 52,000 से अधिक हो गई है, यानी पिछले एक साल में 11 नए अमृत सरोवर बनकर तैयार हुए हैं। हमारी गवर्नमेंट ने जून 2025 में दूसरा चरण शुरू किया था। अब लगभग 68,000 सरोवर विभिन्न चरणों में निर्माणाधीन है। कुल लक्ष्य 75,000 है, जो संभवतः 2026 के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य है दोस्तों। यानी हर दिन औसतन 30 से अधिक अमृत सरोवर देश में बन रहे हैं या पुनर्जीवित हो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में मिशन अमृत सरोवर को वैश्विक जल संरक्षण मॉडल के रूप में भी मान्यता दी। दोस्तों, विश्व जल मंच वर्ल्ड वाटर फोरम के पिछले सत्र में भारत ने इस मिशन का एक प्रतिनिधि मंडल प्रस्तुत किया। अब कई देश जिनमें केन्या, बांग्लादेश, श्रीलंका और इथोपिया शामिल हैं, इन्होंने इस मॉडल को अपनाने की भी इच्छा जताई। जल शक्ति मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार इन देशों के प्रतिनिधि अब अमृत सरोवर मिशन के दौरे पर भारत आने वाले भी बताए जा रहे हैं। लीजिए बात करते हैं सबसे अहम हिस्से की, यानी युवाओं की इस मिशन के प्रति क्या दृष्टिकोण है, उनका क्या योगदान है और कैसे आप युवा इस मिशन का हिस्सा बन सकते हैं। तो दोस्तों, जरूरी है सबसे बड़ी जन जागरूकता की। युवा सोशल मीडिया, स्कूल, कॉलेज और मोहल्ले में जल संरक्षण का संदेश सबसे तेजी से फैला सकते हैं। आप कई रील्स पोस्ट के माध्यम से सैकड़ों लोगों तक इस मिशन को पहुंचा सकते हैं। श्रमदान और स्वयं सेवा करके, इसके साथ ही नवाचार और टेक्नोलॉजी के जरिए रखरखाव की स्थायी व्यवस्था करके और अन्य युवाओं को प्रेरित करके। दोस्तों, अब आप कैसे बन सकते हैं इस मिशन का हिस्सा, तो लीजिए जानते हैं। पहचाने अपने गांव या आसपास कहीं कोई पुराना सूखा तालाब तो नहीं है, उसकी फोटो लीजिए और ग्राम पंचायतों को दिखाइए। रिपोर्ट करें। मिशन अमृत सरोवर के लिए एक डिजिटल पोर्टल दिया गया है। उसके अपने जो इलाके के सरोवर है उनकी स्थिति को वहां ऑनलाइन रिपोर्ट कर सकते हैं। श्रमदान करें, यानी हर रविवार सरोवर के किनारे मात्र 1 घंटा निकाले साफ सफाई, घास काटना और कुछ अन्य आप योगदान दे सकते हैं। टेक्नोलॉजी ले जाएं दोस्तों, स्कूली छात्र गांव के लोगों को रेन वाटर हार्वेस्टिंग का तरीका समझा सकते हैं। स्कूलों में रेन वाटर के बारे में, रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है, आपके जो SST यानी सोशल स्टडीज़ का सब्जेक्ट होता है उसमें भली भांति समझाया गया होता है। आप गांव वालों को उसके बारे में, उसके तरीकों के बारे में इजीली समझा सकते हैं, ताकि आपके आसपास के गांव के लोग, शहरों के लोग इसका हिस्सा बन सके और अपना योगदान दे सके। अपने इलाके के अमृत सरोवर पर एक छोटा वीडियो बनाएं और सोशल मीडिया पर साझा करें। अपने नज़दीकी सरोवर की नियमित देखभाल की जिम्मेदारी लें। मनरेगा, जल जीवन मिशन, सरोवर को सरकारी योजनाओं से जोड़ने की सूचना अपनी पंचायत को दें। और दोस्तों, सरोवर के आसपास कम से कम 25 से ज़्यादा पौधे लगाएं और उनकी देखभाल करें। सरोवर के पानी का उपयोग बागवानी, मछली पालन के लिए करने में महिलाओं की भी मदद करें। साथ ही साथ दोस्तों, विश्व जल दिवस यानी 22 मार्च पर या अन्य अवसरों पर स्कूल, कॉलेजेस में जल संरक्षण की रैलियां भी आप निकाल सकते हैं, जन जागरूकता अभियान भी चला सकते हैं।

दोस्तों मिशन अमृत सरोवर केवल सरकार का मिशन नहीं, यह हर भारतीय का मिशन है। यह पानी बचाने का मिशन है, गांव को आत्मनिर्भर बनाने का मिशन है। जलवायु परिवर्तन के इस दौर में दोस्तों, जब ग्लेशियर पिघल रहे हैं, नदियां सूख रही है, तब यह छोटे छोटे सरोवर ही है जो हमारी सुरक्षा कवच बन सकते हैं। हर बूंद कीमती है, हर सरोवर अनमोल है, हर युवा जल योद्धा बने, यही हमारा मूल मंत्र है। तो दोस्तों आज से ही तय कर लीजिए, अपने गांव, अपने मोहल्ले, अपने शहर के एक जल स्रोत को पुनर्जीवित करना है, कम से कम एक बाल्टी पानी रोज बचाना है। तो आइए आपको सुनाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। बातें तो दोस्तों हम और भी करेंगे,

दोस्तों, अब से कुछ ही मिनट बाद आप सुनेंगे नाटक अंतश का उजास। लेखक सुमन कंवर, निर्देशन नवीन सिसोदिया, प्रतिभागी नवीन सिसोदिया, विशाल छाबड़ा, गुलशन मेघानी, अक्षत चावला, सुमन कंवर और मधुलता पुरोहित।

0: गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: दोस्तों, अभी आप सुन रहे हैं राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती कॉटन सिटी चैनल आकाशवाणी सूरतगढ़ से प्रसारित युवाणी कार्यक्रम। मेगावाट 918 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 909 किलो हर्ट्ज, एफएम 100.1 मेगा हर्ट्ज और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर। लीजिए, अब आपको सुनाते हैं एक नाटक, अंतस का उजास। लेखक सुमन कंवर, निर्देशन नवीन सिसोदिया, प्रतिभागी नवीन सिसोदिया, विशाल छाबड़ा, गुलशन मेघानी, अक्षत चावला, सुमन कंवर और मधुलता पुरोहित।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला

0: अरे ये कौन पड़ा है इस सुनसान जगह पर?
1: पता करता हूँ।
0: तो भाई कौन है तू? ओ भाई इन सुनसान छतरियों पर तो दिन में भी कोई नहीं आता, तू इस सिंजारे वक्त में सो रहा है? ओ भाई
2: सोने दो ना यार, तुम कौन हो? यहां भी कोई चैन से रहने नहीं देता।
0: अरे भाई मैं तो अपना रेवड़ लेके घर जा रहा था, दिन ढलने को है, थाने देखा तो रुक गया। तो पानी पी ले।
2: पानी? मुझे कोई जहर दे दो, छूट जाओ इसे।
0: राम राम, अरे ऐसी बातें नहीं करते, के तकलीफ है भाई?
2: तकलीफ? सुनोगे मेरी तकलीफ?
0: हाँ भाई तकलीफ बता, कुछ हड़का हो जैसी। जी छोटा मत कर, माने बता भाई।
2: क्या बताऊं, आज से करीब 4 साल पहले

0: अविनाश, अभी बेटा
1: आया।
0: नाश्ता कर लो, कॉलेज के लिए लेट हो जाओगे।
1: मां मुझे नहीं खाने ये पराठे वराठे, मैं बाहर खा लूंगा कुछ अच्छा।
0: लो जी, सुनो इनकी बात। बाहर अच्छा खाना मिलता है और घर में खराब।
2: अरे ये सुबह सुबह माँ बेटे की बहस फिर शुरू हो गई। ये नहीं खा रहा पराठे तो रहने दो, तुम मुझे दो भाई। तुम्हारे हाथों के जायके ने तो हमें आज तक बांध रखा है।
0: जी, मैं ला रही हूं।
2: ये पनीर के पराठे तो सच में बहुत लाजवाब बने हैं।
0: हाँ, सुनिए जी, मुझे अभी की फिक्र होने लगी है। आजकल सुबह निकलता है घर से, टाइम पर लौटता नहीं, और जब आता है तब भी फोन में लगा रहता है, न जाने क्या करता रहता है।
2: अरे भाई, पूछो उससे कि फोन में ऐसा कौन सा खजाना गड़ा है जो हाथों से छूटता ही नहीं।

0: हाय श्रुति।
1: हेलो अवि, कैसे हो?
0: आई एम गुड। यार तुम भी अजीब हो, कैंटीन में भी बुक्स लेकर आती हो।
1: तो
0: अरे छोड़ो ये बुक्स, ये देखो मेरी लेटेस्ट रील पर कितने लाइक्स आ रहे हैं। क्या अभी तो ये शुरुआत है, बस देखती जाओ, मिलियंस में व्यूज आएंगे, फिर लाखों कमाऊंगा। और

0: दुनिया मेरे कदमों में होगी।
1: वैसे एक बात बताओ, कॉलेज की लड़कियां तो अभी से मेरे आसपास मंडराने लगी हैं। तुम जेलस तो नहीं हो रहे हो?
2: मैं क्यों जेलस होने लगी? वैसे अभी तुम जो ये वीडियो बनाते हो ना, मुझे तो खास पसंद नहीं आते।
1: क्यों?
2: गंदा सा मुंह बनाकर तुम जो ये डबल मीनिंग बातें करते हो ना, तुम्हें ये शोभा देता है ये सब? और मुझे ये भी समझ में नहीं आता, आंटी अंकल तुम्हें टोकते क्यों नहीं?
1: अरे यार, वो कहाँ देखेंगे, पापा ऑफिस में बिजी रहते हैं, मम्मी घर में।

0: कितनी शोभा देता है ये सब। और मुझे ये भी समझ में नहीं आता, आंटी अंकल तुम्हें टोकते क्यों नहीं?
1: अरे यार, वो कहाँ देखेंगे, पापा ऑफिस में बिजी रहते हैं, मम्मी घर में।
0: जो भी हो अभी, तुम्हें स्टडी पर फोकस करना चाहिए। हमारे पेरेंट्स भी तो हमसे कोई उम्मीद रखते हैं ना।
1: अरे भाई, स्टडीज के बाद ये 9 to 6 की जॉब कौन करे? जितना पापा साल भर में कमाएंगे ना, उससे ज्यादा तो मैं एक महीने में कमा लूंगा।
0: वैसे एक बात बताओ, तुम्हारे ये वीडियो वायरल कैसे हो जाते हैं?
1: अरे कुछ नहीं, डबल मीनिंग जोक सुनाओ, 2-4 गालियां बीच में ऐड कर दो, वीडियो वायरल। और अच्छे कंटेंट के साथ ना ग्रोथ करने में बहुत वक्त लगता है, फिर नॉलेज भी तो होना चाहिए। अब इतनी मेहनत कौन करे? तुम्हें पता है, मुझे मुंबई से स्टेज शो के ऑफर भी मिलने लगे हैं।
0: अच्छा,
1: बस थोड़े ही दिनों की बात है, बाहर चला जाऊंगा, फिर देखना।
0: और तुम्हारी स्टडीज?
1: अरे स्टडीज को कौन पूछता है, दुनिया पैसे को पूछती है और पूछती भी है।
0: जी नहीं, मैं ऐसा नहीं मानती। पढ़ाई लिखाई इंसान को मजबूत बनाती है, आत्मविश्वास पैदा करती है और हर समस्या का सामना करने का साहस भी देती है। पैसा तो नौकरी और बिजनेस से भी कमाया जा सकता है।
1: अरे अब तुम ज्ञान मत दो, आओ चलो तुम्हें कॉफी पिलाता हूँ।
0: मुझे नहीं पीनी कॉफी।
1: तुम्हारी मर्जी।

0: अभी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? पढ़ाई बीच में छोड़कर मुंबई जा रहे हो?
1: पापा आप समझ नहीं रहे हैं, एक एंटरटेनमेंट कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया मैंने, दुनिया भर में स्टेज शो होंगे मेरे।
2: हमसे पूछे बगैर तूने इतना बड़ा फैसला ले लिया?
1: मेरी जिंदगी है माँ, फैसले भी मेरे ही होंगे, आप मुझे नहीं रोक सकते। मैच्योर हो गया हूं मैं, अब
0: अभी
1: मैं जा रहा हूं।

0: यार मुंटी, आज कंटिन्यू 10 दिन हुए शुगर ट्रेवल करते हुए। आई एम सो टायर्ड यार, मुझे ब्रेक चाहिए।
1: ये तो शुरुआत है बेटा, अभी से थक गए? ये टायर्ड वायर्ड भूल जाओ, पैसा यूं ही नहीं कमाया जाता। मोटा अमाउंट मिल रहा है ना, बस काम करते जाओ। और हाँ, तुम्हारे कंटेंट में वल्गैरिटी कम है, थोड़ा और मसाला डालो यार।
0: अरे यार मोंटी, समझो मेरी हालत खराब है।
1: कुछ भी हो, शो तो आज करना पड़ेगा। हाँ, एक स्पेशल चीज है मेरे पास जो तुम्हारी सारी थकान मिटा देगी। ये लो स्पेशल सिगरेट, एक कश लगाओ, हवाओं में उड़ने लगोगे।
0: मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता, क्या है इसमें?
1: अरे लो ना यार, हम सब लेते हैं, ऐसा क्या बुरा है इसमें?
0: बड़ी अजीब सी गंध है इसमें।

0: हेलो, कौन? श्रुति, हाउ आर यू?
1: ठीक हूँ अभी। तुम तो जैसे भूल ही गए हम सबको। 2 साल में एक कॉल भी नहीं की तुमने।
0: फुर्सत ही कहाँ मिलती श्रुति, स्टेज शो, इंटरव्यू, ब्लॉग्स, एक शहर से दूसरे शहर, कभी दुबई, कभी न्यूयॉर्क, कभी बैंकॉक। वक्त पंख लगाकर उड़ रहा है श्रुति। आज सब कुछ है मेरे पास, महंगे कपड़े, महंगी गाड़ियाँ, घर, सब कुछ है। और मम्मी पापा को इतनी बार कह चुका हूँ, मेरे पास आकर रहें, लाइफ को एंजॉय करें, मगर नहीं, उन्हें पता नहीं मुझसे क्या प्रॉब्लम है।
1: प्रॉब्लम तुमसे नहीं, तुम्हारे काम से है अभी, तुम्हारी लाइफस्टाइल से है।
0: क्यों?
1: आंटी ने बताया था मुझे, वे एक हफ्ता रहे थे ना तुम्हारे पास।
0: हाँ हाँ
1: तुम नशा करते हो अभी, गलत आदतों में पड़ गए हो तुम। ऐसी दौलत का क्या करोगे अविनाश, जहाँ तुम्हारे अपने ही तुमसे दूर होते जा रहे हैं। देखना अभी, एक दिन तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास जरूर होगा।
0: गलतियों का एहसास?
1: खैर, तुम्हें बता दूं, मेरी शादी होने वाली है नेक्स्ट मंथ। पॉसिबल हो तो आना तुम भी।
0: मुझे बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है।

0: हेलो मोंटी,
1: हाँ बोलो, क्यों परेशान कर रहे हो?
0: मैं परेशान कर रहा हूँ? परेशान तो तुमने कर रखा है मोंटी। 3 महीने से तुम पेमेंट नहीं कर रहे हो, मैं अपना खर्च कैसे निकालूं यार? ऊपर से मुझे नई बुकिंग भी नहीं दे रहे हो।
1: तुमने शायद कॉन्ट्रैक्ट ठीक से पढ़ा नहीं, पढ़ लेना सब समझ में आ जाएगा। वैसे भी अब तुम होश में कहाँ रहते हो? तुम्हारे होटल्स के बिल भरते भरते थक गया हूँ मैं, और तुम्हारे पुराने उबाऊ कंटेंट पब्लिक देखना नहीं चाहती। कुछ नया हो तो बात करना, वरना कॉल करके परेशान मत करो।

0: मेरी गलत आदतों ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। गाड़ियां बिक गई, सब दोस्त छोड़कर चले गए। कार एक्सीडेंट में मम्मी पापा भी नहीं रहे। महीनों से घूम रहा हूं तन्हा, एक जगह से दूसरी जगह। कहीं सुकून नहीं मिलता, सब खो दिया मैंने, बस अंधेरा ही अंधेरा है।
1: भाई, ये खोना और पाना तो सब समय का खेल है, बस इंसान को हौसला नहीं खोना चाहिए। रुपया पैसा भी जीवन चलाने के लिए जरूरी तो है, मगर यही धन हमें नीचे गिराए फिर किस काम का। जानते हो भाई, मैं अपना काम मेहनत से करता हूं और जिम्मेदारी से करता। रेवड़ लेकर घर जाऊंगा, स्नान करूंगा, भोजन करूंगा और फिर खुले आकाश के तले शांति से सो जाऊंगा। संतुष्टि के लिए एक कण ही बहुत है, और असंतुष्टि के लिए तो फिर सारी दुनिया ही कम है। ठीक है भाई, मुझे दूर जाना है, मैं चलूं। राम राम।

हे ईश्वर, हे परमात्मा, मैं अपनी हर गलती की माफी मांगता हूं। मुझे माफ कर दो, क्षमा करो। ये कैसी रोशनी है मेरे आसपास, ये कैसा नूर है, ये कैसा एहसास हो रहा है, ये उजास कहां से आ रहा है? क्या इसे ही अंतस को उजास कहते हैं? हाँ, इसे ही तो अंतस का उजास कहते हैं, इसे ही तो अंतस का उजास कहते हैं। हे परमात्मा, हे मेरे परमात्मा।

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे नाटक अंतस का उजास, लेखक सुमन कंवर, निर्देशन नवीन सिसोदिया, प्रतिभागी नवीन सिसोदिया, विशाल छाबड़ा, गुलशन मेघानी, अक्षत चावला, सुमन कंवर और मधुलता पुरोहित।
1: आकाशवाणी सूरतगढ़ की प्रस्तुति नाटक आखिरी चिट्ठी, सुनिए दिनांक 13 जून 2026 शनिवार सुबह 9:30 बजे।
2: सभी जवान अपनी अपनी पोजीशन संभालो, दुश्मन ने पहाड़ी वाले मोर्चे पर भारी हमला कर दिया है।
1: याद रखें, नाटक आखिरी चिट्ठी सुनिए 13 जून 2026 शनिवार सुबह

0: 9 बजे।
1: अर्जुन, सामने वाली पहाड़ी पर दुश्मन तेजी से आगे बढ़ रहा है। उनकी संख्या हमसे ज्यादा है, लेकिन हमें उन्हें रोकना ही होगा।
2: संख्या से युद्ध नहीं जीते जाते रवि, हौसले से जीते जाते हैं।
0: दिनांक 13 जून 2026, शनिवार सुबह 9:30 बजे सुने आकाशवाणी सूरतगढ़ की प्रस्तुति नाटक आखिरी चिट्ठी।
3: दोस्तों, एक माँ जो अपने बच्चों को स्कूल भेजती है, उसे पढ़ाती है, उसे सिखाती है कि जाति और धर्म से पहले हम इंसान हैं, भारतीय हैं। सरोजिनी नायडू जी का कहना था, यह तुम्हारा गर्व नहीं तुम मद्रासी हो, ब्राह्मण हो, तुम्हारा गर्व है कि तुम एक भारतीय हो। दोस्तों, देश प्रेम केवल झंडा फहराने या राष्ट्रगान गाने का नाम नहीं है, बल्कि हमें उस वतन की मिट्टी से रिश्ता निभाने का नाम है जिसने हमें इंसान होना सिखाया। श्रोताओं, देश प्रेम शब्द सुनते ही आंखों के सामने गांधी जी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारियों का चेहरा हम सभी के सामने आ जाता है। लेकिन क्या केवल उन्हीं में ही देश प्रेम था? नहीं दोस्तों, देश प्रेम का कोई रूप नहीं। जो किसान सुबह सुबह खेतों में निकल जाता है वह देश प्रेमी, जो शिक्षक बिना थके बच्चों का भविष्य संवारता है, जो डॉक्टर रात रात भर मरीजों की सेवा करता है चाहे देश में कोविड जैसी या उससे भी गंभीर बीमारी क्यों ना हो, वह भी दोस्तों देश प्रेमी ही है। यह धरती, अपनी धरती के प्रति आभार व्यक्त करना है। महात्मा गांधी जी का कथन, आपको वह परिवर्तन स्वयं बनाना होगा जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। दोस्तों, राष्ट्रीयता जातीयता नहीं, राष्ट्रीयता धार्मिक सिद्धांतों का दायरा नहीं, राष्ट्रीयता सामाजिक बंधनों का घेरा नहीं। राष्ट्रीयता का जन्म तो देश के स्वरूप से होता है, उसकी सीमाएं देश की सीमाएं हैं। प्राकृतिक विशेषता और भिन्नता देश को संसार से अलग और स्पष्ट करती है और उनके निवासियों को एक विशेष बंधन में किसी सादृश्य के बंधन से बांधती है। देश में कहीं कहीं राष्ट्रीयता के भाव को समझने में गहरी और आए दिन हम भूल भी कर पाते हैं, लेकिन दोस्तों इस भाव के अर्थ में हम भली भांति समझ चुके हैं कि राष्ट्रीयता यानी एकता होना। एकता के सूत्र में सभी भारतीय नागरिकों का पिरोए होना एक सुंदर माला के फूलों की तरह। APJ अब्दुल कलाम की पंक्तियां याद करें, जहां सपने जन्म लेते हैं और फिर कर्म बन जाते हैं, वही राष्ट्र का भविष्य बसता है। तो लीजिए दोस्तों, बातों का सिलसिला तो यूं ही आगे भी चलता रहेगा। उससे पहले आपको सुनाते हैं कार्यक्रम में ये अगला गीत।

दोस्तों, अब हम बात करेंगे प्रदूषण इस विषय पर। प्रकृति ने हमें कभी नहीं रोका, हमने खुद ही सांसें रोक ली। दोस्तों, आज सुबह दिल्ली की सड़कों पर धुंध नहीं, जहर बिखरा होता है। ठंड में आप देख सकते हैं, धुंध ही धुंध यानी धुआं सा दिखाई देता है। गंगा के किनारे बैठा मछुआरा मछलियां नहीं प्लास्टिक के थैले पकड़ रहा है, और शोर वह शोर जो हमें बहरा कर रहा है, हम उसे मौसम कहते हैं। तो लीजिए, इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। प्रदूषण यानी हमारे प्राकृतिक संसाधनों में उन तत्वों का मिलना जो नहीं होने चाहिए। जैसे चाय में चीनी की जगह नमक, तो चाय पीने लायक नहीं रहती। दोस्तों, वैसे ही जब हवा में धुआं, पानी में गंदगी, जमीन में जहर और कानों में अनावश्यक शोर घुल जाता है, तो जीवन कठिन होने लगता है। वायु, जल, ध्वनि और भूमि प्रदूषण, दोस्तों ये चारों अब हमारी आदतों का हिस्सा बन चुके हैं, और यह वह आदत है जो धीरे धीरे हमारा अस्तित्व मिटा रही है। आप में से हर कोई महसूस करता है कि सर्दी की वह सुबह जिसे हम कोहरा कहकर खुश हो जाते हैं, असल में दोस्तों वह धुआं है, धुएं और कोहरे का जहरीला मिश्रण। फैक्ट्रियों का काला धुआं

लाखों गाड़ियों का धधकता पेट्रोल डीजल और खेतों में पराली जैसी जलाने की वह परंपरा जिनमें सांस लेना मुश्किल कर देती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है कि दुनिया में सबसे प्रदूषित सांसें भारतीय शहरों में ली जाती है। हर साल लाखों बच्चे अस्थमा और सांस की बीमारियों का शिकार होते रहे हैं। दोस्तों, एक अध्ययन बताता है कि दिल्ली में सांस लेना दिन में 20 सिगरेट पीने जैसा है। यह आंकड़ा डराता है क्योंकि शायद यह सच भी है। और आप जानते हैं कि घर के अंदर भी हम जहर सांस लेते हैं। चूल्हे का धुआं, अगरबत्ती, मॉस्किटो कॉइज, ग्रामीण क्षेत्रों में लकड़ियों और गोबर के जलने से जो धुआं उठता है वह लाखों माताओं बच्चियों के फेफड़ों को भी काला कर रहा है। वायु प्रदूषण मौत को दरवाजे पर लाकर खड़ा कर देता है। जल प्रदूषण, दोस्तों, गंगा और नालों का दर्द। मैं काशी के गंगा घाट पर खड़ा हूँ। ऐसी आप कल्पना कीजिए, सुबह की आरती, घंटियाँ बज रही है, लेकिन गंगा पुकार रही है, मुझे बचाओ। हमें पवित्र नदियों को नाला बना दिया है। फैक्ट्रियों का रंगीन केमिकल, गांवों और शहरों का कच्चा मल, प्लास्टिक की थैलियाँ जो सैकड़ों साल तक नहीं पिघलती, यह सब बहता है और हम वही पानी पीते हैं, उसी में स्नान करते हैं, उसी को हम यूज़ करते हैं। दोस्तों, इसका नतीजा है टाइफाइड, हैजा, डायरिया जैसी बीमारियां। मछलियां मर रही है, किसानों की फसलें जहरीले पानी में सींची जा रही है। हर किसान, एक किसान का बेटा कहता है, हमें नहाने तक का साफ पानी मिलना मुश्किल है। ध्वनि प्रदूषण, दोस्तों, चुप्पी का कत्ल। कभी रात 2 बजे जगे, बिना किसी कारण वजह थी, लगातार बजता हॉर्न, पास के पार्क में लगा जनरेटर या किसी शादी का डीजे। हमने सोचा कि शोर सिर्फ तेज है, लेकिन यह हमारे दिमाग में बैठता जाता है। और इस प्रदूषण का एक बड़ा असर है ब्लड प्रेशर, तनाव, घबराहट और नींद न आने जैसी समस्याएं। ध्वनि प्रदूषण, जिसकी अभी हमने बात की, भूमि प्रदूषण, जमीन जो हमें रोटी देती है। दोस्तों, हम क्या समाधान कर सकते हैं प्रदूषण को कम करने के लिए? लीजिए देखते हैं। हर महीने कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाएं, पीपल, नीम, अशोक, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। ये सभी वृक्ष ही प्रकृति के एसी हैं। दोस्तों, सप्ताह में एक दिन नो कार दिवस मनाइए। साइकिल चलाइए, पैदल चलिए, पेट्रोल डीजल की जगह सीएनजी या इलेक्ट्रिक को अपनाइए। प्लास्टिक को कीजिए ना, यानी कपड़े के थैले, मिट्टी के गिलास, स्टील की बोतल। घर का कूड़ा, गीला और सूखा, अलग करें और खाद बनाएं। इसके साथ ही जल बचाइए, नल बंद रखिए, बारिश को, पानी को इकट्ठा कीजिए, हर बूंद कीमती है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे प्रदूषण के बारे में। दोस्तों, यह धरती हमें सौंपी गई बाग की तरह, हमने उसे लैंडफिल बना दिया। अगर तुरंत कदम न उठाए गए तो आने वाली पीढ़ियां भी हमें कोसेगी। एक माँ अपने बच्चे से कहेगी, हमारे पूर्वजों ने हवा, पानी, मिट्टी सब खत्म कर दिया। अभी भी समय है, प्रकृति बहुत दयालु है, हमारी पृथ्वी माँ भी बहुत दयालु है। अगर हम बदले तो वह ठीक हो जाएगी। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, यही हमारा संकल्प होना चाहिए। तो दोस्तों, हमने बात की प्रदूषण के बारे में। आज से ही संकल्प लीजिए, मैं कम से कम एक ऐसा काम करूंगा जिससे प्रदूषण घटे। पेड़ लगाऊंगा, पानी बर्बाद नहीं करूंगा, कम हॉर्न बजाऊंगा। साथ मिलकर हम वह हवा और लौटा सकते हैं जो पहले थी, मीठी, साफ, शुद्ध और भरपूर आनंददायक।

मीडियमवेव 320.20 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्स पर हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सराय की।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सराय की। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 900 किलोहर्ट्स पर हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में छपसकर 30 मिनट पर आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, छपसकर 40 मिनट पर जिले की चिट्ठी, 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे जिसे हम अपने जयपुर अजमेर केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता के दौर में भी भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डिजिटल फर्स्ट हाइपर लोकल के मंत्र के साथ आकाशवाणी और दूरदर्शन के कलेवर में बदलाव का आह्वान किया। राजस्थान से राज्यसभा चुनाव में तीनों प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित, दो सीटें भाजपा और एक कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में। और राज्य में कल से 15 जुलाई तक शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित किए जाएंगे।

0: समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता के दौर में भी भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। वे आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में बोल रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि देश विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है, ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। बैठक में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास और युवाओं को रोजगार देने को सरकार की प्राथमिकता बताया गया। साथ ही महिला नेतृत्व आधारित विकास, उद्यमिता, कृषि और स्टार्टअप पर भी चर्चा की गई। बैठक में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी शिरकत की। श्री शर्मा ने राजस्थान के विकास के विजन, उपलब्धियों और भावी कार्य योजनाओं को पेश किया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण, रेल तथा सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर आकाशवाणी परिसर से जैसलमेर के रामगढ़ में 20 किलोवाट के एफएम ट्रांसमीटर का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए आकाशवाणी और दूरदर्शन से सीमांत क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने की बात कही। उन्होंने इस समय इन संस्थानों में परिवर्तन पर भी जोर दिया। श्री वैष्णव ने डिजिटल फर्स्ट हाइपर लोकल मंत्र के साथ इस मुहिम को आगे बढ़ाने की बात की।
1: नए तरीके से सोचे आकाशवाणी के बारे में, हम आज के समय के हिसाब से आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल, इन दो सूत्रों में बांधे। जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास आज अवेलेबल है, उस प्लेटफॉर्म को यूज करें। लोकल आर्ट, लोकल संस्कृति, लोकल खानपान को आगे लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए। अगले 1000 दिनों में एक मास्टर प्लान बना के आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करें। आपको पूरा फ्रीडम है, जो आप कहोगे वो पॉलिसी बनेगी। पॉलिसी बनाने वाले आप, इंप्लीमेंट करने वाले आप।
0: कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री हीरा लाल नागर, जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा, विधायक गोपाल शर्मा, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री ने प्रदेश के विभिन्न रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास कार्यों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने रेल विकास के लिए पुरजोर प्रयास किए हैं।
1: करीब अपने 450 स्टेशन है पूरे प्रदेश में, उसमें से 200 स्टेशनों का काम करीब करीब पूरा होने को आया है। तो ये काम जो कि जन जन को, जैसे श्रद्धेय अटल जी ने

0: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बना के गांव गांव तक सड़क पहुंचाई थी, वैसा ही आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी छोटे से छोटे स्टेशन पर भी अच्छा काम करने के लिए दिन रात लगे। बड़े स्टेशनों का काम तो अपनी जगह है, जयपुर में एक तरीके से लोग आते हुए स्टेशन को भी देखेंगे, जैसे हवा महल देखने जाते हैं, वैसे ही ये भी एक टूरिज्म का अच्छा अट्रैक्शन बनेगा और जनता को बहुत बड़ी सुविधाएं होंगी।
1: इसके बाद श्री वैष्णव ने MNIT में सेमीकंडक्टर, क्वांटम टेक्नोलॉजी और AI लैब विकसित करने की घोषणा की। उन्होंने विद्यार्थियों से संवाद कर नवाचार, तकनीक और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने पर जोर दिया। श्री वैष्णव ने दुर्गापुरा स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में भी शिरकत की। उन्होंने प्रदेश भाजपा मुख्यालय से प्रेस वार्ता को भी संबोधित किया। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले का कल जयपुर आने का कार्यक्रम है। वे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित नशा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। श्री अठावले वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग जन सशक्तिकरण सम्मान कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। PBM अस्पताल में प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने के मामले की गहन जानकारी लेने चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर आज बीकानेर पहुंचे। श्री खींवसर ने चिकित्सकों और अधिकारियों के साथ बैठक कर स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने अस्पताल में भर्ती महिलाओं के स्वास्थ्य की जानकारी ली, साथ ही प्रभावित प्रसूताओं के परिजनों से बात कर बेहतर इलाज करवाने का आश्वासन दिया। चिकित्सा मंत्री ने मीडिया से कहा कि मामले की विस्तृत जाँच करवाई जा रही है, रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक की जाएगी। इस मामले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज अस्पताल परिसर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी की। उन्होंने घटना की उच्च स्तरीय जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने आज जयपुर में जैविक उर्वरक निर्माण और भंडारण संयंत्र में हो रही गंभीर गड़बड़ियों का खुलासा किया। श्री मीणा अपनी टीम के साथ कानोता स्थित एक फैक्ट्री का जायजा लेने पहुंचे, जहां निर्धारित मानकों के विपरीत बायो फर्टिलाइजर्स बनाए जा रहे थे। कृषि मंत्री ने इन उर्वरकों की पैकेजिंग और लेबल पर अंकित जानकारियों को भ्रामक बताया। निरीक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि कच्चे माल का उचित भंडारण और रखरखाव नहीं किया जा रहा था। मीडिया से बातचीत में श्री मीणा ने बताया कि किसानों के साथ किसी भी तरह की धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नकली खाद और बीज बेचने वालों के खिलाफ प्रदेश भर में अभियान लगातार जारी रहेगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
2: ये जो यहाँ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं बायो एजेंट, बायो स्टिमुलेंट, बायो फर्टिलाइजर, सीवीड एक्सट्रैक्ट और माइक्रो न्यूट्रिएंट, ये फर्जी बनाया जा रहा है और इस फर्जी प्रोडक्ट को ये किसानों को महंगे दामों में बेचते हैं। बुरी तरह से बेरहमी से किसानों का लूटने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। खरीद के उसकी उपज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि उसकी भूमि खराब हो जाएगी, जहरीली हो जाएगी, बेकार हो जाएगी।
1: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। राजस्थान से राज्यसभा द्विवार्षिक चुनाव 2026 के लिए तीनों प्रत्याशियों को विधानसभा में आज निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। राज्यसभा निर्वाचन के रिटर्निंग ऑफिसर भारत भूषण शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉ. सतीश पूनिया, डॉ. अलका सिंह और कांग्रेस उम्मीदवार नीरज डांगी को चुने जाने की घोषणा की। उन्होंने तीनों प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र दिए। राज्य में कल से शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित किए जाएंगे। ये शिविर 15 जुलाई तक चलेंगे। शहरी शिविरों के दौरान साफ सफाई, सड़क मरम्मत, फ्री होल्ड पट्टे जारी करने सहित अन्य फ्लैगशिप जनहित योजनाओं के लिए आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बताया कि पिछले सालों की बकाया लीज राशि एक मुश्त जमा कराने पर राज्य सरकार की ओर से ब्याज में 100% छूट दी जाएगी।
3: नगर निकायों में कैंप लगने हैं, उन कैंपों में आम आदमी को जो भी पट्टा लेना है, विभाजन करवाना है या दूसरे कोई काम है, उसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन करने में सक्षम नहीं है, ऑफलाइन आवेदन करेगा, तो हमने निकायों को निर्देशित किया है कि वहाँ की व्यवस्था रखें और उचित शुल्क पर उसका आवेदन ऑनलाइन हो।

0: होनी चाहिए। अभियान की अवधि के दौरान निश्चित रूप से निस्तारण हो, इस बात को सुनिश्चित करेंगे।
1: ग्रामीण सेवा शिविरों के माध्यम से नागरिकों को 22 प्रमुख विभागों की योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। इनमें खातों के विभाजन, नामांतरण और रास्ते संबंधी प्रकरण तथा अन्य मामलों का निपटारा किया जाएगा। साथ ही पेयजल, बिजली, सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं का भी समाधान किया जाएगा। प्रदेश में मॉनसून के दौरान संभावित बाढ़, जलभराव, अतिवृष्टि और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए व्यापक और समन्वित तैयारियों पर जोर दिया गया है। आपदा प्रबंधन, सहायता और नागरिक सुरक्षा मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने आज जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में कहा कि जन सुरक्षा सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उन्होंने आपदा प्रबंधन में पूर्व तैयारी, समयबद्ध चेतावनी और प्रभावी समन्वय पर बल दिया। डॉ. मीणा ने 15 जून से राज्य और जिला स्तर पर आपदा नियंत्रण कक्षों को सक्रिय करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मॉनसून की नियमित निगरानी के लिए वेदर वॉच ग्रुप का भी गठन किया गया है। साथ ही डॉ. मीणा ने सभी बांधों, जलाशयों और एनीकटों की मरम्मत तथा रखरखाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रदेश में भीषण गर्मी और उमस के दौर के बीच आज से कुछ स्थानों पर मौसम में बदलाव की उम्मीद है। राज्य में सक्रिय हो रहे नए पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव कई हिस्सों में देखने को मिल सकता है। 12 जिलों में आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट बताया गया है। वहीं कुछ क्षेत्रों में ओले गिरने के भी आसार हैं। बदले मौसमी तंत्र का असर 14 जून तक बना रह सकता है। अंधड़ और बरसात की संभावना को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। इस बीच कई शहरों में अधिकतम तापमान 40 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच मापा गया। तेज धूप के कारण तापमान में बढ़ोतरी हुई है। जयपुर में एक निर्माणाधीन इमारत में मिट्टी ढहने से 3 महिला श्रमिकों की मृत्यु हो गई। घटना वैशाली नगर इलाके में हुई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि गृहिणियां केवल घरेलू कामकाज तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि वे परिवारों और भावी पीढ़ियों के निर्माण में अहम योगदान देती हैं। अदालत ने कहा है कि घर का प्रबंधन करने वाली महिलाओं को केवल गृहिणी कहकर संबोधित करना समाज में उनके योगदान को कम आंकना है। न्यायमूर्ति संजय करोल और एन कोटीश्वर सिंह की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि घर की देखभाल और प्रबंधन का काम बहुत महत्वपूर्ण होता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता के दौर में भी भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डिजिटल फर्स्ट हाइपर लोकल के मंत्र के साथ आकाशवाणी और दूरदर्शन के कलेवर में बदलाव का आह्वान किया। राजस्थान से राज्यसभा चुनाव में 3 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित, 2 सीटें भाजपा और 1 कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में। और राज्य में कल से 15 जुलाई तक शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से सवाई माधोपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख सतीश वर्मा ने तैयार किया है। जिले में 21 जून को आयोजित होने वाले 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के काउंटडाउन के तहत विभिन्न गतिविधियां और व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। योगा फॉर हेल्दी एजिंग थीम पर मुख्यालय सहित सभी ब्लॉक, ग्राम पंचायत, निजी और राजकीय शिक्षण संस्थानों, आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, कारागृहों, पुलिस थानों, पर्यटन स्थलों, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पर योग आयोजन किए जाने, योग संयम पोर्टल पर पंजीकरण कराने तथा योग के उपरांत फोटो अपलोड करने के लिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जिले के गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन को भी अब जंक्शन का दर्जा मिल गया है। दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर स्थित गंगापुर सिटी से दौसा मार्ग पर रेल यातायात सुचारू होने के बाद कोटा रेल मंडल प्रबंधन की ओर से ये घोषणा की गई। जिले में इन दिनों जनगणना का कार्य प्रगति पर है। प्रगणक घर घर जाकर लोगों से 33 प्रश्नों को पूछकर एचएलओ ऐप पर दर्ज कर रहे हैं। इससे पहले बहुत सारे लोगों ने स्वगणना पोर्टल पर अपनी जानकारी भी ऑनलाइन दर्ज की। 25 मई को गंगा दशमी से शुरू हुए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान

0: में लोगों का भारी उत्साह देखने को मिला। अभियान का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने किया। अभियान के दौरान विभिन्न स्थानों पर प्रभात फेरी, कलश यात्राएं, पीपल पूजन, जल पूजन, पौधरोपण, संकल्प, शपथ, श्रमदान और मैत्री फुटबॉल मैच जैसी अनेक गतिविधियां आयोजित की गई। विश्व पर्यावरण दिवस पर साइकिल रैली के साथ अभियान का समापन हुआ और इसी के साथ हरियालो राजस्थान अभियान का आगाज हुआ। अभियान के तहत इस मानसून सीजन में सघन वृक्षारोपण किया जाना है। इसके लिए लोगों को नर्सरियों से पौधे वितरित किए जा रहे हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से बीते दिनों खुशखबरी मिली है। बाघिन T124 रिद्धि दो शावकों के साथ नजर आई है। नए शावक देखे जाने के बाद वन्य जीव प्रेमियों में और पर्यटन व्यवसायियों में खुशी की लहर देखी गई। वहीं जिले के पालीघाट स्थित राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य में दुर्लभतम घड़ियाल प्रजाति के नन्हे बच्चे अंडों से बाहर निकल रहे हैं। पालीघाट क्षेत्र में अब तक करीब 100 घड़ियाल हैचलिंग्स का सुरक्षित जन्म हुआ है। चंबल क्षेत्र में वन विभाग के प्रयासों की ये एक बहुत बड़ी सफलता है। जिले में इन दिनों मौसम का मिला जुला असर है। कभी तेज गर्मी तो कभी पश्चिमी विक्षोभ के चलते हल्की और मध्यम बरसात का दौर चला। इसके साथ ही ओलावृष्टि भी हुई। हालांकि इससे भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन एक बार फिर से गर्मी ने जोर पकड़ लिया है। आगामी मॉनसून के मद्देनजर डैम सेफ्टी रिव्यू पैनल के सदस्यों ने जिले के विभिन्न बांधों का निरीक्षण कर यहां की सुरक्षा व्यवस्थाओं को जांचा और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस बीच परिवहन विभाग और पुलिस की ओर से यातायात और सड़क सुरक्षा नियम को तोड़ने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अभियान के तहत वाहनों के अवैध मॉडिफिकेशन, फर्जी नंबर प्लेट, लाल नीली बत्ती, काली फिल्म, प्रेशर हॉर्न, सायरन हूटर, नंबर प्लेटों के अनधिकृत शब्द चिन्ह और स्टिकर लगाकर पंजीयन चिन्ह की दृश्यता को प्रभावित करने, नियम विरुद्ध नंबर प्लेटों वाले वाहनों पर कार्रवाई की जा रही है। ग्राम कृषि महोत्सव 2026 के तहत करमोदा स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में उर्वरकों के संतुलित उपयोग विषय पर विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कृषि विभाग की ओर से आत्मा योजना के तहत फूल उत्कृष्टता केंद्र में पर्यावरण, जल संरक्षण और प्राकृतिक खेती विषय पर कृषि संगोष्ठी और कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में किसानों को प्राकृतिक खेती, जल संरक्षण और उन्नत कृषि तकनीकों की जानकारी देकर पर्यावरण संरक्षण में सहभागिता का आह्वान किया गया। जिले में इन दिनों राजस्व विभाग की ओर से रास्ता खोलो अभियान के तहत विभिन्न ग्राम पंचायतों में विभागीय अधिकारी और पुलिस की मौजूदगी में गैर मुमकिन रास्तों पर बरसों से किए गए अतिक्रमणों को हटाया जा रहा है। अभियान के तहत जिले भर में अनेक स्थान पर सार्वजनिक मार्गों पर अतिक्रमण हटवाकर रास्ते खुलवाए गए हैं। सवाईमाधोपुर जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ। पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो, दुनिया में उथल पुथल रा मौजूदा दौर में आई भारत खुद माथे भरोसा और मजबूत इरादा सागे आगे बढ़ रियो है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव डिजिटल फर्स्ट हाइपर लोकल रा मंत्र सागे आकाशवाणी और दूरदर्शन रा कलेवर माए बदलाव बाबत कहो। जैसलमेर रा रामगढ़ माए 20 किलोवाट FM ट्रांसमीटर रो जयपुर रो उद्घाटन कीनो। प्रदेश हूँ राज्यसभा चुनाव माए 3 ही उम्मीदवार निर्विरोध चुनीचिया, 2 सीटा भाजपा और 1 कांग्रेस रा खाता माए। और राज्य में काल 15 जुलाई ताई शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर लगाया जावेला। समाचारों सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो है कि दुनिया में अनिश्चितता रा मौजूदा दौर में आई भारत खुद माथे भरोसा और मजबूत इरादा सागे आगे बढ़ रियो है। वे आज नई दिल्ली में राखी जी नीति आयोग री गवर्निंग काउंसिल री मीटिंग में बोल रहा हा। श्री मोदी कहो कि विकसित भारत बनावन ओड़ी बढ़ रहा देश में केंद्र और राज्य सरकार ने भेड़ी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। वे कहो कि राज्य बीच एक दूजारी मदद

0: बातचीत और विचारन और लेन देन भेवनु चाहिए। मीटिंग में चोखी भनाई लिखाई कौशल विकास और नौजवाना ने नौकरी धंधारा मौका मुहैया करावन मत है सरकार रो खास ध्यान भेवन री बात कही जी। ईसा गई महिलावारी अगुवाई माए विकास उद्यमिता खेतीबाड़ी और स्टार्टअप रे बारे में चर्चा करी जी। मीटिंग में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा राजस्थान रा विकास री सोच उपलब्धियां और कार्य योजना मारी जानकारी दीनी। सूचना और प्रसारण रेल और सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव आज जयपुर में आकाशवाणी रा परिसरों जैसलमेर जिला रा रामगढ़ में 20 किलोवाट बूता वाला FM रेडियो ट्रांसमीटर रो वर्चुअल तरीका उद्घाटन कीनो। ई मौके श्री वैष्णव सामरिक अवसंरचना माथे ध्यान देता थका आकाशवाणी और दूरदर्शन सरहदी हलका में संचार व्यवस्था मजबूत करण सारू कहो। वे डिजिटल फर्स्ट हाइपर लोकल रा मंत्र सागे आकाशवाणी और दूरदर्शन रा कलेवर माय बदलाव बाबत कहो।
1: नए तरीके से सोचे आकाशवाणी के बारे में, हम आज के समय के हिसाब से आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल इन दो सूत्रों में बांधे। जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास आज अवेलेबल है उस प्लेटफॉर्म को यूज करें, लोकल आर्ट, लोकल संस्कृति, लोकल खानपान को आगे लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए। अगले 1000 दिनों में एक मास्टर प्लान बना के आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करें। आपको पूरा फ्रीडम है, जो आप कहोगे वो पॉलिसी बनेगी, पॉलिसी बनाने वाले आप, इंप्लीमेंट करने वाले आप।
0: केंद्रीय मंत्री प्रदेश माय न्यारा न्यारा रेलवे स्टेशन ने और बेहतर बनावन रा कामा रोई जिक्र कीनो। वे कहो के NDA सरकार रेला रा विकास सारू हर संभव कोशिश कर रही है।
1: करीब अपने 450 स्टेशन है पूरे प्रदेश में, उसमें से 200 स्टेशनों का काम करीब करीब पूरा होने को आया है। तो ये काम जो कि जन जन को, जैसे श्रद्धेय अटल जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बना के गांव गांव तक सड़क पहुंचाई थी, वैसा ही आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी छोटे से छोटे स्टेशन पर भी अच्छा काम करने के लिए दिन रात लगे। बड़े स्टेशनों का काम तो अपनी जगह है, जयपुर में एक तरीके से लोग आते हुए स्टेशन को भी देखेंगे, जैसे हवा महल देखने जाते हैं, वैसे ही ये भी एक टूरिज्म का अच्छा अट्रैक्शन बनेगा और जनता को बहुत बड़ी सुविधाएं होंगी।
0: कार्यक्रम में राज्य रा ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, जयपुरी सांसद मंजू शर्मा, विधायक गोपाल शर्मा, प्रसार भारती रा अध्यक्ष प्रसून जोशी और आकाशवाणी रा महानिदेशक राजीव कुमार जैन समेत कई आला अहलकारी मौजूद रहा। ये पाछे श्री वैष्णव मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रो दौरो कर वठे सेमीकंडक्टर, क्वांटम टेक्नोलॉजी और AI लैब विकसित करण रो ऐलान कीनो। वह विद्यार्थियों सागे बातचीत कर नवाचार, तकनीक और स्टार्टअप ने बढ़ावो देवन मथे जोर तीनो। केंद्रीय मंत्री जयपुर रा कृषि अनुसंधान केंद्र माए राखी जिया विकसित भारत संकल्प सम्मेलन माए शामिल भया। वह प्रदेश भाजपा मुख्यालय माए खबर नवीसा सा गई बातचीत कीनी। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले काल जयपुर पधारेला। वह नशा मुक्त भारत अभियान रा तेत रख्या जावन वाला कार्यक्रम में खास पावना रा तौर शिरकत करेला। मारो वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग जन सशक्तिकरण सम्मान समारोह में शामिल भेवन रो कार्यक्रम है। बीकानेर रा PBM अस्पताल में जापा वाली लुगाइया री तबियत खराब भेवन रा मामला री जानकारी लेवन सारू चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर आज बीकानेर में डॉक्टरों और अहलकारों सागे मीटिंग कीनी और हालात रो जायजो लीनो। वह अस्पताल में भर्ती महिलाओं री साता पूछी। मंत्री जापा वाली लुगाइया रा परिवार वाला सागे बातचीत कर वाने बेहतर इलाज रो भरोसो दिरायो। चिकित्सा मंत्री खबर नवीसा सागे बातचीत करता थका कहो कि मामला री विगतवार जांच कराई जा रही है और जांच रिपोर्ट मिलिया पाछे जरूरी कार्रवाई करी जावेला। ई मामला न लेर कांग्रेस रा कार्यकर्ता आज PBM अस्पताल परिसर में सरकार रे खिलाफ प्रदर्शन कीनो और नारा लगाया। वे वाकया री आला दर्जा री जांच करावन और दोषियों रे खिलाफ कड़ी कार्रवाई री मांग कीनी। इस दौरान पुलिस ने हल्को लाठीचार्ज ही करनो पड़ियो। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा आज जयपुर में जैविक खाद बनावन रा कारखाना में कथित गड़बड़ियां रो खुलासो कीनो। वे कानोतारा एक कारखाना में तय मानकां रा इतर जैविक

0: खाद बनावन रेठा केनी। कृषि मंत्री ई खाद रा कट्टा अर लेबल माथे मंडोड़ी जानकारियां ने भरमावन वाली बताई। खबर नवी सा सागे बातचीत करता थका डॉक्टर मीणा बतायो के काश्तकारा सागे किड़ी भांतरी दगाबाजी बर्दाश्त नहीं करी चावेला। वह कहो के नकली खाद बीज बेचण वाला रे खिलाफ आखा राज्य में अभियान चलायो जा रियो है और दोषी मिलन वाला रे खिलाफ कड़ी कार्रवाई करी जावेला।
1: ये जो यहाँ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं बायो एजेंट, बायो स्टिमुलेंट, बायो फर्टिलाइजर, सीवीड एक्सट्रैक्ट और माइक्रो न्यूट्रिएंट, ये फर्जी बनाया जा रहा है और इस फर्जी प्रोडक्ट को ये किसानों को महंगे दामों में बेचते हैं। बुरी तरह से बेरहमी किसानों का लूटने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। खरीद के उसकी उपज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि उसकी भूमि खराब हो जाएगी, जहरीली हो जाएगी, बेकार हो जाएगी।
0: ऐसा समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रदेश और राज्यसभा रे तीन सीटां रा द्विवार्षिक चुनाव सारू तीन ही उम्मीदवार निर्विरोध चुनी चिया है। राज्यसभा चुनाव रा रिटर्निंग ऑफिसर भारत भूषण शर्मा, भारतीय जनता पार्टी रा डॉक्टर सतीश पूनिया, डॉक्टर अलका सिंह और कांग्रेस रा नीरज डांगी रा चुनिया जावन रो ऐलान कीनो अरवाना चुनिया जावन रा सर्टिफिकेट तीना। राज्य में काल 15 जुलाई ताई शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर लगाया जावेला। शहरी शिविरों में साफ सफाई, सड़कों की मरम्मत और फ्री होल्ड पट्टा जारी करने समेत जनता रा भलारी न्यारी न्यारी सरकारी योजनाओं रो फायदो लेवन सारू पात्र लोगों अर्जियां ली जावेला। नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा बतायो कि लाड़ला बरसा री लीज री बाकियात री रकम एक मुश्त जमा करावन पर ब्याज माए पूरी छूट दी चावेला।
2: नगर निकायों में कैंप लगने हैं, उन कैंपों में आम आदमी को जो भी पट्टा लेना है, विभाजन करवाना है या दूसरे कोई काम है, उसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन करने में सक्षम नहीं है, ऑफलाइन आवेदन करेगा, तो हमने निकायों को निर्देशित किया कि वहाँ की व्यवस्था रखें और उचित शुल्क पर उसका आवेदन ऑनलाइन हो, इससे सुनिश्चित अभियान के अवधि के दौरान निश्चित रूप से निस्तारण हो, इस बात को सुनिश्चित करेंगे।
0: आपदा प्रबंधन सहायता और नागरिक सुरक्षा मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा आज जयपुर में एहलकारा सागे मीटिंग कर जरूरी हुक्म दीना। वह राज्य में चौमासारी ऋतु में बाढ़, पानी भरण, घनी बिरखा वेवण और दूजी कुदरती आपदाओं रो सामो करण सारू मिलर तैयारियां करण माथे जोर दीनो। डॉक्टर मीणा 15 जून नु राज्य और जिला स्तर माथे आपदा नियंत्रण कक्ष चालू करण रा हुक्म दीना। आपदा प्रबंधन मंत्री कहो कि चौमासा माए हालात माथे लगातार निगरानी राखण सारू वेदर वॉच ग्रुप बनाई चियो है। वह सगला बंधा और एनिकटा ने मरम्मत और रख रखाव तय करण रा हुक्म ही दीना। अरब मौसम, प्रदेश में पड़ रही जोरदार गर्मी और उमस बीच आज कठे कठे मौसम में बदलाव रा आसार है। 12 जिला में आंधी बारिश सारू चेताई चियो है, जबकि कठे कठे ओला पड़बारी संभावना है। 14 जून ताई अंधड़ और बरसात री संभावना ने ध्यान रखता थका जनता ने सावचेत रहवण री राय दी रिची है। ये बीच आज कई ठोड़ा पारो 40-46 डिग्री सेल्सियस बीच दर्ज करी चियो। केंद्र सरकार सुरक्षा प्रणालियां और माली बुनियादी ढांचा माथे साइबर अपराधा रा बढ़ता खतरा सारू चेतायो है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र री ओर जारी चेतावनी रे मुजब साइबर धोखाधड़ी सारू डीप फेक वीडियो काम लिया जा रहा है, जहाँ नजरिए साइबर ठग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जॉब पोर्टल, डेंटिंग प्लेटफॉर्म और फोन नजरिए ठगी करे है। केंद्र सरकार एथेनॉल भेल और बनाई जा पेट्रोल माथा एक्साइज ड्यूटी माफ करती नहीं है। वित्त मंत्रालय कानून जारी अधिसूचना रे मुजब 22-25-27-30 फीसदी एथेनॉल भेड़ो करी जा पेट्रोल माथा एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित करिया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माय 28 जून न विचार बतावेला। आ इन कार्यक्रम री 135वीं कड़ी फैला। इन सारू आप ही मुफ्त नंबर 1800-117-800 माथे 26 जून ताई राय दे सको हो। नरेंद्र मोदी ऐप और माई GOV ओपन फोरम रे जरिए ये विचार भेजा जा सके है। आखिर माई खास समाचार एक कर फिर

0: सुन ली रहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो, दुनिया में उथल पुथल रा मौजूदा दौर में आई भारत खुद माथे भरोसा और मजबूत इरादा सागे आगे बढ़ रियो है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव डिजिटल फर्स्ट हाइपर लोकल रा मंत्र सागे आकाशवाणी और दूरदर्शन रा कलेवर माय बदलाव बाबत कहो। जैसलमेर रा रामगढ़ माय 20 किलोवाट FM ट्रांसमीटर रो जयपुर उद्घाटन कीनो। प्रदेशों राज्यसभा चुनाव माय 3 ही उम्मीदवार निर्विरोध चुनीचिया, 2 सीटा भाजपा और 1 कांग्रेस रा खाता माय। और राज्य में काल 15 जुलाई ताई शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर लगाया जावेला। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोवाट्स पर हम आकाशवाणी सूरतकर के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। संध्या के 7 बज चुके हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण श्रोताओं के लिए उनका दैनिक कार्यक्रम चौपाल।

वृद्धि तेज होगी और उत्पादन में क्या क्या बढ़ोतरी हो सी। रोग और कीट नियंत्रण की जो बात करा तो ग्वार की फसल का जो मुख्य रोग है झुलसा रोग जड़ गलन है। अंग नियंत्रण करने खातर क्या क्या प्रमाणित बीज का अपन उपयोग करना चाहिए और बीज उपचार अपन जरूरी कर लेना चाहिए। ग्वार की फसल में लागने वाला मुख्य कीटा की बात करा तो माहू और फली छेदक है। नियंत्रण करने खातर कृषि विशेषज्ञ की सलाह अनुसार अपन दवाइयों का छिड़काव जो है वो किसान भाइयों कर लेना चाहिए। और कटाई और उत्पादन की आगे बात करा तो फली सूख गए भूरे रंगी हो जाए जन अपना फसल की कटाई कर लेनी चाहिए और औसत उत्पादन जो है 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर यूं मिले। और उन्नत तकनीक अपनाण पर किया गया ज़्यादा उत्पादन भी अपना किया किसान भाइयों प्राप्त कर सका। और एक विशेष जो कि सलाह है वह आ है कि टाइम पर अपन बुआई करनी चाहिए, उन्नत किस्मों का चयन करना चाहिए, संतुलित उर्वरक और सिंचाई प्रबंधन अपन अपनाना चाहिए और रोग और कीट पर क्या अपन नियमित रूपों निगरानी रखनी चाहिए। और आ उपाय अपना गया अपना किसान भाई ग्वार की खेती हूँ ज़्यादा उत्पादन और बेहतर लाभ जो है वो प्राप्त कर सके। तो किसान भाइयों बातचीत आप और कर सियाँ सागी थाना सुनावांगा नाटक जोरू का गुलाम इंगा लेखक।

0: उन्नत किस्मों को चयन करना चाहिए, संतुलित उर्वरक और सिंचाई प्रबंधन अपन अपनाना चाहिए, और रोग और कीट पर क्या का अपना नियमित रूप निगरानी रखनी चाहिए। और आ उपाय ने अपना गया अपना किसान भाई ग्वार की खेती हूँ ज़्यादा उत्पादन और बेहतर लाभ जो है वो प्राप्त कर सके। तो किसान भाइयों बताचीत आप और कर सियाँ सागी थाना सुनावांगा नाटक जोरू का गुलाम। इंगा लेखक है बी आर चावरिया, प्रस्तुत करता है नवीन सिसोदिया। पर अब टेम है एक भजन सुनगो, तो थाने सुनावा सुभाष कटारिया को गायडो ओ भजन।
1: एक तारा बिचलो

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: किसान भाइयों आप सुने ओ भजन सुभाष कटारिया को ओ गाइडो हो और अब सुना एक नाटक जोरू का गुलाम। इंगा लेखक है B.R. चावरिया और प्रस्तुत करता है नवीन सिसोदिया।
3: ए सुने है के बागवान तू चिंत्या करती अबे तो राजी है आपने सुख ले रो ब्याई मंडग्यो मुकलावई हो गयो एर घरे छम छम करती गोरसी बीनी आ गई। वाह रे मेरा सांवरा कुणी शाने मिनक साची कही है तेरे घरे देर है पण अंधेर कोनी। हूं तो मान गयो तेरी लीला ने सांवरा मान गयो।
4: चिंत्या किसी सोरी सी दूर हो ये स्याणो साल 4 हो गया जूती तुड़ाता ने और डंगसर रो टाबर ढूंढता ने घणो ही फिर लिया बनठा कोनी के इनरी किस्मत आ गए कितनी मोटी पाल आड़ी जकी अब हटी है और अपनो तो सांवरो राजी होयो है।
5: ए मऊ साची नी ओ तो आपन कोई लुकेड़ो खजानो ही मिल गयो। छोरी ढूंढता ढूंढता मैं 25 ने पार कर गयो मारा बिल्लीड़ा तो के नहीं लग गया सुखिया अद्भुत तो गयो ब्याह कौन करावे कहीं मुंह उना ने कहीं जवाब दे तो माऊ मने तो घनी शरम आती बीटे में।
3: अरे सुकर मना तेरो ब्यावड़ो हो गयो तेरे सागाड़ा तो आड़ता ही यही फिरे बुआली खानता माँ बाप तिये त्रिमाई फिर लिया आड़ता ही रिश्ता रिजिया खाली है भला खाली है।
4: गुआड़ी सर रो टाबर आजकल मिले कठे तो मसासी तो बीड़नी आई है मुँह तो सफा दोरी को नहीं करूँ इन्ने इन्ने पलका माथे बिठा रखूंगी पलका माथे हाँ सुरगरी हूर सी है मारी बीड़नी तो हाँ
5: सुरगरी हूर सी है आ तो हूँ जानू देखन गया जत तो कवा इनरो तो चोको ऊंचो है आ तो रंगरी सांवली है इरी तो लपरी बहुत चाले एक ही बात ने कह आए टीको पड़न देनी
3: आ बात में कूर थोड़ा ही कवा बात तो है ही हूं तो सगे ने उन वक्त मना करो पर सोचो चलो छोरे री राय ले लिया मार लो भूप कहीं चावे यार आजकल तो रिवाज सो ही बन रहा बला।
4: सुखा बेटा तन्ने सागे लेर गया तन्ने पूछो जना तू हामी भरली मैं तेरी बात ने टाल भी तो कोनी सका तेरी पिसंद मारे सगला री पिसंद है उम्र तो बेटा काटनी तू यानी इंगे सागे।
5: माऊ पहला भी तो आपा 7-8 रिश्ता देखिया बे पिसंद कोनी आया जना ओ किशो पिसंद आ जान तो एर मने लाडी थारी बाता से उठा लाग गयो कै बाबो अब कई बेरंग लेर जासी और पछे कहीं करूं माऊ।

0: बाबो तो छोरी पछे अर धनरी पांड मऊ धनरी पांड पेली देखे।
1: अच्छो बेटा अच्छो, तू कहो उनतरी कर दिनो, अबे बाज बाजर करो कमाई, बहु बेटा तो कमामता ही अच्छा लगे, बस तू राजी रहे तो मैं सगड़ा पहली राजिया फलो एर फूलो।
2: बहू आया घर रो काम ही घणो बच जाए, कह बचपन साची है। आई बहू आयो काम, गई बहू गयो काम, कितरो ही होवे। अब तो मैं दोनों सासू बहू घर रो काम चुटकी रे साथे निबेड़ लेशा, काम ऊपर रो ऊपर ही शाम लेशा।
0: मऊ ए मऊ, तू अबारी किन्ने काम धंधे री बात छेड़ के बैठी, काम रे बिसरे वहां कहीं, ए काम कुम आप ही होता रे सी, सगली उम्र काम ही करनो है मऊ, और कहीं करनो है।
1: वीणी आई है, अब तो कई दिन रे अथारी पकाईडी खाशा, एर मैं दोनों तो बैठे आराम करशा आराम, एर जिंदगी रा दिन की सोरा टूट सी, गाम ग्वाड़ माए बाता चाल सी भई, बीननी तो सांत रह आई है।
2: बीननी रे हाथा चू खाने री उम्र सारी पड़ी है, एकर तो नुई नुई आईडी है, दोरी सफा कोनी करूं, पर आए घर आई है, कई दिन तो बापड़ी रो जी कोनी लाग सी, सगला परिवार री लाडली रेडी है, छोड़ दे बेटा काम।
0: ए सुने सुने कोनी के मऊ कवे तो छोड़ दे, अर जार की घड़ी शाक आराम कर ले, काम तो मऊ आप ही कर लेसी, जा जा उठ जा, जना हूं कह लाग रही हूं काम किशो की नहीं भाजे है, किम बापू सारो लगा देसी, एक खाली बैठे रहे सर्दी ने।
1: सुखा ओ सुखा, पूछ दान बीननी भैंसारो दूध काढ़ लियो कहीं, सगो भी दिन पूरो पोमार्यो का मारी छोरी दूने बिलोना माए घणी माए रे घणी चतर है, काम करती करती को थके नी।
2: भैंसारी धार तो मुँह काढ़ ले हूं, पर बीननी काई काम लाग रही है, काम करती बात तो निके को नहीं आई, छोटो मोटो घर रो काम करण रो बखत है, था कोनी किसे कुणे में जार बैठी है।
0: मऊ ए मऊ, बातो अब उठी है, टेलीविजन देखे सागे चा पिए, काम पछे कितरो तो है, होड़े होड़े तू कर ले नी मऊ, श्याणी है कर ले।
1: अब उठी है दिन रात एक चढ़ायो, लोगारी बहुआ झंझर के उठे, घर रो काम सो पड़े है, हालता ही तो बिलोवनो बिलोवन आलो पड़ियो है, गोबर नखन आलो पड़ियो है, बाखल बुहारन आली पड़ी है, सोई काम पड़ियो है,
2: थारो काई लेवे तो नुई नुई आई है लाए, आप भी करण लाग जिसी, कामरी घणी चिंता है काई।
0: मऊ ए मऊ, एक बात पूछूं के तने, बाख भई के मेरो जी कौन लागे, आपने गोगा मेडी रो मेलो भरीजेड़ो है नी, मैं दोनों देखिया वहां की मऊ है।
2: जाओ बेटा मेले जानता ने हूं क्यों पालू, घूम फिर आओ, 12 महीना सु मेलो आयो है, साथ है गंठ जोड़े आलो सरे भी पूरो जिसी।
0: सही बात है,
2: पण देख तेरे बापू सु पूछ ले बेटा, साथ है उना सु रिपिया भी ले।
0: बापू ओ बापू बापू, मैं दोनों मेलो देखन जावा, माऊ ने तो पूछ लियो पण बापू की रिपिया तो फिर चीजेगा नहीं मेले में।
1: जे तेरी माऊ को वह तो भला जाओ, मुँह क्या भी मना करूं, पण मेले में ये सावधानी रखिया।
0: हाँ
1: यार देखी भला बक्सू घरे आ जाया।
0: हाँ
1: ए, ए, ए, ए, ए, ए ले रिपिया
0: बापू,
1: सावड़ गोजी में ही गाल ली, बैठे गोजी साफ करनिया गणाई हुए।
0: ठीक है बापू, बात तो थारी सही है, ए सुने कहीं।
2: हाँ
0: आपा मेलो देखन चाल सा, बठे लाडी डोलर इंडो, भांत भांतरा नाच गान सर्कस हर घणोई की हुए, ए मेरी छमकली अब तो बस बेगी सी तैयार हो जा, मऊ बाबे तो आपने छूट दे दीनी, अबे तो तेरी ढील है, बेगी कर जान खातर टेम्पुड़ो होरन बजान लाग रही हुए, सुने कौन के।
3: देख देख इन्हें हाँ, देख
2: हाँ,
3: अरे मेलो कितो जोर को भरी जड़ो है, ओहो हो हो हो, मिनखारी कितनी भीड़ है, रुल ना जाई तू कठई मेरे कन्ने।

0: है रही, ले ले मेरो हाथ पकड़ ले, हाथ पकड़ ले, भीड़ कितनी है तो।
1: देखो देखो देखो कितनी भीड़ है, हूं तो पे लिखना इसो मेरो को देखियो नी, मन तो बहुत ही अच्छो लगे, डबरो लुगाइया और आदमी नावड़े कोनी।
0: अरे नावड़े के तो मेलो है गुंगली, देख वो डॉलर हिंडो है, वो देख तो ऊंचो है डॉलर हिंडे पर, तू हिंड सी के है।
1: हाँ बहुत ऊंचो है, मुँह देख पूजना खार जो सुनिश्चर पड़े, ओ राम
0: तो
1: इन पर तो पालनिया सा न्यारा ही बने उड़ा है।
0: और के तो
1: लोग ही बैठे नी,
0: बेकी सी तो लोग तो
1: अपा कौन सा हिट्टी गिरा हिंडलिया नी,
0: जे डर ना लगे नी। हाँ। तो डॉलर हिंडो हिंडी।
1: हाँ।
0: कई लोगों रो तो ऊंचो जार हाल खराब हुजे।
1: हाँ ओ
0: तू तो अपने गापाई नुआ पेर गाई है।
1: हाँ हाँ हाँ।
0: इतनी दुनिया माई कठे और की रमान ना कर बैठे, मेरी सरवरी तू तोड़ी करा ला कली पछे।
1: ओ थारे साथ थे मने क्या रोडर है।
0: हाँ।
1: बलाई की उजे डॉलर इंडो तो लाज में इंडू ली। मारे गांव वाले पिंपड़ा माथे गणी उबली मचाईडी है।
0: अरे गांव वाली बाता छोड़े, तू पहला कनाई डॉलर हिंडे माथे हिंडी कहीं बता, जको तने डर को लगे नी मेरे पहला आई के तू कदी।
1: ना भाई पहला कनाई ना तू इंडा लिया और ना ही मेलाई, थे तो आया उसो।
0: मैं तो आप कड़ाई को नहीं आया ली, पर सुन हिंडो ऊपर जासी नी जना या शेर को सो चढ़ जीसी। आपा आपा के करशा, आपा आंखे मीच लेशा और नीचे को देखा दी।
1: हाँ। चंगा फिर।
0: हाँ।
1: टिकट ले आओ।
0: हाँ।
1: चलना बिगो सा इंडा माई बैठा।
0: हाँ हाँ इंड श्या ये देख ये
1: सीटा रुदीज ले ली। हाँ। कोई कोई खाली है बस।
0: हाँ। हाँ, वाह भाई वाह, इंडा तो घड़ा ही लिया, अबे नीचे उतर जा है। हाँ, डॉलर इंडो ऊपर ने गयो नी जन, तू बेली बेली हुई मैं तो ने देखियो, तू डरे ही के
1: इकर तो हालत से खराब हो गई, पछे मुंह तगड़ी जड़ा बेच ली और आंखें मीच ली नी, गुरड़ी छाती कर हिंडे पर बैठी रही, घर जो धक धक करे हो।
0: तो सच्ची बताऊं मैं तेरा हिंडो तो ना ऊपर गयो नी, तो यार ने तो आंख मीच ली और जोर से पकड़ लियो, शेर को तो चढ़ियो, पर एक बात बताऊं के मुझे बहुत आयो।
1: हाँ वो देखियो अभी आप मेला में क्या क्या चीजा देख सा, अठे तो इतनी चीजा है बस देखी जाओ देखी जाओ।
0: अरे तो
1: कोई अंत ही नहीं है।
0: ओ मेलो है अठे तो ये चाल सी, अब बिना चाल आपने ए मारवाड़ी गीत चले नी, बिना चाल श्या और सागे जी का काल बेलिया नाचे नी, बांगो डांस देखांगा ओ कमाल हो वे देख।
1: हां देखो देखो देखो किनतरिया दोलड़ी और नाचन लाग रही है,
0: तो
1: इतरिया लग है जिया कर तू मा सिप्रिंग गा लेडो है जाने, रबड़ की सी गुड्डी नाचन लाग रही है जाने।
0: तेरो जी करे के नाचन को
1: है ना, ओ ना ना
0: आरो तो नाचन गावन रो काम है गुंगली। पण छोरी तो कमाल कर दी, जमी पर पड़ियो रिपियो आंख सु चकलियो और पछे मैं के करयो तो देखियो नी, 10 पर नोट चला के मारियो है।
1: अब थे मने इया बताओ मेले माई और काई दिखासियो, भूख ही जोरांगी लाग रही है और थक सी भी गई है।
0: मेले माई तो घणो ही की देखने, देख बोकरो बलई फिंचारो बड़ कढ़ा बोकरो बलई फिर बोकरो मेलो है वो।
1: कोई डबली है माई चलना नी, किंचर कामर की भी कर लियांगा, आया जदरा की है डब पांच डब फिरा, मेरी तो देखो फिंचा भी दुखन लाग।
0: तो ज्यादा मैंने पोगरा ना, घर से आई जना रोट चार पाड़ गई तू, अब बार इतनी बेगी तू भूखी होगी तो भूखी लागी, चल पण कोई और मोटी मांग ना कर ले, हूं खबरदार करू तने पहला ही।
1: ओरे थे कितरा अच्छा हो, हूं तो कहूं नांता गो थारो बाली बांक को ना हुए, पण मेरो के हो तो मानता रे शोनी, बताओ तो श्री चुप किया रे गया।
0: हूं सो की समझू ए लपोसा जिगा तू लगाण लाग रही है नी, ए हूं से की जानू समझी के
1: हंबे साथ थी बतावानी, सर्कस लाग रही है अपन देखन चाल छानी, मुकुना सर्कस कौन देखी नी ठेके वानी कभी।

0: हाथी शेर और दूजा जानवर खेल दिखावे है
1: अरे
0: वो।
1: गुगड़ी, सर्कस देखने री कई बात है। तू कवे तो चांदड़ लो तोड़ लिया दियूं, पण एक दिक्कत है।
0: कहीं हो
1: गांव जान ने मोड़ो जैसी, आपा ने माऊ बाबो रोड़ा करसी, पछे तू दोरी दोरी होती फिर सी।
0: बे, तू रोला सदा ही करता रहे, बने थे समझा दियो नी, अच्छा कौन लागे इनत्रियां करता, नी तो दूरा दरिया दियो लिया, मेरो नाम सुरली है। हाँ
2: बर्तन तू मांजन लाग रही है, बिंडी कहीं करे ब्याई जे राई, वो दिन एर आज रो दिन एक जिशोई है, सुख देन वाली जिगिया तो बेली लगे, करबो करो खोरसो इनरागी, अब नौकरानी बन कमाओ बीननी आ गए।
3: बीननी तो ना धोर पट्टा पाड़ टेलीविजन देखन लाग रही है, और बा काई करे, एक ही तो काम है उंडरो, चाकरी करने आपा आनी चाहे जे तो कर लियो, नहीं तो पड़े हुए।
1: ए माऊ माऊ, तेरो काई ले वे तो बिना टेलीविजन देखन देनी, की अकली तो आवे टेलीविजन।
2: हाँ अकली ले वे, सुन ले सपूतरी बातां, मने तो वा अकली ओड़ी आई लगी, जना ही दूरा दरिया देन लाग रही है, एर सुखला तू कर सी आई वे, ए हाथ का मैं करे खड़े रहे।
3: ओ काई करन लाग रही है, हूँ बताऊँ, पशुआ रो गोबर नाखतो आए वे, सुन लो।
2: गोबर नाखन लाग रहे है, नौ बजन लाग रहे है, तो बिन्नी काई काम करे हो।
1: हूँ अबार गोबर नाखन लाग रही हूँ तो कहीं हो गयो बापू, थे दिन उगण सू पहली नाख देन था, हैर हूँ इन भगत नाखन लाग रही हूँ, फर्क तो खाली इतो ही है क्यों मऊ।
2: चुप रह कि थोड़ो घणो काम कर रो, बीनी नहीं कह दिया कर बेटी रा बाप, ओ ना कवे तो सुखले री माऊ, तू ही कैर काम करवा लिया कर, इन्ने ज्यादा सिर ना चढ़ाओ।
3: बीननी ए बीननी, ए पड़िया भांडा बर्तन आ सगला ने मांजर साफ कर ले, पड़िया भूंडा लागे।
1: माऊ ए माऊ, बिन क्या परेशान करे तू बापड़ी ने, तू मांज लेनी की ताक तो बर्तने बिंगा हाथ की मेहंदी उतर जाएगी। माऊ
2: हद कर दी अण तो, वो तो जोरूरो गुलाम हो गयो, अपन ने अण तो खुआ दी कमाई, आलतानी तो ब्याह ने 6 महीना ही होया है, इन तरह किया पार पड़सी। माऊ तू मांज लेनी बर्तन।
1: बापू मैं तो बर्तन मांजन रो माऊ ने कहो है, थे सगड़ा बर्तन आप ही मांजता नहीं पहला, अब के दिक्कत होगी थारे।
3: तू सुखिया बोल ना, चुप रह, घर रो काम ना करे तो ना करन दियो, आप कमाया कामना कीने देवे दोष, इने मुंह सिर चढ़ाली, ओ देखो बाप की पोल खोले।
2: बस कर, अब रोला ना करे, सुन दे पाड़िया भैंसा रे साथ ही बंदेड़ा है, उन्होंने अड़गा बांध दियो, नी तो बैंशारो सो दू चूं जावेला, आजकल पड़ियो कठे आकड़ा रोई सूख जावे।
3: बीननी दोनों पाड़िया ने दूजे खूंटे बांध दई, चलो इशा ऊपर से ऊपर का काम तो कर लिया कर, ज्यादा दोरा ना होवे तो।
1: माऊ इशा काम तो आप ही कर ले सी ने, खेने री जरूरत ही कोनी, इनरी याददाश्त बहुत है, आ 2 दिन री बात कौन भूले, 2 दिन री।
2: लगे रात पाड़िया ने न्यारा न्यारा कुणी नहीं बंदिया, भर लियो बाल्टी दूध री, ले लियो सोर का जाडी जाडी चार।
3: बीननी पाड़िया ने दूजे खूंटे बांधिया ही कोनी, रात ने दूध सगलो ही चूं गया, 15 शेर पक्को दूध नास हो गयो, पाड़िया गए घने दूध सु मोक लाग दिसी बा न्यारी।
0: ना भाई हूं तो को बांधिया नहीं, देख तो आई, पर हूं सोचो भैंस पाड़िया ने चाटन लाग रही है।
1: भैंस यू अड़गा नहीं बांधसी, जना थना शू दूध पाड़िया चाट गया वा, हा कई बात हुई बाटी।
3: तन्ने चंगो बोलो ठाओ, सागे बंदेड़ा तो दूध चूंग सी, घड़ी घड़ी चा भी तो बनानी पड़े है।
0: मन्ने काई ठाओ बिछा रात नहीं पाउस जिसी सगलो दूध पाढ़िया नहीं चुंगा देसी।
1: ए मऊ क्या मिरोड़ा करे तू काई उग्यो तू?
3: हाँ मेरा है काला चबेड़ा जको हूं कमाऊ और आ खावे माचे पर बैठ कितरो नुकसान हो गयो और कवे रोला क्या मैं करे।
0: सुनो काई मां जी ने समझा दियो आ माने नानो दोनों ही पड़े सुरखी बिंदी लगानी पड़े पछे केसियो सामने बोलन लाग गी। हाँ हूं लिहाज थोड़ी राख्या करू पछे केसियो सासु बहु चुंडम चुंडा होगी।
2: सुन ली नो बहुरो बड़बड़ाट आ तो अबे इं ही करसी अरण तो तेरा ही नहीं सगला रे मुंह माए आंगली फेर दी।
3: हाँ आ कसर रहेगी आ और पूरी कर दे जका लोग तेरी घनी अच्छी बातें करसी के बांगे बीड़नी इससे आई है।
0: एक बात सुन लियो हूं ही गरमाई खोरसियो करण कोनी आई मन्ने कुणी काम को ना क्या करो हुसी जिसो आप ही कर लेशियो नी तो काम जाओ बाड़ माई मेरू कोनी हुए नी।
1: काई कहियो अब कड़े बोली मने बहुत दिन हो गया देखते ने तने हूं सिर चढ़ा ली तू माऊ बाबे खातर इन तरह बोले तू मुंह एक माई लगभग की सीधी करना खुला पटरानी आ तो सम्मी और बोलन लागी। अरे काल री भूतनी हर सेवा माई आद है
2: अबे तो बहुत मुड़ो गए लड़ी जे सरु माई सिर ना चढ़ाऊ तो ये दिन क्यों देखना पड़ता। सुन माने जमीन कुचरनी पड़े रेठी देखनो पड़े बेटा।
3: फालतानी की देर नहीं हुई है बोई घर है भैया पा दिन के गो गमेड़ो आथन ने घरे आ जावे वो गमेड़ो को नहीं होवे लाडी मिन खाना सा काम करो जत तो लागो फूट रहा।
1: अर जी तेरे ना जचे जड़ा चाल घाल ले गाबा जोड़े में अर कर दे छुट्टी।
0: ये ना गो मने माफ कर दियो बिल्ले जितना दिन पिला लेने अब तो सारे घर रो काम कर सो अब तो असली माँ बाबा ते ही हो तारा तो पगला तो दो दो पीस हूँ।
1: आओ इनी बात ओ पड़ियो घर आछो लागे बो खा साथे माऊ बाबेरी कर सेवा नी तो ओ देख ले पगमाए आंगल सोला रुआवे बस इतरे माई समझ जा आगे उनकी नहीं बोल।
2: अबा सो क्यों समझ गी गरमाई अच्छी तरिया रहसी गर्रे काम का साथ है मारी सेवा करसी तो बेटा मे दोनों इन्हें भवनी बेटी बनान राक्षा बला बेटी बनान राक्षा।
1: वाह बापू री देखो कितनी अच्छी बात है अबे आपा सारा रल मिल गए रे वांगा। अरे रोकड़ा जी थे किनू आ गया
4: मैं थारी सारी बाता सुन ली बाता तो थे सारी अच्छी करी है बोलो बीड़नी की जय।

0: आकाशवाणी सूरतगढ़ की प्रस्तुति नाटक आखिरी चिट्ठी, सुनिए दिनांक 13 जून 2026, शनिवार सुबह 9:30 बजे।
1: सभी जवान अपनी अपनी पोजीशन संभालो, दुश्मन ने पहाड़ी वाले मोर्चे पर भारी हमला कर दिया है।
0: याद रखें, नाटक आखिरी चिट्ठी सुनिए 13 जून 2026, शनिवार सुबह 9:30 बजे।
2: अर्जुन, सामने वाली पहाड़ी पर दुश्मन तेजी से आगे बढ़ रहा है, उनकी संख्या हमसे ज्यादा है, लेकिन हमें उन्हें रोकना ही होगा।
3: संख्या से युद्ध नहीं जीते जाते रवि, हौसले से जीते जाते हैं।
0: दिनांक 13 जून 2026, शनिवार सुबह 9:30 बजे सुने आकाशवाणी सूरतगढ़ की प्रस्तुति नाटक आखिरी चिट्ठी।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: किसान भाइयों, आप सुने हो नाटक जोरू का गुलाम। इंगा लेखक हा BR चांवरिया और प्रस्तुत करता हा नवीन सिसोदिया। तो भाइयों, अब टेम है एक और भजन सुनने को। तो थाना सुनावा मुखराम परिहार और साथियों को गाइडो ओ भजन।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: किसान भाइयों, अजोला जो को है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बहुगुणी फर्न है जिसका उपयोग किया गया पशु मछली या कुक्कट के चारे के रूप में अपना किसान भाई करे और इनकी कास्त लगभग किए गए बहुत ही कम लागत में हो जाए। और अजोलो जो को है वो तेजी बढ़ने वालों एक प्रकार को जलीय फर्न है जो को पानी की सतह पर किए गए छोटा छोटा समूह में सघन हरित गुच्छ की तरह तैरती रहे। अपने देश में मुख्य रूप अजोला की जाति अजोला पिन्नाटा पाई जावे और आ किए के गर्मी सहन करने वाली अच्छी किस्म है। और अजोला की पंखुड़िया में एना बिना नाम की नील हरित काई की जाति एक सूक्ष्म जीव है जो को सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को योगीकरण करे और हरी खाद की तरह फसल ने किया कि नाइट्रोजन की आपूर्ति करे। अजोला की एक विशेषता अब यह है कि अनुकूल वातावरण में 5 दिन में यह दुगुण हो जाए और इन्हें पूरे साल बढ़ने दियो जावे तो 300 टन भी ज़्यादा सेंद्रिय पदार्थ प्रति हेक्टेयर पैदा करो जा सके, यानी 40 क्विंटल नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर अपन प्राप्त हो सके। अजोला में 3.5% नाइट्रोजन और कई तरह का कार्बनिक पदार्थ हुआ जिसका उर्वरा शक्ति ने बढ़ावे। अजोला किसानों की कम कीमत पर बेहतर कवक खाद मुहैया कराने की दिशा में वो एक बहुत बड़ा कदम है।

दुधारू पशुओं में अजोला किए के दूध को उत्पादन और गुणवत्ता बढ़े और अजोला दुधारू पशुओं खातर किए के घी को काम करे और किसान भाइयों की जीविका उपार्जन खातर वरदान साबित होने लाग रही है। तो किसान भाइयों, आपने कहना है बाजार भाव भी आडा है, वह भी थाना बताऊंगा, पर अब टाइम है एक और भजन सुन को। तो थाने सुनावा सुभाष कटारिया को गायडो ओ भजन।

किसान भाई हो अपना कने सूरतगढ़ अनाज मंडी का भाव आड़ा है वह बतावा थाना है। तो कणक का भाव रहा 2400 रुपया प्रति क्विंटल, सरसों का रहा 7,033 सौ लेगे 7,390 रुपया प्रति क्विंटल, ग्वार का भाव रहा 5,545 सौ लेगे 5,561 रुपया प्रति क्विंटल। रायसी नगर अनाज मंडी के भाव की बात करें तो कणक का भाव रहा 2,340 रुपयों लेगे 2,696 रुपया प्रति क्विंटल, सरसों का भाव रहा 7,121 सौ लेगे 7,554 रुपया प्रति क्विंटल, चना का भाव रहा 5,540 रुपया प्रति क्विंटल और जौ का भाव रहा 2,230 लेके 2,251 रुपया प्रति क्विंटल। और इंगे साई गई किसान भाई आज को टाइम इतो ही वेद भाई ने देव आ गया। राम राम सा राम राम।

ग्रामीण श्रोता अभी चौपाल कार्यक्रम सुन रहे थे। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्स पर हम आकाशवाणी सूरत के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। आइए सुने फिल्म संगीत।

शो तो वो कार्यक्रम भी आई है सुने। जवां मोहब्बत फिल्म का गीत आवाज एक बार फिर मोहम्मद रफी की।

श्रोताओं लीजिए अब सुनिए शर्मीली फिल्म का गीत, किशोर कुमार की आवाज में गीत नीरज का और संगीत एस टी बर्मन का।

屁，श्रोताओ, आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र शर्मा आपके साथ। स्वीकार करें प्यार भरा नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं हिंदी सिनेमा की उन सबसे खूबसूरत प्रेम कहानियों में से एक, जो सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एहसासों की एक कविता है। आज की फिल्म है कभी कभी, जिसे निर्देशित किया था महान फिल्मकार यश चोपड़ा ने। फिल्म में अमिताभ बच्चन, राखी गुलजार, शशि कपूर, वहीदा रहमान, ऋषि कपूर और नीतू सिंह जैसे सितारे नजर आए। संगीत था खयाम का और गीत लिखे थे साहिर लुधियानवी ने। फिल्म 27 फरवरी 1976 को रिलीज हुई। ये कहानी है प्रेम और बिछड़न, यादों और समय के साथ बदलते रिश्तों की। एक ऐसी कहानी जो पीढ़ियों को जोड़ती है। दोस्तों, मोहब्बत जब शायरी बन जाए और शायरी जब धड़कनों में उतर जाए, तब जन्म लेता है ऐसा गीत। मुकेश की दर्द भरी आवाज और साहिर साहब के अल्फाज ने इसे अमर बना दिया। ये गीत आज भी प्रेम की एक सबसे खूबसूरत अभिव्यक्तियों में गिना जाता है।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 326.72 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी सूरतगढ़ की कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज की फिल्म है कभी

मैं पल दो पल का शायर हूं। जी श्रोताओ, जिंदगी की सच्चाई को बेहद सादगी से बयान करता है ये गीत। हमें याद दिलाता है कि इंसान चला जाता है, लेकिन उसके शब्द और उसके एहसास हमेशा जिंदा रहते हैं। सुनिए ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों, प्यार की मासूमियत, अपनापन और जीवन साथी के प्रति समर्पण का एहसास इस गीत में बखूबी महसूस होता है जो अभी हम आपको सुनवाएंगे। ये गीत सुनते हुए लगता है जैसे समय कुछ पल के लिए ठहर सा गया हो।

श्रोताओं, एक ही फिल्म से एक कार्यक्रम। इस समय आप आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से सुन रहे हैं। आज की फिल्म है कभी कभी। कार्यक्रम में सुनिए अगला गीत। बात करते हैं जब प्यार अपने सबसे खूबसूरत रूप में सामने आता है तो हर चीज में एक नई चमक नजर आने लगती है। मौसम सुहाना लगता है, हवाएं मधुर गीत गाने लगती हैं और प्रिय का हर अंदाज दिल को मोह लेता है। फिल्म कभी कभी का अगला गीत भी ऐसे ही मधुर एहसासों से सजा हुआ है। ये गीत प्रेम की मासूमियत, अपनापन और उस खूबसूरत आकर्षण को बयां करता है जिसे शब्दों में पूरी तरह बांध पाना आसान नहीं होता। साहिर लुधियानवी के कोमल शब्द, खय्याम का मधुर संगीत और किशोर कुमार की सुरीली आवाज इस गीत को एक अलग ही ऊंचाई पर ले जाते हैं। गीत में प्रेमी अपनी प्रेसी की सुंदरता और उसकी सादगी की तुलना फूलों की नजाकत और खुशबू से करता है। तो आइए सुने ये प्यारा सा गीत।

बेटी के जन्म की खुशी को इतने स्नेह और ममता से शायद ही किसी गीत ने व्यक्त किया होगा। ये गीत हर उस दिल को छू जाता है जिसने कभी किसी नन्ही मुस्कान में अपनी दुनिया देखी हो।

दोस्तों, कुछ गीत सिर्फ सुने नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। और जब बात कभी कभी फिल्म की हो तो हर गीत अपने भीतर एक पूरी कहानी समेटे होता है। लीजिए पेश है एक ऐसा नगमा जिसमें जिंदगी का फलसफा है, रिश्तों की गहराई है और वक्त की रवानी का एहसास भी है। साहिर लुधियानवी के खूबसूरत अल्फाज, खयाम का सुमधुर संगीत और मुकेश की दर्द भरी आवाज ने इस गीत को अमर बना दिया। गीत हमें बताता है कि समय बदलता रहता है, चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन भावनाएं और यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। यही वजह है कि दशकों बाद भी ये गीत दिलों को उसी तरह छूता है। तो आइए कुछ पल रुककर इस खूबसूरत एहसास को महसूस करते हैं और सुनते हैं कभी कभी फिल्म का ये सदाबहार गीत।

0: जीवन अमृत अब इन हाथों से पीना है।
1: तो दोस्तों, आज की फिल्म कभी कभी हमें ये सिखाती है कि सच्चा प्यार हमेशा साथ रहे ये जरूरी नहीं, लेकिन उसकी यादें उम्र भर दिल के किसी कोने में महकती रहती हैं। जाते जाते फिल्म की एक भावना याद आती है, कुछ रिश्ते मुकम्मल होकर नहीं बल्कि अधूरे रहकर भी खूबसूरत बन जाते हैं। इसी प्यार, इसी शायरी और इसी मधुर संगीत के साथ आज की इस कार्यक्रम से अपने दोस्त राजेंद्र शर्मा को आज्ञा दें। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम में एक ही फिल्म से। आज की फिल्म थी कभी कभी। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन, जिसे हम अपने जयप दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और हम एक बार फिर मौजूद हैं नए क्लेवर, नए रंग और नए अंदाज के साथ, जहां हमारे साथ है हर मैच का ताज़ा अपडेट और हर मैदान की खबर और सब कुछ अधिक डिटेल के साथ। तो शुरू करते हैं स्पोर्ट्स कैन के साथ खेल के मैदान की हर बात। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। फीफा

0: फुटबॉल विश्व कप 2026 का आज से आगाज। पहले मुकाबले में मेक्सिको और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने होंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा तथा एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसाकरुणन की पुरुष जोड़ी क्वार्टर फाइनल में पहुंची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से ओलंपिक के लिए बड़े लक्ष्य तय करने का आग्रह किया। कहा, खेल के क्षेत्र में देश की बढ़ती सफलता बढ़ती आकांक्षाओं को दिखाती है। श्रीलंका दौरे के लिए भारत की अंडर 19 क्रिकेट टीम घोषित। यशवर्धन सिंह चौहान को पुरुष और भाविका अहिरे को महिला टीम की कमान सौंपी गई। और T20 महिला क्रिकेट विश्व कप 2026 कल से इंग्लैंड और वेल्स में शुरू होगा। तो आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स के सबसे बड़े टूर्नामेंट फीफा विश्व कप के साथ, जो कि आज शुरू होने जा रहा है। गॉड ऑफ फुटबॉल कहे जाने वाले लियोनल मेसी, महानतम खिलाड़ियों में से एक क्रिस्टानिया रोनाल्डो और आखिरी विश्व कप के लिए अपने दावेदारी करते हुए नजर आएंगे। मेसी की अगुवाई में अर्जेंटीना अपने खिताब का बचाव करने उतरेगी। आज से 20 जुलाई तक अमरीका, मैक्सिको और कनाडा की संयुक्त मेजबानी में आयोजित ये संस्करण इसलिए भी ऐतिहासिक माना जा रहा है क्योंकि पहली बार इस टूर्नामेंट में 32 की जगह 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं और कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। और तमाम जानकारियों की इस कड़ी में आज हम उन 5 खिलाड़ियों की बात करेंगे जिन्होंने इस विश्व कप में अब तक सबसे अधिक गोल दागे हैं। सुनिए विशेष की ये रिपोर्ट।
1: जर्मनी के स्टार खिलाड़ी मिरोस्लाव क्लोज फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी रहे हैं। उन्होंने 2002 से 2014 के बीच 4 विश्व कप में हिस्सा लिया और इस दौरान खेले 24 मुकाबलों में कुल 16 गोल किए। 2002 और 2006 में क्लोज ने 5-5 गोल दागे थे, जबकि साल 2010 में 4 और अपने करियर के आखिरी विश्व कप में उन्होंने 2 गोल किए थे। साथ ही 2014 में अपनी टीम को विश्व कप जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। वहीं ब्राजील के लिए खेलने वाले रोनाल्डो तो नजारियो फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं। द फिनोमिनन के नाम से मशहूर रोनाल्डो ने 1994 से लेकर 2006 के बीच कुल 15 गोल किए। उन्होंने यह उपलब्धि महज 19 मुकाबलों में हासिल की। 2002 विश्व कप में रोनाल्डो ने 8 गोल दागते हुए ब्राजील को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। गर्ड मुलर ने वेस्ट जर्मनी के लिए 1970 विश्व कप में 10 गोल, वहीं 1974 में 4 गोल दागकर विश्व में एक अलग पहचान बनाई थी। तीसरे पायदान पर काबिज मुलर ने यह उपलब्धि केवल 13 मुकाबलों में हासिल की थी। फ्रांस के जस्टन फोंटेन ने 1958 विश्व कप के दौरान ऐसा रिकॉर्ड कायम किया था जिसे तोड़ना बेहद मुश्किल नजर आता है। जस्टन ने इस विश्व कप में शानदार खेल दिखाते हुए अकेले 13 गोल किए। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने यह कारनामा महज 6 मुकाबलों में ही करके दिखाया था। यह रिकॉर्ड आज तक कोई भी फुटबॉलर नहीं तोड़ सका है। साल 2022 में अर्जेंटीना को अपनी कप्तानी में चैंपियन बनाने वाले लियोनेल मेसी फीफा विश्व कप के इतिहास में अधिक गोल करने वाले खिलाड़ियों की सूची में संयुक्त चौथे पायदान पर हैं। मेसी ने 2006 से लेकर 2022 के बीच वर्ल्ड कप में अब तक कुल 13 गोल किए हैं। कतर में खेला गया आखिरी विश्व कप मेसी के लिए यादगार रहा था और उन्होंने 7 गोल करके अर्जेंटीना को खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो पिछले फीफा विश्व कप के इस आखिरी विनिंग मोमेंट के साथ वापस से रिचार्ज होने को तैयार है फुटबॉल फैंस का पूरा मन। और इसी कड़ी में आज पहले मुकाबले में मेजबान मैक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। तो आइए जानते हैं विश्व कप के इस पहले मुकाबले में किस टीम का पड़ला कितना भारी है।
2: तो अब इंतजार की घड़ियां समाप्त होने को हैं। अब से कुछ घंटे बाद फीफा विश्व कप 2026 का आगाज होने वाला है। स्पोर्ट्स के सबसे बड़े कार्निवल के लिए भारत और दुनिया भर के फैंस का जोश हाई है। लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जूनियर नेमार और किलियन एम्बाप्पे जैसे सितारों को मैदान पर देखने के लिए सभी फुटबॉल फैंस बेहद उत्साहित हैं। मैक्सिको बनाम साउथ अफ्रीका महामुकाबला भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे से होगा। मैक्सिको सिटी के एस्टेका स्टेडियम में इस मुकाबले की सीटी बजते ही फुटबॉल के इस महाकुंभ की शुरुआत हो जाएगी। 2010 वर्ल्ड कप के ओपनिंग मैच में आमने सामने होने के 16 साल बाद मैक्सिको और साउथ अफ्रीका को एक बार फिर फुटबॉल के सबसे बड़े आयोजन की शुरुआत करने का मौका मिला है। मैक्सिको और साउथ अफ्रीका

0: पांचवी बार विश्व कप में आमने सामने होंगे। मैक्सिको ने पिछले चार में से दो मुकाबले अपने नाम किए हैं, वहीं दक्षिण अफ्रीका ने एक मुकाबला जीता है जबकि एक मुकाबला ड्रॉ रहा है, जिससे मेजबान मैक्सिको का पलड़ा इस मुकाबले में भारी दिखाई देता है। मैक्सिको के एरिक लीरा सेंट्रल मिडफील्ड में अहम भूमिका निभाते नजर आएंगे, जबकि साउथ अफ्रीका के लिए ओस्विन अपोलिस अटैक का जिम्मा संभालेंगे। मैक्सिको अटैकिंग और डिफेंसिव दोनों तरह की रणनीति के साथ मैदान में उतरेगा, जबकि दक्षिण अफ्रीका अपने डिसिप्लिन के लिए विश्व फुटबॉल में जाना जाता है। ऐसे में दोनों ही टीम की नजरें विश्व कप का पहला मुकाबला जीतकर अपने अभियान की शानदार शुरुआत करने पर होगी। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि मैक्सिको होम एडवांटेज का फायदा उठाता है या दक्षिण अफ्रीका अपने बेहतर खेल से एक अलग पहचान बनाएगा। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो आज रात 12 बजे से जोश, जज्बे और रोमांच के इस अनुभव के साथ शुरू होगा फीफा का महाकुंभ। और अब बात करते हैं बैडमिंटन की। स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा आज ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। वहीं एमआर अर्जुन और हरिहरन हंसाकरुणन की पुरुष जोड़ी ने भी अंतिम आठ में जगह बना ली है। सुनते हैं आज खेले गए मुकाबलों पर ये रिपोर्ट।
2: दो बार के ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं।
3: I won my second round and I'm very happy. I think I would like to thank all the fans out there who've been very supportive.
2: सिंधु ने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारत की ही ईशा रानी बरुआ को 22-20, 21-12 से हराया। अब क्वार्टर फाइनल में उनका सामना चेन सू यू से होगा। वहीं तन्वी शर्मा ने भी हमवतन मालविका बंसोड को 21-13, 21-15 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। 17 साल की तन्वी ने कल बड़ा उलटफेर करते हुए दुनिया की 11वें नंबर की खिलाड़ी चीनी ताइपे की च्यू पिन चियान को हराया था। वहीं भारत की तानिया को पोर्न पावी चोचू वोंग से 12-21, 15-21 से हार का सामना करना पड़ा। एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन की भारतीय पुरुष जोड़ी भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। इस जोड़ी ने न्यूजीलैंड के माइकल ओवेन और डायलन सोएत चासा को 21-17, 21-7 से हराया। मिक्स डबल में ध्रुव रावत और मनीषा की जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा। पुरुष सिंगल्स में किरण जॉर्ज, सानी दयानंद और थारून मन्नेपल्ली का अभियान अपने अपने मैचों में हार के साथ समाप्त हो गया। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
1: और ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद अब बात करते हैं एक और खेल आयोजन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए देश के लिए ओलंपिक से बड़े लक्ष्य तय करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेल के क्षेत्र में देश की बढ़ती सफलता उसकी बढ़ती आकांक्षाओं को दर्शाती है। प्रधानमंत्री मोदी के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के अवसर पर नई दिल्ली के भारत मंडपम में कल आयोजित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए कॉन्क्लेव के दौरान श्री मोदी ने कहा कि भारतीय युवा खेलों में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका प्रदर्शन हर दिन बेहतर होते जा रहा है।
4: और स्पोर्ट्स में तो भारत के युवा कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं और हर दिन उनकी परफॉर्मेंस निखरती जा रही है। भारत दुनिया की बिगेस्ट स्पोर्ट्स लीग की धरती बनता जा रहा है। आने वाले सालों में हमारी ये ख्याति और बुलंद होगी। ओलंपिक्स के लिए हमारी तैयारियां भी भारत की एस्पिरेशन का ही प्रतिबिंब है। हमें छोटा नहीं सोचना है, हमें लक्ष्य ऊंचे रखने हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए पूरी ताकत लगा देनी। आज भारत रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार होकर तेजी से आगे बढ़ रहा। हमारे लिए रिफॉर्म कोई कंपल्शन नहीं है, रिफॉर्म हमारा कन्विक्शन है।
1: तो रिफॉर्म भारत का कन्विक्शन है और इसकी साफ झलक देखने को मिलती है जब युवा खिलाड़ी अपने सीने पर तिरंगा लगाए मैदान पर उतरते हैं और रोज नए कीर्तिमानों को ध्वस्त करते हुए नजर आते हैं। और अब बात करते हैं श्रीलंका दौरे के लिए भारत की अंडर 19 क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी गई है। ये दौरा 4 जुलाई से शुरू होगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI की जूनियर क्रिकेट कमेटी ने श्रीलंका के आगामी दौरे के लिए पुरुष की अंडर 19 टीम चुनी है, जिसमें 3 एकदिवसीय मैच और 2 मल्टी डे मैच खेले जाने हैं। यशवर्धन सिंह चौहान दोनों फॉर्मेट में टीम की कप्तानी करेंगे, जबकि लक्ष्य रायचंदानी उपकप्तान होंगे। दिग्गज भारतीय क्रिकेटर राहुल द्रविड के बेटे अन्वय द्रविड को भी एक दिवसीय टीम में विकेटकीपर के तौर पर शामिल किया गया है। वहीं श्रीलंका के खिलाफ होने वाली तीन मुकाबलों की महिला एक दिवसीय और टी20 क्रिकेट श्रृंखला के लिए भी भारतीय महिला अंडर 19 टीम का कार्यक्रम का आज ऐलान कर दिया गया। दोनों फॉर्मेट के लिए टीम की कमान भाविका अहिरे के हाथ में सौंपी गई है, जबकि महाक नरवासे दोनों प्रारूपों में टीम की उपकप्तान होंगी। श्रृंखला की शुरुआत 22 जून को चेन्नई में पहले

0: टी20 मुकाबले के साथ होगी। और जब टी20 की बात छिड़ी है तो बात टी20 क्रिकेट विश्व कप की भी होगी, जो कि कल से इंग्लैंड और वेल्स में शुरू होने जा रहा है। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में विमेंस इन ब्लू अपने पहले टी20 विश्व कप खिताब के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है और भारत की नज़र 17 सालों के इतिहास में पहली बार ये खिताब जीतने पर होगी। आज हम बात करेंगे टी20 महिला क्रिकेट विश्व कप 2026 में भारतीय बल्लेबाजी क्रम की सबसे मजबूत कड़ियों पर।
1: भारतीय टीम के पास विश्व कप में शुरुआत से लेकर अंत तक और अनुभव से लेकर युवा तक ऐसे बल्लेबाज हैं जो अपने बल्ले से किसी भी मैच का नतीजा बदल सकते हैं। हरमनप्रीत की आर्मी की सबसे मजबूत कड़ी है स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा की सलामी जोड़ी। जब भी ये जोड़ी शुरुआत से अपना स्वाभाविक खेल दिखाती है तो भारत के लिए एक बड़े स्कोर की राह पावर प्ले में ही आसान बन जाती है। उप कप्तान मंधाना तेज गति और आक्रामक शैली से रन बनाने के लिए जानी जाती है। स्मृति भारत के लिए टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी हैं। उन्होंने करीब 30 के औसत से 4,293 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और 33 अर्धशतक भी शामिल हैं। वहीं युवा शेफाली भी पावर हिटर मानी जाती हैं और हाल के वर्षों में उनका प्रदर्शन शानदार रहा है। ऊर्जा से भरपूर शेफाली ने अपने टी20 करियर में 28 की औसत से 2,687 रन बनाए हैं। शेफाली किन इरादों से मैदान पर उतरना चाहती हैं, ये खुद उनसे सुनते हैं।
2: जब भी मैं कोई टी20 वर्ल्ड कप खेलती हूँ तो मुझे हमेशा 2020 वर्ल्ड कप फाइनल याद आ जाती है। ऑफ कोर्स मेरा फर्स्ट वर्ल्ड कप था, मुझे वो फाइनल याद आता है कि मुझे उस फाइनल का बदला जरूर लेना 2020 वर्ल्ड कप का, एंड होपफुली दिस टाइम वी बीट देम।
1: अगर मिडिल ऑर्डर की बात की जाए तो इस विभाग की जिम्मेदारी खुद कप्तान हरमनप्रीत कौर के कंधों पर है। इस मैच विनर खिलाड़ी ने अपने बल्ले से भारत के लिए कई मुकाबले पलटे हैं। हरमनप्रीत ने क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में लगभग 30 की औसत से 3,991 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और 16 अर्धशतक शामिल है। टीम की बल्लेबाजी को लेकर रणनीति पर खुद कप्तान ने क्या कहा, वो सुनते हैं।
3: Target runs in the power play, and if you're bowling, you know, we have to get a couple of wickets in the power play. Once the power play is set, uske baad aapka game chalta. So I think definitely we want to really work hard, like how we have to go about the power play, and secondly, you know, middle over also play very big role.
1: Jemima Rodrigues bhi madhya kram ki ek mazboot kadi hai. Takniki roop se daksh aur pressure mein sthirta rakhne ki kala is khiladi ko behad khas banati hai. 2025 mein ek divasiya vishw cup ki jeet ne is khiladi ki trophy jeetne ki संभावनाएं और बढ़ा दी हैं।
4: Now you've tasted what it feels like to lift one World Cup. It makes you want one more and then one more and then one more. So I think the team is even more motivated and even more eager. And more than that, we saw the kind of impact it had for women's cricket in India. We just want to continue that legacy.
1: विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष से भी टीम को एक अच्छे फिनिशर का रोल अदा करने की उम्मीद होगी। ऋचा तेज गति से स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ा सकती हैं और बड़े शॉट खेलने की क्षमता रखती हैं। वे हाल के मैचों में अच्छी फॉर्म में भी नजर आईं। इन खिलाड़ियों के अलावा टीम को भारती फुलमाली, दीप्ति शर्मा और यस्तिका भाटिया शर्मा से भी भरपूर उम्मीद होगी, जो टीम को एक ऐसे भरोसे के साथ साथ बल्लेबाजी में गहराई देने का भी काम करेंगी। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो भारतीय टीम किन तेवरों के साथ 14 जून को बर्मिंघम में पाकिस्तान की टीम के खिलाफ अपना पहला मुकाबला खेलने उतरेगी, ये इस रिपोर्ट में साफ नज़र आया। और अंत में चलते चलते बात कर लेते हैं भारतीय एथलेटिक्स पुरस्कारों की, जो कि 20 जून को नई दिल्ली में दिए जाएंगे। इस समारोह में 10 वर्गों में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों को और कोचों को उनके जीवन भर के योगदान और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया जाएगा। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय और अपने सुझाव हमें स्पोर्ट्सकैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए, नमस्कार।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए समझौता किया।

0: भारत ने ओमान तट के पास तेल टैंकर पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने की कड़ी निंदा की। अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची और फीफा विश्व कप आज रात रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा। पहले मुकाबले में मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया तथा विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
1: To youth, to working life, to old age.
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री निफियू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
3: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इसे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने ओमान तट पर जहाज MT सिटबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया।
3: We attach high importance to the welfare and well-being.
4: हम अपनी नाविकों के कल्याण और सुरक्षा को बहुत महत्व देते हैं। क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। ये हमले तुरंत बंद होने चाहिए। हम संवाद और कूटनीति का भी आह्वान करते हैं ताकि क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल हो सके।
3: Peace and stability in the region.
2: नाविक कल्याण कोच समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। इस बीच पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अधिकारियों को MT सेट्टेबेलो से 21 बचे भारतीयों की जल्द वापसी और मृत नाविकों के शवों को शीघ्र स्वदेश लाने के निर्देश दिए गए हैं। उधर आज उत्तरी ओमान के शिनास बंदरगाह के पास एक वाणिज्यिक टैंकर MT जलवीर में आग लग गई। इस जहाज पर करीब 20 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार हैं। मस्कट स्थित भारतीय दूतावास

0: स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। पिछले 72 घंटों में ओमान के जल क्षेत्र में भारतीय चालक दल वाले जहाजों से ये जुड़ी तीसरी घटना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रविवार को फ्रांस और स्लोवाकिया के 5 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री की ये यात्रा अत्यंत उपयोगी और व्यापक होगी। श्री जॉर्ज ने बताया कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर श्री मोदी 52वें G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
1: The visit will provide an opportunity.
2: यह दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले विश्व नेताओं के साथ भारत और ग्लोबल साउथ के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करेगा। यह G7 शिखर सम्मेलन में भारत की 13वीं भागीदारी और प्रधानमंत्री मोदी की सम्मेलन में लगातार 7वीं भागीदारी होगी।
1: पार्टिसिपेशन एट द समिट।
0: श्री मोदी 14 जून से 16 जून तक स्लोवाकिया में रहेंगे। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री का स्लोवाकिया का पहला दौरा होगा। भारत ने मालदीव सरकार को खसरे के टीके की 20,000 खुराक और लगभग 3 टन चिकित्सा सामग्री की खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि ये सहायता मालदीव में खसरे के बढ़ते मामलों से निपटने और सरकार के राहत प्रयासों को मजबूत करने में सहायक होगी। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री जोशी ने कहा कि ये उपलब्धि देश की खाद्य सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगी, किसानों को सशक्त बनाएगी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का वस्त्र बाजार वर्ष 2014-15 में लगभग 8,50,000 करोड़ रुपए का था, जो वर्तमान में बढ़कर 16,00,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि कृषि के बाद वस्त्र उद्योग देश में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है।
3: एक्सपोर्ट भी लगभग 2,33,536 करोड़ का 10 साल में हुआ और मोदी जी के कार्यकाल में 3,25,339 करोड़ का हुआ।
0: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में।
4: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। गरीबों के लिए पक्का घर उपलब्ध कराना मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ओडिशा के कालाहांडी जिले के इंद्रमणि नायक ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना से गरीब लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है।
5: गरीब कल्याण योजना जो नरेंद्र मोदी ने जो किया है, वो हमारा फैमिली 5 है, जो हमको 5-5 किलो दे रहे हैं, जो अभी पहले से बहुत दिक्कत था, अभी तो बहुत हम लोग अभी सुखी शांति से सब जी रहे हैं।
4: दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5,00,000 रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। देश भर में अब तक लगभग 10,82,00,000 लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के रहने वाले फैयाज अहमद ने कहा कि यह योजना आपातकालीन परिस्थितियों में गरीब लोगों के इलाज में बहुत मददगार साबित हो रही है।
6: जब से आयुष्मान भारत का स्कीम मोदी जी ने लॉन्च करा है, कभी भी किसी को जरूरत पड़ती है तो उसको भरपूर और एक आला मयारी इलाज बेहतरीन अस्पताल में मिलता है और राइट टाइम पे मिलता है, कोई क्यू में रहना नहीं पड़ता। मोदी जी हिस्ट्री के बेहतरीन कस्टोडियंस में से एक है, जो अपने आवाम का एक बेहतरीन कस्टोडियन है।
4: वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 10,55,00,000 से अधिक महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन दिए गए। वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई PM स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1,12,00,000 से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2015 में 19%

0: लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 64% से अधिक हो गया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी है। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। उद्घाटन मैच में आज रात 12:30 बजे से मेजबान मेक्सिको और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने होंगे। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
4: फीफा विश्व कप का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीम भाग ले रही हैं। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। विश्व कप के इतिहास में अब तक ब्राजील, इटली, जर्मनी, स्पेन, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और उरुग्वे ने फीफा ट्रॉफी जीती है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष दो टीम सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले शामिल होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
3: पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड़ को हराया। मौसम विभाग ने शनिवार तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है और कल शाम तक तेज हवाओं और ओलावृष्टि की आशंका व्यक्त की है। पूर्वोत्तर भारत और हिमालय की तराई वाले पश्चिम बंगाल में 17 जून तक मूसलाधार बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल शाम तक बारिश होने का अनुमान है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए समझौता किया। भारत ने ओमान तट के पास तेल टैंकर पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने की निंदा की। अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची और फीफा विश्व कप आज रात रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा। पहले मुकाबले में मेजबान मेक्सिको और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

श्रोताओं, सुगम संगीत कार्यक्रम में इस समय आप आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से सुन रहे हैं। आज के कार्यक्रम में कलाकार हैं चंदन दास।

0: चंदन दास की गाई इस गजल के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 326.7 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्स पर हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूरा करने के अवसर पर एनडीए कॉन्क्लेव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष झा, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अम्बरीश सक्सेना।
2: आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं एनडीए अधिवेशन में प्रधानमंत्री के संबोधन के मुख्य बिंदु, और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष झा। आशुतोष जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: तो आशुतोष जी, जैसा कि कल हमने सुना कि प्रधानमंत्री जी का जो उद्बोधन था, और जिसमें उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर बात की, देश के अंदर

0: हमारे सामने समस्याएं हैं, जो विकास के मुख्य आयाम हैं, और वैदेशिक संदर्भ में भारत की क्या मुख्य भूमिका है, इन तमाम बिंदुओं पर प्रधानमंत्री ने चर्चा की। उन्होंने ये बताया कि किस तरह से पिछले 12 साल में सरकार ने काम किया है और देश को किस तरह से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया है। खासतौर पर अगर हम बात करें तो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की, ढांचागत विकास की उन्होंने बात की, डिजिटल सेवाओं की बात की, वेलफेयर स्कीम्स की बात की, आप इसके बारे में और क्या जोड़ना चाहेंगे?
1: पिछले 12 साल जो काम हुए हैं राजग काल में, एनडीए के काल में, उसकी जो बात की वो तो की उपलब्धियां गिनाई जाए। ये उपलब्धियां मुझे लगता है कि दो स्तर पर दिखी। एक तो कि जो जमीन पे जो चीजें आपको बदलती हुई दिख रही हैं वो, कि जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारे डेवलपमेंट हुए, और दूसरा है सोच के स्तर पर बदलाव कि हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है। जो जो पहले की सरकारों में 60 सालों में जिस तरफ हमारा, जिस सेक्टर पे फोकस नहीं होना चाहिए था और नहीं गया, उसको कैसे सुधारना है, वो एक लेवल वो था कि कैसे बदलना है। और जो तीसरा जो एक लेवल था जो मुझे दिखा, और प्रधानमंत्री ने इसके बारे में बात भी की, वो ये है कि भारत की जो 140 करोड़ जनता है उसके मन और दिमाग में कुछ चीजें असंभव सी थी जो कि बैठी हुई थी, कि ये चीजें असंभव है, बाकी चीजें तो हम करेंगे। उस असंभव को पार करना, जिसमें कि उन्होंने फिर वो 370 और 3 तलाक, जो इस तरीके की बात की जो समाज से भी जुड़ते थे, देश की सुरक्षा से भी जुड़ने वाले इशू थे, और जो आम जन की जनभावना से जुड़े हुए जो मुद्दे थे वो, तो ये 3 तरीके के बदलाव जो पिछले 12 साल में हुए, मुझे लगा कि प्रधानमंत्री ने इस पे बहुत खुल के बात।
0: आशुतोष जी, अगर हम खासतौर से बात करें आर्थिक प्रगति की, हम सभी देखते हैं कि किस तरह से विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से विकास हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करें, निवेश की बात करें, डिजिटल पेमेंट की बात करें, और खासतौर से पूरी दुनिया में भारत ने अपनी एक जगह बनाई है, और न सिर्फ एक जगह बनाई है, हमने लगातार कोशिश की है इस सरकार के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कि हम बाकी दुनिया से एक कदम आगे चलें। तो आइए सुनते हैं इस बारे में प्रधानमंत्री ने क्या कहा।
2: आज ग्लोबल ग्रोथ में भारत की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है, इसलिए भारत को अब ग्लोबल पैरामीटर्स, ग्लोबल कंपटीशन और ग्लोबल पर्सपेक्टिव देखना है। दुनिया भारत से सॉल्यूशन चाहती है, दुनिया भारत में वैश्विक सप्लाई चेन का एक भरोसेमंद पार्टनर देख रही है, और हमें दुनिया की इन अपेक्षाओं पर खरा उतर कर दिखाना है। हमें यह समय गंवाना नहीं है, और मैं बार बार कहता हूँ यही समय है, सही समय। हमें फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी में खुद को श्रेष्ठ रखना है। हमें सिर्फ दुनिया जैसा नहीं करना, हमें दुनिया से एक कदम आगे रहना है।
0: तो आशुतोष, आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, और अगर हम देखें कि किस तरह से जो देश का विकास हुआ है और जो 2047 का लक्ष्य हमने निर्धारित किया है, चूंकि 100 साल हमारे देश की स्वतंत्रता के हो जाएंगे, और उसमें आर्थिक विकास से लेके जो टेक्नोलॉजी का विकास है, जो सोशल इंक्लूजन की बात है, सामाजिक समावेश की बात है, और एक अच्छे प्रशासन और गुड गवर्नेंस की बात है, इस बारे में आप आशुतोष जी और क्या जानकारी देना चाहेंगे?
1: आज देश को किस चीज की जरूरत है? अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करें, जो बात हो रही है ना कि पश्चिम एशिया का संकट आया और पूरे विश्व पे इस संकट का असर दिख रहा है, यहाँ पर विपक्ष में बैठे लोग कुछ ज्यादा उसे तूल दे रहे हैं, ऐसा लगता हो कि सिर्फ इंडिया का वो एक इशू है, लेकिन फिर भी जो समस्या अभी आपको दिख रही है ये और कम दिखती अगर कुछ कदम पहले उठाए गए होते, जिसका कि जिक्र अभी प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में किया था, और उन्होंने कहा था कि भाई जो सप्लाई चेन में जो इंडिया का कई बार दिखता है कि हम दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं, ये कोविड के टाइम में भी ये चीजें दिखी थी और अभी भी चीजें दिख रही है। वहां कैसे ग्लोबल सप्लाई चेन में मुख्य भूमिका में इंडिया को आना है। एक टाइम आप याद कीजिए कि कई सारी ऐसी वस्तुएं हैं जहां हम पहले से मैन्युफैक्चरिंग करते थे, जैसे कि दवाइयां, ये 80-90 के आसपास की मैं बात बता रहा हूँ, और फिर धीरे धीरे उस समय कुछ इस तरीके से निर्णय लिए गए कि भाई हम मार्केट इकोनॉमी में किस तरीके से घुस जाए, और हम वहां मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो उस समय में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार खड़ा करना था वो नहीं किया गया, अब शुरुआत हो रही है इसकी। इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने बहुत लंबे तरीके से किया और मुझे वो चीजें बहुत सही लगी आज के परिप्रेक्ष्य में कि क्यों नहीं भारत हर मामले में आत्मनिर्भर हो सकता है, जिसकी बात उन्होंने की। ये आत्मनिर्भरता ही जो है वही

0: कड़ी है और वही आप समझिए सबसे बड़ी कुंजी है जिसमें कि आप वित्तीय रूप से बहुत संबल, जो बात हो रही है ना बार बार विकसित भारत बनने की,
1: जी
0: विकसित भारत ऐसा नहीं है कि एक शब्द में जुड़ के कहीं खत्म हो जाए, कई लेवल पे जो स्टेप्स लेने हैं। और इसलिए प्रधानमंत्री ने ये बात की कि भाई ये ग्लोबल सप्लाई चेन बनना है, हमें मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी बनना है। आज से 8-9 साल पहले तक आप याद कीजिए तो यहाँ आपके हाथ में हमारे हाथ में जो भी फोन है वो बाहर से ही आ रहे होंगे कहीं ना कहीं से। अब स्थिति बदली हुई है कि आज अमेरिका वहां के जो यूजर है उसमें से 1 पाउंड मेड इन इंडिया हो रहा है। ये
1: जी
0: जो बदलते हैं माहौल उसकी बात उन्होंने की कि हमें किस तरीके से आर्थिक पावर के रूप में उभरना ही पड़ेगा, यही सबसे बड़ी कुंजी है। उसी के साथ समाज का भी ग्रोथ होगा। भारत जैसे देश में जहां इतनी बड़ी जनसंख्या रहती है उसमें वेलफेयर स्टेट का जो एक बहुत बड़ा बोझ होता है, आप जान रहे हैं कि आज के दिन हम लोग करीब करीब 4-4.5 लाख करोड़ रुपए सब्सिडी में देते हैं,
1: जी
0: आखिर कहां से कर पाएंगे अगर जब तक आप एक आर्थिक ताकत के रूप में नहीं उभरेंगे। और आर्थिक ताकत के रूप में उभरने के लिए इसकी भी जरूरत है और साथ ही साथ सभी राज्यों को भी लेना चाहिए, जो एक हेल्दी कंपटीशन की बात इन्होंने की
1: जी
0: कि भाई ये हेल्दी कंपटीशन सिर्फ राज्य और राज्य में ना हो, ये हेल्दी कंपटीशन गांव से शुरू हो सकता है कि
1: जी
0: एक गांव दूसरे से कॉम्पीट कर रहा हो कि हम अपने गांव को कैसे ज्यादा बेहतर बना पाए, एक शहर दूसरे से कॉम्पीट कर रहा हो कि हम कहाँ पर ज्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर पाए। और उन्होंने कहा कि राज्यों को तो ये कंप्लीट करना चाहिए कि भाई आने वाले टाइम में सब हु विल बी द फर्स्ट स्टेट जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का स्टेट होगा।
1: तो आशुतोष जी आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु उठाए और प्रधानमंत्री ने सहभागिता की बात भी की, क्योंकि उनका ये मानना है जैसा कि आप भी अभी जिक्र कर रहे थे कि सारी जनता मिलके और सारे राज्य मिलके ही विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। तो एक जन विश्वास की जो बात है, जन भागीदारी की बात है, इस पर प्रधानमंत्री ने काफी जोर दिया। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने इस बारे में क्या कहा।
2: देशवासियों की सहभागिता की हमारी बहुत बड़ी शक्ति। ये 12 वर्ष सरकार और समाज की सहभागिता का उत्सव मनाने वाले रहे। बीते 12 वर्षों में मैंने जो भी सहयोग देश से मांगा देशवासियों ने दिल खोल करके साथ दिया। मैंने स्वच्छता का आग्रह किया तो पूरा देश निकल पड़ा। मैंने देश से डिजिटल पेमेंट अपनाने के लिए आह्वान किया तो भारत रियल टाइम ट्रांजेक्शन में दुनिया में सबसे आगे निकल गया। मैंने कोरोना महामारी के दौरान एकजुटता का संयम का आग्रह किया तो देश ने एकजुट होकर उस महामारी का सामना किया। जनता ने कभी हमें निराश नहीं किया। आने वाले समय में भी इसी जन विश्वास और जन भागीदारी के साथ हमें आगे बढ़ना है।
1: आशुतोष जी, जैसा कि अभी हमने सुना, प्रधानमंत्री ने इसके अलावा हाउसिंग की बात की, वित्तीय समावेशन की बात की, सफाई का भी जिक्र किया, स्वास्थ्य का जिक्र किया। खास तौर से जिस तरह से गरीबी उन्मूलन की दिशा में हम तेजी से आगे बढ़े हैं और काफी लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने की कोशिश की है, इस बारे में आप हमारे श्रोताओं को और क्या जानकारी देना चाहेंगे?
0: न सिर्फ गरीबी से, जो 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया, और साथ में उन्होंने कहा कि हमें इसका विशेष प्रयास करना चाहिए, एक साथ मिल करके प्रयास करना चाहिए कि ये फिर से उस गरीबी के दलदल में ना जाए। देखिए सबसे बड़ी समस्या यही होती है जब आप इस तरीके की योजनाओं पे काम करते हैं, स्लिपेज की बात, कि आपने कुछ चीजें ठीक की और वो फिर से धीरे धीरे वहीं चला जाए तो वो प्रयास वहां पर विफल होता है। और देखिए ये गरीबी की जब बात करेंगे तो इसमें सबसे बड़ा कारक हुआ करता था वो है बीमारी, कि एक बार कोई घर में एक बीमार हो गया किसी गरीब के घर और वो फिर से लोन और इसके दुष्चक्र में फंसता हुआ वो वहीं जाता था। बीमारी को लेकर के सरकार ने पहले ही एक कदम उठाया, आज से 5-6 साल पहले जब आयुष्मान योजना की बात हुई थी उससे बहुत सारी चीजें सुधरी थी। और ये जो 25 करोड़ का आंकड़ा अभी आ रहा है कि इतने लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया, वो नियो मिडिल क्लास में और थोड़ा सा उससे नीचे में प्रवेश कर चुके हैं, अब उनकी आकांक्षाएं और बढ़ रही। ये आकांक्षा बढ़ना ही तो है विकसित भारत के लिए जरूरी है।
1: जी, और प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र भी किया कि किस तरह से कुछ समय पहले हमारी अर्थव्यवस्था उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अब हम बहुत ही त्वरित गति से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था की स्थिति में पहुंच गए हैं। और जैसा आपने भी इसका जिक्र किया कि किस तरह से 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से निकाला है, और प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि किस तरह से एक ऐसा भारत बनाया जाए जहाँ गरीबों के सपने भी पूरे हो पाए। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा।
2: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से

0: ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: जैसे कि हमने सुना, आशुतोष जी जो प्रधानमंत्री ने कहा, वो एक ऐसे भारत की कल्पना कर रहे हैं कि जब 100 साल पूरे हों देश के, तो एक नए तरह का भारत हो जो बहुत विकसित हो और विकसित श्रेणी और विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हो पाए। आप इस बारे में क्या और कुछ जानकारी देना चाहेंगे?
2: ये जो विकसित भारत की कल्पना की गई, और उसी समय ये भी है कि विकसित भारत क्या होगा। विकसित भारत का अर्थ ये है कि एक मजबूत आर्थिक शक्ति के रूप में भारत खड़ा होगा, एक आत्मनिर्भर देश के रूप में भारत खड़ा होगा। भारत की तुलना आप किसी छोटे कंट्री से नहीं कर सकते। बहुत सारे विकसित देश ऐसे हैं जहाँ की जनसंख्या आप देख लें तो वो पूरे के पूरे भारत में समाएंगे। तो यहाँ की सोच अलग है और उसी तरीके से इसका ग्रोथ किया जा रहा है। मुझे लगता है जो उन्होंने बात कही दिशा सही है
1: जी,
2: थोड़ी गति की बात है जो उन्होंने कही, जहाँ हमें गति और बढ़ानी है, और जिसमें सबके प्रयास की बात की उन्होंने। ये दोनों चीजें होंगी तो मुझे लगता है दिशा और गति दोनों मिलकर जो है सो इच्छित परिणाम भी देंगे।
1: आशुतोष जी, एक और महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री ने कही कि किस तरह से सरकार ने विकास के लिए जो भी जरूरी फैसले हैं वो समय पे लिए, चूंकि राजनीतिक स्थायित्व तो है और सरकार के पास ये इच्छा शक्ति है कि वो देश को विकास की ओर आगे ले जाना चाहती है। तो सुनते हैं प्रधानमंत्री ने इस बारे में क्या कहा।
0: महिलाओं को आरक्षण, 3 तलाक के खिलाफ कानून, CAA का कानून, भारतीय न्याय संहिता, सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन। NDA सरकार राष्ट्रहित में कोई भी काम करने से पीछे नहीं रही और हम सभी को इस बात पर गर्व है। मैं आज देश को फिर आश्वस्त करूंगा, देश हित के बड़े फैसलों का यह सिलसिला और भी तेज होगा।
1: आशुतोष जी, आप और क्या इसमें जोड़ना चाहेंगे? प्रधानमंत्री ने जो बात की कि देश हित में जो भी फैसला जरूरी होगा वो ये सरकार करेगी, जिससे कि देश विकास की दिशा में आगे बढ़ पाए।
2: मैं आपको एक दो एग्जाम्पल दूंगा
1: जी।
2: 370 की बात इन्होंने की, और आपको याद होगा कि जब 370 हटाया गया था तो उस समय में किस तरीके की बातें कही जा रही थी। मैं अभी अभी कश्मीर से लौट के आया हूँ, बारामूला और शोपियां जैसे जिले, आप वहां भी खुलेआम घूम सकते हैं एक सामान्य नागरिक की तरीके से, वो भी कश्मीरी नहीं, आप बाहर से जाकर के घूम सकते हैं और सुरक्षित घूम सकते हैं, लोग खुश हैं। उसी तरीके से जो 3 तलाक वाली जो बात कही, सरकार का काम सिर्फ ये नहीं होता है कि वो आपको नौकरी दे दे, सरकार का काम ये भी होता है कि वो इस तरीके के प्रयास करे कि समाज में भी बदलाव आए
1: जी। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूरा करने के अवसर पर NDA कॉन्क्लेव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष झा, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अम्बरीश सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कंट्री वाइड।

लीजिए सुनिए मधुशी फिल्म का गीत सोनू निगम की आवाज में, गीत शकील का और संगीत रूप कुमार राठौड़ का।

श्रोतवली जब सुनिए आनंद बख्शी का लिखा गीत संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, फिल्म का नाम नगीना, गीत

शतौली चिप्स लिए आनंद बख्शी का लिखा गीत संगीत लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का, फिल्म का नाम नगीना, गीत को आवाज दी है मोहम्मद अजीज ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम में आइए अब सुनाए राहत इंदौरी का लिखा गीत संगीता मलिक का, आवाज सोनू निगम की, फिल्म का नाम नाजायज़।

जब सुनिए रूप कुमार राठौड़ की आवाज में बॉर्डर फिल्म का ये गीत, गीत जावेद अख्तर का और संगीतानु मलिक का।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 326.72 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्स पर हम आकाशवाणी सूरतकल के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं शाहिद परवेज का सितार पर बजाया राग झिनझोटी।

0: शाहिद परवेज के सितार वादन के साथ ही शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी सूरतकार के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। 11 बजने को हैं, थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
2: The topic for the Governing Council meeting.
3: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
1: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया। ये समझौता नई

0: दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृह मंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
1: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेटेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। भारतीय नौसेना ने यूएई के फुजैरा से निकले एक वाणिज्यिक तेल टैंकर से बिना फटे मिसाइल वॉरहेड को सुरक्षित निकालने का अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया। ये मार्शल आइसलैंड के झंडे वाला टैंकर एमटी ओलंपिक लाइफ ओमान के पास 26 मई को हुए विस्फोट के बाद कोच्चि जा रहा था। बाद में इसमें विस्फोटक पाए जाने की जानकारी मिली। भारत की अध्यक्षता में 13वें ब्रिक्स शहरीकरण फोरम का आज नई दिल्ली में शुभारंभ हुआ। इस 2 दिवसीय फोरम में ब्राजील, रूस, इंडोनेशिया, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और शहरी विकास विशेषज्ञ शहरी विकास से संबंधित प्रमुख प्राथमिकताओं पर विस्तृत विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित हुए हैं। फोरम का उद्घाटन करते हुए आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ये मंच शहरी मुद्दों को वैश्विक विकास चर्चा में और अधिक मजबूती से शामिल करने का एक अवसर है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री जोशी ने कहा कि ये उपलब्धि देश की खाद्य सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगी, किसानों को सशक्त बनाएगी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी। पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड़ को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। Prime Minister Narendra Modi has said when many major economies are facing uncertainty and economic challenges, India's growth story continues to inspire the world. Chairing the 11th Governing Council meeting of Niti Aayog at Rashtrapati Bhavan in New Delhi, he emphasized the need to further strengthen the nation's resolve towards self-reliance and highlighted the importance of adopting and implementing global best practices, particularly in the renewable energy sector. Mr. Modi said, as India progresses towards achieving the vision of Vikasit Bharat, the collective responsibility of the centre and states becomes even greater. The Prime Minister urged states to focus on one district, one product initiatives and developed export-oriented strategies around it. He also identified defence manufacturing as an emerging sector where India is establishing a distinct identity and encouraged the states to formulate policies to leverage the opportunities arising from its growth. The theme of this year's meeting is Inclusive Human Development for Viksit Bharat at 2047. Briefing media after the conclusion of the Governing Council meeting, Niti Aayog Vice Chairperson Ashok Kumar Lahiri said the theme covers all aspects of life, including education, health and employment.
3: The topic for the Governing Council meeting was Inclusive Human Development for Vikasit Bharat 2047. And it was about details. The states talked about what they are doing. Inclusive Human Development covers all the 4 stages of life, from childhood to youth to working life to old age.